0: settled in Bangalore. So, but after my retirement, I chose another career. That is, I pursued medical alternate therapy in acupuncture and acotherapy, acupressure. I took a master's diploma and then MD also in acupuncture, and then now I'm practicing in Satya Sai Hospital as a voluntary service. On weekly basis, I go there and then practice at home also the same therapy, treating patients on voluntary service. This is my short
1: profile. Good, great. तो दोस्तों आपको पता चला कि एवी जयरमन सर एक्यूप्रेशर के थ्रू भी कई सारे लोगों की मदद कर रहे हैं. चलिए तो एवी सर, हम जिस बारे में बातचीत करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, हमारे जीवन में पूजा यानी कि भगवान से जुड़ने का बहुत सारे तरीके होते हैं और हम लोग उसमें बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं, तो हम उसको नाम दे देते हैं अध्यात्म यानी कि स्पिरिचुअलिटी. किसी एक भगवान के बारे में बात ना करते हुए, ये जो पूरी विधा है, ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है, मेडिटेट करना, प्रेयर करना, भगवान के ध्यान में मग्न हो जाना, अपने आप को पीसफुल करना, इसको स्पिरिचुअलिटी अगर कहें, तो हमें थोड़ा अपने वर्ड्स में स्पिरिचुअलिटी एक्सप्लेन कीजिए.
0: एक्चुअली स्पिरिचुअलिटी इज अ वेरी ब्रॉड वर्ड बोल सकते हैं. स्पिरिचुअलिटी बचपन में कुछ अलग मीनिंग होता है. रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी बेसिकली बचपन में हमको हमारे माता पिता हमको इंट्रोड्यूस करते हैं भगवान के श्लोक बोलने के लिए. सो दैट इज वेयर वी गेट इंट्रोड्यूस टू गॉड बेसिकली. तो मदर एंड फादर आर द फर्स्ट गुरुज हु टीच यू फ्यू श्लोकास एंड इंट्रोड्यूस टू गॉड. तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने सुबह नाश्ते ना धो के भगवान के पास जाते हैं, बोलते हैं इसके सामने खड़ा हो जाओ हाथ इस करके, नहीं नो यू स्टार्ट चैंटिंग, दे विल टीच यू फ्यू श्लोकास, दैट इज स्टिल एम्बेडेड इन योर ब्रेन. बचपन में जो सीखते हैं वो काफी अस्त तक रह जाते हैं ब्रेन, तो मम्मी के इन्फ्लुएंस हो जाते हैं. आई रिमेम्बर गोइंग यू नो टू टेम्पल्स विद पेरेंट्स एंड देन पापा की थोड़ा गुजर गए मैं 6 साल में, तो मम्मी बिकेम माई फादर एंड मदर बेसिकली. सो आई वॉज ऑलवेज ट्रेवलिंग विथ माई मम्मी. तो मम्मी मुझे प्रोफेशन के लिए लेके जाती है, तो दैट वॉज लिटिल हाई फॉर मी. उनके लिए ठीक होगा, लेकिन जो आध्यात्मिक प्रवचन होते हैं यू नो स्पिरिचुअलिटी के ऊपर, तो स्वामी जी वहां बोलते थे सो हम बोलो वेन एवर यू डू एनीथिंग यू टेल सो. सो हम का यू नो संस्कृत मीनिंग इज आई एम दैट. सी आई एम गॉड बेसिकली. तो उसको संस्कृत में सो हम बोल देते हैं. तो बोलते हैं तो आप चलते टाइम सो हम बोलो, कान भरने टाइम सो हम बोलो, घर में यू नो यू आर कुकिंग मदर को बोलते हैं. तो आई इवन यूज टू टीस माई मदर, अरे आपको बोलते क्यों नहीं हो सो हम, रोड क्रॉस करने के टाइम भी सो हम बोलो. तो शी यूज टू चाइड मी, अरे रोड क्रॉस करने नहीं बोलेगा तो कोई गाड़ी आके मार देगा मुझे. तो आई यूज टू टीस देयर, बट आई वॉज नॉट अंडरस्टैंडिंग दी depth of that statement. And then my influence was when I was the youngest fellow of 5 sons and 1 sister. So I was the youngest and I was just 6-7 years, and she used to read a lot of adhyatmic text, you know, about all the saints. I used to just sleep in her lap basically, just

0: this went on into my subconscious mind. That is what is wonderful. I was not listening. But during sleep, it has gone subconscious mind. And all these stories I remember even now. That is the beauty of it. All those saints' life histories. So this has helped me a lot, you know, becoming religious, which helped me in my later life. Then spirituality ka first lessons, it was very useful in my life. Then college days mein, I got associated with a mission, with a religious mission, where they were teaching Bhagavad Gita. That was another great blessing. So Bhagavad Gita or spirituality ke kaafi connections hain. Prayer actually is antyatmik shuddhata bolte hain na. It is for purification of the mind. Initially, bachpan mein to prayer aise hi hota hai ki mujhe achhe marks milna hai. I want to get good marks. It starts like that, you know. And then prayers starts with chanting of, Om. Om jo syllable hai.
1: Right, sir.
0: Teen akshar ka A, U, N, M. And that really gives you the solace and, peace in the mind. And something surprising when we go to temple is, we see the God standing in front of him. And we close our eyes. Why? We have come all the way to see the temple.
1: Correct.
0: Hum apne aap ko aankh band kar dete hain. That is because we reflect God in our own conscience. We pray for the well-being of the family. It starts with ourselves, then family, then community. It goes on expanding. तो बचपन में सिर्फ हमको हमको बोला जाता है अरे आंख बंद कर लो इवन लिटिल बिट स्लाइटली आंख सारा खोल के देखते हैं क्या होता है देखें सो बट लेटर ऑन व्हेन वी स्टार्ट स्टडीइंग और नोइंग अबाउट गॉड स्पिरिचुअलिटी ऑन स्पिरिचुअल टेक्स्ट लाइक भगवद गीता And then we get to know what is the depth of the whole thing. Our body, our jism, mind, intellect, buddhi, man, buddhi. And then we are, when we chant Om sincerely and closing our eyes, you actually reflect God in your own antaratma.
1: राइट सर यहाँ पर एक और बात भी आ जाती है सर आप बोल रहे थे तो मेरे को ख्याल आया आपने बोला मंदिर में जाके हम आंखें बंद कर लेते हैं और वी विश फॉर द वेल बीइंग ऑफ एवरीबॉडी पर मुझे लगता है मंदिर में हम गए हैं ऐसा ही मेरे दिल में विचार आया थॉट आया सर मंदिर गए हैं भगवान के दर्शन करने गए हैं तो हम आंखें खोल के उनका दर्शन क्यों नहीं करते हम आंखें क्यों बंद कर लेते हैं जबकि हम गए वहां पर उनका दर्शन करने के लिए ही तो हैं तो हमें भर भर के उनको देखना चाहिए उनकी मूर्ति को प्यार से सराहना चाहिए कि क्या है कैसे हैं कितने खूबसूरत हैं कितने पावरफुल हैं वी शुड कीप ऑन डूइंग दैट इंस्टेड वी जस्ट क्लोज अवर आई सो मुझे समझ में नहीं आया
0: दैट इज द ब्यूटी ऑफ द होल थिंग यू नो गॉड इज गाइडिंग यू टू लुक एट यूर सेल्फ हम अपने अंतरात्मा को देखें
1: अरे तो सर वो घर पे भी तो आके कर सकते हैं उधर ही क्यों
0: क्योंकि बाहर जो यस यू आर लुकिंग एट गॉड यू आर लुकिंग एट गॉड एंड आपने देख लिया काफी देन व्हाट इज नेक्स्ट यू नो देन यू कैन गेट डिस्ट्रैक्टेड विद द सराउंडिंग्स यू नो
1: ओके
0: जो आजू बाजू में को इधर उधर हिल रहे हैं चल रहे हैं So by closing your eyes, you are able to concentrate on the God and your prayers. And then slowly you are looking inwards.
1: All right.
0: क्योंकि बाहर की दुनिया इतना हलचल मची हुई है तो अब अंदर की देख that is what they and all the scriptures say, लुक एट इनसाइड, टर्न योर डायरेक्शन इनसाइड, क्योंकि बाहर की दुनिया तो मेटीरियलिस्टिक है, इट इज नॉट गिविंग यू फुल सोलेस, यस इट गिव्स यू मोर डिजायर्स रादर देन यू नो, एंड देन मन अशांत हो जाते हैं, अरे हमको वो चाहिए ये चाहिए. Whereas when you start looking at inside, that peace, especially when you chant Om, we generally have meditation session in the morning. So, उसमें वही होता है कि आप chanting करो, Om Om reverberate करो, chant loudly, closing your eyes. This is what gives you solace, peace of mind.
1: All right.
0: Ultimately, we want to be happy, is it not? We want to be happy.
1: Absolutely.
0: Yes. Happiness is not outside. That's what the scriptures say. Happiness is inside.
1: Okay, I get it.
0: Yeah.
1: तो दोस्तों जाहिर से बात है हमको मंदिर में जाकर आंख बंद करनी इसलिए होती है कि हम डिस्ट्रैक्ट ना हो, जो भी ईश्वर का स्वरूप हमने देखा वो हमारी आंखों में बसा रहे. तो चलिए आगे बढ़ते हुए एक भजन का आनंद लें, फिर वापस आते हैं एवी सर के पास.

0: माय पेन, माय लैपटॉप, माय मोबाइल, एनीथिंग यू कॉल माय इज नॉट मी. वी शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड माय बॉडी, माय माइंड, माय इंटेलेक्ट इज नॉट मी. ओके, दिस हु इज दिस मी? दिस मी इज समथिंग हु इज डिफरेंट, हु इज ऑब्जर्वर ऑफ दिस ऑल, यू नो. ये अंतकरण जो सोल बोलते हैं ना, आत्मा बोलते हैं, ब्रह्मन बोलते हैं, यू कैन गिव एनी नेम टू दिस, बट दिस इज दैट इनर कॉन्शियसनेस विच इज ऑब्जर्विंग ऑल अवर एक्टिविटीज. वो कॉन्शियंस बोलते हैं ना, हमारा अंतकरण मानता नहीं है. हाउ योर कॉन्शियंस इज अलोविंग टू डू दिस, दैट इज वॉट इज द इम्पॉर्टेंट. आत्मा को पहचानना है, दैट इज कैन बी डन ओनली विथ study of scriptures and practice. So we have to teach the youth the values of all this. So this is what is lacking in our educational curriculum. They teach you only electronics, artificial intelligence, yes, but how to lead a life.
1: तो आइए दोस्तों, एक भजन का आनंद लें, फिर आगे बढ़ें.

0: जयरमन सर, प्लीज मुझे बताइए कि स्पिरिचुअलिटी के हम आज के डेट में फायदे क्या ले सकते हैं। ठीक है, थ्योरेटिकल बातें बहुत हैं, सब है, बहुत अच्छी बात है, भगवान श्री कृष्ण ने बड़ा अच्छा पढ़ा दिया, पर उसका फायदा क्या? आज के जमाने में लोग बेनिफिट में इंटरेस्टेड हैं। सो स्पिरिचुअलिटी, रिलीजन, मेडिटेशन, गीता, इनके बेनिफिट्स बताइए, बेनिफिट्स, टेंजिबल बेनिफिट्स, टेंजिबल, क्योंकि लोग इंटरेस्टेड है कि सर मैं एक घंटा लगाऊंगा मेडिटेशन।
1: नहीं, मेडिटेशन कैन बी वेरी शॉर्ट ऑल्सो, बट सुबह सुबह उठ के आपको मेडिटेट करना है।
0: उसका फायदा क्या सर?
1: मेडिटेशन में फायदा इसीलिए है कि अंतकरण शुद्धि हो जाते हैं। सी प्रोबेबली व्हेन यू सिट एंड मेडिटेशन इज नॉट वेरी इजी बेसिकली, बिकॉज द मोमेंट यू क्लोज योर आईज आपके मन में हजार विचार आते हैं। इट्स अ फ्लो ऑफ थॉट्स, ए फ्लड ऑफ थॉट्स। आप सरप्राइज हो जाएंगे, एक मिनट में इट विल बी थाउजेंड्स ऑफ थॉट्स फ्लोइंग इन द माइंड द मोमेंट यू वॉन्ट टू सिट एंड मेडिटेट, लेट अस से। सो इसीलिए हम ओम चैंटिंग चालू करते हैं। ओम चैंटिंग वी डू अराउंड वॉट एवर नंबर ऑफ टाइम्स, 20-21 टाइम्स, एंड देन द मोमेंट यू फिनिश दिस ओम चैंटिंग द माइंड इज लिटिल रेस्टलेस, इट द फ्लो ऑफ थॉट्स स्टार्ट्स, यू नो, हम कल क्या करना है, आज क्या करना है, अभी जाके पढ़ना है, ये करना है, बट यू बिकम एन ऑब्जर्वर, यू ऑब्जर्व द थॉट्स, डोंट ब्लॉक द थॉट्स, लेट द थॉट्स फ्लो, बट यू बिकम एन ऑब्जर्वर, यू डिटैच यूअर सेल्फ फ्रॉम दैट थॉट्स, एंड इट इज लाइक यू नो हाउ यू आर स्टैंडिंग इन ए बैंक्स ऑफ द रिवर and you are observing the river flowing, you are not a part of the river, but you are observing the flow of river, standing on the banks as a observer. This is what is required. When you start observing in the flow of thoughts, the thought flow starts reducing, and kam hote hote hote hote thoughts kam ho jayenge. Then you still keep observing, and that peace, inner peace of mind. So the scriptures or the spirituality of the masters, the gurus, they are only stressing this, that thoughts ko kam karo, or once the thought becomes zero, which is a very very difficult situation. The thoughtlessness, you observe that silence. The silence, you try to extend that silence, you know, where there are no thoughts. It is difficult to practice. I really, for the youth especially, because they are hyper now. They are bombarded with all this social media, mobile, laptop, especially these artificial intelligence, and people in the IT, they are glued to this laptop for hours together. It is difficult, but systematic practice can be done. The best time is early morning, whatever time is possible, 4 o'clock, 5 o'clock, 6 o'clock, when the atmosphere is quiet, you sit in a quiet corner and do this meditation. There are some methods which we follow also. You keep a jyoti, you know, you can light a lamp and you observe that lamp with devotion, and slowly that lamp, you take the lamp, the jyoti, into your body, you know, take it into your body, slowly take that jyoti mentally to every part of your body. That's called the body relaxation. ये ज्योति को हम पूरे बदन में एक एक अंग, एक एक पार्ट्स को ये करते हुए, दिस ज्योति इज टेकन टू दैट एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी, एंड दैट पार्ट बिकम्स रिलैक्स्ड, एंड देन ऑब्जर्व द साइलेंस। दिस इज पॉसिबल, बट सिस्टमैटिक ट्रेनिंग systematic effort is required by the present youth to make them more peaceful and handle the situation more effectively.
0: तो आइए दोस्तों फिर एक भजन को सुनते हैं और विचार करते हैं जो अभी जयरमन सर ने हमें बताया.

0: बहुत खूब, अमेजिंगली ब्यूटीफुल। अभी पिछली बार, अभी थोड़ी देर पहले आपने जिक्र किया सोशल मीडिया का, इंस्टाग्राम का, फेसबुक का, लैपटॉप का, जो कि आज की डेट में सारी यूथ यूज कर रही है और उनको वक्त नहीं मिलता है। तो क्या हम सोशल मीडिया को स्पिरिचुअलिटी के लिए, रिलीजन के लिए, प्रैक्टिसेस के लिए, मेडिटेशन के लिए यूज कर सकते हैं क्या? क्या हम मतलब उसको रिजेक्ट करने के बजाय क्या हम सोशल मीडिया एक्सेप्ट कर सकते
1: हैं? यू से सोशल मीडिया इज द बेस्ट मेथड ऑफ यू नो नाउ स्प्रेडिंग द मैसेज, बिकॉज एनी मीडिया फॉर दैट मैटर, इट इज हैविंग पॉजिटिव इफेक्ट एंड नेगेटिव इफेक्ट। सो यू कैन यूज डेफिनेटली सोशल मीडिया फॉर इनकल्केटिंग ऑल दिस वैल्यू बेस्ड प्रोसेस, मेडिटेशन टेक्निक। आजकल यूट्यूब तो भरा हुआ है, इफ यू टाइप मेडिटेशन यू विल गेट एन नंबर ऑफ वीडियोस, यू कैन प्ले दैट। सो इंस्टेड ऑफ गोइंग इन द नेगेटिव दिस थिंग, यू कैन यूज इट फॉर पॉजिटिव दिस थिंग। वी हैव टू लिव विद दिस सोशल मीडिया, यू कैन नॉट एस्केप फ्रॉम दैट। सो slowly introduce that into that for your own positive thing. Absolutely, se pehle bhi if you listen to all these techniques, meditation techniques, adhyatmic knowledge through YouTube, social media, your sleep will be more peaceful. Abhi kya karte hain log, late night movies dekhte hain, to late night movies se uska पड़ जाता है। जी, इट अफेक्ट्स योर सबकॉन्शियस माइंड। यू कैन नॉट से दैट आई एम वाचिंग सम वायलेंट मूवीज एंड आई कैन बी काम। नो, इट अफेक्ट्स योर सबकॉन्शियस माइंड। दैट्स द रीजन इवन प्रेग्नेंट लेडीज आर एडवाइज नॉट टू सी एनी वायलेंट मूवीज, दे आर आस्क्ड टू सी आध्यात्मिक एंड यू नो वेरी वेरी होम लविंग मूवीज ऑल्सो, where there is family bonding. So this affects the child in the womb. Aapko ye kahani bhi yaad hoga about Narasimha avatar. Hiranyakashipu was a violent, I mean a very tyrant king. His son Prahlad, when his wife was pregnant, Narada, sage Narada took her to Devaloka. He kidnapped her basically and took her to the Devaloka, and there was teaching adhyatmic knowledge when she was pregnant. So Prahlad, when he came out itself, he was chanting Narayana. How come this is the thing? See, prenatal education is also more important, and it is basically our religion is not part time, it is a 24-hour way of life. Subah se raat tak, no, it is woven with so many rituals, this thing that we cannot it gets into the system, so that you have better sleep. And after going through this acupuncture and all that, I came to this thing that from 11 p.m. you're supposed to sleep at 11 p.m. because from 11 to 1 the liver functions, and 1 to 3 the gallbladder. So all this physical organs also needs

0: try to talk to you, basically. So spirituality gives you that solution to overcome all these negative tendencies.
1: Right, sir. So, दोस्तों, बहुत सिंपल स्टेप्स हैं जो एवी जयरमन सर ने हमें बताए हैं. बहुत सिंपल स्टेप्स बताए हैं और उस चीज को करके हम लोग अपनी लाइफ को थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री कर सकते हैं. सोशल मीडिया को पूरी तरीके से डिलीट तो नहीं किया जा सकता. चलिए जयरमन सर, आपका बहुत बहुत आभार. थैंक यू सो वेरी मच कि आप हमारे प्रोग्राम में आए, आपने अपनी बातें हमें बताई. प्रैक्टिकल
0: थैंक यू फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी टू टॉक अबाउट स्पिरिचुअलिटी. It is the need of the hour now. It's the need of the hour. With lot of stress and anxiety around. So, we can take inspiration from many previous masters like Swami Vivekananda, Ramakrishna Paramahamsa. So, try to, my advice is that please devote some time in the morning for meditation, chanting of Om. ये बहुत जरूरी है. It is for your own benefit. And you can, if you can read Bhagavad Gita, just go through that, and then you will be a better person. You can handle the situation better. So the end of, after end of 18 chapters, Arjuna says, "I'm ready to fight. All my delusions are cleared by you, Lord Krishna." So we have got a wonderful text to follow. There are adhyatmic books more intense, more into that, but at least read this text once, twice, and understand what Lord Krishna is telling you. Thank you so much, sir, for giving me an opportunity to inspire the young generation.
1: Thank you, sir. Please take care.
2: ॐ भास्कराय नमः.
1: दोस्तों, इसी संदेश के साथ आज के कार्यक्रम दिव्य दर्शन को यहीं विराम देते हैं. आशा है कि ये कुछ पल आपके मन को सुकून और दिन को सकारात्मक दिशा देंगे. मुस्कान के साथ दिन की शुरुआत करें, अच्छे विचारों को साथ रखें और शांति को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं. मैं हूं आपका रेडियो दोस्त समीर.

मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।

0: जिंदगी के रंग गीतों के संग प्रोग्राम में दोस्तों आपका स्वागत है। आइए आपको मिलवाते हैं हमारे आपके जैसे सज्जनों और महिलाओं से, जिनकी बातें सुनकर, जिनसे बातचीत करके आपको बड़ा मजा आएगा, और उन्हीं के पसंद के गीत भी हम इस प्रोग्राम में सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज की शुरुआत मजरूह सुल्तानपुरी साहब के एक बेहद मशहूर शेर से है। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। आज की हमारी अतिथि की रंग यात्रा भी कुछ ऐसी ही रही है। एक युवा कलाकार के रूप में शुरू हुआ ये सफर समय के साथ साथ एक ऐसे कारवां में बदल गया जिसने न केवल रंगमंच

0: को समृद्ध किया बल्कि असंख्य विद्यार्थियों, कलाकारों और रंगकर्मियों को दिशा दी। रंगमंच की दुनिया में कुछ लोग केवल किरदार निभाते हैं, कुछ नाटक निर्देशित करते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो पूरी पीढ़ियों को गढ़ते हैं। हमारी आज की अतिथि उन बिरले व्यक्तित्वों में से एक हैं जिन्होंने मंच को केवल जिया नहीं बल्कि उसे अपने जीवन की साधना बना लिया। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा यानी कि NSD की एल्बिना, राजस्थान विश्वविद्यालय के नाट्य विभाग की पूर्व HOD, ललित कला संकाय की पूर्व डीन, एक प्रतिष्ठित अभिनेत्री, निर्देशक, शोधकर्ता और शिक्षिका, प्रोफेसर अर्चना श्रीवास्तव का नाम भारतीय रंगमंच विशेषकर राजस्थान के रंग परिदृश्य में अत्यंत सम्मान के साथ लिया जाता है। 4 दशकों से अधिक की उनकी रंग यात्रा में कोर्ट मार्शल, नटी बिनोदनी, मीरा नाची, मैकबेथ, टोबा टेक सिंह, मंटो की कहानियां जैसे अनेक महत्वपूर्ण नाटकों का निर्देशन और अभिनय शामिल है। उन्होंने बैरी जॉन, बीवी कारंत, रामगोपाल बजाज और नसरुद्दीन शाह जैसे रंगमंच के दिग्गजों के साथ काम किया है। साथ ही अनगिनत विद्यार्थियों को रंगमंच की बारीकियां सिखाकर नई पीढ़ी के कलाकार तैयार किए हैं। लेकिन आज की बातचीत उनके पदों, पुरस्कारों और उपलब्धियों की सूची भर नहीं होगी। आज हम जानने की कोशिश करेंगे उस कलाकार को जिसने सपने देखे, संघर्ष किए, मंच की रोशनी और पर्दे के पीछे की चुनौतियों दोनों को जिया, जिसने अपने जीवन को रंगमंच के नाम पर समर्पित कर दिया। तो आइए बड़े सम्मान और आत्मीयता के साथ स्वागत करते हैं प्रोफेसर अर्चना श्रीवास्तव जी का। अर्चना जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद। मेरे सभी श्रोताओं को हृदय से बहुत बहुत शुक्रिया और नमस्कार।
0: तो चलिए अर्चना जी, शुरुआत से ही कर लेते। ऐसा करते हैं कि उस छोटी सी अर्चना से मिलवाइए जो आगे चलकर रंगमंच की दुनिया में एक बड़ा नाम बनी। आपका बचपन कैसा रहा, कुछ ये तो बताइए।
1: बचपन तो सभी का बहुत ही हसीन होता है साहब, तो हमारा भी बचपन ऐसा ही था। बड़ी अटखेलियां थी, अल्हड़पन था, बहुत ही स्वतंत्र और उन्मुक्त मेरा बचपन था। और सबसे बड़ा जो श्रेय जाता

0: छोटे छोटे नाटक भी होते थे, पंचतंत्र की कथाओं को हम लोग अभिनीत कर किया करते थे, और उसमें माता पिता कहते थे कि तुम पार्टिसिपेट करो।
1: ओहो
0: और क्योंकि स्कूल में हमेशा आगे रहने का मुझे बड़ा कहते हैं एक शौक था, और नेतृत्व करने की हमेशा एक ललक होती थी कि मेरा नाम टीचर्स जब लेती थी उस जमाने में, तो लगता था कि हाँ मेरा जो कहते हैं वजूद है वो सार्थक हुआ। छोटी सी लड़की, लेकिन अच्छा लगता था। मुझे आज भी वो चीज याद है जब प्रिंसिपल आती थी और मुझे कहती थी, अर्चना तुम्हें क्या अच्छा लगता है, तो मैं कहती थी मुझे गाना अच्छा लगता है, सुनाओ। तो इस तरीके से, और शुरुआत मेरी साहब नाटक की, जहां तक बात है, एक मुझे याद है एक एनुअल फंक्शन में एक नाटक करना था, और उस नाटक में एक चिड़िया की कहानी थी, वो चिड़िया जिसको पिंजरे में कैद कर दिया गया है और वो निकल नहीं पा रही है, छटपटा रही है, लेकिन तभी कोई एक छोटा सा बच्चा आता है और उसको मुक्त कर देता है, और वो फिर गाती है, गुनगुनाती है, पूरी स्टेज का चक्कर लगाती है। तो मैं वो चिड़िया बनी थी।
1: वाह, मजा आ गया। ये तो आपने, यू हैव सेट द टोन। आपने एक उस एज में भी चिड़िया, और वो भी जो कैद वाली चिड़िया, एक संवेदनशील सी कहानी से शुरुआत कर दी आपने, तो यही कहूंगा मैं
0: जी
1: तो। और आपने बताया परिवार में भी अच्छा साहित्य और संगीत और कला का एकदम वातावरण था, तो वो कैसा था? आपके पेरेंट्स भी कलाओं से जुड़े हुए थे क्या? कैसा माहौल था?
0: जी दरअसल हमारे परिवार में कला और जीवन अलग-अलग नहीं था। जिंदगी हम जीते थे कलाओं के साथ, माने काम कुछ भी हो। मेरे पिताजी लाइब्रेरी साइंस के प्रोफेसर थे, और लाइब्रेरी साइंस के प्रोफेसर होते हुए सेंट्रल लाइब्रेरी यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में उन्होंने अरसे काम किया डायरेक्टर के तौर पर, और बहुत उम्दा लिखते थे, मुशायरे उस जमाने में हुआ करते थे, शेर व शायरी, उर्दू का बड़ा माहौल था घर में, अंग्रेजी बहुत अच्छी थी उस जमाने की इन लोगों की। लेकिन उन हमारे यहाँ बहुत जरूरी था, माता की तरफ से भी और पिता की तरफ से भी, कि तुम्हें हर दिन एक कहानी पढ़नी है, या महीने में एक कोई छोटी सी नॉवेल पढ़नी है, लेकिन वो साहित्यिक, उसकी एक ऐसी कृति होनी चाहिए जो कि आपको परिष्कृत करे। उस जमाने में हमें नहीं पता था कि हमें कहाँ ले जाएगा, लेकिन हमारा जो सफर है वो इस तरीके से माँ पापा ने शुरू किया, और वो चलता रहा चलता रहा। उस जमाने में धर्मयुग आया करता था, धर्मयुग हम लोग पढ़ते थे, और मतलब आप ये देखिए, प्रेमचंद, हरिवंश राय बच्चन, अमृत राय, आपके राग, ये क्या नाम है हमारे, इस वक्त मैं नाम बिल्कुल भूल
1: धर्मवीर
0: रही हूँ,
1: भारती, अग्गे,
0: रांगे राघव
1: रांगे
0: साहब,
1: राव जी, बिल्कुल
0: हाँ
1: साहब, जयपुर
0: हाँ
1: राजस्थान
0: इनको भी
1: के
0: हम,
1: थे।
0: हाँ तो पापा का कहना था बहुत खूबसूरत लिखा करते हैं, इनकी कहानियां पढ़ो। तो बस इस तरीके से हमारा, ये कहेंगे कि बचपन, और जैसे जैसे हम युवावस्था को आए, तो उन्होंने हमको इस तरीके से पूरा मार्गदर्शन दिया कि पढ़ो और ये मत सोचो तुम्हें क्या बनना है, जिंदगी जियो, और जिंदगी इन तमाम साहित्य और कलाओं के साथ साथ ही है, इससे अगर तुम अलग हो जाओगी तो तुम्हारी जिंदगी नहीं है।
1: मजा आ गया, मजा आ गया। तो ये बातचीत आपकी तो इतनी इंटरेस्टिंग है कि म्यूजिक और अच्छा, फिर थोड़ी सी बात इसके बारे में करते हैं कि आपको कब लगा कि थिएटर केवल शौक नहीं है बल्कि एक जीवन का रास्ता बने? वो कौन सा ट्रिगर था, या ऐसा कौन सा पल था कि आप रंगमंच से या मंच से जुड़ गई एक तरह से? वो कब शुरू हुआ आपकी लाइफ में?
0: ये अगर औपचारिक दृष्टि से सोचा जाए तो कनोडिया कॉलेज में जब मैं पढ़ती थी फर्स्ट ईयर में,
1: ओके, अच्छा।
0: तो वो मेरा बड़ा टर्निंग पॉइंट था। स्कूल में छोटे छोटे नाटक किया करती थी, लेकिन जैसे ही मैंने कॉलेज में प्रवेश लिया, ठीक उसी साल मिस हेमलता प्रभु, जो हमारी नारी शिक्षा की स्तंभ थी, बल्कि हैं, क्योंकि वो एक ऐसी मुझे लगता है शख्सियत है हमारी जिंदगी की जो कभी जाएंगी नहीं, वो हमारे आसपास ही हैं, और उनकी प्रेरणा से, वो तब रिटायर हो रही थी, उनका एग्जिट था कॉलेज से और मेरी एंट्री थी, लेकिन क्योंकि वो बापूनगर में ही रहा करती थी, मिस तरवे, कृष्णा तरवे और मिस हेमलता प्रभु, तो उनके साथ मेरा कई बार बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ साहित्य को लेके। कभी कभी वो कॉलेज आया करती थी कुछ कुछ संगोष्ठियों में।

0: हम बैठते थे उनके साथ और उन्होंने उस जमाने में बताया। तो मैं एक चीज कहूंगी यहाँ, मुझे थोड़ी भाषा का दिक्कत थी। मुझे विदेशी नाटक बहुत अच्छे लगते थे, शेक्सपियर हुए, आपके इप्सन हुए, डॉल्स हाउस उनका जो नाटक है, एनिमी ऑफ द पीपल है। तो हिंदी, मेरी हिंदी और उर्दू बहुत उम्दा है और अंग्रेजी ठीक ठीक है, मतलब समझ के लायक है, वो बहुत लिटरेरी नहीं है। तो वो जो नाटक है जिनके जिनकी बात मैं कर रही हूँ, नाटककारों की, उनके नाटक तो समझना बहुत मुश्किल है। तब मिस प्रभु ने मेरा मनोबल बढ़ाया और उन्होंने कहा, अर्चना बहुत अच्छे नाटक हैं और इनका अनुवाद और इनका पूरा का पूरा आपको एडेप्टेशन भी मिलेगा, यानी कि इनका रूपांतरण भी मिलेगा। और उन्होंने मुझे दिए, उन्होंने फिर वो मुझे बुलाती थी, हम लोग बैठ के, अच्छा ये मोनोलॉग बोलो, तुम्हारी आवाज अच्छी है, तुम्हारा तलफ्फुस अच्छा है, डिक्शन अच्छा है, यू कैन स्पीक लाउड, लिटिल लाउड, प्रोजेक्ट करिए आप अपने आप को, ऐसे ऐसे करते करते। और फिर 3 साल में बहुत एक्टिव रही वहां पर, नाटक जब जब होते थे उसमें मैं बहुत अच्छा बैक स्टेज और ऑन स्टेज होती थी। और इस तरीके से मेरी औपचारिक एक शिक्षा शुरू हुई और यहाँ से मुझे नाटक बहुत ज्यादा अच्छा लगने लगा। फिर मैं दिन जब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर्स कर रही थी यूनिवर्सिटी से, उस जमाने में मुझे याद है शाम के समय में, ये एक तरह का मुझे एडिक्शन हो गया था तब तक, कि चैन, एक नाटक खत्म हुआ, अब क्या, अब बिल्कुल खाली खाली लग रहा है, तो अब क्या करें, चलो फिर चलते हैं। उस जमाने में साहब रविंद्र मंच, क्या स्वर्णिम इतिहास हमारा रहा
1: बिल्कुल
0: है,
1: सही
0: उस
1: बात।
0: रविंद्र मंच पे हम जब तक शाम को ना जाएं तब तक हमारे को चैन नहीं आता था। तो हम लोग वहां जाया करते थे, रिहर्सल करते थे, सरताज माथुर साहब, डी एन शैली साहब, मुमताज शकीर साहब, एस वासुदेव सिंह साहब, इतनी बड़ी बड़ी हस्तियों के, नंदलाल शर्मा जी, खूब सारे लोग थे उस जमाने में जिन्होंने मुझे परिष्कृत किया और मेरे थिएटर के पैशन को, जुनून को आगे बढ़वाया। और उन्होंने कहा, तुम्हारे अंदर बहुत बहुत तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है, चलो करो करो करो। तो ये वो, जब हम बड़े हो रहे होते हैं, और वैसे भी अगर हम एक चाइल्ड साइकोलॉजी भी देखें या जवानों की साइकोलॉजी भी देखें, तो साहब ये होता है, अगर थोड़ा सा कोई आपको अप्रिशिएट करता है, आपकी प्रशंसा
1: सही
0: करता है,
1: बात,
0: तो मनोबल दुगना हो जाता है, चाहे उतना है नहीं, लेकिन एक छोटी सी आपको कोई प्रेरणा देता है और हमें लगता है कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ये वो वक्त था, तो बस
1: बहुत
0: चलते चले गए। प्लान
1: चलिए।
0: नहीं किया था, कभी प्लान नहीं किया लाइफ को कि मैं ये करूंगी, या मैं थिएटर कोई अपना पैशन, जो मेरा पैशन है यही प्रोफेशन बनेगा, या मैं म्यूजिक में जाऊंगी। बस करती थी और उसका लुत्फ उठाती थी, मुझे बस सुकून बहुत चाहिए था और वो इनके जरिए मैंने पाया जिंदगी में।
1: मजा आ गया अर्चना जी, आपने तो एक तरह से जयपुर का या राजस्थान का इतिहास ही कर दिया। हेमलता प्रभु, मैडम तरवे, सरताज माथुर, एस वासुदेव, इनके नाम लेके तो आपने मजा कर दिया, बिल्कुल शुरुआत कर दी। तो ऐसा करते, इतनी बड़ी हस्तियों के जब नाम लिए तो इनके लिए रुक के इनके लिए एक अच्छा सा गाना सुनते हैं, पुरानी यादों को ताजा करते हैं, और फिर हम इस बातचीत को आगे जारी रखते हैं।
0: जी, जरूर।

0: हाँ, तो वेलकम बैक अर्चना जी। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं आपके जिंदगी के सफर में। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा तक पहुंचने की आपकी यात्रा कैसे शुरू हुई? किसी ने सजेस्ट किया आपको, या किस तरह से आपने सोचा कि मैं एनएसडी में पहुंचूं, क्या एडमिशन लो, कैसे हुआ आपके, ये सब कुछ बताइए। किस तरह जुड़ी आप एनएसडी से?
1: मैंने कुछ भी नहीं सोचा, ना मैंने कुछ मैंने तय भी नहीं किया, ना मैंने सोचा, और ना मुझे बहुत ज्यादा इल्म था कि ऐसा कोई संस्थान है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा नाम का। वाकई
0: अच्छा,
1: मैं बता रही हूँ, जमाने में जो मेरी मेरी अपनी नॉलेज थी वो बहुत ही लिमिटेड इस रूप में थी। इतना सा पता था कि दिल्ली में या पूना में कोई ऐसा संस्थान है कि जहां पर आपको रंगमंच की और फिल्मों की तालीम दी जाती है,
0: जी
1: दैट्स इट।
0: जी
1: मुझे
0: अच्छा
1: कतई नहीं पता था ये कितना डिफिकल्ट है यहाँ आना, या इसमें दाखिल होना बहुत मुश्किल है। और उस जमाने में इसको इसको एक जमाने में इसका नाम था एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रामेटिक्स,
0: अच्छा,
1: जी, और
0: ओके।
1: बाद में इसका नाम राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय रखा गया। तो इसमें उस जमाने में 20 एडमिशन होते थे ऑल ओवर एशिया से, जिसमें
0: अच्छा,
1: भूटान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, भारत, निश्चित तौर पे भारत के विद्यार्थी ज्यादा होते थे, लेकिन क्योंकि ये एशिया का बहुत ही प्रतिष्ठित एक संस्थान है जो कि नाट्य की तालीम दिया करता है, तो बहुत ही मुश्किल था यहाँ पर दाखिला। दरअसल हुआ ये कि मैंने मास्टर्स जब किया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, उसके बाद मैंने एक प्रोग्राम ज्वाइन किया यूनिसेफ के, जो यूनिसेफ ने फंड किया था इसको, और उसका नाम था विमेन्स डेवलपमेंट प्रोग्राम, महिला विकास कार्यक्रम, जिसको कि श्री अनिल बोर्दिया, श्रीमती अरुणा, हाँ, श्रीमती अरुणा रॉय, मिसेस शारदा जैन, ममता जेटली, इन लोगों ने उस समय इसको स्थापित किया था राजस्थान में, और राजस्थान की महिलाओं के लिए बहुत ही सुंदर ये कल्पना की थी कि जो भी जितने भी हमारे विकासात्मक कार्यक्रम होते हैं उसमें अमूमन होता क्या है, जो ऊपर का स्तर है वो तो हर वक्त परिष्कृत होता है, उससे लाभ उठाता है, लेकिन जो ग्रास रूट है, जो हमारा ग्रामीण इलाका है, वो उससे अछूता रह जाता है। तो इस तरीके से जब मैंने एमए कर लिया तो एक साहब एक अखबार देखा और उसमें विशेषज्ञ के पद पर उनको लोग चाहिए थे, एक ही पोस्ट थी, हमने
0: अच्छा
1: अप्लाई कर दिया और हमारा इत्तेफाकन उसमें हो गया। तो दिल्ली जब मैं गई सोशल वेलफेयर बोर्ड की मीटिंग में, तो एक बड़ी प्रतिष्ठित, बहुत ही काबिल अभिनेत्री, बहुत प्यारी अभिनेत्री मिली मुझे, जिनका नाम है, मराठी है वो, और सुहासिनी मुले, हाँ,
0: अरे अरे, भुवन सोम वाली में याद आ गए, भुवन
1: वो भी
0: सोम।
1: उसी में आई, जी, वो आई थी, और उनके साथ बहुत अच्छी मेरी चर्चा रही। जितने भी अभी डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स चल रहे हैं यूनिसेफ को लेके और हमारे कार्य को लेके, उनके कार्य को लेके, और रंगमंच तो खैर उनके कमाल का एक है ही, इसके अलावा फिल्में बहुत खूबसूरत उन्होंने की हैं, लगान,
0: हाँ,
1: हुत्तु तू, भुवन शोम,
0: भुवन
1: तो
0: सोम।
1: बहुत ही, जी, तो उन्होंने, उनसे ऐसी चर्चा के दौरान पता चला, उनसे तुम और क्या करती हो, तुम्हारे और क्या शौक है, तो हमने कहा थिएटर, म्यूजिक, अरे थिएटर है, अच्छा क्या करती हो, मैंने कहा अभिनय करते हैं, और तो कुछ आता नहीं है, तो अच्छा, तुम अभिनय करती हो तो क्यों, तुम एनएसडी जाओ ना, मैंने कहा वो क्या है, बोले ऐसे ऐसे है, इस तरह का एक संस्थान है, आप और इस तरीके से आप जाके घूम के आइए। तो मैं गई, उस समय मेरे पास, मेरे साथ एक साथिन भी गई हुई थी दिल्ली उस मीटिंग में, उसका
0: ओके
1: नाम था मोहिनी, मोहिनी वो साथिन है, जब क्लिंटन आए थे हमारे राजस्थान में, तो आपको अगर याद आता हो वो गांव कौन सा था जहां से कंप्यूटर ऑन हुआ था,
0: ये कहीं आगरा रोड पे शायद कोई गांव था, मुझे अब थोड़ा याद नहीं।
1: जी,
0: आगरा
1: नायला,
0: रोड
1: नायला,
0: पे,
1: नायला,
0: हाँ,
1: नायला,
0: नायला नायला नायला नायला
1: वो
0: बिल्कुल।
1: नायल, वो नायला की साथिन थी मेरे साथ उस वक्त, और मैं और मोहिनी हम लोग चल पड़े साहब एनएसजी मंडी हाउस, और उस समय वहां पर छुट्टियां चल रही थी ग्रीष्मकालीन, और देखा वहां अंदर जाके तो हमारे बहुत ही सम्माननीय प्रोफेसर राम गोपाल बजाज साहब बैठे थे। मैं गई बड़े उससे और उनसे बात बात की, उन्हें बताया मैं कौन हूँ और मैं क्यों आई हूँ। मैंने कहा, बोले अच्छा आप यहाँ प्रवेश लेना चाहती हैं? मैंने कहा नहीं सर प्रवेश नहीं लेना चाहती हूँ, सुहासिनी जी ने मुझे बताया, तुम उन्होंने कहा कि तुम घूम के आओ तो मैं देखने आई हूँ, हाँ प्लीज प्लीज। फिर उन्होंने पूरा मुझे एनएसडी के बारे में समझाया और तमाम जो पोस्टर्स लगे थे उसके बारे में तफसील से बताया। 3-4 घंटे हम लोग वहां रहे, बहुत अच्छा वक्त था। हम वापस आए उस मीटिंग से, जयपुर आ गए। उस जमाने में इंडियन एक्सप्रेस आता था घर पर, तो माँ ने एक दिन बताया कि अरे तुम यही गई थी ना, ये नेशनल स्कूल ड्रामा का देखो एडमिशन नोटिस आया है। मैंने कहा क्या हुआ? तो मैं क्या करूं? बोले व्हाई डोंट यू अप्लाई, अप्लाई करिए आप। तो मैंने कहा नहीं भाई मेरा नहीं होना है, आपको पता है क्या लिखा है, 20 सीट्स है पूरे एशिया में और उसमें तो बोलती है तुमने क्या सोच। मैंने कहा और उसमें मुझे कोई नहीं लेगा, मैं तो कुएं की मेंढक हूँ, अपने शौक को पूरा करती हूँ, 2-4 नाटक कर लिए तो मेरा एनएसजी में सिलेक्शन हो जाएगा, तुमने क्या सोचा है माँ? तो बोले नहीं नहीं तुमने सोच लिया ना, नहीं होगा। मैंने कहा नहीं हो ही नहीं सकता, सवाल ही नहीं होता। अच्छा ठीक है, तुम जाओगी अप्लाई करोगी और फेल होके आ जाओ बेशक, लेकिन तुम जाओगी। साहब उनके बाप उनकी आवाज में उनके मतलब क्या कन्विक्शन था, मैं मजबूर हो गई, मैंने अप्लाई कर दिया जबकि मेरा कतई इरादा नहीं था। और मैं गई और उस हमारे ही बैच से यहाँ का जो प्रवेश का पूरा एक सिस्टम था वो चेंज हुआ था, यानी कि पहले हमारा रिटन टेस्ट हुआ, उसके बाद हमारा ऑडिशन हुआ, फिर दो दो किताबों पे हमसे चर्चा की गई डिटेल में, उस किताब की पूरी बातचीत की गई कि उसमें कौन कैरेक्टर है, क्या लिखा गया है, रेफरेंस बुक्स आती थी बहुत सारी, नाटक आते थे, लिस्ट आती थी वहां से, उस पर खूब अच्छा सा हमारा डिस्कशन हुआ है फैकल्टी के साथ जो इंटरव्यू ले रहे थे, इसमें हम पास हो गए। उसके बाद हमारी 4 दिन की वर्कशॉप जो जो लोग इसमें इंटरव्यू में पास हो जाते हैं, तो उसमें भी हम पास हो गए दूसरे फेज में भी, और पता चला कि हमारा सिलेक्शन हो गया।
0: अरे वाह, अच्छा।
1: और हमें मतलब ऐसा लगा ये हुआ क्या है, ये मैं तो खेलने गई थी, वाकई मैं खेलने गई थी। मैंने कहा नहीं होने वाला है, बिल्कुल नहीं होने वाला है, टर्निंग पॉइंट था।
0: मजा आ गया अर्चना जी, ये तो आपने, अब मुझे थोड़ा सा ब्रीफ में मुझे ये बताइए कि व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट एनएसजी, जो युवा कलाकार चाहते हैं कि हम एनएसजी में एडमिशन लें, ये अल्टीमेट है, ये है, तो उसके बारे में कुछ ब्रीफ में बताइए कि एनएसजी में ऐसी खास बात है क्या जो हमारे स्टेज को और थिएटर के लोग को उसमें जाने का सपना देखते हैं?
1: थोड़ा सा दौर बदला है हमारा दौर, मैं ये नहीं कह रही आज का दौर खराब है या पहले का दौर अच्छा था, मैं सिर्फ इतना सा आपको अर्ज करूंगी कि हमारे जितने भी अभी आपने नाम लिए, आपने काफी सारे लोग थे जिन्होंने हमें परिष्कृत किया, मैंने इन लोगों से सीखा है, इन्होंने हमें ट्रेनिंग दी है, और उस जमाने में कोई टेक्निक नहीं थी इस तरह की जो आज के तारीख में आपके पास तमाम तरह की टेक्निक्स हैं थिएटर में। यहाँ पर सिर्फ एक व्यक्ति होते थे हमारे, जिसको हम प्रोफेसर कहते हैं, गुरु कहते हैं, और उन्होंने हमको, जैसे हम कच्ची मिट्टी थे और उनको हमको उन्होंने एक आकार दिया है। तो ये तो खासियत हमारे दौर की है, और हमने बिल्कुल मैनुअल सारा काम किया है, सब कारपेंट्री का भी काम किया उस जमाने में, मॉडल मेकिंग भी किया, लाइट डिजाइन भी किया, क्योंकि मैंने डिजाइन और डायरेक्शन में विशेषज्ञता हासिल की वहां से, तो ये सब भी किया। लेकिन हम इस मामले में किस्मत वाले रहे कि हमें नसीरुद्दीन शाह साहब आए, चाहे भास्कर चंद्रावरकर आए, या जर्मनी से एक बहुत ही बढ़िया प्रोफेसर आए थे बहुत अच्छे, कॉनराड कॉनराड ज़ीडरिच, तो उनकी क्लासेस भी हमको मिला करती थी, हम उसमें भी होते थे, क्योंकि हमें ये बताया था कि अगर आप ये समझेंगे तभी तो आप एक्टर को डील करेंगे, तो आपको बेसिक एक्टिंग की चीजें भी पता होनी चाहिए, तो वो भी हमने प्राप्त की ये जितनी भी तालीम थी। तो मैं ये कह रही हूँ आज की तारीख में भी अगर हम एनएसजी की बात करते हैं और बच्चे जाना चाहते हैं, निश्चित तौर पे जाना चाहिए, वो एक अलग तरह की यात्रा है जिसमें आपको दिन रात सिर्फ और सिर्फ थिएटर पर ही फोकस करना है। आपको उस वो माहौल वो संसाधन वो पूरा एनवायरनमेंट जो आपको वहां का मिलता है और वहीं रहना है, रेजिडेंशियल ट्रेनिंग है, तो एक मौका मिलता है। ये कहा जा सकता है कि विद्यार्थी तो विद्यार्थी होता है, वो अगर फोकस करेगा अपने ऊपर और काम करेगा तो वो कहीं पर भी रहेगा वो उम्दा ही करेगा। बहुत सारे लोग हैं जिनका एनएसजी में नहीं होता है, तो बैरी जॉन साहब के साथ उन्होंने एक्टिंग कोर्स किया अभी वहां पर मुंबई में, अनुपम खेर साहब जिनका एक्टर्स प्रिपेयर है, सुभाष घई साहब का जो विस्लिंग वुड्स है, ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस अब बन गए हैं जहां पर बच्चे सीख रहे हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन स्टूडेंट कि वो कितना शिद्दत रखता है। स्टूडेंट तो सब एक से हैं, लेकिन आपकी शिद्दत ही आपकी कामयाबी का रास्ता पक्का करती है।
0: अब तो बहुत अपॉर्चुनिटीज भी बहुत हैं, और ये आपने सही बताया, उस जमाने में तो आपकी जो ट्रेनिंग थी, आपका जो भी वहाँ का प्रोसेस था वो डिफरेंट था, और आजकल तो टेक्निक भी आ गई है और सब चीजें आ गई। तो चलिए इसी दौर और इस दौर के नाम पे रुक के हम एक गाना सुनते हैं और फिर आगे बातचीत को जारी रखते हैं।
1: जी जरूर।

0: हाँ, वेलकम बैक अर्चना जी। अब
1: जी
0: आपकी अपने जैसे आपने अभी नाम जिक्र किया, बैरी जॉन साहब का, नसुद्दीन शाह साहब का, तो आपने इन सब लेजेंड्स के साथ काम किया हुआ है, बीबी कारंत, राम गोपाल बजाज, ऐसे बड़े बड़े हस्तियों के साथ काम किया, इनसे आपको क्या महसूस हुआ और क्या इनके साथ अनुभव कैसे रहा आपका और क्या क्या सीखा आपने इनसे, कुछ इसके बारे में बताइए। कोई इंसिडेंट
1: जी
0: हो अगर कोई इनसे जुड़ा हुआ, नसुद्दीन शाह या बैरी जॉन से, तो वो भी शेयर कीजिए।
1: इसमें बहुत अहम नाम एक प्रोफेसर देवेंद्र राज अंकुर साहब का, प्रोफेसर कीर्ति जैन,
0: अच्छा,
1: प्रोफेसर अनुराधा कपूर, प्रोफेसर बीएम शाह, ब्रिजमोहन शाह, वो
0: ओके,
1: एक्टर बहुत उम्दा थे और फिल्में भी उन्होंने की हैं कमाल की। ये सब बहुत ही, जिसको कहते हैं आप, जमीनी लोग थे, बहुत जमीनी लोग, और इतने जमीनी कि 1-to-1 इनका रिलेशन था हर स्टूडेंट से, बहुत ही सादा लोग थे, कहीं ग्लैमर इनको छूता नहीं है। और आज भी मैं बहुत सारे जो गुरु अभी मेरे हैं उनके साथ मैं बात करती हूँ, और वो मेरे मेंटोर जिंदगी भर रहेंगे, बल्कि हमेशा हमेशा मुझे आज भी गाइड करते हैं। मैं चाहे यूनिवर्सिटी में पढ़ा रही थी उस दौर में भी प्रोफेसर अंकुर, प्रोफेसर बजाज, ये लोग आते रहे और मुझे बहुत सपोर्ट किया इन लोगों ने, मुझे बहुत सारी राह दिखाई है। तो बैरी जॉन साहब की तो जहां तक बात है, वो तो इतने सरल, उस जमाने में फर्स्ट ईयर में पहला नाटक एनएसडी के हमने बैरी जॉन साहब के साथ किया था, दैट इज टोबा टेक सिंह।
0: अच्छा, टोबा
1: टोबा
0: टेक
1: टेक सिंह जो कि
0: सिंह।
1: कहानी है, हाँ मंटो की कहानी है ना,
0: हाँ बोलिए।
1: तो भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो गया है और पागलों का भी बंटवारा हो रहा है। सरकार ने तय किया है कि जितने पाकिस्तानी पागल हैं वो पाकिस्तान और जितने हिंदुस्तानी पागल हैं वो हिंदुस्तान जाएंगे। तो इसको सुन के सारे लोगों में अलग अलग तरह का रिएक्शन होता है असलम में, उसको लेके बड़ी खूबसूरत कहानी लिखी है टोबा टेक सिंह। तो मंटो साहब की कहानी है, बैरी जॉन साहब का प्रोसेस इतना सरल, इतना सादा, वो कुछ नहीं कहते थे, उनकी कमाल की जो बात है वो कुछ कहते नहीं थे, वो सिर्फ आंखों से बयां करते थे, और हमको पूरी उन्होंने छूट दी कि तुमको जो जैसे करना है आप करो, हमको इम्प्रोवाइजेशंस, आप इम्प्रोवाइज करिए, ये सीन आप इम्प्रोवाइज करिए, खुद करिए, आप ये पूरा तैयार करिए, एक अलग अलग हमने सीन तैयार किए। उनका प्रोसेस बहुत खूबसूरत था। इसी तरीके से नसीरुद्दीन शाह कुछ समय के लिए आया करते थे, साल में 2 दफा, और उनका एक कमिटमेंट था कि एनएसजी ने मुझे एक जमीन दी है, मुझे एक मौका दिया है जिंदगी जीने का, तो मेरा भी कुछ फर्ज है और मैं यहाँ पर आऊंगा और बच्चों को सिखाऊंगा। तो वो एक एक महीना वहां पर 6 महीने में एक बार आया करते थे। तो उनके साथ भी बहुत उम्दा हमारा अनुभव रहा, वो भी इम्प्रोवाइजेशन

0: थे, सिचुएशंस देते थे और फिर हम लोग उसको प्ले करते थे। और काफी दोस्ताना व्यवहार था सबके साथ, ऐसा हमको लगा ही नहीं कभी भी कि कोई हमारे ऊपर, कोई टीचर टाइप जो होते हैं एक अलग तरह की मानसिकता सिखाने वाले, उन्होंने हमारे अंदर जो स्टूडेंट के तौर पर जितनी भी पोटेंशियल थी, जो भी हमारे अंदर उम्मीदें थी, उसको उन्होंने निकाला, निखारा और उसके साथ हमको तैयार किया। सबकी अपनी अपनी एक होता है कि किसी की ये क्षमता है, किसी की कुछ और क्षमता है, और हर एक की कमजोरियां भी हैं, सीमाएं भी हैं। तो उस अनुरूप, क्योंकि ड्रामा विधा ऐसी है कि इंडिविजुअल बहुत महत्वपूर्ण है, तो इंडिविजुअल को हमेशा इन्होंने उसको कहेंगे नजर में रखा, लेकिन साथ साथ उन्होंने जो सामूहिक काम है, जो टीम वर्क है, उसको भी तरजीह दी और उसके साथ भी हमको तैयार किया। तो हर एक की अपनी खासियत है। अंकुर साहब तो कमाली एनसाइक्लोपीडिया है रंगमंच के, वो तो कभी कोई किताब कॉपी कुछ नहीं लाते थे, और उन्होंने हमें हिस्ट्री पढ़ाई है, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाई है रंगमंच की।
1: अच्छा
0: क्या क्या डायनेस्टी, क्या चाइनीज डायनेस्टी के नाम उनको याद, जापानीज डायनेस्टी के नाम याद। अब इसके बाद ये राजा आए, उन्होंने रंगमंच को इस तरीके से प्रश्रय दिया, फिर उसके बाद इतनी इतनी सदी में वो आया, अरे साहब कमाल। और आज भी अंकुर साहब जैसा तो एनसाइक्लोपीडिया विरला ही होगा शायद कोई।
1: ओह, इसका मतलब है कि आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर भी वहां मिलता रहा, इसका
0: जी
1: जिस तरह से आप बता रही हैं। तो
0: जी
1: अगर
0: जी
1: एक कुछ शब्दों में अगर आप बयान करना चाहते हैं, तो इतने गुरुओं से, एनएसटी के गुरुओं से, आपको कोई एक ऐसी एक या दो खास बात बताइए जो आपको लगा कि आपने सीखी और बाद में आपकी जो रंगमंच की यात्रा रही उसमें वो काम आई। कोई एक दो टिप ऐसे कुछ मिले जो आपको हमेशा जिंदगी में लगा कि अरे देखो ये चीज मैंने वहां सोखी, ऐसी कुछ बात है?
0: बातें तो वही हैं जो शायद माता पिता ने भी सिखाई थी, और वही बातें वहां दोहराई गई। और मुझे लगता है उस जमाने में इन्हीं बातों पर बहुत जोर था कि आप जो हो वही रहो, एक तो ये, कुछ और बनने की कोशिश ना करो, क्योंकि यदि आप अपने ओरिजिनल स्वरूप से हट जाओगे तो आप नहीं रहोगे, और जब आप नहीं रहोगे तो कुछ बनने के चक्कर में आप बेहतर नहीं कर पाओगे। तो हमेशा ये है कि आप रहो, एक तो ये सीखा। और साथ साथ देखिए कितना बड़ा विरोधाभास कि कभी कभी दूसरों दूसरे का जीवन भी जी के देखो, तभी आप अभिनय कर पाओगे, है ना। तो ये भी मजेदार बात है कि अगर, जो कि हमारी माँ भी हमको कहा करती थी कि बेटा सहानुभूति नहीं समानुभूति रखो दूसरे के साथ, कि अगर मैं उसकी जगह होती तो मेरा क्या होता। अगर हम ये कहते हैं अरे कितना गरीब आदमी है बेचारा, बारिश में भीग रहा है, इसके पास कपड़े नहीं है, तो आप ये नहीं, सहानुभूति नहीं बेचारा, ये ना ना ना, उसको फील करो, और उसको फील करो, और इतनी फील, इतना फील करो कि तुम्हें लगे कि वो मैं हूं, वो जो भिखारी है सामने जिसको जरूरत है शरण की। इस तरीके से हमारा मतलब कुल मिला के बचपन, एनएसडी कॉलेज, और फिर बाद में मेरा ये प्रोफेशन यूनिवर्सिटी, ये सारी चीजें आपस में इस कदर एकम एक है साहब कि इसको मैं अलग नहीं कर पाती हूँ, वही चीजें हैं, वही है।
1: मदर की जो सीख थी एम्पैथी वाली, एम्पैथी
0: हाँ
1: होनी चाहिए इंसान के अंदर सिंपैथी की जगह, तो बहुत ही
0: हाँ
1: बढ़िया बात है और वही जिंदगी में आपके साथ चलती रही ऐसा लगता है।
0: जी
1: चलिए
0: जी
1: चलिए, तो माँ की सीख के नाम पे हम रुक के गाना सुनते हैं और फिर आपकी जो नाट्य यात्रा है उसके बारे में आगे बातचीत करते हैं।

0: हाँ वेलकम बैक अर्चना जी. अब आपने कोर्ट मार्शल, नटी बिनोदनी, मीरा नाची, मैकबेथ, टोबा टेक्सिंग बताए ये आपने, और इन सब चर्चित नाटकों में काम किया है. तो इनमें से कुछ बताइए, कोई ऐसा इंसिडेंट या इनमें से कौन सा ऐसा नाटक है जो आपके बहुत ही दिल के करीब है और आपके मन में इच्छा होती है कि अरे मौका मिले तो इसको एक बार दोबारा किया जाए, ऐसा कोई किसी नाटक के बारे में क्या क्या विचार है आपका?
1: इसमें कुछ नाटक के नाम छूट गए जो कि मेरा बहुत ही एक ड्रीम प्रोजेक्ट भी है. एक रांगी राघव साहब की कहानी है गदल.
0: गदल, अच्छा
1: जी, वो भी मैंने डायरेक्ट की है और वो बहुत खूबसूरत कहानी है. एक औरत की जिद की और उसके जुझारूपन की बहुत खूबसूरत कहानी है. तो मैं उसको दोबारा से अब करना चाहूंगी क्योंकि मैंने इतनी जिंदगी जी ली है और जब मैंने किया था तब ये मैं मात्र 30 साल की, ना 26 साल की थी. और अब मैं बिल्कुल उससे आगे आ चुकी हूँ तो मैं गदल करना चाहूंगी. निश्चित तौर पे नटी विनोदिनी भी बहुत खूबसूरत नाटक है क्योंकि नटी विनोदिनी तो एक सच्ची कहानी है और बंगाल की एक बहुत ही प्रसिद्ध अभिनेत्री की कहानी है जो बाद में रामकृष्ण परमहंस की शरण में चली जाती है. ये तमाम जो रंगमंच का कारोबार है वो देखती है और उसका दिल दुखता है किस तरीके से एक्सप्लॉयटेशन हुआ, कैसे उसका नाम हटाया गया. तो वो बहुत उससे दुखी होके और एक तरीके से पूरा संन्यास सा ले लेती है जिंदगी से और चली जाती है. तो वो भी खूबसूरत नाटक, देखिए सारे बहुत खूबसूरत लिखे गए हैं. और अभी की जो परिकल्पना अब मैं कर पाती हूँ वो जो उस समय मैंने कमियां रखी होंगी, छोड़ दी होंगी, मुझे नहीं पता. लेकिन अभी मैं दोहराती हूँ तो लगता है अरे ये अगर इस तरीके से करती तो शायद और ज्यादा अच्छा होता. तो और थोड़ा दूरी पे हूँ उस नाटक को, कितने साल पहले मैंने किया, अब अगर मैं करूंगी तो कैसे करूंगी. आज के संदर्भों में हो सकता है मैं बहुत सारे उसमें उसको एडिट करके कुछ चीजें उसमें ऐड करूं, लेकिन निश्चित तौर पे कृति के साथ कोई छेड़छाड़ तो नहीं कर सकते क्योंकि खूबसूरत लिखा हुआ है. तो बहुत उम्दा नाटक है. मैकबेथ को भी हम आज के संदर्भ में हम उसको परिभाषित और परिलक्षित कर सकते हैं. मैकबेथ भी मेरा फेवरेट नाटक है. तो ऐसा कोई एक नाटक नहीं, कई नाटक हैं जो मैं दोहराना चाहती हूँ. अभी दिक्कत ये आ गई है रंगमंच में कि और ये दौर बड़ी जल्दी का है साहब, और ये जो रंगमंच नाम की चीज है इसमें सुकून चाहिए, धैर्य चाहिए. तो वो धैर्य की कमी होने की वजह से थोड़ा सा साहस नहीं जुटा पाते कि बड़ी आसानी से हम एक नाटक शुरू कर दें. क्योंकि आजकल के बच्चे भाई अभी सोशल मीडिया का जमाना है, उनके पास टाइम नहीं है इतना, तो देखते हैं. लेकिन ऐसा नहीं है, मेरे विद्यार्थी बहुत उम्दा है और काम करेंगे हम लोग और करेंगे इन नाटकों को हम दोबारा से.
0: चलिए बहुत
1: उम्मीद है.
0: तो अच्छा, रोल्स भी आपने कई तरह के किए हैं, मतलब एक्टिंग के साथ साथ, तो इनमें कौन सा जब आपने एक्टिंग की थी उस टाइम आपको सबसे अच्छा चैलेंजिंग रोल कौन सा रहा था या कौन सा लगता है आपको अभी अपने लिए, कुछ उसके बारे में बताएंगी?
1: एक तो मैंने सरताज माथुर साहब के डायरेक्शन में होरी किया था जिसमें मैं धनिया की भूमिका मैंने अदा की थी उसमें. और बहुत ही खूबसूरत वो नाटक था जो मेरी एक बहुत ही प्यारी याद है. और वो कैरेक्टर मैं दोबारा करना चाहूंगी अब. और इतना गहरा वो कैरेक्टर है धनिया का, होरी और धनिया जो पति पत्नी है और बहुत गरीब है, उनकी कहानी है, उपन्यास है होरी इनका, गोदान,
0: प्रेमचंद
1: जी का गोदान है. तो उसको होरी के तौर पर सरताज माथुर साहब ने उसका रूपांतरण किया था नाट्य मंचन के लिए. तो नाट्य रूपांतरण हम लोगों ने प्रस्तुत किया था. तो वो मेरी बहुत ही मुझे लगता है दिल के करीब है. फिर इसके अलावा लेडी मैकबेथ का जो कैरेक्टर है वो मैं चाहती हूँ करना, जो मैकबेथ का एक बिल्कुल मुझे लगता है वो मेन किरदार है, मैकबेथ से भी ज्यादा है क्योंकि मैकबेथ को मैकबेथ के रूप में सामने लाने वाली लेडी मैकबेथ है, वो ही उसको प्रवोक करती है, तमाम महत्वाकांक्षा को उसको कहते हैं ना बल देती है, जगाती है. और वो इस कदर जगाती है कि कहां से कहां वो लोग पहुंच जाते हैं और कितना ट्रेजिक एंड इस नाटक में होता है उनका. तो फिर पारसी रंगमंच मेरा फेवरेट एक पड़ाव है जिसमें मैं देसी और राहिल की भूमिका में अपने आप को देख पाती हूँ कभी कभी। यहूदी की लड़की जो नाटक है आकाश
0: अरे
1: कश्मीरी का,
0: वो बहुत फेमस है, बहुत फेमस
1: बहुत खूबसूरत नाटक
0: है।
1: है जी। तो ऐसे कई सारे हैं, ऐसा कोई एक नहीं है, क्योंकि सबके अलग अलग रंग हैं, अलग अलग उसकी दुनिया अलग अलग है। तो सारी दुनिया को जीना और उसको, मुझे लगता है कि उस यात्रा को आगे बढ़ाना, यही एक कलाकार के लिए बहुत जरूरी है जीवन
0: बिल्कुल, ये ऑटोबायोग्राफीज वाली बात आपने सही की है। इनफैक्ट फिल्मों में भी अभी ऐसा काफी दौर आया हुआ है कि जब ऑटोबायोग्राफीज पे फिल्में बन रही हैं। अभी मैंने
1: जी।
0: एक टाइटन देखी थी, टाइटन मेक इन इंडिया, बहुत बहुत खूबसूरत बनाई है। नसीरुद्दीन शाह साहब ने काम किया उसमें,
1: जी जी
0: जीआईडी टाटा का किरदार निभाया है, बहुत अच्छी।
1: जी
0: तो इस
1: जी
0: तरह से अब दोबारा दौर आ रहा है। तो कोई
1: जी
0: इतने आपने एक्टिंग की है, इतने आप दर्शक से जुड़ी रही होंगी, कोई ऐसा दर्शकों की प्रतिक्रिया, किसी दर्शक का कोई आपके प्रति लगाव, कोई ऐसा कोई इंसिडेंट है आपको याद आता है अपने स्टेज कैरियर से जो आप
1: जी
0: भूल नहीं पाती है, कोई ऐसा है?
1: जब मैंने गोदान किया, ये होरी किया, और जिसमें मैंने धनिया की भूमिका आपको कहीं बताया अभी, तो मुझे याद है जब मैं यूनिवर्सिटी में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थी अभी कुछ साल पहले,
0: जी
1: तो एक स्टूडेंट एडमिशन के लिए आई,
0: ओके
1: ठीक है, उसका एडमिशन हो गया, बहुत अच्छी स्टूडेंट है, बाद में उसने पीएचडी भी की और अभी बहुत अच्छा काम कर रही है। जब वो पढ़ रही थी, प्रशिक्षण ले रही थी ड्रामा डिपार्टमेंट से, और उसका जब प्ले था, पहली दफा उसके पेरेंट्स डिपार्टमेंट में आए, और उसके जो फादर थे उन्होंने देखते ही मुझे पहचान लिया, और उन्होंने कहा आपने तो रविंद्र मंच पे नाटक किया था एक जमाने में। मैंने कहा जी मैं रविंद्र मंच पे किया करती थी निश्चित तौर पे, आपने कौन सा नाटक, और उन्हें पूरा याद था, उन्होंने कहा कि आपने धनिया की भूमिका की थी, और वो
0: अरे
1: जो भूमिका की छाप है वो आज तक मेरे दिमाग से हटी नहीं है, और मैडम आपने बहुत खूबसूरत अभिनय किया था। मुझे लगा कि वाकई में कहीं तो शिद्दत रही होगी शायद, और वाकई में वो इतना खूबसूरत नाटक था, और वो इतना खूबसूरत खूबसूरत किरदार था जो कि सरताज जी ने मुझसे करवा दिया। तो वो एक तो मेरी ये कमिटी याद है। इसके अलावा कुछ साल पहले कुछ हमारी एक मीटिंग थी जिसमें पेरेंट्स को बुलाया था, और दो उसमें महिलाएं किसी बच्चे की मदर थी, और वो मुझे देख के अचानक से बहुत इमोशनल हो गई और रोने लगी। मैंने कहा, गले लगी मेरे से बाकायदा, और बहुत प्यार से मिली, और अचानक उनकी आंखें गीली हो गई। मैंने कहा क्या हुआ, बोले पता नहीं क्यों हमको लग रहा है कि आपसे हम पहले भी मिले हैं। तब वो दूसरी को याद आ गया, वो दोनों एक्चुअली साथ की थी, तो बोली तुम्हें याद है रविंद्र मंच हम जाया करते थे, और मैडम उस समय बहुत ही यंग थी, पतली दुबली एकदम एक लड़की, और बहुत सारे इनके हमने नाटक देखे हैं, यहूदी की लड़की भी देखा है, और वो नाटक हमें आज तक याद है कि गरीबों का भी कोई आसरा होता तो क्या होता, बुते काफिर हमारा भी खुदा होता तो क्या होता, कोई लज्जत नहीं है फिर भी दुनिया प्यार करती है, खुदा बंदा इस मोहब्बत में भला होता तो क्या होता, जब इतनी बेवफाई पे दिल उसको प्यार करता है, इलाही वो सितमगर बा वफा होता तो क्या होता। तो ये उसके अल्फाज, और वो बहुत इतनी ज्यादा वो इमोशनल हो रही थी, पुरानी यादें ताजा कर रही थी, और मुझसे कह रही थी कि आप प्लीज आप एक्टिंग किया करो, आप एक्टिंग क्यों नहीं करती हो, आप सिर्फ पढ़ाती हो, आप एक्टिंग क्यों नहीं करती हो। तो मैंने कहा देखिए कभी करेंगे, भविष्य में चिंता ना करें। इस तरीके से बहुत सारे लोग हैं जो इमोशनल होकर मुझसे मिलते हैं, और बहुत ही दिल से मिलते हैं, ऐसा लगता है जैसे यही मेरा परिवार है। तो वो वसुधैव कुटुंबकम वाली जो एक वो फीलिंग है, वो हर तरफ मुझे फील
0: बिल्कुल
1: होती
0: बिल्कुल
1: है।
0: सही बात। देखिए, दिल को दिल से रहा रहती है। मैं आपसे अगली बात यही था कि आप अपने किरदार में से कोई एक हमें अच्छा सा डायलॉग या कोई ऐसा चीज सुनाए तो मजा आ जाएगा, और आपने इतने भी सुना दी तो इनफैक्ट मेरा तो थोड़ा लालच और बढ़ गया है। तो कुछ और सुनाना चाहें अपनी किसी यादगार लाइंस को आप, प्लीज सुनाइए, क्योंकि मुझे भी याद है पुराने जब हम रविंद्र रंगमंच पे, मैं भी और सरताज माथुर साहब का तो मैं भी बहुत बड़ा फैन हूँ, रक्त बीज है एवं इंद्रजीत है, कुछ नाटक याद है मुझे पुराने जो हम देखा करते थे, एवं एवं इंद्रजीत था, एक बादल सरकार का था, कुछ याद है। तो चलिए इन्हीं यादों के नाम पे रुक के एक गाना सुनते हैं और फिर थोड़ी सी अपन करीब करीब बकौल अमीन से यानी आखिरी पायदान पर आ गए हैं, तो एक दो बातें और फिर आगे चलते हैं।

0: हाँ, वेलकम बैक अर्चना जी. आप, हालांकि ये सवाल आपसे बहुत पूछा जाता होगा कि अगर अभी भी आपको स्टेज पे दोबारा आप जब जाती होंगी कभी भी आप एक्टिंग करने के लिए या वैसे ही, तो कैसा अंदर से क्या कोई एक्साइटमेंट महसूस होता है या क्या एंजाइटी होती है, क्या किस तरह के इमोशंस आते हैं इतनी लंबी यात्रा के बाद भी आपको कैसा लगता है स्टेज पर दोबारा जाने से?
1: एंजाइटी तो होती है कि मैं हर बार नई हूं. जो जो मैंने किया अभी तक वो कल की बात थी, अभी के पल में मैं क्या हूं और मैं किस तरीके से उस किरदार को प्रस्तुत करूंगी सबके सामने, तो इस बात की चिंता भी करती हूँ. और एक एक्टर के लिए बहुत ही जरूरी ये टॉनिक है कि वो थोड़ा सा नर्वस भी रहे, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस तो मुझे लगता नहीं है कि बहुत ज्यादा चल पाता है. तो सम पे रहना पड़ता है, और उस सम पे आने से पहले हर एक जो भी अच्छा कैरेक्टर जीना है अगर आपको बतौर कलाकार, तो वो बहुत सारी चीजों से गुजरना पड़ता है. तो वो थोड़ा सा टेंशन होता है, थोड़े से कांप कंपन होता है शरीर में, थोड़ी आवाज लरसती है, लेकिन और जैसे ही उसमें सुर में आते हैं सब, फिर वहां बस सेट हो जाता है सारा कुछ. तो ये जैसे जैसे आप ये देख लीजिए, जो गाने वाले हैं, संगीत के लोग हैं, वो भी इससे गुजरते हैं. जब पहली दफा स्टेज पर बैठते हैं तो निश्चित तौर पे थोड़ी सी नर्वसनेस तो होती होगी. मैं क्योंकि मैं शास्त्रीय गायक नहीं हूँ, लेकिन हाँ, बहुत कम होता है. जो बहुत पक्के रियाजी हैं उनको शायद ना होता होगा, लेकिन जो हम जैसे कच्चे लोग हैं और जो अभी सीख ही रहे हैं, तो हम मैं तो अभी भी रंगमंच की विद्यार्थी हूँ. मैंने तालीम ली है और उसको परिष्कृत करना है, अभी और आगे जाना है, सीख रहे हैं, तो विद्यार्थी ही रहेंगे. तो अभी भी होता है, टेंशन होती है, लेकिन फिर कॉन्फिडेंस भी आता है धीरे धीरे करते करते.
0: सही बात.
1: और पुरानी यादें खींचती हैं, पुराना तमाम एक तरह से चित्र चलता है, रील चलती है, कैसे हमने अपना शुरुआत की थी, कैसे हम आए, कैसे हम वहां चले, और बड़ी तेजी से वक्त गुजरा है ये भी नजर आता है. सब कुछ गुजर गया,
0: सब कुछ चलिए. कितनी अच्छी हम एक बातों को याद कर रहे हैं. अच्छा, आप ये बताइए अर्चना जी, मान लो आप थिएटर में नहीं होती, जब थिएटर में नहीं होती है तो आप अपना समय, वक्त कैसे बिताना पसंद करती है? एक तो ये भी बताइए कि अगर थिएटर आर्टिस्ट नहीं होती अर्चना तो क्या बनती, क्या बनना चाहती थी या क्या बन सकती थी? और दूसरा है कि जब आप थिएटर नहीं कर रही होती है तो आप अपना वक्त कैसे गुजारती है, समय बिताना पसंद कैसे करती है, आपका पास टाइम क्या है सबसे अच्छा?
1: सबसे अच्छा मेरा म्यूजिक है. मैं म्यूजिक सुनती हूँ बहुत, और मुझे बहुत सारे जो गजल गजल गायक हैं उनको सुनना अच्छा लगता है. जगजीत साहब हैं, गुलाम अली हैं, सरीदा खानम है, बेगम साहिबा, बेगम अख्तर हैं, उनको सुना करती हूँ. एक अलग ही अलग मिजाज है. उसके अलावा और भी मुझे पुराने फिल्मी गाने बहुत पसंद है, वो सुना करती हूँ. थोड़ा आध्यात्म की तरफ भी हूँ, तो आध्यात्मिक जो बड़ी बड़ी बातें, अच्छी अच्छी बातें हैं, वो सब सुना करती हूँ. और साथ साथ मेरा सबसे बड़ा पैशन है पढ़ना. मुझे लिटरेचर और तमाम चीजें पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, तो मेरा खाली टाइम तो इसी में ही जाता है. वैसे तो मुझे खाली टाइम मिलता नहीं है, क्योंकि मेरी जिंदगी इस रूप में मसरूफ है. मैं जिंदगी को बहुत अच्छे से जीती हूँ, शिद्दत से जीती हूँ, और मुझे मिलना मिलाना, लोगों से बात करना, कभी कभी हॉस्पिटल भी जाती हूँ, कुछ लोगों की मदद भी करती हूँ वहां जाके, बहुत सुकून मिलता है मुझे. तो ये मेरा वक्त है. और कुछ एक्टिविस्ट ग्रुप हैं, उनके साथ जुड़ी हुई हूँ, सोशल ग्रुप से उनके साथ जुड़ी हूँ, तो जहाँ जो भी काम होता है वहां चली जाती हूँ, घर पर आ जाते हैं लोग, तो कुल मिला के जिंदगी जीती हूँ. और अगर मैं नाटक में नहीं होती तो भी मैं अर्चना ही होती, और जो भी अच्छा लगता वो करती, क्योंकि मैंने जिंदगी को प्लान ही नहीं किया, कभी नहीं प्लान किया साहब, ना मैंने नाटक में जाने का प्लान किया था. ये तो जिंदगी है मेरी, तो जिंदगी जी रहे हैं.
0: बहुत बहुत बढ़िया, मजा आ गया. अच्छा, अगर अर्चना जी मैं ये गुस्ताखी करूं कि आपसे कहूं कि एक कोई अपने पसंदीदा गाने की कोई लाइन सुनाए, तो आप चाहेंगी सुनाना अगर आप कंफर्टेबल हो?
1: सुर बहुत भटके हुए हैं मेरे.
0: अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप दिल से गाएंगी तो सुर अपने रास्ते पे वापस आ जाएंगे.
1: हम जिन गानों को सुनकर प्रेरित हुए बचपन से, और जिन जो गाने आज भी मेरी जिंदगी का आधार है। मैं एक गान एक उस उन्हीं में से एक गाने की कुछ लाइन मैं आपको सुनाती हूँ।
0: जी जी

0: धारा हो धारा, चंदा चली चली रे तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। तो बस आप चलते रहे चलते
1: बस
0: रहे
1: बस
0: चलते रहे, जब तक सांस है जब तक चलते रहे और चलते रहे,
1: क्या
0: तो
1: क्या
0: चलना
1: बढ़िया,
0: होगा।
1: क्या बढ़िया नोट पे आपने, म्यूजिकल नोट पे अपनी बात हर तरह से कह दी, अपने जिंदगी का सफर बयान कर दिया। अभी बस मैं एक आखिरी बात पूछूं, अगर इसी से रिलेटेड, कि
0: जी
1: आपको अपने पूरे रंगमंचीय जीवन को यदि एक वाक्य में समेटना हो तो वो वाक्य क्या होगा? क्या यही जो अभी हम कह रहे थे,
0: जी तुझको चलना
1: तुझको
0: होगा,
1: चलना होगा? देखिए क्या क्या क्या मजा आ गया ना बात के। चलिए
0: क्योंकि
1: बहुत
0: रंगमंच, कि
1: हाँ
0: रंगमंच जीवन का ही तो अक्स है, और जब हम जीवन में नहीं रुकेंगे तो रंगमंच में भी नहीं रुकेंगे, और चलता चलेगा कारवां, चलता चलेगा पूरा सिलसिला, कभी ना रुकेंगे हम जो भी जहां भी कर रहे हैं, ना सिर्फ रंगमंच कलाएं, जो भी हम जिस भी रूप में हम कहीं अपनी जिंदगी को बसर कर रहे हैं, कभी भी हौसला ना खोए, और निश्चित तौर पे उतार चढ़ाव जिंदगी का हिस्सा है, और यही हमें परिष्कृत करेंगे, संघर्ष ही हमारा मुझे लगता है साथी है,
1: जी,
0: तो इससे कभी घबराए नहीं, और चलते रहे चलना होगा, चलते रहे चलना होगा।
1: तो अर्चना जी, आज की इस बातचीत में हमने आपके जीवन के अनेक रंग देखे, एक बेटी, एक विद्यार्थी, एक कलाकार, एक निर्देशक, एक शिक्षिका, और सबसे बढ़कर रंगमंच की एक समर्पित साधिका के रूप में। एनएसजी के विद्यार्थी से लेकर विश्वविद्यालय की डीन बनने तक का सफर, देश के महान रंगकर्मियों के साथ काम करने का अनुभव, और अनगिनत विद्यार्थियों को दिशा देने का आपका योगदान वास्तव में प्रेरणादायक है। मुझे फैज साहब का एक मिसरा याद आ रहा है, और भी बहुत दुख है दुनिया में, मोहब्बत के सिवा राहतें और भी हैं, वस्ल की राहत के सिवा। रंगमंच शायद उन्हीं राहों में से एक है जो हमें अपने समय, अपने समाज और अपने भीतर के इंसान से जोड़ता है। अपनी पूरी निष्ठा के साथ ये काम किया, रेडियो एसएन की ओर से आपका हार्दिक धन्यवाद और शुक्रिया। आपने अपने जीवन को इतने सुंदर अनुभव हमारे श्रोताओं के साथ साझा किए। हम कामना करते हैं आपकी सृजन यात्रा यूं ही नई पीढ़ियों को प्रेरित करती रहे, और रंगमंच के प्रति आपका यह समर्पण आने वाले वर्षों में भी अनेक कलाकारों के लिए प्रकाश स्तंभ बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद अर्चना जी, बहुत बहुत आभार।
0: बहुत बहुत शुक्रिया आपका आलोक जी, और सभी सुनने वाले मेरे श्रोताओं को खास तौर से बहुत बहुत शुक्रिया।
1: तो दोस्तों, आज की बातचीत यहीं, फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणादायक शख्सियत के साथ में। नमस्कार
2: दोस्तों, जिंदगी के रंग गीतों के संग के आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। कल एक और नए सज्जन और महिला हमारे साथ हाजिर होंगे, आपके लिए मजेदार बातें और गीत लेकर। सुनना ना भूलिएगा।

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।
2: हर

दोस्तों, एक नए दिन की शुरुआत के लिए जोशो खरोश से भरे हुए मैं और आप ये दिन शुरुआत करने के लिए तैयार हैं। आइए, आपका स्वागत है इस प्रोग्राम में। बहुत सारी कहानियां, बहुत सारे ऐसे लोगों के बारे में भी हम जानेंगे जिन्होंने अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जिया और दूसरों के लिए उन्होंने मिसालें कायम की। इन्हीं लोगों से प्रेरणा लेते हैं और ऐसे बहुत सारे गीत सुनते हैं जो हमें बस खुश कर देंगे, पूरे दिन के लिए तैयार कर देंगे, जोश से भर देंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को जोशो खरोश के साथ।

breaking. हेलो दोस्तों, क्या हाल है? जिंदगी जीने के तीन नियम। पहला नियम, ये व्यक्ति कहते हैं, चमकती आंखों से अपने आसपास की पूरी दुनिया को देखो। महान रहस्य ज्यादातर अजीबोगरीब जगहों पर होते हैं। जो चमत्कारों पर भरोसा नहीं रखते, उनके साथ चमत्कार होते भी नहीं। तो भैया, आंखों से जितना हम देख पाते हैं, उससे कहीं ज्यादा पर्दे के पीछे हो रहा होता है। जी हां, फिर चीजें दिखती तभी हैं जब खोजने वाली नजरें हों। तो ध्यान दीजिए अपनी चारों तरफ, ऑब्जर्व कीजिए, महसूस कीजिए। नियम नंबर दो, लक्ष्य होना अच्छा है, पर उससे हमारे अच्छे गुणों का नुकसान नहीं होना चाहिए। देखिए, अब इन्होंने तो कह दिया, मतलब क्या हुआ? जीवन में कुछ बड़े सपने होने चाहिए। देखिए, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए की गई कोशिशें भी हमें तरक्की की मार्ग पर ले जाती हैं। कोशिश तो करें, हमारी मेहनत हमें मांझती है, तैयार करती है। हमारा जुनून हमें बहुत कुछ बदल डालता है। कोशिश तो करें, पर किसी भी कीमत पर इच्छाओं को पूरा करने की जिद हमें कहीं नहीं ले जाती। जिद मत करिए, पैशनेट रखिए और काम करते तो रहिए। नियम नंबर तीन, स्वीकार करें और फिर काम करें। इस पल में जो कुछ भी सामने है, उसे मान लें जैसे उसे आपने ही चुना हो। अपने आज का विरोध ना करें, जबरदस्ती अपोज ना करें उसका। उसे फ्रेंड बनाएं, शत्रु नहीं। इससे आपका जीवन बदल जाएगा। कल कैसा होगा हम कुछ नहीं कह सकते, पर कल को बेहतर बनाने के लिए हम आज मेहनत तो देखिए जरूर कर सकते हैं, पर इसके लिए आज को समझना भी तो जरूरी है। तो समझिए, आज में खुश रहिए, आज को समझिए। फिर मिलते हैं दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ आपके ही झाबुआ के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील पर 90.8 FM सुनते रहें।

दस्तकें। दरवाजे पर दी गई दस्तकें हैरत की आवाजें हैं। ये पूछना कि बाहर कौन है, दिल का जोर जोर से धड़कना है। दरवाजे खोलना प्रार्थनाएं हैं। दरवाजे के उस तरफ उसका नहीं होना कविता है। आंखें बंद करना और दरवाजों की दस्तक पर हैरान होना प्रेम है, प्रतीक्षा है। दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ आपके ही झाबुआ के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील पर 90.8 FM सुनते रहें।

इंसान और हिमालय में बहुत सारी समानताएं हैं। सबसे बड़ी समानता तो यही है कि दोनों सबसे ऊपर पहुंचना चाहते हैं और बस इसी की जद्दोजहद में इनके जीवन में तमाम तरह की उथल पुथल लगी ही रहती है। फिर भी दोनों रुकते नहीं हैं। दोनों की यही खूबी इन्हें एक दूसरे के करीब भी ले आती है और जोड़ भी देती है। जैसे ही आप हिमालय के नजदीक पहुंचेंगे, वैसे ही इस धरती के सबसे युवा प्राणी यानी कि आप और सबसे युवा पर्वत श्रृंखला हिमालय के बीच एक रोमायनी शुरुआत हो जाएगी। दोनों ही अभी विकसित होने की प्रक्रिया में हैं, इसलिए दोनों ही अब भी बढ़ रहे हैं। अपने चरम को पाने की कोशिश में दोनों की यात्रा जारी है और वो चक्र कभी थमेगा नहीं। हालांकि हिमालय के लिए अपनी चोटी या चरम को छूना आसान नहीं है। अपने विकास के इस प्रयास में वो विशाल पर्वत रोज टूटता है और इससे बड़े बड़े हिमस्खलन होते हैं। हिमनद बनते हैं, टूटते हैं, लेकिन इन तमाम घटनाओं और अवरोधों के बाद इसकी यात्रा में कभी ठहराव नहीं आता। साफ तौर से दिखने वाली ये सारी अफरा तफरी इस पर्वत श्रृंखला के बढ़ने और अपने चरम को छूने की कोशिश का ही एक नतीजा है। यही बात मनुष्य के साथ भी देखने को मिलती है। जब भी कोई आदमी आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो उसके जीवन में मुश्किलें तो देखो दोस्तों आती ही हैं। ये बेहद सांकेतिक है। पर्वत श्रृंखला के बढ़ने से हर रोज भूचाल, भूस्खलन और अन्य प्राकृतिक घटनाएं देखने को मिलती हैं। ठीक ऐसा ही हाल इंसान के जीवन का भी तो है। जब आप आगे बढ़ना चाहेंगे तो आपके जीवन में भूचाल आएंगे, मुश्किलें आएंगी और वो सारी मुश्किलें आपका पीछा करेंगी। तो जो लोग निष्क्रिय होते हैं, बस यूं ही आलस में पड़े रहते हैं और बढ़ना नहीं चाहते, उनके जीवन में ठहराव होता है। वैसे तो देखने को उनका जीवन औरों से बेहतर नजर आता है, लेकिन सच्चाई तो देखिए दोस्तों कुछ और ही है। बेकार बैठे रहने से या कुछ नहीं करने की ललक से जीवन को नीरस बना ही दिया जाता है। जीवन बहुत बोरिंग हो जाता है, बहुत सुस्त हो जाता है, जीवन बेजान सा हो जाता है। जो लोग अपने विकास के लिए निरंतर कोशिश करते हैं, उनके जीवन में तो देखो उथल पुथल होगी ही ना, और ऐसा होना जरूरी भी है, तभी इंसान विकास के लिए आगे बढ़ेगा। हिमालय में सबसे बड़ा हिमस्खलन कोई 5 करोड़ साल पहले हुआ था। तब से अब तक ये 5 मिलीमीटर की रफ्तार से धीरे धीरे हर साल ऊपर उठ रहा है। हालांकि महाद्वीप पर इसका विस्तार चौड़ाई में भले ही 5 सेंटीमीटर हर साल हो रहा हो, लेकिन ऊंचाई के मामले में ये 5 मिलीमीटर की सालाना दर से बढ़ रहा है। जीवन के साथ भी हमेशा यही होता है दोस्तों। आप धरातल पर कितना भी कुछ कर लीजिए, लेकिन इससे ऊंचाई तो थोड़ी सी ही बढ़ती है। ये सिद्धांत सब पर लागू है। फिर चाहे आप भौतिक सुख या कल्याण की खोज में जुटे हों या फिर आध्यात्म की तरफ घूम गए हों। दोस्तों बने रहिए मेरे साथ आपके ही झाबुआ के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील पर 90.8 FM सुनते रहें।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: पापा ने पूछा, बेटी बड़ी होकर तुम क्या करोगी? बेटी ने बहुत हंसते हुए कहा, शादी कर लूंगी। पापा ने कहा, ये गलत बात है बेटे, अभी से किसी के बारे में इतना बुरा नहीं सोचते। दोस्तों बने रहिए मेरे साथ, आपके ही झाबुआ के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील पर 90.8 FM सुनते रहें।

0: भेज दिया है।
1: वो निराश होकर लौटने ही वाले थे कि राजा जनक ने उन्हें कहा, चलिए हम धर्म चर्चा महल में नहीं सत्संग भवन में करेंगे। सत्संग भवन में वो आत्मा परमात्मा के बारे में बातचीत ही कर रहे थे कि कुछ राज कर्मचारी हांफते हुए आए और कहने लगे कि महल के एक कमरे में आग लग गई है। राजा जनक ने शांति से कहा, देखो मैं इस मुनि के साथ ईश्वर संबंधी चिंतन में लीन हूं, आग बुझाने की कोशिश करो, सांसारिक संपत्ति नष्ट होती है तो हो जाने दो। आग की लपटें सत्संग भवन तक पहुंच गई, फिर भी राजा जनक परेशान नहीं हुए। लेकिन सुखदेव अपनी किताबें उठाकर कमरे से बाहर आ गए। जनक जी ने कहा, दुख का मूल संपत्ति नहीं, संपत्ति से प्यार है। हमें केवल वस्तुओं के उपयोग का अधिकार है, अक्षय संपत्ति के स्वामी और निर्धन दोनों को मृत्यु के समय सब कुछ यहीं छोड़कर जाना पड़ता है। इसलिए नाशवान धन संपत्ति के प्रति अपने प्यार को मत बढ़ाइए। कहने का मतलब यह है दोस्तों, आपके पास धन है, संपत्ति है, सुविधाएं हैं, तो सबका उपभोग कीजिए, लेकिन उनसे इतना प्यार ना कीजिए कि वो आपको परेशान करके रख दें। बस सुखदेव महाराज को समझ में आ गया कि वास्तव में जनक जी विदेह हैं। दोस्तों बने रहिए मेरे साथ, आपके ही झाबुआ के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील पर 90.8 FM सुनते रहें।

वो सोचने में डूब गए कि मैंने तो एक ही मारा, लेकिन सैकड़ों बाघों को शिकार का लिखित मंजूरी देकर मैंने ही तो मरवाया। मैं अनगिनत बाघों और वन्य जीवों का अपराधी हूं। उन्होंने गौर करना शुरू किया तो देखा भारी सरकारी पैसा पा रहे अनेक रजवाड़े शिकार करके मूछें ऐंठ रहे हैं। उदयपुर के महाराज हों या टोंक के नवाब, जयपुर के कर्नल हों, तो उन्होंने दावा किया कि उन्होंने 1000 बाघों के शिकार में भाग लिया। जाने कितने ही तेंदुए, जंगली सुअर और अन्य बड़ी बिल्लियां मार दी गईं, कोई हिसाब नहीं। असर कुछ ऐसा हुआ कि कुछ ही दिनों में लोग चर्चा करने लगे कि एक युवा वन अधिकारी हैं कैलाश सांखला, जो शिकार की मंजूरी नहीं देते। साल 1956 से ही सांखला ने लोगों से कहना शुरू कर दिया कि कृपया अबोध वन्य प्राणियों को मत मारिए, वरना वो समाप्त हो जाएंगे और जंगलों का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तब हालात बेहद खराब थे। दुनिया भर में भारत में पर्यटन का मतलब होता था जंगलों में जाइए और जानवरों को मारने का मजा लूटिए। कैलाश सांखला देश में पहले ऐसे वन्य जीव प्रेमी थे जिन्होंने समझ लिया कि पहले देश का कानून बदलना पड़ेगा। सांखला के प्रयासों से धीरे धीरे स्थितियां बदलने लगी। वन्य जीवों और उनके अंगों का व्यापार रुक गया, निर्यात रुका और अंततः प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी को समझ में आ गया कि बाघों को बचाना होगा, और तब देश में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई। कैलाश सांखला उसके पहले निदेशक बनाए गए। तब भारत के जंगलों में 300 से कम बाघ बचे थे। वो कहते थे कि जंगलों में कुछ मत करो और किसी को कुछ करने भी मत दो, प्रकृति अपने आप असली रंग रूप में लौट आएगी, और बस कम से कम मानवीय हस्तक्षेप तो ना होने दो। भारत में साल 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ और सन 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शानदार शुरुआत हुई। उस साल बाघ देश के 9 जंगलों में सुरक्षित थे और अब करीब 53 जंगलों में सुरक्षित हैं। 29 जुलाई को जब विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है तब पूरी दुनिया गौर करती है, 75% बाघ केवल अकेले भारत में हैं। यहां वनों में उनकी संख्या 3000 से ज्यादा हो चुकी है। ऐसे में कैलाश सांखला को भला हम कैसे भूल सकते हैं। दोस्तों बने रहिए मेरे साथ आपके ही झाबुआ के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील पर 90.8 FM सुनते रहें।

प्रेम करुणा और क्रोध घृणा की शक्तियां संसार में हमेशा काम करती रहती हैं। ये एक झूले के खेल की तरह होता है। अब सवाल यह है कि आप झूले के किस सिरे को वजनदार करना चाहते हैं। जैसे ही आप ऐसी चीजों में विश्वास करना शुरू करते हैं जो आपके अनुभव में नहीं है, स्वाभाविक है आप द्वंद में जीने लग जाते हैं। दोस्तों, इस पर ध्यान दीजिए। आज आप एक शांत व्यक्ति हैं, लेकिन कल अगर कोई आपकी मान्यताओं और परंपराओं का विरोध करने लग जाए तो आप उससे तुरंत झगड़ने लगते हैं। विश्वास में जीने में भला क्या बुद्धिमानी है? विश्वास में जीने से क्या लाभ है? सिर्फ इतना ही कि आपका अहम संतुष्ट हो जाता है। मैं नहीं जानता, अहम के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। मैं जानता हूं, एक ऐसा तरीका है जिससे आप अपने अहम को बढ़ावा दे सकते हैं। किसी खास स्थिति में जब आप कहते हैं कि मैं नहीं जानता, आप किसी के साथ लड़ने के योग्य नहीं रह जाते, आप विरोध के योग्य भी नहीं रह जाते, आप अत्यंत विनम्र और बेहद अच्छे इंसान हो जाते हैं। जब तक आप अपने अंदर शांति लाने के योग्य नहीं हैं, आप भला विश्व में शांति स्थापित करने के योग्य कैसे हो सकते हैं? मतलब यह हुआ कि अगर आप अंदर से खुद शांत नहीं हैं, तो बाहर आप शांति कैसे फैला सकते हैं? अगर इस छोटे से मन को आप शांत नहीं कर सकते, तो क्या विश्व में शांति पैदा कर पाएंगे? आप संसार में जो भी देख रहे हैं, वो आपके छोटे से मन की एक छवि है। क्या संसार में ऐसी कोई चीज हो रही है जो आपके मन में नहीं हो रही? वही तो हो रही है। योग विज्ञान अपने भीतर देखने का एक तरीका है। किसी खास दृष्टिकोण से नहीं देखना, सिर्फ भीतर देखना। यदि आप किसी चीज से अपनी पहचान बना लें, तो आप भीतर नहीं देख सकते। जैसे ही आप किसी चीज से अपनी पहचान बनाते हैं, आपके लिए सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। गौर कीजिए, इस बात को इस तरह से भी कहा जा सकता है दोस्तों कि मैं एक तरह की गाड़ी चलाता हूं, मैं एक तरह के मकान में रहता हूं, फ्लैट में रहता हूं, एक तरह का मोबाइल लिए फिरता हूं। क्या मेरी पहचान इन चीजों से है या मेरी पहचान से इन चीजों की पहचान है? सोचने की कोशिश कीजिए। आपका सोचना और महसूस करना बस इसी बात पर निर्भर करता है कि इस वक्त आपने अपनी पहचान किससे बनाई है। गाड़ी से, मोबाइल से, घड़ी से, घर से, किससे? अपनी पहचान को मिटाने और सच्ची शांति का अनुभव करने में ध्यान आपकी मदद करता है। जब आप ध्यान करते हैं, तो कम से कम उस वक्त तो आपके लिए कुछ भी और मायने नहीं रह जाता, सिर्फ आपका वजूद बच जाता है। वहां भी कुछ भी शेष नहीं रह जाता। शांति का मतलब है शून्यता या खालीपन। शांति कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप पैदा करते हैं। शांति ऐसी कोई चीज नहीं है जो घटित होती है। शांति ऐसी चीज है जो हमेशा है। शांति ही अस्तित्व की बुनियाद है। सतह पर जो होता है व्यवधान है, उपद्रव है, वो ठीक समुद्र जैसा होता है। समुद्र की सतह पर हलचल होती है ना, लेकिन नीचे गहराइयों में ये पूरा शांत होता है। जब आप इस गुण के साथ अच्छा तालमेल बिठा लेंगे, तो वास्तव में शांति पा जाएंगे। दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ आपके ही झाबुआ के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील पर 90.8 FM सुनते रहें।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: पता नहीं भैया, तुम लोगों का ब्रेकअप कैसे हो जाता है, यहाँ तो मेरी सेटिंग ही नहीं हो पा रही है। दोस्तों बने रहिए मेरे साथ, आपके ही झाबुआ के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील पर।

0: तो दोस्तों, इस जोश को, इस उत्साह को, इस खुशी को बनाए रखिएगा पूरे दिन। कल सुबह हम लोग फिर मुलाकात करेंगे एक नए जोश के साथ, नए उत्साह के साथ जिंदगी को जीने के लिए। मैं आपका दोस्त हूँ समीर, कल मिलते हैं।
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट

0: बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो 90.8 FM जाबुआ की आवाज।
4: कुछ कहती हैं सब्जियाँ,
5: आज बच्चे खेल खेल में सब्जी बने हैं। उन्होंने मिलकर तय किया कि बबलू महाराजा कद्दू बनेगा, उसकी राजकुमारी मिर्ची बनेगी चिन्नम्मा, मुन्ना राजकुमार करेला बनेंगे, सोनू राजकुमार प्याज बनेंगे, टमाटर बनेंगी पिंकी, पिंटू राजकुमार आलू बनेंगे और मुर्गन राजकुमार गाजर बनेंगे। सब्जियों की महासभा आरंभ होती है।
6: चिन्नम्मा तुम मिर्ची बनोगी,
7: पिंकी तुम टमाटर बनोगी।
8: अरे मैं क्या बनूंगी, मुझे भी तो बताओ। मैं भिंडी बन जाती हूँ।
9: मैं करेला बनूंगा।
10: बबलू तुम दही बनोगे, तुम मिर्ची बनोगे,
11: मैं मिर्ची
10: बनूंगी, तुम टमाटर बनोगे, गाजर बनोगे।

0: हरी मिर्ची।
1: हाँ पिताजी।
0: तुम जानती हो कि मुझमें फाइबर की मात्रा अधिक होती है, मैं कई रोगों से लोगों को बचाता हूँ। हाँ, मैं या तुम्हारे भाई तुमसे कुछ कह दें तो बुरा नहीं मानना चाहिए। हम सब मिलकर रहें तो सबका भला होता है।
1: अच्छा।
0: हाँ, बेटी राजकुमारी मिर्ची, तुम कुछ कहो बेटी।
2: पिताजी, मैं स्वाद में तीखी हूँ। लेकिन लोगों की आंखों की रोशनी बढ़ाती हूँ।
0: बिल्कुल।
2: उनकी त्वचा की रक्षा करती हूँ।
0: सही।
2: मुझे ये समझ में नहीं आता कि राजकुमार टमाटर, करेला, आलू और गाजर क्या करते हैं। प्यास, तुम तो बताओ तुम क्या करते हो।
3: बहन मिर्ची, मैं स्वाद में बहुत सादी हूँ। मैं सभी सब्जियों के साथ घुल मिल कर रहती हूँ।
2: अच्छा।
3: और हाँ, मैं बीमारियों से लड़ने की शक्ति देती हूँ।
2: ओह, मुझे तो पता ही नहीं था। मैं फिर भी खुद को बड़ा समझती हूँ।
3: अच्छा, बड़ा समझती हो।
4: हाँ, बड़ा तो मैं भी हूँ। मैं करेला हूँ। मैं कड़वा तो हूँ पर सेहत के लिए अच्छा हूँ।
5: तुम सब मुझे कैसे भूल गए।
6: अरे बताओ बताओ कौन हो तुम।
5: मैं हूँ सब्जियों का राजा आलू।
4: आलू
7: आलू
2: आलू तो हमें बहुत पसंद है।
7: आलू के फायदे तो बताओ।
5: मैं सभी को शक्ति देता हूँ।
8: मुझे भी चाहिए शक्ति।
9: मुझे भी शक्ति।
10: मुझे चाहिए।
11: मुझे चाहिए।
12: मुझे चाहिए।
13: मुझे चाहिए।

0: ये सब तुम्हारे भाई बहन हैं, इनसे मिलजुल कर रहना चाहिए।
1: जी पिताजी, मैं इनके साथ मिलजुल कर रहूंगी।
0: शाबाश।
2: हाँ हाँ, सब मिलजुल कर रहेंगे।
3: हाँ, सब मिलजुल कर रहेंगे।
0: ये हुई ना बात।
1: गाजर, आलू, करेला, तुम सब मेरे भाई बहन हो।
2: हाँ मिर्ची, हम
3: भाई बहन हैं।
4: तभी अचानक से राजकुमारी मिर्ची गिर पड़ती है।
1: ओ, मैं तो गिर गई।
2: अरे मिर्ची,
4: सभी भाई बहन उसे मिलकर उठाते हैं।
0: देखा बेटी, तुम्हारे भाई बहन तुम्हें कितना चाहते हैं। चाहते हैं ना?
1: जी पिताजी।
0: सभी ने मिलकर तुम्हें उठाया?
1: हाँ पिताजी।
0: हाँ, देखो बेटी, मिलकर रहने से सभी का फायदा होता है, होता है कि नहीं?
1: हाँ पिताजी।
0: हाँ, प्यार फैलता है, एकता बढ़ती है, बढ़ती है ना एकता?
1: हाँ पिताजी।
0: हाँ, तो इसलिए बेटा हम सबको मिलजुल कर रहना चाहिए, कभी भी एक दूसरे से लड़ाई नहीं करनी चाहिए।
1: हाँ पिताजी, आप सही कहते हैं। मैं खुद पर घमंड करती थी, असली प्यार तो मिलजुल कर रहने में है।
0: हाँ।
1: मैं आगे से कभी घमंड नहीं करूँगी।
0: ये हुई ना बात। शाबाश बेटी।
5: तो सुना आपने बच्चों, सभी सब्जियों के कुछ ना कुछ फायदे जरूर होते हैं, इसीलिए अब से ये नहीं कहना कि मुझे ये नहीं खाना, मुझे वो नहीं खाना। बात ये है बच्चों कि हमें है सभी सब्जियां खाना।
6: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो 90.8 FM झाबुआ की आवाज।
5: शिक्षक जो गढ़े बचपन को,
7: ये कार्यक्रम विशेष रूप से चर्चा करता है कि बच्चे के जीवन के सर्वांगीण विकास में अभिभावक और मुख्य रूप से शिक्षक की क्या भूमिका होती है।
5: साथियों, शिक्षकों के इस विशेष कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। ये कार्यक्रम शिक्षक प्रशिक्षण के परंपरागत ध्वनि कार्यक्रमों की शैली से थोड़ा अलग है। यह कार्यक्रम विश्व के महान आविष्कारक और वैज्ञानिक थॉमस एडिसन के जीवन और उपलब्धियों के इर्द गिर्द बुना गया है।
8: महान आविष्कारक थॉमस एडिसन का जन्म संयुक्त राज्य अमेरिका के ओहायो राज्य के मिलान नगर में 11 फरवरी 1847 को हुआ था। वे अपनी माता नैन्सी एलियट और पिता सैमुअल एडिसन की 7वीं संतान थे।
9: बचपन से ही वो बहुत ही जिज्ञासु थे। अपनी स्कूली शिक्षा के दौरान वो शिक्षकों से अक्सर ऐसे प्रश्न पूछ लिया करते थे जिनका जवाब देना कठिन होता था। शिक्षक और सहपाठी उन्हें शरारती और मूर्ख समझते थे।
5: साथियों, बच्चा जिज्ञासाओं का पिटारा होता है, वह तो प्रश्न पूछेगा ही, तब तक जब तक हम उसे पूछने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। लेकिन यदि उसे हतोत्साहित किया तो शायद फिर वह कभी नहीं पूछेगा।
8: एक दिन की बात है, शिक्षक ने बालक एडिसन को बुलाया और उसके हाथ में एक चिट्ठी थमा कर कहा,
10: अपनी माँ को यह चिट्ठी दे देना।
8: भोले भाले बच्चे ने वो चिट्ठी ली और घर पहुंचकर अपनी माँ को दे दी।
11: माँ, ये चिट्ठी।
8: माँ ने जब वो चिट्ठी पढ़ी तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने वो चिट्ठी अलमारी में रख दी।
9: दूसरे दिन से एडिसन फिर कभी स्कूल नहीं गए। वो घर पर ही पढ़ाई करने लगे। एक बार उन्होंने अपनी माँ से पूछा,
11: माँ, आप मुझे स्कूल क्यों नहीं भेज रहे हो? क्या अध्यापक ने चिट्ठी में कुछ लिखा है?
9: बेटा एडिसन, उन्होंने ये कहा कि आपका बेटा बहुत बुद्धिमान है।
11: अच्छा,
9: इसलिए वो हमारे विद्यालय के लायक नहीं है। क्योंकि तुम बहुत बुद्धिमान हो ना।
11: अच्छा,
9: उनको लगता है कि उनके विद्यालय में तुम्हारी प्रतिभा वैसी नहीं निखर पाएगी, जैसी कि आशा की जाती है।
11: हाँ
9: ठीक है।
11: बहुत
9: अच्छे।
5: तो शिक्षक मित्रों, ये घटनाक्रम एक बेहद गंभीर प्रश्न पैदा करता है। जरा सोचिए कि यदि आप बालक थॉमस एडिसन के शिक्षक होते तो किसी बच्चे का मूल्यांकन कैसे करते और उसकी सूचना बच्चे के अभिभावकों को किस प्रकार देते। साथियों, आप भी शिक्षक हैं। आपने सुना कि एडिसन की माँ, जो स्वयं शिक्षिका थी, उन्होंने किस प्रकार अपने बच्चे के किसी भी प्रश्न को नजरअंदाज नहीं किया। तो फिर क्यों ना हम भी यथासंभव बिना खीजे बच्चों के प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करें।
9: उनकी माँ जानती थी कि ये बच्चा मानसिक रूप से कमजोर नहीं है। उन्होंने एडिसन को घर पर ही पढ़ाया। वो एडिसन के सभी प्रश्नों का उत्तर यथासंभव देने की कोशिश करती और प्रारंभ में उन्हें बुनियादी साक्षरता के साथ साथ अंक गणित पढ़ाया। उन्हें विशेषकर विज्ञान में बहुत रुचि थी। एक बार की बात है, वो रेल के डिब्बे में ही कुछ रासायनिक प्रयोग कर रहे थे कि फास्फोरस के गिर जाने के कारण वहां आग लग गई, भगदड़ मच गई।
12: इतने में रेल अधीक्षक वहां भागा भागा आया और जब उसने सारा माजरा देखा तो उसके क्रोध का ठिकाना ना रहा। उसने एडिसन को एक जोरदार थप्पड़ मारा जिसके कारण वे हमेशा के लिए आंशिक रूप से बहरे हो गए। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और पढ़ना व प्रयोग करना जारी रखा।
5: तो सुना आपने दोस्तों, रेल के डब्बे में ही प्रयोगशाला जिसका अंतिम परिणाम दुर्घटना थी। जी हाँ, बच्चा कौतुक और रोमांच से भरा होता है। वह जरूर नए नए प्रयास करने की कोशिश करेगा। तो ऐसे में हमें उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। पीटना समाधान नहीं है। तो आइए अब सुनते हैं उनकी शिक्षक माँ ने किस तरह इन परिस्थितियों का सामना किया।
12: उनकी माँ उन्हें पढ़ने के लिए विभिन्न प्रकार की पुस्तकें देती और प्रोत्साहित करती कि वे जितना अधिक हो सकता है अवश्य पढ़ें। थॉमस एडिसन के मन में पढ़ने की अदम्य इच्छा उनकी माँ के कारण ही उत्पन्न हुई।
9: एक बार उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा था,
12: ओह, मैंने यथासंभव लगभग सब कुछ पढ़ा है जो कल्पनाशीलता को बढ़ावा देता है। मुझे पुस्तकों से अगाध प्रेम है।
5: तो साथियों, जैसा कि आपने सुना, एडिसन की माँ स्वयं शिक्षिका थी, लेकिन अक्सर अभिभावक शिक्षक नहीं होते, है ना? तो कितना अच्छा हो यदि बच्चे के जीवन में एडिसन की माँ की तरह ही हमारी भी सकारात्मक भूमिका हो जाए।
9: थॉमस एडिसन ने एक बार अपनी माँ के बारे में कहा था,
12: मेरी माँ ने ही मेरा निर्माण किया। वे बहुत सच्ची थी और मुझ पर विश्वास करती थी। उन्होंने ही मुझे बताया कि मुझे किसी के लिए जीना है। कोई ऐसा है इस दुनिया में जिसे मुझे निराश नहीं करना है।
5: साथियों, हम सब जानते हैं कि थॉमस एडिसन को मुख्य रूप से बिजली के बल्ब के आविष्कार के लिए जाना जाता है। वैसे उन्होंने 1300 के लगभग आविष्कार किए और उनका पेटेंट लिया।
12: बिजली के बल्ब के आविष्कार की कहानी अत्यंत रोचक है।
9: इसका आविष्कार करने के लिए थॉमस एडिसन को सैकड़ों बार असफलता का सामना करना पड़ा। शुरू में कई बल्ब चले लेकिन कुछ ही सेकंड्स या मिनट में टूट गए। लेकिन एडिसन ने जैसे हार मानना सीखा ही नहीं था।
12: एक बार की बात है, उनके सम्मान में एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई।
8: बहुत से पत्रकार जमा थे। एक पत्रकार ने पूछा,
9: मिस्टर एडिसन, बिजली के बल्ब के आविष्कार की प्रक्रिया में आप कितनी बार असफल हुए?
8: लगभग 10,000 बार।
9: 10,000 बार?
8: लेकिन मैं उन्हें असफलता नहीं कहूंगा।
9: अच्छा,
8: मैं कहूंगा कि मैंने 10,000 उन तरीकों को खोजने में सफलता पाई जिनसे बिजली का बल्ब बनाया नहीं जा सकता था।
9: अरे वाह।
8: वे दरअसल 10,000 स्टेप्स थे जिन्हें तय करके मैं सफलता तक पहुंचा।
9: क्या बात है। तो साथियों, ये था असफलताओं के प्रति थॉमस एडिसन का दृष्टिकोण। उन्होंने अपनी असफलताओं को भी बहुत सकारात्मक ढंग से देखा। अपने बहरेपन के बारे में एक बार उन्होंने विनोदपूर्ण ढंग से कहा था,
8: मैं ठीक से सुन नहीं पाता हूँ, इसके मुझे दो लाभ मिलते हैं। पहली बात, लोग मेरे पास आकर व्यर्थ की बात नहीं करते, और दूसरी बात, इसके कारण मैं पुस्तकों और वैज्ञानिक सोच को अधिक समय दे पाता हूँ।
9: एक दिन एडिसन ने पुरानी अलमारी को खोला और यूं ही कुछ देखने लगे कि तभी एक लिफाफा नीचे गिरा। एडिसन ने उसे उठाया। अरे, ये तो वही पत्र था जो उनके स्कूल के अध्यापक ने भेजा था। उन्होंने उसे पढ़ा। लिखा था,
8: डियर मिसेस एडिसन, आपका बच्चा बेहद मंद बुद्धि का है और वो कुछ सीख नहीं सकता। उसके स्कूल में होने से दूसरे बच्चों पर भी फर्क पड़ता है, इसलिए अच्छा होगा उसके लिए कोई दूसरा स्कूल देख ले या उसे स्वयं ही पढ़ा ले।
9: थॉमस एडिसन की आंखों से आंसू बहने लगे। ये है किसी बच्चे के सर्वांगीण विकास में एक माता की सकारात्मक भूमिका। उन्होंने हमेशा ये बोल बोल कर कि तुम जीनियस हो, अपने बेटे का मनोबल बढ़ाया और यहां तक बढ़ाया कि थॉमस एडिसन इतिहास का स्वर्णिम हस्ताक्षर बन गए। जीवन के संघर्षों के प्रति उनका एक कथन बहुत प्रसिद्ध है,
8: हम तब नहीं

0: काजी साहब, मुझे डर है कि मेरे बुलाने से दरख्त नहीं आएगा।
1: काजी ने उसकी बात सुनकर अपनी मोहर उसको दी और कहा,
2: ये मोहर ले जाओ और दरख्त से कहना कि ये काजी की निशानी है, तुम जो कुछ जानते हो उसकी गवाही काजी की अदालत में हाजिर होकर दो।
1: मुद्दई ने काजी की मोहर ली और चला गया। दूसरा शख्स वहीं बैठा रहा। काजी साहब दूसरे मुकदमों को सुनने और फैसले करने में मसरूफ हो गए और उस शख्स की तरफ से निगाहें हटा ली। थोड़ी देर के बाद काजी ने अचानक उससे सवाल किया,
2: वो शख्स उस जगह पहुंच गया होगा या अभी नहीं?
1: उसने जवाब दिया,
2: अभी नहीं।
1: काजी जी ये सुनकर फिर मुकदमों में मसरूफ हो गए। मुद्दई काजी की मोहर लेकर दरख्त के पास गया। वहाँ उसने दरख्त को काजी की मोहर दिखाई, उससे कहा,
0: काजी ने तुम्हें गवाही देने के लिए बुलाया है।
1: वो कुछ देर तक जवाब के इंतजार में वहीं खड़ा रहा और जब कोई जवाब नहीं मिला तो बहुत रंजीदा होकर काजी के पास लौट आया। उसने काजी साहब को बताया,
0: हुजूर, दरख्त ने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया, ना ही वो मेरे साथ अदालत में गवाही देने आया है।
2: तुमको पता नहीं है, दरख्त तो यहाँ पर गवाही देकर चला गया।
1: काजी ने फिर ये फैसला सुनाया,
2: मुद्दई का दावा सही है, 100 रुपए उसे वापस दिए जाएं।
1: दूसरा शख्स ये फैसला सुनकर फौरन बोला,
3: काजी साहब, मैं तभी से यहाँ बैठा हूँ, मेरे सामने कोई भी दरख्त गवाही देने नहीं आया, फिर आपने ये फैसला कैसे कर दिया?
1: काजी ने जवाब दिया,
2: बेशक यहाँ कोई दरख्त नहीं आया, लेकिन जब मैंने तुमसे अचानक पूछा था कि क्या वो शख्स उस जगह पहुँच गया होगा, तो तुमने जवाब दिया था कि अभी नहीं। अगर ये बात सच ना होती तो तुम ये जवाब हरगिज ना देते कि वो अभी वहाँ ना पहुँचा होगा।
4: रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो 90.8 FM, जाबुआ की आवाज।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो 90.8 FM जाबुआ की आवाज।
1: प्यारे बच्चों, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में देश के हर कोने से और हर जाति और उम्र के लोगों ने हिस्सा लिया। उत्तर पूर्व के राज्यों के रणबांकुरों ने भी अंग्रेजी हुकूमत के दांत खट्टे कर दिए थे। इन्हीं में से एक महिला क्रांतिकारी थी रानी गाइडनल्यू, जिन्हें उनके गांव वाले रानी पुई नाम से पुकारते थे। रानी पुई का अर्थ है रानी माँ। गाइडनल्यू का जन्म 26 जनवरी 1915 को नागालैंड के लांगकाओ नामक स्थान पर हुआ। वो रांगमेई नाम की आदिम जाति से संबंध रखती थीं।

0: अंग्रेजों के अत्याचार को बढ़ते ही जाएंगे, अब इसके आपको सांस करना पड़ेगा जरूर।
1: क्या हो रहा है यहाँ पर? अरे हटो बंद करो ये गाना।
2: अरे छोड़ो छोड़ो मुझे, मेरे बाहर छोड़ दो।
1: अरे तुझे चौप, कान खोल कर सुन लो, कल से ये तमाशा, ये मजमा, ये नाच खाना पर, अब ये जमीन हमारी है, तुम लोगों का इस पर कोई अधिकार
0: नहीं।
1: अब ना कोई ये लकड़ी लेगा और ना कोई अपना जानवर चलाएगा इधर। ओके,
3: अरे ये तो हमारी जमीन है,
2: इस मिट्टी में तो हम पैदा हुए हैं, ये कैसे दे देंगे हम आपको?
3: अरे भला फिर हम क्या खाएंगे, अपने जानवरों को क्या देंगे?
2: ये तो गलत है, अत्याचार है हम पर।
3: अरे हमारे बच्चे तो भूखों मर जाएंगे।
1: चलो भागो यहाँ से, हटो।
4: भाइयों, हिम्मत और समझदारी से काम लो, हम लड़ेंगे, मरते दम तक लड़ेंगे।
0: हाँ जरूर लड़ेंगे, बिल्कुल।
4: हम अपनी जमीन अवश्य वापस लेंगे, चाहे कुछ क्यों ना करना पड़े।
2: हाँ जादोनाग भैया, हम लड़ेंगे, हमें अपने हथियार उठाने ही पड़ेंगे, ये फिरंगी ऐसे नहीं मानेंगे।
3: कल से हम सभी अलग अलग पहरा देंगे, हम भी देखते हैं कैसे आते हैं वो दोबारा इधर।
2: हाँ हम उन पर हमला करेंगे, हम उन्हें यहाँ से कुछ भी नहीं ले जाने देंगे, ये जंगल हमारा है।
4: ठहरो, गुस्से से बात और बिगड़ सकती है, पहले हम उनसे ऐसा न करने के लिए कहेंगे। हाँ हम उन्हें समझाएंगे कि इससे हम आदिवासियों का जीवन खत्म हो जाएगा। हम सत्याग्रह करेंगे, शांति से धरना देंगे, अंग्रेज अफसरों का घेराव करेंगे।
5: लेकिन जादो भैया, अंग्रेज मानेंगे नहीं, उनकी नीयत ठीक नहीं है, कल वो हमारे घरों पर कब्जा कर लेंगे और हम सबको मार डालेंगे।
4: नहीं गाइडिंग लू, जो अभी हुआ नहीं उसकी चिंता कैसी, हमें उम्मीद है कि अंग्रेजों के बड़े अधिकारी हमारी बातें जरूर सुनेंगे।
5: जादो भैया, अगर उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी तो?
4: तब तेरा ये भाई चुप नहीं बैठेगा गाइडिंग लियू, हम अपना आंदोलन और तेज करेंगे और उन्हें मजबूर कर देंगे।
3: हाँ ये ठीक रहेगा।
1: यही है जादो नाग।
5: अरे अरे कैसे पकड़ लोगे हमारे भैया को?
1: छोड़ो, पीछे नहीं मोंटी, ये ले।
3: क्यों मार
4: रहे हो? कायर, इसे क्यों मारता है? मैं तैयार हूँ मार खाने को, हिम्मत है तो मुझे मार।
2: यही है वो अंग्रेज अफसर, यही अपने सिपाहियों को भेजता है। देखो तो, देखो कैसे आंखें दिखा रहे, देखो देखो इसे।
1: सिपाहियों, अरे खड़े खड़े मुझे क्या देखते हो? हटाओ सबको इधर से, मारो पीटो भगाओ इधर से। चलो इसके साथियों को भी ले चलो। जादो नाग चला था सबको भड़काने, हमसे टकराएगा तू।

0: बच्चों, 1931 में जादोनांग पर मुकदमा शुरू हुआ और एक दिन उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया। अंग्रेजों का अत्याचार और बढ़ता गया। मणिपुर, असम और नागालैंड के आदिवासियों को जंगलों से बेदखल कर दिया। लकड़ियों और पेड़ों के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी। मासूम आदिवासी मारे जाने लगे, कभी भूख से तो कभी गोरे अंग्रेजों की गोलियों से। यही नहीं, उन पर जुर्माना लगाया गया, उनके लाइसेंसी हथियार तक छीन लिए गए। तब आंदोलन का नेतृत्व 17 वर्ष की गाइडन ल्यू ने किया। और उनके नेतृत्व में नागा क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। एक बार रात का समय था, नागाओं की एक गुप्त स्थान पर बैठक हो रही थी।
1: भैया, जादोनांग की कुर्बानी को हम बेकार नहीं जाने देंगे। अब हमारे पास हथियार उठाने के अलावा कोई रास्ता नहीं।
2: कोई रास्ता नहीं है हमारे पास।
1: सब लोग अपनी औरतों बच्चों को सुरक्षित जगहों पर भेज दें। हर आदमी लड़ने के लिए तैयार रहे।
2: हम
1: अंग्रेजों को मजा चखाएंगे। उन्हें इस गांव में घुसने नहीं देंगे। लेकिन खबरदार, सारा काम सावधानी और हिम्मत से हो। अंग्रेज कोई भी चाल चल सकते हैं।
3: तुम तो ठीक कहती हो रानी, ठीक कहती हो।
1: शांत
3: लगता हो यार,
1: एकदम शांत। लगता है पहाड़ी के उस पार कुछ अंग्रेज सिपाही हैं। साथियों, तैयार हो जाओ।
2: तैयार है।
1: इससे पहले कि वो इधर आए, हम उन पर हमला कर देंगे। इस लड़ाई में कई अंग्रेज सिपाही मारे गए। लड़ते लड़ते कुछ आदिवासी भी जान गंवा बैठे। बच्चों, गाइडन ल्यू को सब प्यार से रानी गाइडन ल्यू कहते थे। ये छापामार दस्ता उन्होंने 1933 में बनाया। इन नागा आदिवासियों ने अंग्रेजों से कई लड़ाइयां लड़ी और अंग्रेजों को काफी नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन अंग्रेज तो जैसे ढीठ हो गए थे।
4: सुनो सुनो सुनो, सभी लोगों को बताया जाता है कि अपने सारे हथियार एक हफ्ते के भीतर पुलिस पोस्ट में जमा कर दें, चाहे ये लाइसेंसी हो या बिना लाइसेंसी। ऐसा न करना अपराध माना जाएगा और उन्हें पकड़कर बंद कर दिया जाएगा। कंपनी सरकार ने टैक्स लगाने का भी फैसला लिया है और टैक्स न देने वालों पर मुकदमा चलाया जाएगा। सुनो सुनो सुनो।
1: अब तो हद हो गई है। ये अंग्रेज किसी ना किसी बहाने हमें यहाँ से निकाल कर ही दम लेंगे।
5: हम कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे, इन्हें टैक्स कहाँ से देंगे?
6: टैक्स भी किस बात का, हमारा देश, हमारी धरती, फिर कैसा टैक्स?
5: और क्या, हम इंग्लैंड में तो नहीं रहते, और फिर ये अंग्रेज हमें खाने कमाने दे तब ना।
6: रानी रानी, खबर मिली है कि शाम तक अंग्रेजों के सिपाही इधर आने वाले हैं। जरूर वो तुम्हें खोजने के लिए छापे मारेंगे, तलाशी लेंगे, लोगों को परेशान करेंगे। अच्छा होगा कि तुम ये जगह बदल दो, हम सब संभाल लेंगे।
1: नहीं नहीं
7: रानी, भूलना मत, जीते जी इस गांव का कोई भी आदमी गद्दारी नहीं करेगा। हम जान दे देंगे लेकिन अपना मुंह नहीं खोलेंगे।
6: नहीं खोलेंगे। और खबरदार, किसी ने टैक्स दिया तो
8: नहीं, नहीं, कोई देगा, कोई नहीं देगा, कोई नहीं देगा।
0: देगा।
1: बच्चों, इस तरह रानी गाइडन लियू और अंग्रेज सिपाहियों के बीच लुका छिपी का खेल चलता रहा। रानी और उनके साथी ठिकाने बदलते रहे। गाइडन लियू ने अंग्रेजों के खिलाफ टैक्स न देने का अभियान छेड़ा और किसी ने टैक्स नहीं दिया। लेकिन एक दिन अंग्रेजों ने अचानक गाइडन लियू के खुफिया ठिकाने पर छापा मारा। अफरा तफरी, लड़ाई, गोलियां शुरू हो गईं।
9: सिपाहियों, ये सर, पकड़ो इसको, पकड़ो, पकड़ो, हिम्मत है तो पहले लड़ाई करो।
10: अरे चल यहाँ से, तुम्हारा खेल खत्म, अब जेल में करना लड़ाई।
9: नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, छोड़ो छोड़ो मुझे।
10: सिपाहियों,
9: छोड़ो मुझे, छोड़ो छोड़ो मुझे।
10: जो भी बच गया है सबको पकड़ के बांट दो, बहुत परेशान किया है हमको।
8: यस सर।
9: तो मुझे ले चलो, लेकिन इन सबको छोड़ दो, छोड़ो इन्हें।
10: अच्छा, इनको यही छोड़ दूं? वाह, ताकि ये लोग फिर हमारे सिपाहियों को मारें, हमसे लड़ाई करें। ओ, पकड़ लाओ, डाल दो इसको काल को घड़ी में।
1: इस तरह रानी गाइडन लियू ने अपनी परवाह किए बिना अंग्रेजी साम्राज्य को चुनौती दी। इस नौजवान लड़की को जेल में बंद कर दिया गया और उस पर मुकदमा चलाया गया। उसने 14 साल काल कोठरियों में बिताए, जहां उसे भयंकर यातनाएं दी गईं। 1939 में जब नेहरू जी ने पूर्वी भारत के प्रदेशों का दौरा किया, तो गाइडन लियू के बारे में सुनकर वो अपने आप को रोक नहीं सके और उन्होंने कहा, एक दिन ऐसा आएगा जब वो जेल से आजाद होंगी और पूरा देश उन्हें याद करेगा। बच्चों, 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। भारत के स्वतंत्र होने के साथ ही रानी गाइडन लियू को भी आजाद कर दिया गया। आगे चलकर उन्होंने अपने को समाज सेवा में लगाया। उन्होंने फरक्का नाम का एक धार्मिक आंदोलन भी चलाया, जिसका अर्थ होता है पवित्र। अठहत्तर वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। रानी गाइडन लियू को भारत सरकार ने कई पुरस्कारों से सम्मानित किया, उनमें से ताम्रपत्र, पद्म भूषण एवं बिरसा मुंडा पुरस्कार आदि हैं। उनको हमेशा याद रखने के लिए भारत सरकार ने 1996 में 1 रुपए का डाक टिकट चलाया। सन 1999 में भारत सरकार ने देश की 5 प्रसिद्ध महिलाओं के नाम पर स्त्री शक्ति पुरस्कार की स्थापना की, जिनमें रानी गाइडन लियू ज़िलियांग का नाम भी शामिल है। नागालैंड की जॉन ऑफ आर्क कही जाने वाली रानी गाइडन लियू भले ही इस संसार में नहीं है, परंतु वो प्रत्येक भारतीय के हृदय में रानी के रूप में सम्मानित रहेंगी।
11: अरे रामू काका।
12: नमस्ते टीचर जी।
11: नमस्ते, कैसे हो? बड़े दिनों से दिखाई नहीं दिए।
12: बस ठीक हूँ।
11: अरे क्या हुआ? बहुत दिनों से आपकी बिटिया कमला स्कूल में नहीं दिखाई दे रही। वो तो अच्छी भली 6ठी कक्षा में पढ़ रही थी।
12: क्या बताऊं टीचर जी, उसकी माँ बहुत बीमार हो गई थी।
11: अरे,
12: कमला ने दिन रात उसकी सेवा की। अब उसकी माँ की तो तबीयत ठीक हो गई, मगर उसका स्कूल छूट गया बेचारी का।
11: अरे
12: अब वो बड़ी भी हो रही है, उसे दूर स्कूल भेजते डरता हूँ टीचर जी।
11: कैसी बातें करते हो रामू काका, इसका भी एक हल है, कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय।
12: कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय
11: जहाँ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और गरीबी रेखा से नीचे वाले वर्ग की लड़कियों का दाखिला किया जाता है। बस लड़की का पांचवी पास होना जरूरी है और तुम्हारी बेटी तो पांचवी पास कर चुकी है
12: जी।
11: लड़कियां वहीं रहकर पढ़ती हैं, उन्हें दूर इलाकों से रोज आना जाना भी नहीं पड़ता।
12: अब वो तो ठीक है टीचर जी, सिर्फ दाखिले से क्या होगा, खाना पीना, कपड़े, किताबें।
11: अरे तुम्हें ये सब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं रामू काका, क्योंकि ये सब मुफ्त में दिया जाएगा।
12: क्या?
11: हाँ,
12: मुफ्त में दिया जाएगा।
11: और जब तुम्हारा मन करेगा उससे मिलने का तो मिल भी लिया करना।
12: अच्छा हाँ। तो क्या टीचर जी मेरी कमला फिर से पढ़ सकेगी ना?
11: हाँ, और एक दिन आत्मनिर्भर भी बनेगी।
12: अच्छा धन्यवाद टीचर जी, मैं कल ही उसका दाखिला करवाता हूँ।
11: कल क्यों, आज?
12: अच्छा टीचर जी आज ही करवाता हूँ।
11: पढ़े बालिका करे उजियारा, खुशहाल बने संसार हमारा।

बहादुरी एक ऐसा गुण है जो हमें जीवन में मुसीबतों से लड़ने की प्रेरणा देता है। 14 वर्ष की पिंकी भी ऐसे बच्चों में से एक थी जो संकट की घड़ी में अपना धैर्य न खोकर बहादुरी का परिचय देते हैं। 1998 के राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार से सम्मानित इस बालिका के बलिदान की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। हरियाणा राज्य की पिंकी ने न सिर्फ 5 बच्चों की जान बचाई बल्कि दुनिया के सामने अद्भुत शौर्य और धैर्य की मिसाल भी पेश की। आओ सुने पिंकी के बलिदान की कथा।

0: चलेंगे मिलते हैं, चलो
1: आज तो बहुत मजा आया,
0: जम्मू चलो
1: चलेंगे।
2: अरे पिंकी, आज तो तुमने अपनी धाकी जमा ली।
1: अरे सहेली किसकी है भाई, मैंने तो मास्टर जी को वही बताया जो मुझे आता था,
3: पर हमको तो नहीं आता था।
1: अरे उत्तर तो मुझे भी आता था पर मैं कुछ बोल ही नहीं पाई। अच्छा तो ये कमजोरी थी तुम्हारी भाई, कक्षा में झिझकने से तो बात नहीं बनती, क्यों?
2: ये तो ठीक है, अब देखना कक्षा में मैं भी जवाब दूंगा।
1: अच्छा चलो चलो घर चले,
4: चलो चलो बच्चों, चलो चलो जल्दी करो जल्दी करो। हाँ एक दो तीन, अरे भाई पिंकी चलो जल्दी करो,
5: धीरे धीरे। अरे भाई सभी आ गए बस में,
4: देखता हूँ उस्ताद शायद आ गए सब। अरे ठहरो ठहरो,
1: रुको रुको ड्राइवर भैया, शंभू चढ़ रहा है, उसके पैर में चोट लगी है, रुको भैया।
4: अरे घबराओ नहीं पिंकी, जब सब चढ़ जाएंगे तभी चलाएंगे भाई बस।
1: आओ चलो चलो चलो आओ, इधर बैठो।
4: हाँ इधर आ जाओ आराम से, चलो चलो चलो चलो चलो चलो, शाबाश शाबाश। हाँ भाई ड्राइवर साहब, अब चलाओ गाड़ी।
5: हाँ जी अभी लो।
4: ठीक है मैं भी आ जाता हूँ तुम्हारे पास ही।
1: अच्छा सुनो, मैं गीत गाती हूँ और तुम सब ताली बजाना।
2: हाँ भाई, पर ताली तो बाद में ही बजेगी ना।
1: अरे बुद्धू, गाने के साथ साथ बजानी है।
2: अच्छा अच्छा ठीक है भाई ठीक है, पिंकी
1: चलो पिंकी शुरू हो जाओ। बजे समय

0: स्कूल बस अपने रास्ते की ओर बढ़ी चली जा रही थी कि तभी पिंकी ने देखा कि बस के अंदर एक कोने पर रखी बैटरी के ऊपर डिब्बे में से छलक कर पेट्रोल गिर रहा है। पिंकी ने सोचा कि पेट्रोल से तो आग भी लग सकती है। फिर बच्चों ने आवाज लगाकर ड्राइवर और कंडक्टर को बताने की कोशिश की।
1: ड्राइवर भैया, भैया देखो बैटरी पर पेट्रोल गिर रहा है।
0: लेकिन बच्चों और इंजन के शोर में ड्राइवर और कंडक्टर सुन नहीं पाए कि तभी
1: अरे अरे नेहा देखो देखो आप ये भगवान आग बैटरी पे बैटरी पर हां बैटरी पर ये देखो आप हां अमित अमित चलो चलो चलो राकेश प्रवीण सब और पूनम कहां है ये हां वो आग तो बढ़ती ही जा रही है। अरे
2: अरे उस्ताद गाड़ी रोको, उस्ताद गाड़ी रोको, गाड़ी में आग लग गई है,
3: हैं आग
2: हैं, मैं रोकता हूँ गाड़ी अभी। हाँ तुम जल्दी से लोगों को मदद के लिए लाओ, पानी का इंतजाम करो, मैं यहाँ बच्चों को बचाने की कोशिश करता हूँ। अरे जो आग बढ़ती जा रही है। अरे मुझे पकड़ाओ, अरे पिंकी बेटा इसको मुझे पकड़ा दो। अरे तुम्हारे कपड़ों में आग लगी है, अरे जल्दी बाहर आओ पिंकी, बाहर आओ, तो तुम्हारे कपड़ों में आग लग गई है।
1: नहीं मुझे कुछ नहीं होगा, पहले पूनम को पकड़ो। अमित अमित देखो, पहले पूनम को।
2: अरे मुझे पकड़ाओ, अरे पिंकी बेटा तुम मुझे पकड़ाओ जल्दी से। बाहर आओ पहले, देखो तुम्हारे आग लगी है, जल्दी आओ।
1: बच्चे के कपड़ों में आग लगी हुई है, बस के अंदर बच्चों को बाहर निकालो, ये देखो तो। अरे उसकी मदद करो,
4: फोन करो ना जल्दी से, बच्चे हैं छोटे छोटे।
5: अरे दमकल को बुलाओ ना भाई,
4: जल्दी बुलाओ ना जल्दी।
0: आग में घिरी बस में से बच्चों को निकालते निकालते भी छह बच्चों ने आग में झुलस कर वहीं दम तोड़ दिया। ये संख्या बढ़ भी सकती थी, किंतु अदम में साहस और वीरता का परिचय देते हुए पिंकी ने पांच बच्चों को मौत के मुंह से बाहर निकाल ही लिया। दुर्भाग्य से इस हादसे में पिंकी अपने आप को आग की चपेट से नहीं बचा सकी और बाद में उसकी मृत्यु हो गई। पिंकी के इस वीरता पूर्वक बलिदान के लिए उसे मरणोपरांत गीता चोपड़ा पुरस्कार मिला।

0: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के।
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: बीमारियों पर कम करेंगे खर्चा, हम करेंगे सेहत और स्वास्थ्य पर चर्चा।
5: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं झाबा की आवाज पर रेडियो टंट्या भील 90.8 FM, आपके रेडियो साथी आरजे राकेश के साथ। तो दोस्तों, आज के इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे फाइलेरिया रोग के बारे में। फाइलेरिया एक गंभीर बीमारी है, इसे हाथी पांव बीमारी भी कहा जाता है। तो आइए जानते हैं फाइलेरिया बीमारी के बारे में विशेष और महत्वपूर्ण जानकारी।
4: बीमारियों पर कम करेंगे खर्चा, हम करेंगे सेहत और स्वास्थ्य पर चर्चा।
6: हमारे आज के कार्यक्रम का विषय है फाइलेरिया। फाइलेरिया एक ऐसा रोग है जिसके संक्रमण होने के बाद उसके लक्षणों का पता कभी कभी 10 से 12 वर्षों में चलता है। इस बीमारी से बचाव ही इसका इलाज है। और वो आसान सा बचाव क्या है? साल में एक बार खाई जाने वाली फाइलेरिया से बचाव की गोली। और इस विषय पर हमें आज जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आई हुई हैं डॉक्टर सारिका सिंह। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब तकनीकी सलाहकार हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश से। और डॉक्टर साहब, हम फाइलेरिया विषय पर बात कर रहे हैं, तो हम चाहेंगे सबसे पहले आपको बताएं कि ऐसे कौन से लक्षण हैं जिनसे पता चल सकता है कि कोई व्यक्ति फाइलेरिया से संक्रमित है।
7: जी, फाइलेरिया रोग जो है वह परजीवी कृमि से होता के फैलने से होता है। इसके जो मुख्यतः लक्षण होते हैं वह शरीर में, मनुष्य के शरीर में, शरीर के कुछ अंगों में जैसे कि पैर है, हाथ है, उनके अंडकोश हैं, उसमें सूजन आने लगती है। वह सूजन इस प्रकार होती है कि हाथी के पाँव के समान लगती है, इसलिए उसको हाथी पाँव भी कहा जाता है। इसमें शरीर में लालपन भी आ जाता है, इसमें फीवर आ जाता है, बुखार आता है और त्वचा भी निकलने लगती है शरीर से।
6: जी, तो ये सारे तमाम सारे लक्षण हैं और जैसा कि आपने बताया इसे बोलचाल की भाषा में हाथी पाव भी कहते हैं। डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाहेंगे कि फाइलेरिया रोग कैसे होता है और उसके बाद ये फैलता कैसे है।
7: जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह परजीवी कृमि से होता है। जो फाइलेरिया के कीटाणु हैं वह संक्रमित मनुष्य को अगर कोई मच्छर क्यूलेक्स होता है अगर काटता है तो वह उसको संक्रमित

0: हाथों पैरों में या शरीर के किसी अंग में सूजन, क्या वो कभी ठीक हो पाती है?
1: एक बार जब विसंगति आ जाती है, जैसे कि शरीर में सूजन आ जाती है हाथ या पैर हो, तो वह पूरी तरीके से नहीं सही हो सकती है। इसलिए इसका बचाव ही एकमात्र उपाय है।
0: जी जी जी, जान लेना चाहिए कि जो फाइलेरिया से बचाव की गोली इस उन्मूलन अभियान में खिलाई जाती है उसका जरूर सेवन करें। और जी बताइए
1: आकांक्षा जी, जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये अभी जड़ से नहीं खत्म कर सकते हैं, इसका बचाव ही एकमात्र उपाय है। तो इसको, लेकिन अगर ये एक बार फाइलेरिया ये हो गया है किसी को, तो वह चिकित्सा परामर्श लेके इसके लिए हमारे पास दवाइयां उपलब्ध हैं सरकारी अस्पताल में, उनसे वो चिकित्सा उपचार लेके वह दवाइयां खा सकते हैं। साथ में ये हमारी सरकार जो है यहाँ पे हाइड्रोसिल के ऑपरेशंस भी होते हैं जिनसे कि वह दूरी दूर होता है उससे।
0: जी डॉक्टर साहब, फाइलेरिया उन्मूलन का जो अभियान चलाया जाता है हमारे प्रदेश में, हमारे दर्शकों को बताइए कि वो कब से कब तक चलाया जाता है और इसके अंतर्गत जो गोली खिलाई जाती है क्या वो किसी एक निश्चित स्थान पर खिलाई जाती है?
1: ये हमारा जो ये फाइलेरिया अभियान होता है, उन्मूलन अभियान होता है, इसको मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन भी कहते हैं। हमारे यहाँ प्रदेश में यह दो चरणों में चलता है, एक फरवरी में और एक नवंबर में। ये दो तो हमारे खत्म हो चुके हैं, लेकिन अगले वर्ष फिर से यह शुरू होगा। इसमें स्वास्थ्य कर्मी सभी ग्रामीण और शहरी इलाकों में घर घर जाकर फाइलेरिया की गोली निःशुल्क देते हैं और अपने सामने खिलाते हैं। यह एक साथ खिलाया जाता है, सार्वजनिक रूप से खिलाया जाता है, इसलिए इसका उन्मूलन के लिए यही प्रयास है।
0: जी बिल्कुल, और हमारे कार्यक्रम के माध्यम से हम चाहेंगे कि जब भी उनके घर पे उन्मूलन के लिए गोलियां खिलाने के लिए कार्यकर्ता पहुंचे, वो इस गोली का सेवन जरूर करें। डॉक्टर, सबके मन में जरूर एक बात आ रही होगी कि यदि किसी को बुखार है या कोई और छोटी मोटी सीजनल परेशानियां चल रही हैं, तो क्या तब भी वो इस गोली का सेवन कर सकते हैं?
1: जी, ये दो वर्ष से कम बच्चों को नहीं दिया जाता है, गर्भवती महिलाओं को नहीं दिया जाता है, और अगर वह किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं तो उनको नहीं दिया जाता है। बाकी ये सभी प्रकार के व्यक्ति खाना चाहिए, सभी उम्र के व्यक्तियों को खाना चाहिए।
2: जी, मेरा प्रश्न ये है कि जो फाइलेरिया से बचाव की गोली है, ये क्या फाइलेरिया ग्रसित व्यक्ति ही खा सकता है या स्वस्थ व्यक्ति को भी खानी चाहिए?
0: जी बताइए।
1: ये संक्रमित और असंक्रमित दोनों प्रकार के व्यक्ति खा सकते हैं और इनको साल भर में एक बार अवश्य सेवन करना चाहिए।
0: जी डॉक्टर साहब की तरफ से, ये भी हमारे कार्यक्रम की तरफ से आपको जरूर जाननी चाहिए कि यदि फाइलेरिया हो चुका है तो दवाओं के माध्यम से इसे उसी स्टेज पर रोका जा सकता है, इसलिए बचाव की गोली खानी जरूरी है आप सभी के लिए। और डॉक्टर साहब, इसी के साथ साथ हम ये भी जानना चाहेंगे कि क्या फाइलेरिया से बचाव की गोली जब भी हमें किसी को संक्रमित व्यक्ति है वो भी खा ले या सिर्फ जो स्वस्थ व्यक्ति हैं वही खाएं, दोनों के लिए कितनी फायदेमंद है ये?
1: ये दोनों के लिए फायदेमंद है। अगर कोई संक्रमित है इससे, तो वह उसी स्थान पे उसको दूरगामी प्रभावों से रोका जा सकता है, और इसको नहीं है उसको उसके बचाव के लिए ये उपाय है हमारे लिए,
0: तो दोनों को ही खानी चाहिए।
1: और अगर किसी को गंभीर बीमारी है, अगर उनको कोई भी शक है कि हम ये खाएं या ना खाएं, तो वह हमारे निकटतम स्वास्थ्य केंद्र पर जाके वो वहां पे उनके चिकित्सा उपचार ले सकते हैं और उनसे परामर्श ले सकते हैं,
0: अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं।
1: जी,
0: और डॉक्टर साहब, एक
3: क्या फाइलेरिया की बार खा लेने से साल में पूरे साल इससे बचा जा सकता है?
0: बताइए।
1: जी नितिन जी, एक बार अगर आप सेवन इसका कर लीजिए तो इनके दूरगामी प्रभावों से बचा जा सकता है।
0: आज हम बात कर रहे हैं फाइलेरिया विषय पर और हमारे साथ हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की तकनीकी सलाहकार डॉक्टर सारिका सिंह जी। और डॉक्टर साहब, हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये जो उन्मूलन का अभियान है इसमें जन सामान्य से किस तरह के सहयोग की अपेक्षा हम कर सकते हैं?
1: ये जब अभियान चलता है हम सभी से यही बोलेंगे कि आप कृपया उनका सेवन अवश्य करें, जब हमारे स्वास्थ्यकर्मी उनके घर जाते हैं तो उनका सहयोग, उनमें सहयोग प्रदान करें और अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित करें, इसका सेवन करना बहुत आवश्यक है जिससे हम इनका उन्मूलन कर सकें।
0: जी, और डॉक्टर साहब, एक चीज और बहुत जरूरी जानकारी है जो इससे रिलेटेड हमारे दर्शकों को जरूर मिलनी चाहिए कि क्या फाइलेरिया रोग किसी खास वातावरण, मौसम या उम्र में ही होता है?
1: नहीं, इसके फाइलेरिया के जो कीटाणु है वह किसी उम्र या वातावरण से संबंधित नहीं है, या किसी भी समय और किसी भी मौसम में हो सकता है और किसी भी उम्र के लोगों को हो सकता है। यह विशेषता, इसके जो कीटाणु हैं वह शरीर में जो रक्त प्रवाह है उसमें वह रात में 10 बजे से लेके 2 बजे तक ज्यादा परिलक्षित होते हैं। अच्छा। तो जब किसी का कोई भी, अगर किसी को जांच करानी होती है तो वह उनका जो ब्लड का सैंपल है वह रात में ही लिया जाता है।
0: अच्छा। जी जी, रात के 10 बजे से 2 बजे तक ज्यादा।

0: सबसे ज्यादा दिखते हैं जी जी।
1: और मेरा डॉक्टर साहब से ये सवाल है कि क्या फिलेरिया की कोई होम्योपैथिक दवा भी है?
2: जी बताइए।
0: इसके लिए मैं आपसे यही आग्रह करूंगी कि आप अपने निकट के चिकित्सा स्वास्थ्य केंद्र पर जाइए और वहाँ पे आप चिकित्सकीय सलाह लीजिए
2: जी।
3: श्रोताओं, आज के इस विशेष कार्यक्रम में हमने फाइलेरिया रोग के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी को प्राप्त किया। श्रोताओं, हमने जाना है फाइलेरिया एक गंभीर बीमारी है, इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। हमें हमारे नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर इसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहिए और इसकी गोली को अवश्य खाना चाहिए। तो श्रोताओं, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। सुनते रहिए रेडियो टंट्या भील 90.8 FM झाबुआ की आवाज पर।
4: बीमारियों पर कम करेंगे खर्चा, हम करेंगे सेहत और स्वास्थ्य पर चर्चा।
5: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
6: किसान का पुत्र हूँ, खेती करना मेरा कर्म है, अपने साथ दूसरों का पेट भरना मेरा धर्म है। खेती से बदलता भविष्य, नवीन खेती के माध्यम से दिखता सुनहरा भविष्य, खेती से सक्षम होता किसान, नवीन तकनीकें बदलती खेती का रुख। किसान साथियों, एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं आप सभी का खेतीबाड़ी कार्यक्रम में। खेतीबाड़ी कार्यक्रम के माध्यम से रेडियो टांटिया भील 90.8 FM का यही प्रयास रहा है कि हमारा जो किसान है अपनी आय को दुरुस्त करें और अपनी आजीविका को सशक्त बनाने हेतु अपनी कृषि में पर्यावरण के अनुसार बदलाव करें। साथ ही केवीके और कृषि विद्यालयों के माध्यम से भी नवीनतम कृषि तकनीकों का, नवीनतम कृषि पद्धतियों का प्रशिक्षण ले सकता है और अपने खेतों में वह उसका प्रयोग करके अधिक से अधिक उपज ले सकता है। तो किसान साथियों, आपका ज्यादा वक्त ना लेते हुए आज के इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं और आज का जो हमारा कार्यक्रम है वह है मोटे अनाज की खेती। जी हाँ किसान साथियों, आज के कार्यक्रम में हम जानेंगे किस तरह के कैसे हम मोटे अनाज की खेती करके अधिक से अधिक मुनाफा ले सकते हैं। कार्यक्रम को शुरू करने से पहले आइए डालते हैं एक नजर इस रिपोर्ट पर।
7: महामारी ने हम सबको अपने शरीर और सेहत का ध्यान रखने की सीख दी। अब हम सभी अपनी इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में लगे हैं। लेकिन इसके लिए हमें अपने खानपान में थोड़ा बदलाव लाना होगा, मोटे अनाजों को भोजन में शामिल करना होगा और मोटे अनाज हमें पर्याप्त मात्रा में मिल सके इसके लिए इसकी खेती पर ध्यान देना होगा। मोटे अनाज के फसल उत्पादन के साथ ही इनके मूल्य संवर्धन और खाद्य प्रसंस्करण पर भी ध्यान दिया जाना जरूरी है। हालांकि इस तरह के अनुसंधान किए जा रहे हैं जिससे मोटे अनाजों का आसानी से मूल्य संवर्धन किया जा सकता है, साथ ही किसानों को इनके प्रसंस्करण की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और भारतीय कदन अनुसंधान संस्थान ने मोटे अनाजों पर कई खाद्य प्रौद्योगिकियां विकसित की हैं और कई स्टार्टअप व उद्यमी इन प्रौद्योगिकियों के जरिए मोटे अनाज के प्रचार प्रसार व अपने अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा रहे हैं। ICMR भारतीय पौष्टिक धान्य अनुसंधान संस्थान हैदराबाद ने मोटे अनाजों से विविध पौष्टिक व्यंजन बनाने की मूल्य वर्धित प्रौद्योगिकियां विकसित की हैं। मोटे अनाजों में बाजरा, ज्वार, रागी, कांगनी, कोदो, कुटकी, चीना, सांवा, ब्राउन टॉप मिलेट, टेफ मिलेट और फोनियो मिलेट आते हैं। लोगों के खान पान की आदतों में आए बदलाव और स्वास्थ्य कारणों से मोटे अनाजों से बनाए जा रहे खाद्य पदार्थों की मांग भी तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में मोटे अनाजों का प्रसंस्करण कर कई तरह के उत्पाद बनाकर लाभ कमाया जा सकता है। महिलाएं स्वयं सहायता समूह बनाकर मोटे अनाज से कई तरह के उत्पाद बना सकती हैं। जौ, बाजरा और रागी से बिस्किट, चिप्स और नमकीन आदि बना सकते हैं। मोटे अनाज से छोटे बच्चों के लिए भी भोजन बनाया जा सकता है। मोटे अनाज में मूल्य संवर्धन करके इनसे रोटियां भी बनाई जा सकती हैं और इन रोटियों को करीब 6 महीने तक इस्तेमाल किया जा सकता है। ज्वार से चॉकलेट, मफिन्स, पानी पूरी, बर्फी और समोसा बना सकते हैं तो बाजरे से मुठिया, लड्डू और रागी से बालूशाही और पकौड़ी बनाई जा सकती है। मोटे अनाज से अलग अलग उत्पाद बनाने के लिए आप नई नई तकनीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। शुरू में व्यवसाय की शुरुआत छोटे स्तर पर करके बाद में बाजार मांग के अनुसार व्यवसाय का विस्तार किया जा सकता है। पोषक तत्वों से भरपूर मोटे अनाज न सिर्फ आपकी सेहत को दुरुस्त करते हैं बल्कि किसानों की आमदनी को

0: पदार्थ मिलते हैं, मगर अभी जब हम मोटे अनाज या पोषक अनाज देखते हैं, खाली केवल हमारे को सूजी मिलती है, नहीं तो आटा मिलती है, बस ये दो ही था, दो ही है। तो इससे हटकर हम अगर प्रसंस्करण करते गया तो हाँ, उसमें डाइवर्सिफाई करते, जैसे हम बोलने लग गए तो आप इसको सूजी बनाए तो इसमें से इडली बन सकता है, रोटी में जो कमियां हैं जो रोटी में, क्योंकि इसमें हम ये जानना चाहते हैं कि आप लोग जानना चाहते हैं कि इसमें ग्लूटन बोल के एक प्रोटीन नहीं रहती है जिसमें गेहूं में रहती है, उससे क्या होता है चिकटपन आता है, और
1: जी
0: चिकटपन नहीं रहता इसमें। सो इसलिए तो आपको अभी थोड़ा विवरण देना है, तो इसमें स्टार्च को मैनिपुलेट करते हैं, तो
1: जी
0: इसलिए
1: जी
0: गर्म पानी मिला के, गर्म पानी मिलने से इसका चिकटपन बढ़ती है, जब
1: जी
0: चिकटपन आती है तब रोटी बनाने में मुश्किल आसानी हो जाता है,
1: जी जी
0: तो तभी बनती है। मगर ये इतना काम, इतना टाइम, इतना स्किल मॉडर्न वुमेन के पास, औरतों के पास नहीं है, क्योंकि वो भूल चुके हैं। तो इसलिए तो क्यों कंज्यूमर को, विनियोगदार को, वाई वी शुड उनको क्यों इतना तकलीफ देना है। तो इसको अगर प्रसंस्करण के द्वारा हम इसको डाइवर्सिफाई करें, जैसे आपको सूजी बन गए तो उसमें से सूजी के साथ दलिया भी बन सकता है, खिचड़ी
1: जी
0: बन सकता है, या इडली बन सकता है, या कोई और कई तरह से डोसा बन सकती है, कई चीज बन सकता है। उसके अलावा अगर फ्लेकिंग है, और एक तकनीक है, तो उससे भी
1: जी
0: फ्लेक्स पोहा बन गए तो उससे ब्रेकफास्ट सीरियल्स भी बन सकता है, ब्रेकफास्ट फूड्स, बेकिंग जैसे बिस्किट बनती है, केक बनती है,
1: जी
0: तो ऐसे डाइवर्सिफाई करके एक्सट्रूडेड प्रोडक्ट्स है, जैसे
1: बिल्कुल
0: कुरकुरे बोलते हैं उस टाइप के, वर्मिसेली होगा, पास्ता होगा, ये सारे चीज इसका डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी से
1: बिल्कुल डॉक्टर, आप
0: इसलिए
1: जैसे
0: किया।
1: कि आपने बताया कि जिस पोषक अनाज की हम बात कर रहे हैं, मोटे अनाज के बारे में, तो पूर्वज तो हमारे इस्तेमाल करते थे उस वक्त, तब हमारे यहाँ चावल और गेहूं का इस स्तर का प्रचलन नहीं था, या फिर स्तर पर उसका उत्पाद नहीं हो पाता था, और इतने अधिक विकल्प नहीं थे। लेकिन आज के समय में हम ये समझ रहे हैं कि भले ही हम निर्भरता हमारी बढ़ती जा रही है गेहूं और चावल पर, लेकिन अगर हम पोषण की बात करते हैं तो मोटे अनाज का कोई सानी नहीं हो सकता है। इसीलिए इसमें किस तरह से संवर्धन किया जा सकता है, किस तरीके से इसे वैसा बनाया जाए जो कि आम लोग इसे इस्तेमाल कर सके, आसानी हो, और अलग अलग रूप में इसे हम अपने किचन में रख सके और इसका इस्तेमाल कर सके, उपभोक्ता इसके पोषक तत्वों का लाभ ले सके। विनीता जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि जैसा कि एक ये भी चीज बहुत बड़ी है कि ये तो जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि ये हमारे यहाँ तो खान पान का हिस्सा था, लेकिन आज के समय में हम वहां पहुंच गए हैं जब हमें इसको पॉपुलराइज करने के लिए, इसकी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए फिर से सोचना पड़ रहा है, फिर से कदम उठाने पड़ रहे हैं सरकार को, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे?
2: सबसे पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद करना चाहूंगी कि मुझे यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म में इनवाइट किया है। जैसे आपने बताया कि हाँ, हमारे शुरू के पुराने समय की, जब हम अपने पूर्व बुजुर्गों की बात करते हैं, तो उस टाइम मिलेट्स हमारे खाने, जो मोटा अनाज था, हमारे खाने पीने का एक बहुत अहम हिस्सा था। और इससे पहले मैं यही भी आपको बताना चाहूंगी कि जो भारतवर्ष है, संसार वर्ल्ड में हम विश्व में नंबर वन है इसका प्रोडक्शन। और अगर मैं इसकी एक्सपोर्ट की बात करती हूँ, क्योंकि जब हम मार्केटिंग की बात कर रहे हैं, तो ना केवल इंडिया के अंदर, भारत के अंदर हम इसको पॉपुलराइज कर रहे हैं, बल्कि हम इनको अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी लेके जा रहे हैं, जहां पर इसकी बहुत ही अच्छी डिमांड है। और इसका एक रीजन जो मैं बताना चाहूंगी, जो इसकी गुणवत्ता और जो इसकी क्वालिटीज हैं, जो इसमें न्यूट्रिशंस है, वो इसको बहुत पॉपुलर बना रहा है, स्पेशली आज के समय में, कोविड के दौरान के समय में, जब लोगों में अब ये एक समझ आ गई है कि हमें किस तरह के अनाज का चयन करना
1: जी,
2: है,
1: जी, जी।
2: तो उसी हिसाब से इस तरह से ये मिलेट्स जो है वो बहुत आगे हमारे अंतर्राष्ट्रीय पटल में भी बहुत अच्छी भूमिका निभा रहा है। और जो इसकी जो डिमांड है, अगर मैं कहूं तो आज के दिन में अगर हम एक्सपोर्ट के आंकड़ों के हिसाब से भी बात करते हैं, तो इसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है। लास्ट ईयर के हिसाब से हमने 15% की ग्रोथ मिली है। और इसका और इस कोविड के दौरान में इस इन प्रोडक्ट्स की तरफ जो ना केवल भारत के उपभोक्ता, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार के उपभोक्ताओं ने इसकी डिमांड को, इसकी वैल्यू को समझा है, और इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है। तो अभी अगर हम बात करें कि अगर हम किस तरह से हम इसको प्रमोट कर सकते हैं, क्या हम चीजें रहते हैं, इसमें जो भारत सरकार ने कदम उठाए हैं, तो मैं उसके बारे में आप आपको बताना चाहूंगी, क्योंकि

0: जैसे कि डॉक्टर दयाकर राव ने बताया कि जो इसकी प्रोसेसिंग की बात करी कि इजी टू कुक अगर हम बात करते हैं, तो आज के जमाने में हम जब एक्सपोर्ट कर रहे हैं, निर्यात इसका कर रहे हैं, तो ना केवल हम उसको एज ए कमोडिटी कर रहे हैं, एक मतलब इन सीधा अगर हमें बाजरा या ज्वार एक्सपोर्ट करना वो तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन जितने भी हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके R&D के एफर्ट्स से हम आज के दिन में हम लोग रेडी टू ईट प्रोडक्ट्स कर रहे हैं, ब्रेकफास्ट सीरियल एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कर पा रहे हैं, और बिस्किट्स है और केक्स हैं, इस तरह की जो प्रोडक्ट्स हैं,
1: केक वगैरह भी बना सकते हैं।
0: हाँ बिल्कुल बना सकते हैं, क्योंकि जब रागी का अगर मैं एग्जाम्पल आपको दूं, रागी जिसे हम अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, अगर हम उसकी बात करेंगे तो उससे हमारा डोसा भी बन रहा है, इडली भी बन रही है, नमकीन भी बनती है, पापड़ भी बनता है, और केक्स भी बन रहे हैं, बिस्किट्स भी बन रहे हैं। तो इस तरीके से मीन्स जो ये लोगों की जब जैसे जैसे इसका अवेयरनेस बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे इसकी डिमांड भी इंटरनेशनल मार्केट में भी बहुत बढ़
1: रही है। बिल्कुल, यानी विनीता जी आप ये कह सकते हैं कि आज के समय में जरूरत यह है कि हम अपने स्वाद के अनुसार या फिर जो हमारी जीभ को भाए उसे ही हम खाएं, उसी का सेवन करें, वो समय जा चुका है। अब आपको अपने स्वास्थ्य के बारे में बहुत सोचने की जरूरत है, और ऐसी चीजों का आप सेवन करें जो आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर हो, आपकी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएं। और इस बात को न सिर्फ हमारे देश में समझा जा रहा है बल्कि विश्व भर में इसका प्रचार प्रसार हो रहा है। यही वजह है कि हमारे देश में जो मोटे अनाज की पैदावार थी उसे बढ़ाने पर भी फोकस दिया जा रहा है, और इनकी मांग भी बीते कुछ समय में बढ़ी है। लेकिन और कौन कौन से एरियाज हैं और कौन कौन से सेगमेंट हैं जहां पर इसकी मांग को और बढ़ाया जा सकता है, जहां पर अभी हमारी पहुंच नहीं हुई है, तो इसे किसानों के लाभ से कैसे जोड़कर देखा जा सकता है, उस पर भी मैं विनीता जी आपसे बात करूंगी। लेकिन अभी बात करते हैं दयाकर जी से। दयाकर जी, जैसे कि आपने बताया कि जो मोटे अनाज की गुणवत्ता क्या है ये तो हम सब समझ रहे हैं और इसके बारे में जागरूकता भी काफी फैल रही है, लेकिन ये भी एक व्यवहारिक समस्या आती है कि इसका सेवन कर पाना और इससे बनी चीजें बना पाना बहुत आसान नहीं होता है रसोई घर में। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कठिनाई और चुनौती रहती है। तो किस तरह के प्रसंस्करण किए जा रहे हैं, और मैं चाहूंगी कि अगर आप अलग अलग फसलों के अनुसार बताएं, अलग अलग अनाज के बारे में बताएं कि किस तरह के चरण इसमें अपनाए जा रहे हैं।
2: अभी मैडम जो बताए हैं अलग तरह से, कभी अभी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च के द्वारा हम केवल प्रसंस्करण का डाइवर्सिफिकेशन ही कराए, मगर उसके अलावा रेसिपी बनाने में भी हम बहुत ही प्राप्त हुआ है। अभी लगभग 500 रेसिपीज जैसे राय चावल और गेहूं में जो बनती है वो सारे अभी मिलेट्स में बन सकता है, क्योंकि अभी इसमें जो गुण नहीं है, ग्लूटेन प्रोटीन नहीं है, तो भी उसमें स्टार्च मैनिपुलेशन करके इसका इनोवेटिव तरीके से इसको बनाया। अभी जैसे रोटी बनती है, अभी आजकल रोटी भी मल्टीग्रेन के रूप में आती है, फिर बिस्किट्स बनती है, कुकीज बन सकते हैं, या आपको केक्स बन सकता है, या कई तरह से बेकिंग टेक्नोलॉजीज में भी हम उपलब्ध होके आगे आ रहे हैं। काफी स्टार्टअप कंपनीज इसका कमर्शलाइज करके आगे ले चल रहे हैं ताकि कंज्यूमर को इसको उपलब्ध करने में, तो ना केवल ये अर्बन एरियाज में जैसे कुरकुरे या कई और तरीके से पोहा या पफिंग पॉपिंग, ये सारे तकनीकियां आगे अभी उसमें उसका टेक्नोलॉजी से उपलब्ध है। मगर इसके अलावा हम ये सोचते हैं ये अर्बन प्रोडक्ट ना रहे, ये रूरल प्रोडक्ट भी रहे, ताकि अपने किसान भाई लोग, अपने घरेलू संस्थाएं सारे लोग इसको खाएं, और इसका जो भी है हेल्थ मीट्स टेस्ट, ये दोनों को मिलाकर इसका जो भी इंटरवेंशन कर चुके हैं उसको, उससे ये लगता है कि इसका कंज्यूमर एक्सेप्टेबिलिटी भी अच्छा बढ़ चुके हैं, और इसका न्यूट्रिशन भी, हम न्यूट्रिशन के तरफ भी पोषक गुण भी इसमें लॉसेस मिनिमाइज कर चुके हैं, ताकि आपको हेल्थ भी प्राप्त होगा और उसके साथ साथ टेस्ट भी बढ़ सकता है।
1: जी,
2: तो जैसे तो अभी जो चावल और गेहूं में जो बनती है सारे चीज, या कोई ब्रेकफास्ट सीरियल हो सकता है, या मेन कोर्स हो सकता है, या बेवरेज हो सकता है, डेजर्ट हो सकता है, या कोई लस्सी बन सकती है, ऐसे आप बोलो प्रोडक्ट उपलब्ध है अभी। तो इसका प्रयास हम ये कर रहे हैं सभी दुनिया के कोने कोने में ले चले इसका। अभी भारत देश का जो भी आधुनिक या ट्रेडिशनल फूड है उसको दुनिया को परिचय करने का समय आ चुका है, आ चुकी है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, हमें अपनी ताकत को समझना है, अपनी अहमियत, अपनी खासियत को। और ये जो जिन पोषक अनाजों की बात कर रहे हैं, मोटे अनाजों की, ये हमारी अपने आप में खासियत है और इस खासियत को और उभारने के लिए अब ये कदम उठाए जा रहे हैं। और आप जान सकते हैं कि किस तरीके से विश्व स्तर पर इसके महत्व को समझते हुए 2023 को मिलेट ईयर के तौर पर मनाया जा रहा है। अब मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी दयाकर जी कि जिस तरीके से हम कह रहे हैं कि इसका मूल्य संवर्धन या साथ ही प्रोसेसिंग, इससे किसानों को किस तरह से लाभ होगा? क्योंकि अभी भी किसान जो हैं वो प्रोसेसिंग यूनिट से जुड़ने में थोड़ा पीछे हैं, या फिर प्रसंस्करण किस तरीके से किया जाए, अभी भी जो मेजॉरिटी ऑफ फार्मर्स है, जो मेजॉरिटी है वो वही है कि अनाज पैदा किया और मंडियों में बेच दिया। लेकिन इसमें भी एक बदलाव किस तरीके से लाने का प्रयास हो सकता है?
2: बहुत अच्छे प्रश्न आपने पूछा है कि क्योंकि हम जो भी करते हैं किसानों का क्या फायदा है। इससे पहले जो किसान जो इसको बोते हैं वो अपने खाने के लिए, तो उसका ध्यान नहीं देते थे। मगर अब आजकल के जमाने में अभी किसान भाई ने अभी अर्बन एरियाज के लिए या जस्ट दूसरों के लिए ये ग्रो करना पड़ता है, कमर्शियलाइजेशन के लिए ग्रो करना पड़ता है, क्योंकि न्यूट्रिशन पहुंच के बहुत आगे पढ़ते हुए यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन हो गया, तो इसका कमर्शियलाइजेशन शुरुआत हो गया। तो जब ये शुरुआत हो गया तो फार्मर्स को क्या मिल रहा है इसके साथ, ये बहुत बड़ी प्रश्न है। आप जो अच्छी बात पूछे है, अभी फार्मर जो आफ्टर हार्वेस्टिंग जो हार्वेस्ट कर लेता फिर उसमें मार्केट में मंडी में बेच देता था
1: जी,
2: मगर अभी आजकल के जमाने में इसको फार्म गेट वैल्यू एडिशन की जरूरत है। फार्म गेट का मतलब है अपने फार्मर का जो भी, जैसे जो हार्वेस्टिंग कर लिया और उसके बाद दो तीन स्टेप आगे ले चलने के लिए अपना प्रोड्यूस का कुछ उसका फायदा भी लेना है, उसका इनकम भी बढ़ना है, तो उसके लिए प्राइमरी प्रोसेसिंग प्राथमिक प्रसंस्करण की बहुत जरूरी है। जैसे क्लीनिंग हो या ग्रेडिंग हो, स्टोन उसमें पत्थर निकालने हो, और खास करके स्मॉल मिलेट्स में डीहलिंग भी जरूरत है, क्योंकि ज्वार बाजरा और मक्के में वो नेकेड ग्रेन है तो उसका कोई ऊपर का छिलका निकालने की जरूरत नहीं है। मगर अभी और भी जो छोटे दाने हैं जैसे स्मॉल मिलेट्स कहते हैं, जैसे सावा कोड़ो कुटकी, इनका तो ऊपर का छिलका निकालने में डीहलिंग की करने जरूरत पड़ती है। जब डीहल करके भेजने से आपको कम से कम 3 गुना आपका प्रोसेसिंग वैल्यू बढ़ जाता है, तो एनी टाइम 2 टाइम्स एटलीस्ट मिनिमम 2 गुना बढ़ गए तो फार्मर का इनकम बढ़ सकते हैं। तो फार्मर का जो वैल्यू एडिशन प्रसंस्करण के साथ फार्म गेट के लेवल पे ये सारे करके ये भी कर सकता है कि मिलिंग भी कर सकता है, जैसे आटा भी बन सकता है, सूजी भी बन सकता है। इसका फार्मर को कुछ करने के लिए कुछ ट्रेनिंग की जरूरत भी पड़ती है, मशीनरी प्रोवाइड करने की भी पड़ती है।
1: ट्रेनिंग के बारे में आपने कहा, ट्रेनिंग के बारे में आपने कहा डॉक्टर राव, तो मैं इसके बारे में आपसे थोड़ा और विस्तार से जानना चाहूंगी आगे कि वो किसान जो कि इसमें मूल्य संवर्धन प्रसंस्करण के माध्यम से और अधिक लाभ कमाना चाहते हैं, इसके लिए बाकायदा ट्रेनिंग वो कहाँ से ले सकते हैं और ये किस तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, इस पर मैं आपके पास आऊंगी आगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे विनीता जी समझना चाहूंगी, जैसा कि अभी राव साहब ने कहा कि आज के समय में हर कोई चाहता है कि फटाफट चीजें उसे उपलब्ध हो और उसका जल्दी से जल्दी उसे वो कंज्यूम कर सके, तो ऐसे में जब हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात करते हैं और वहां पर तो हम जानते हैं कि विदेशों में प्रोसेसिंग किस स्तर पर है, तो ऐसे में मोटे अनाज को सीधे ऐसे ना बेच करके उसमें वैल्यू एड करके प्रोसेसिंग करके बेचा जाए, तो जाहिर सी बात है बेचा जा भी रहा है तो और अधिक हमारे किसानों तक लाभ पहुंच सकता है, तो इसके किस तरह के मानक है? क्योंकि हम जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक ये भी बहुत बड़ी चुनौती होती है कि जो अंतरराष्ट्रीय मानक हैं उनका ध्यान रखना जरूरी हो जाता है, उन स्टैंडर्ड्स को आप पीछे नहीं रख सकते।
0: नहीं, आपने बिल्कुल सही बात बोली, जो कि हमें जब हम वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स की बात करते हैं और मोटे अनाज में जब वैल्यू एडेड के प्रोडक्ट है, तो पहला चैलेंज ये है कि हमें वहां पर प्रमोट करना है, और प्रमोट करना है तो उस एक्सपोर्ट की सप्लाई चेन में जो क्वालिटी है उसका ध्यान रखना जो बहुत जरूरी है, और जो स्टैंडर्ड्स हैं, तो आज के समय में अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं मोटा अनाज और जो मिलेट्स जिनको हम कहते हैं, आज के दिन में कोई एक्सपोर्ट के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन जब हमारे एक्सपोर्टर्स किसी भी कंट्री में किसी भी देश में अगर उसका निर्यात कर रहे हैं तो उनको हम ये समझाते हैं कि हमें पहले उस आयातक कंपनी जो देश है उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, क्या स्टैंडर्ड्स हैं, उसको फॉलो करते हुए उनको वो सारी रिक्वायरमेंट्स पूरा करें जो उनके क्वालिटी पैरामीटर्स हैं उनको पूरा करके तभी वो एक्सपोर्ट करें, क्योंकि तभी वो एक्सेप्ट होगा इंटरनेशनल मार्केट में। तो इस तरह का के जो हमें हम इसके लिए उनको डिफरेंट सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम करते हैं, अगर कभी भी हमारे पास कोई रिक्वायरमेंट आती है कि इम्पोर्टिंग कंट्री में पर्टिकुलर किसी एक प्रोडक्ट को भेजने के लिए कोई रिक्वायरमेंट है, सपोज फॉर एग्जाम्पल हम सऊदी अरेबिया की बात करते हैं, तो वहां पर कोई भी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट, कोई भी प्रोसेस फूड प्रोडक्ट अगर हमें एक्सपोर्ट करना है तो हमें सर्टिफिकेट ऑफ कन्फर्मिटी लेनी होती है, जो कि इसके लिए
1: ये कहां से मिलता है, मतलब
0: ये मैं बताना चाहूंगी कि इसके लिए उन्होंने, मैं सऊदी अरेबिया का ही एग्जाम्पल लेके चल रही हूँ आगे, तो उन्होंने ऑलरेडी एक डेजिग्नेटेड एजेंसीज बनाई हैं जिनके थ्रू हमें लेना होता है। तो हमारा रोल एपेडा का ये रहता है कि हम अपने एक्सपोर्टर्स को सेंसिटाइज करते हैं कि आपको इन इन पैरामीटर्स की ये नई रिक्वायरमेंट इम्पोर्टिंग कंट्री की आई है, आप इसको फॉलो कीजिए और उसके हिसाब से अपनी क्वालिटी प्रोड्यूस को वहां पर एक्सपोर्ट कीजिए। बिकॉज क्वालिटी इज अ मेन चैलेंज इन द इंटरनेशनल मार्केट।
1: जी बिल्कुल, और क्वालिटी जैसा कि आपने बताया कि बड़ी चुनौती रहती है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, अगर आप जाना चाहते हैं और उस वहां पर और विकल्प तलाशना चाहते हैं और अवसर चाहते हैं, तो क्वालिटी के साथ यानी गुणवत्ता के साथ आप किसी तरह का समझौता नहीं कर सकते हैं। और साथ ही साथ मोटे अनाज की बात करें तो इसमें इसकी आयु कैसे बढ़ाई जाए, यानी जो इसकी शेल्फ लाइफ है उस पर भी काम लगातार किया जा रहा है, ये भी एक समस्या आती है, तो इस पर भी मैं विस्तार से जानना चाहूंगी डॉक्टर राव से। और साथ ही ट्रेनिंग प्रोग्राम किस तरह के हैं, कैसे इनसे किसान या फिर वो नए युवा जो कि मोटे अनाज के दिशा में अपना भविष्य तलाशना चाहते हैं, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट में अपना आगे करियर बनाना चाहते हैं और मोटे अनाज से भी जुड़ा रहना चाहते हैं, उनके लिए किस तरह के विकल्प है?
3: मोटे अनाज की खेती में संभावनाएं अपार है। जी हाँ किसान साथियों, मोटे अनाज जो कि पौष्टिक अनाज के नाम से भी अभी जाना जाने लगा है, उसमें भरपूर मात्रा में रोग प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, इससे हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। तो किसान साथियों, मोटे अनाज की इस खेती में और क्या क्या संभावनाएं बन सकती है, आने वाले समय में यह मोटा अनाज कैसे फायदेमंद हो सकता है, इनसे जुड़ी हुई और भी महत्वपूर्ण जानकारियों को हम इस खेतीबाड़ी कार्यक्रम के माध्यम से जानेंगे। तो किसान साथियों, अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ रेडियो टांडिया भील 90.8 FM के साथ छावा की आवाज पर।
4: आप सुन रहे हैं छावा का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आप रेडियो आपकी बातें।

0: સ્ટેશન રેડિયો ટાંટિયા ભીલ 90.8 FM. આપણો રેડિયો આપણી વાતે.
1: ब्रेक के बाद एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं आप सभी का खेती बाड़ी कार्यक्रम में. आप लगातार मोटे अनाज की खेती को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं किसान साथियों, किस तरीके से मोटा अनाज आने वाले समय में हमें एक अच्छी आमदनी दे सकता है, अच्छी उपज के साथ कैसे हम हमारी आजीविका को सशक्त बना सकते हैं. तो किसान साथियों आइए शुरू करते हैं.
2: पोषण सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है. सरकार इसीलिए इस दिशा में लगातार कदम उठा रही है और साथ ही न सिर्फ उपभोक्ताओं को बल्कि किसानों को भी प्रोत्साहित कर रही है कि वो मोटे अनाज की खेती करें और उपभोक्ता ऐसे जो प्रोडक्ट है, जैसे उत्पाद है, उनका सेवन करें. हमारे साथ डॉक्टर राव जी हैं. ब्रेक से पहले सर, जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे कि ट्रेनिंग प्रोग्राम यानी प्रशिक्षण प्रोग्राम किस तरह के मोटे अनाज के प्रसंस्करण को लेकर के भी, और मैं साथ ही ये भी जानना चाहूंगी कि क्या जो युवा है, जो स्टार्टअप आज के समय में नए नए आ रहे हैं और कृषि स्टार्टअप को काफी प्रोत्साहित किया जा रहा है, क्या इसमें भी किसी तरह की संभावना है?
3: बिल्कुल मैडम, ये तो बहुत अच्छी बात है. जैसे जबकि जो ज्ञान पाते हैं उसको ज्ञान किसानों भाई को पहुंचना और कई और स्टेक होल्डर्स रहते हैं इसमें, उन लोगों को भी पहुंचना बहुत जरूरी है. पिछले लगातार 12 साल से जो काम किया है और ये प्रसंस्करण के ऊपर और ये मूल्य वर्धन करते हुए आगे चलते हुए ये जो स्केलिंग या पायलटिंग करके उसको अपस्केलिंग कर रहे हैं, मगर इसका पूरा ज्ञान के लिए उनको ट्रेनिंग देने के लिए काफी हम लगभग पूरे स्टेट से काफी स्टेक होल्डर्स हमारे पास आते हुए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च में हम इसका प्रोविजन कर चुके हैं ताकि लोगों को तक पहुंच गए तो जो भी ज्ञान है जिसको जरूरत है, जैसे SHG ग्रुप हो या फार्मर्स हो या रूरल एंटरप्रेन्योर्स हो या अर्बन स्टार्टअप्स हो, इन सब स्टेक होल्डर्स को अलग अलग से अलग तरह से ट्रेनिंग प्रोग्राम होती है. नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के अंदर लगातार 14 स्टेट्स को इसको अभी तक कम से कम 25,000 लोगों का ट्रेनिंग हो चुकी है. अभी 2023 आने वाले अंतर्राष्ट्रीय का जो मिलेट ईयर साल घोषित किया गया है उसके उन सिलसिले में हम इसको स्केल अप करके कर रहे हैं. ना ही बल्कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च, बट हम ये भी देख रहे हैं कि CFTRI है हमारा, निफ्टम वाले है भाई लोग फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग, और तंजावुर सोनीपत और तंजावुर में दो स्थान में है, और काफी स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में भी उन भी लगातार इसके ऊपर ध्यान देते हुए पूरा ट्रेनिंग का काम चल रहे हैं. खास करके फार्मर्स के लिए फार्म गेट वैल्यू एडिशन के लिए अभी काफी एजेंसीज भी आ रहे हैं, NGOs भी आ रहे हैं, मगर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च पे सेंटर ऑफ एक्सेलेंस है जहाँ कि आप पूरे देख सकते हैं सारे प्रसंस्करण क्या किया है, कैसे इसको डेवलप कर चुका है, कैसे पायलट कर लिया, कैसे स्केल अप कमर्शलाइज कर लिया. इसका ज्ञान बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका मिलेट प्रोसेसिंग जो है वो अलग है, जैसे गेहूं और चावल का नहीं होता है, तो वो क्या है, क्या फर्क है, ये सारे चीज उनको बताना है. और इसके अलावा आप ये भी पूछा है हमें शेल्फ लाइफ, इसका शेल्फ लाइफ कैसे बढ़ाना है. शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए भी अभी उससे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ किस तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम इनके लिए उपलब्ध है. तो महिलाओं के लिए या गांव वालों के लिए या किसान भाई लोगों के लिए हम अलग तरह से, क्योंकि उनका जो भी प्रोडक्ट वैल्यू एडिशन करते हैं मगर उनको ये ज्ञान नहीं है कि जैसे करते टाइम पे इसका न्यूट्रिशन लॉसेस नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका नाम है अनाज, पोषक अनाज है. जैसे करे अभी पर राइस को या चावल को पॉलिश करते हैं वैसे ही ये मोटे अनाज को कर लिए तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है. तो उनको ये ध्यान देना पड़ेगा कैसे क्या करने से इसका वो जो मूल्य वर्धन बढ़ती है या न्यूट्रिशन का न्यूट्रिएंट रिटेन कर सकते हैं और किस तरह से प्रोसेसिंग से उसका न्यूट्रिशन बढ़ सकता है और उसका शेल्फ लाइफ कैसे बढ़ाना है, उसका ब्रांडिंग कैसे करना है, अपना प्रोडक्ट्स को क्या क्या क्या किसका मार्केट अच्छा है गांव शहर वालों के लिए, सो इसका पैकिंग कैसे कर सकते हैं, ये सारे चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन सब चीज में एंटायर वैल्यू एडिशन के ऊपर हम ट्रेनिंग देते हैं इन लोगों के लिए, तो ये चीज है। दूसरी चीज है, आप शेल्फ लाइफ के बारे में बोला था, ग्रेन्स का शेल्फ लाइफ है, जैसे बाजरा, ज्वार, रागी जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन में डिस्ट्रीब्यूट होता है आजकल, अभी उसका ज्यादा स्केल अप हो रहा है क्योंकि गवर्नमेंट प्रधानमंत्री के द्वारा, उनका कॉल के द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड डिस्ट्रीब्यूशन वाले भी लगातार करते हैं। अभी इससे पहले चावल, गेहूं है, अभी ये मिलेट्स को भी इंट्रोड्यूस करने के लिए, तो उसका शेल्फ लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रागी खास करके आपको 9 महीने तक रहता है, ज्वार बाजरा कम से कम 6 महीने तक रहता है ग्रेन, तो ये शेल्फ लाइफ। मगर हम उसको आगे बढ़ाने के लिए, कोई हम रिसर्च ज्ञान बढ़ाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं दूसरे इंस्टीट्यूट के साथ, और वो तो ग्रेन के बारे में बोल रहा था, मगर अभी फ्लोर है, फ्लोर का मतलब है आटा है,
2: आटा जी,
3: ज्वार का आटा ये 1 महीने में भी नहीं रहता है, उससे कम ही रहता है क्योंकि उसके ज्यादा फैट रहता है, रैंसिड बन जाता है जल्दी, तो उसका शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए हम इंटीग्रेटेड शेल्फ लाइफ मैनेजमेंट के द्वारा पूरा मिला के पूरा तकनीकियां मैनेजमेंट करके, इंक्लूडिंग पैकेजिंग का भी, कैसे कौन सी पैकेजिंग में कर दी, तो कम से कम 3 महीने तो आने के लिए कोशिश जारी है
2: जी जी।
3: मगर एक्सपोर्ट मार्केट के लिए वैक्यूम पैकेजिंग करने से एक्सपोर्ट उसका शेल्फ लाइफ बढ़ता है 6।

0: उसका पूरा हम एपिडा के साथ काम कर रहे हैं। एपिडा ने बड़ा प्रोजेक्ट हमें दिया है ताकि हम डोमेस्टिक मार्केट्स पूरा डेवलप करें।
1: बिल्कुल, मैं विनीता जी से बात करती हूँ, जैसा कि डॉक्टर राव ने अभी बताया
0: ले जाने के लिए।

0: हुडा के माध्यम से किसानों तक पहुंच रही है और किसान उसी के अनुसार खेती कर रहे हैं। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगी कि किस तरीके से जो उपलब्धता को बढ़ाने के साथ साथ जो एक मांग है उसको क्रिएट करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं कि जो मोटे अनाज या पोषक अनाज है इनकी उपलब्धता किस तरह से सुनिश्चित की जा रही है बाजार में और उसी के अनुसार उसकी मांग भी बनी रहे, ये कैसे सुनिश्चित किया जा रहा है?
1: ये बहुत ही अच्छी प्रश्न है मैडम। अभी जो ये जो फार्मर जो होता है किसान भाई, इससे पहले उगाता है कि अपने खाने के लिए, मगर अभी ऐसे अपने खाने के लिए छोटे छोटे लैंड होल्डिंग रहता है, एक एकड़ या हाफ एकड़ में कहीं इसको बोते थे, तो अभी हाफ हाफ एकड़ लोगों को एग्रीगेट करना है, बल्किंग करना है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो बहुत ही महत्वपूर्ण है जब इसको कमर्शलाइज करना है और आगे ले चलते हुए अंतर एक्सपोर्ट मार्केट बढ़ाने के लिए, तो अभी हमारे सामने एक अच्छा है प्रधानमंत्री जी, एक 10,000 FPOs क्रिएट करने का जो प्रयास कर रहा है उससे काफी फायदा होने वाला है, क्योंकि अभी अलग अलग फार्मर्स उसका बार्गेनिंग कैपेसिटी बहुत कम होती है। जब ये मिलकर आते हैं फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, उनको ज्ञान भी इजी तरह से, अब जब ट्रेनिंग भी देना है अलग अलग फार्मर के वजह से FPO को दिए, तो वो ट्रेनर्स बन जाएंगे, वो अपने इंडिविजुअल किसान भाई लोगों को वो ज्ञान प्राप्त पास ऑन करेंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वालिटी मेंटेनेंस राइट जो अभी फार्म लेवल करते हुए गए, तो जैसे एक्सपोर्ट क्वालिटी का प्रोड्यूस का क्या महत्वपूर्ण होगा, उससे उनका आमदनी कितने आय कैसे बढ़ेगा, ये सारे पहलू लेकर आगे चलने में बहुत ही हम इसका कुछ टाइम लगेगा जरूर, बट एक अच्छी दिशा में अभी चल रहा है, क्योंकि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन कई राष्ट्रों में मिलेट फोकस होके जा रहे हैं। गवर्नमेंट ने हमें कुछ FPOs बनाने के उसको मॉडल करने के लिए दिया है, ताकि वैल्यू चेन बिल्डअप करे, ताकि एक्सपोर्ट मार्केट डोमेस्टिक मार्केट्स को इसको कनेक्ट करे, ब्रांडिंग लेबलिंग इसका ट्रेनिंग भी दे। तो अभी ये प्रयास में लगभग 7 राज्यों में हम शुरुआत किया है और इसको स्केल अप करने वाले हैं, ताकि ये अपीडा के साथ भी जोड़ लिए ताकि इसको आगे ले जाता है, क्योंकि हम अगर कमर्शियलाइजेशन करने के बाद एक्सपोर्ट मार्केट कंटिन्यूस रहना है, अब कंटिन्यूस रहना कमर्शियलाइज करना, कभी क्रॉप फेल हुआ एक राज्य में तो हमारे लिए पूरा वो इन्फॉर्मेशन जारी रहना चाहिए, कौन सी राज्य है, दूसरा प्लान बी क्या हो सकता है, कहाँ से वो सोर्स करेंगे, कहाँ से स्टार्टअप कंपनी। इस बीच में स्टार्टअप लोगों को लाके लेके आया हमें मैडम, अभी लगभग 500 स्टार्टअप है विलेज में, तो ये स्टार्टअप्स लोग एग्रीगेटेड प्रोसेस उनको फार्मर कनेक्ट देते हुए ताकि उनको आय बढ़े, तो अच्छा प्राइस करने के लिए एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म्स या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स क्रिएट करते हुए, तो मैडम जो बोल रही है वो दैट इज इवन ए बिगर प्लेटफॉर्म, ये सारे प्लेटफॉर्म्स को कन्वर्ज करते हुए लेके जाना, डोमेस्टिक मार्केट को स्ट्रेंथन करे तो आपको एक्सपोर्ट मार्केट भी बढ़ जाएगा।
0: जी बिल्कुल।
1: तो
0: चलिए, आपने घरेलू बाजार की बात की यहाँ पर डॉक्टर राव, तो मैं विनीता जी आपसे मैं समझना चाहूंगी कि मोटे अनाज पोषक अनाज के विपणन को लेकर किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं?
2: नहीं, मोटे अनाज के उसको कैसे बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि मैं एक्सपोर्ट के प्रोस्पेक्ट से ही बात करूंगी। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जैसे कि अभी आपको मालूम है कि कोविड के दौरान हमारा कहीं पर भी फिजिकल पार्टिसिपेशन नहीं हो पाता था, तो इस तहत अपेडा ने अपने इंडियन मिशन्स जो हमारे अलग अलग देशों में हैं उनके साथ मिलकर हम लोगों ने तकरीबन 37 से 38 वर्चुअल बायोसेलर मीट्स किए, जहां पर कि हम जो ये प्लेटफॉर्म होता है जहां पर कि हमारे एक्सपोर्टर्स और हमारे जो इम्पोर्टर्स हमारे इंडियन मिशन के साथ जो इम्पोर्टर्स हैं वो उनको हम लोगों ने एक दूसरे से इंटरेक्ट कराया, एक दूसरे के साथ मीटिंग की, उन लोगों ने अपनी बात रखी, अपनी रिक्वायरमेंट रखी, और जहां पर मिलेट्स को भी बहुत अच्छी एक सहायता मिली, हेल्प मिली कि मिलेट को भी कैसे इन प्लेटफॉर्म के थ्रू प्रमोट किया जाए। इसी तरीके से हम लोगों ने एक पहला वर्चुअल ट्रेड फेयर, जैसे कि आपने सुना होगा कि जैसे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अलग अलग तरीके के अंतर्राष्ट्रीय मेले होते हैं, तो वही हमारा जो एक थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन रहा।

0: कोविड के दौरान कि हम लोग फिजिकल पार्टिसिपेशन के लिए किसी भी अंतर्राष्ट्रीय उसमें मेलों में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, तो हम लोगों ने एक वर्चुअल ट्रेड फेयर हमने ऑन कमोडिटीज हम लोगों अपेडा ने किया, जिसमें कि हमारे मिलेट के एक्सपोर्टर्स ने भी काफी बढ़ चढ़ कर भाग लिया और उससे उन लोगों को काफी फायदा भी मिला, काफी ट्रेड लीड्स मिली और उन लोगों ने अपना उन देशों में एक्सपोर्ट स्टार्ट करना शुरू किया। दूसरा, जैसे कि अभी प्रेजेंटली अगर मैं बात करूं कि इंडिया से हम किन कंट्रीज में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसमें नेपाल है, यूएई है, सऊदी अरेबिया है, लीबिया है, लेकिन अगर दूसरी तरफ से हम आंकड़े देखते हैं कि और जो कौन से देश हैं जहां पर हमें अपना फोकस बढ़ाना चाहिए, जहां पर की पोटेंशियल है, जैसे कि मलेशिया है, जापान है, ईयू कंट्रीज है, गल्फ कंट्रीज है, तो यहां पर अब जो हमारी स्ट्रेटेजी भी बनाई जा रही है कि जो इंटरनेशनल मिलेट ईयर हम जिसकी बात कर रहे हैं 2023 वाली, उसके दौरान हम लोगों ने ये प्लान किया है कि हम डिफरेंट जितने भी इम्पोर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय हमारे मेले हैं वहां पर हम मिलेट को प्रमोट करें, उनको वहां पर रोड शोज करें, वहां पर वर्चुअल बायोसेलर मीट करें, इसी के साथ नॉट ओनली वर्चुअल बायोसेलर मीट इन उन कंट्रीज में, बल्कि हम लोग रिवर्स बायोसेलर मीट भी यहां पर करना चाहते हैं, ताकि हम वहां के बाहर के देशों के बायर्स को यहां पर बुला पाएं और उनके साथ
1: एक्सचेंज प्रोग्राम्स
0: की हम लोगों ने प्लानिंग की हुई है कि ताकि हम ज्यादा से ज्यादा मिलेट को हम अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रमोट कर सकें।
1: जी बिल्कुल, तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मोटे अनाज या पोषक अनाज को और ज्यादा प्रमोट करने के लिए किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं विनीता जी ने बहुत विस्तार से हमें बताया और हमारे साथ डॉक्टर राव भी लगातार बने हुए हैं, लेकिन यहां हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो डॉक्टर राव से मैं समझने की कोशिश करूंगी कि जिस हम तकनीक की बात कर रहे हैं कि कई तरह की तकनीकों पर काम किया जा रहा है ताकि मूल्य संवर्धन और प्रसंस्करण किया जा सके और जो उसकी पोषक तत्व है मोटे अनाज की वो भी बरकरार रहे, उनके शेल्फ लाइफ भी बढ़े।
2: मोटे अनाज की खेती हमारा झाबुआ का किसान जो है सदियों से करते आ रहा है। मुख्यतः फसलों में हमारा जो मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, कोदो है, कुरी है, बाउटो है, इन सारी जो हमारे मोटे अनाज है इसकी खेती हमारा झाबुआ किसान है वो करता आ रहा है, लेकिन जो समय के अनुसार हमारा जो किसान ने अपना रुख मोड़ लिया था, अधिकतर मक्का और गेहूं ही मुख्यतः फसलें बनकर रह गई थी, लेकिन अगर अभी हम देखें तो हमारी जो सरकार है वो भी मोटे अनाज को बढ़ावा दे रही है, तो कहीं ना कहीं हमारा जो झाबुआ का किसान है उसके लिए यह बहुत ही एक सुनहरा अवसर है। अभी उस अनाज को हम पुनर्जीवित कर सकते हैं और इस मोटे अनाज में काफी पौष्टिकता है, तो इस अनाज की खेती करके हम अधिक से अधिक लाभ ले सकते हैं। किसान साथियों, यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा विराम और जानकारियों का यह सिलसिला जारी रहेगा, कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ रेडियो टाटा बिल 90.8 FM के साथ झाबुआ की आवाज पर।
3: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टाटा बिल 90.8 FM। आप रेडियो आपकी बातें।

0: सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
1: ट्रेनिंग ली जा सकती है, लेकिन अगर हम गांव की बात करें, किसानों की बात करें जो बहुत दूर सुदूर रहते हैं, जिनका शहरों से या डिजिटल वर्ल्ड से इतना ज्यादा रापता नहीं रहता है, तो क्या लगता है कि अभी उन तक उतनी पहुंच या उनको इस चीज को समझा पाना इतना आसान है, या फिर ये भी बहुत बड़ी चुनौती है जो कि रास्ते में आ रही है कि मोटे अनाज की खेती को प्रमोट किया जाए?
2: किसान भाई लोगों के लिए वो ये देखता है या कौन सी क्रॉप वो बोना है नहीं बोना है, ये उनका अपना जिससे ज्यादा आय मिलेगा, जैसे इनकम मिलेगा, उसके उस तरफ जाने की कोशिश करेगा। इससे पहले मैं बोल रहा था कि पहले वो अपने खाने के लिए या अपने पशु के चारा के लिए उसको बोता था, मगर अभी विषय बढ़ गया है, ये कमर्शलाइज हो रहा है, इसका धीरे धीरे ये न्यूज उनके पास भी बढ़ रहा है। मगर जब तक किसान भाइयों का वो जो भी लाभ ये मिलेट्स के द्वारा या पोषक अनाज के द्वारा जा नहीं बढ़ती है, तब तक इसका एरिया नहीं बढ़ेंगे। मगर अभी हम देख रहे हैं कि काफी लगभग 60 साल इसका ग्रो करते हुए इसका क्या या एरिया घटती गई, मगर अभी थोड़ा स्टेबलाइज हुआ, तो इसका मतलब है थोड़ा नया न्यू एरिया सारे न्यू कल्टीवेशन एरियास और इरिगेटेड एरिया में भी ये पोषक अनाज ग्रो करने लायक हो गया, ताकि कुछ इंटेंसिव कल्टीवेशन भी चल रहा, तो इसका मतलब है कि वैल्यू एडिशन का जो भी है और इसका डिमांड बढ़ने का बहुत ही बड़ी संभावना है, खास करके गवर्नमेंट पॉलिसी के दिशा जब इसको बढ़त दे रहे हैं, इसका प्रोक्योरमेंट करने के लिए देख रहे हैं और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में लाने के लिए देख रहे हैं, और इसके अलावा ये पब्लिक फंडेड प्रोग्राम जैसे ICDS मिड डे मील प्रोग्राम, इनमें भी पायलटिंग चालू हो गया, ये सारे डिमांड का संभावना बढ़ने का दिखाई देता है। तो फार्मर को ये पूरे फार्मर बहुत ही इंटेलिजेंट आदमी है, तो ये पूरा वो वेट करते देखते जा रहा है, कई जगह जो अर्ली अडॉप्टर्स है वो एरिया बढ़ते ही जा रहे, देख के वो कर रहे हैं, और एक्सपोर्ट मार्केट के भी देख रहे हैं, ताकि उनका जो भी फार्मर जब ग्रो करता है, सबसे मार्जिनल लैंड्स पे मिलेट ग्रो करता था, मगर अभी मैं देख रहा हूँ मेरे अभी जा इधर

0: उधर गए तो देख के तो वो ही ग्रह, वो जो भूमि जो जो लैंड एलोकेट करता है मिलेट्स के लिए, वो अच्छी लैंड पे एलोकेट कर रहा ताकि
1: जी
0: उससे कुछ आमदनी भी बढ़े, उससे कुछ वो प्रोडक्टिविटी बढ़े ताकि आमदनी भी बढ़े। तो
1: जी
0: ये सारे चीज मुझे लगता है इसका प्राइस मिनिमम सपोर्ट भी है, और कई स्टेट्स है
1: जी
0: जैसे आप उड़ीसा हो, कर्नाटका हो
1: जी जी
0: और कई राज्यों हो, उनको प्राइस मिनिमम सपोर्ट प्राइस का गारंटी भी दे रहा ना, और प्रोक्योरमेंट भी चालू कर दिया।
1: जी
0: तो
1: जी
0: दूसरी तरफ से गवर्नमेंट ये भी सोच रहा है कि इंसेंटिवाइजेशन हर जो मिलेट ग्रो करता है उसके लिए 10,000 तक कर्नाटका गवर्नमेंट दे रहा, 9,000 तक अभी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ऑल्सो अनाउंस किया है।
1: जी बिल्कुल,
0: तो
1: यानी एक तरह से
0: गवर्नमेंट
1: प्रोत्साहन।
0: पॉलिसी से भी बढ़ जाता है फार्मर का,
1: जी
0: इसका ज्ञान बढ़ता है और क्रॉप एरिया भी बढ़ता है और इनकम भी बढ़ता है।
1: जी यानी डॉक्टर राव, आपके कहने का मतलब है कि एक तरह से किसानों को प्रोत्साहन राशि भी दी जा रही है राज्य सरकारों की तरफ से, ताकि वो इस तरह की फसलों को लें। विनीता जी, मैं आपसे अब समझना चाहूंगी कि चलिए ये तो बात हुई कि कैसे पैदावार इसकी बढ़े, रकबा कैसे बढ़े, उसके लिए सरकार की तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन बाजार भी बढ़े, बाजार किस तरीके से बढ़े, क्या इसको लेकर के भी किसी तरह की मदद ऐसे किसानों के लिए है जो मुख्य फसल के तौर पर, अब हम कह सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं कि हमारे किसान मुख्य फसल के तौर पर मोटे अनाज उगाएंगे, तो क्या उनको किसी तरह की मदद की कोशिश की जा रही है, और अगर है तो वो क्या है?
2: यानी किसानों के लिए जैसे अभी आपने बात करी कि हम किसानों को कैसे हम मदद कर सकते हैं कि ताकि उनका जो प्रोड्यूस है जो क्योंकि उनका रुझान भी अब उस तरफ आ गया है कि हमें इस तरह के उनको समझ आ चुकी है कि इसकी इस प्रोडक्ट की जो डिमांड है, अहमियत जो है वो काफी बढ़ रही है, ना केवल भारतवर्ष में अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी। तो मैं साथ में बड़े ये मेरे को बड़ा हर्ष है ये बताने में कि जैसे जो बात मैंने अभी पहले बोली कि एफपीओ के साथ हम लोगों ने इंट्रैक्शन किया, तो एफपीओ का इंट्रैक्शन जो सिर्फ है वो एक्सपोर्टर्स तक ही सीमित नहीं रहा है। आज के दिन में हमारे कई एफपीओ खुद एक्सपोर्टर बन गए हैं
1: जी जी।
2: तो ताकि क्योंकि उन्होंने इसमें एक पोटेंशियल देखा है और तभी वो एक्सपोर्टर बन के उन्होंने एक्सपोर्ट करना चालू कर दिया है। तो इस तरीके से जो ये प्लेटफॉर्म्स हम मैंने बताया आपको, तो हम इस तरह के प्लेटफॉर्म्स के तहत उन लोगों को आगे लेके जाते हैं और जो भी हमारे को जरूरत होती है, अगर वहां के किसी प्रोडक्शन के ऊपर कोई इंटरवेंशन चाहिए या किसी वैल्यू प्रोसेसिंग के लिए चाहिए, तो हम जैसा कि डॉक्टर दयाकर राव ने बताया कि हम लोगों ने आईएमआर के साथ एक एमओयू भी साइन किया है, सो दैट जो हमारी इसका सप्लाई चेन है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए, उसकी प्रोडक्शन के लिए, प्रोडक्शन का स्ट्रेंथन करने के लिए, और जितने भी हमारे और स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ इंटरेक्ट करके इन इश्यूज को टेकअप करने के लिए, ताकि हमारे जो किसान हैं उनको एक तो ये एश्योरेंस मिल जाए कि वो जो प्रोड्यूस उगा रहे हैं अगर वो क्वालिटी प्रोड्यूस में मेहनत कर रहे हैं तो उनके उनके चीजों का उचित दाम मिल सके, और साथ में किस तरीके से कि सिर्फ एक एज ए प्रिंसिपल कमोडिटी ना बेचकर क्या हम उसमें कर सकते हैं, तो इस तरीके के जो
1: यानी मैं अगर किसानों की भाषा में समझाने की कोशिश करूं तो जो आपने बताया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च, इसके और एपिडा के बीच में एक समझौता हुआ है जिसके माध्यम से किसानों के लिए ये सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी कि वो अपने उपज को सही मंजिल तक पहुंचाने के लिए एक जो पूरा रास्ता है, जो एक जो चेन है वो किस तरीके से और व्यवस्थित की जाए, वो कैसे और सुगम बनाया जाए, इसके लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि किसानों के सामने यही समस्या भी आती है कि उगा तो लेंगे लेकिन बेचेंगे कहां और कहां उन्हें अच्छे दाम मिले, किस जगह ज्यादा वैल्यू है, ज्यादा लाभ उनको प्राप्त हो सकता है, तो इस पर भी काम किया जा रहा है।
3: न केवल मोटे अनाज की खेती पर, परंतु मोटे अनाज की खेती करने हेतु सरकार द्वारा प्रोत्साहन राशि भी दी जा रही है, साथ ही हमारा जो किसान है वो उपज तो कर लेता है लेकिन उसे निर्यात कहाँ करे, उस हेतु भी प्रयास किए जा रहे हैं। तो किसान साथियों, यहाँ पर बहुत ही अच्छा एक सुनहरा अवसर है, जो भी किसान भाई मोटे अनाज की खेती करना चाहता है वह इस मोटे अनाज में अपना मोटे अनाज की खेती की तरफ अपना रुख कर सकता है। किसान साथियों, हम जानते हैं कि मोटे अनाज में काफ़ी पौष्टिकता होती है, यह हमारे जो पूर्वज कहते थे कि जो कोदो है उसमें अगर किसी भी जो बैल है अगर उसका पेट टूट जाए तो उसे 7 दिन के अंदर हम उसको खिलाकर उसे फिर से एकदम तंदुरुस्त बना सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा माना गया है, कोदो को है, जो है, तो बहुत सी अच्छी जानकारियां हमारे किसान भाइयों को है। लेकिन जो अभी निर्यात की समस्या को देखते हुए हमारे किसान भाई जो है वो इसमें अपना रुख नहीं करते हैं, तो अभी यहाँ पर हमारे लिए एक सुनहरा अवसर है, जो भी किसान भाई मोटे अनाज की तरफ अपना रुख करना चाहता है वह अपना रुख कर सकता है। इसी के साथ किसान साथियों यहाँ पर वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, आपसे पुनः कल मुलाकात होगी इसी समय इसी वक्त, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ रेडियो टाटिया भील 90.8 FM के साथ छब की आवाज पर।
4: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
5: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
4: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है। और हुकुम सिंह भी, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हमारा खास रेडियो प्रोग्राम, जहां हम बात करते हैं हमारे घर में ही मौजूद हमारे उन प्यारे प्यारे बेजुबान साथियों की, जो हमें सेल्फलेसली बिना किसी इच्छा और चाहत के हमसे मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं। फिर वो चाहे प्यारे प्यारे कुत्ते हों, बिल्लियां हों या छोटे छोटे नन्हे साथी, यहां आपको मिलेंगी उनकी देखभाल, प्यार और मजेदार किस्सों से जुड़ी हुई बातें। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज का एपिसोड है बेहद खास।
1: तो बिंदु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के जिंदगी के रंग पेट्स के संग पर। कैसा महसूस कर रहे हैं आप?
2: मैं तो अच्छी हूँ, यहाँ पर तो दिन है, आई एम इन यूएसए इन ह्यूस्टन, सो इट्स अ मॉर्निंग
1: जी,
2: और बहुत गर्मी भी है पर मौसम अच्छा है।
1: क्या बात है, क्या बात है।
2: आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमको इनवाइट करने का अपने प्रोग्राम में। एक्चुअली तो बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी कि आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे भी इनवाइट किया है।
1: हम भी बहुत एक्साइटेड हैं मैम, और हम आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं कि आप वहां से समय निकाल के हमारे साथ कनेक्ट हुए आज इतनी प्यारी बातें साझा करने के लिए आपके प्यारे से पेट बेंजी के बारे में। आई कांट वेट टू स्टार्ट दिस एपिसोड।
2: सो डू आई, बहुत बेंजी की बहुत याद आ रही है।
1: I'm sure.
2: हाँ
1: जी, तो जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन में बताया, बेंजी एक कॉकस पैनल था और 1990 से 10 इयर्स तक वो आपके फैमिली का एक हिस्सा था, बहुत ही एक क्रूशियल हिस्सा था, एक फैमिली मेंबर जैसा था। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि पेट रखने का जो डिसीजन था, बेंजी को आपके जीवन में अपनी फैमिली में इंक्लूड करने का जो डिसीजन था, वो आपने कैसे लिया और किस तरह से वो जर्नी रही?
2: वो ऐसा हुआ कि जब हम बचपन में इंडिया में ग्रो अप कर रहे थे ना, तो डॉग्स हमारी फैमिलीज के बहुत ही अहम मेंबर्स भी हुआ करते थे
1: जी।
2: तो डिफरेंट ब्रीड्स थे ऑफ एंड ऑन, डिफरेंट साइजेस भी थे, क्योंकि डिफरेंट ब्रीड्स की अपनी अपनी पर्सनालिटी भी होती है। बट तो मोस्टली हम तो छोटे थे तब, और इंडिया में क्या था कि जो पेट्स हम रखते थे बेसिकली वो खेलने के लिए होते थे, उसका मकसद ही ये होता था कि हम भी या फिर गार्ड डॉग्स होते थे, सेफ्टी के लिए भी लोग रखा करते थे। तो हमारे पास कुछ बड़े भी थे लाइक जर्मन शेपर्ड या कुछ, और फिर छोटा मेरे पास एक वो भी था, रशियन सेमोइड भी थे। रशियन सेमोइड जो था वो मोर लाइक कंपेनियन, डेकोरेटिव, इनडोर इस तरह का था
1: जी।
2: और जर्मन शेपर्ड जो था वो थोड़ा बाहर का आउटडोर डॉग था, वो बहुत रखवाली करता था हमारी
1: जी जी,
2: तो कंपेनियनशिप भी हो जाती थी और फैमिली को एनिमल से बहुत लगाव था
1: जी।
2: तो जिनके होते खुशी और प्यार में बहुत महसूस होता था आसपास।
1: बिल्कुल बिल्कुल, मैं इमेजिन कर सकती हूँ मैम। आप जब बेंजी को अपने जीवन में लाए तो बहुत सारी चेंजेस आपको लाने पड़े होंगे अपनी जिंदगी में, अपने लाइफस्टाइल में, घर के माहौल में। तो क्या प्रेपरेशंस आपको करनी पड़ी? जैसे आपने बताया कि आपके पास हमेशा पेट्स रहे हैं, पर जब आप यूएस में थे तो वहां के हिसाब से क्या कुछ स्पेशल प्रेपरेशंस थी, किस तरह से आप चेंजेस लाए, और बेंजी ये क्यूट सा नाम किसने डिसाइड किया?
2: तो बेंजी जो था एक्चुअली जो यूएसए में एक सेलिब्रिटी टेलीविजन डॉग हुआ करता था।
1: वाओ,
2: एकदम जैसे हमारे बेंजी की जो वही उसका शक्ल भी वैसी और उसका जो कलर था वो भी एग्जैक्टली सेम था, तो तभी शायद उसका नाम भी बेंजी पड़ा जिन्होंने भी उसको पहले लिया था
1: जी।
2: तो 70s में क्या था कि बेंजी यूज टू बी एक प्रॉपर सीरीज हुआ करती थी टेलीविजन की,
1: राइट?
2: तो तब बेंजी का नाम भी वैसे ही पड़ा, और चेंजेस जो थे काफी आए हमारी लाइफ में। और जैसे आपको पहले बताया कि इंडिया में काफी हेल्प होती थी, डोमेस्टिक हेल्प होती थी ना, तो उनको जो खाना सही टाइम पे मिले या उनको बाहर घुमाने को जाना है तो ये सब होता था। पर जब हम यूएसए में आए तब हमारे पास ये हेल्प तो नहीं थी,
1: करेक्ट?
2: और कुछ तो वो चेंजेस हमको जरूर करने पड़े थे अपनी लाइफ में यहाँ पे, क्योंकि बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक पेट को रखना, खासकर एक जैसे कुत्ते को रखना. एक ऐसा टाइम भी था जब मेरे पास एक बिल्ली भी हुआ करती थी जब हमारे बच्चे नहीं थे. तो कुत्ता और बिल्ली दोनों जैसे इकट्ठे भाई बहन की तरह ही होते थे, तो मस्ती बहुत करते थे, बहुत
1: क्यूट.
2: अगर टाइम बचेगा बाद में तो मैं आपको उनकी भी कहानियां सुना सकती हूँ, पर अभी हम लेट्स जस्ट स्टिक टू आपका जो फॉर्मेट है ना.
1: जी, इसी के साथ अगर मैं आगे इस क्वेश्चन को बढ़ाना चाहूं और यहीं पे आपको इलैबोरेट करने का एक छोटा सा मौका दूं कि आपका बेंजी के साथ बिताया हुआ सबसे क्यूट मोमेंट जो आपको आज भी याद आता है तो हंसते हंसते आंसू निकल आते हैं, तो वो कौन सा होगा?
2: पता है मोमेंट्स तो बहुत थे तनुषा, क्योंकि और जैसे मैंने उसकी प्रोफाइल में शेयर किया था आपसे कि वो जो लम्हा था ना जब वो हम उसको लेने गए और हमने अपनी वैन का साइड डोर खोला, मेरा बेटा पीछे बैठा हुआ था, तो वो दरवाजा तो खुला रखने के लिए और ये दौड़ के आके हमारी बस वैन के अंदर घुस गया और बैक सीट के ऊपर बैठ गया
1: जब आप उसे लेने गए थे.
2: हक के साथ, एकदम हक से और एकदम डट के, और बिल्कुल जैसे हम उसको देख रहे हैं कि ये कौन है डॉगी, इतना सुंदर कुत्ता है और ये तो नहीं हो सकता, बिकॉज वाई वुड एनीबडी वॉन्ट टू पार्ट विद सच अ ब्यूटिफुल क्रीचर, यू नो, इस तरह से हमको लगा. तो ये बेंजी आके हमारे बैठ के आके पास में और कभी कभी लगता है, और वो उठ ही नहीं रहा था वहां से, बट समझ में आया बाद में कि यही वो था जिसको हम लेने आए थे और उसका उतरना है. तो मुझे ऐसे लगता है कि इंस्टिंक्टिवली कि जानवर हमें हमसे ज्यादा जांच लेते हैं, जैसे कौन उनसे प्यार करेगा या कौन प्यार करता है, whether we are animal lovers or not. तो you know, इस तरह से हमें लगा. तो अब वो हिले ही ना वहां से, तो अब वो हमारा ही हो गया. तो एक बहुत ही मेमोरेबल मोमेंट हमें मेरी मेमोरी में रहता है कि वो जो लम्हा था ना, उसने हमको चूज किया, हमने उसको नहीं चूज किया, यू नो, ही पिक्ड, ही चूज अस. यस,
1: एब्सोल्युटली,
2: ऐसा लगा.
1: जिस तरह से यू नो हम अपने फ्रेंड्स चूज करते हैं, उसी तरह से कहीं कई बार पेट्स हम पेट्स को नहीं, पेट्स हमें चूज करते हैं. और जैसे आपने बहुत राइटली पॉइंट आउट किया कि वो इंस्टिंक्टिवली समझ जाते हैं कि कौन उन्हें किस तरह का प्यार दे सकता है, केयर दे सकता है, तो बहुत इंस्टिंक्टिव होते हैं, स्पेशली डॉग्स. तो उसमें आई थिंक दे एस एट इट. एंड आई कैन इमेजिन आपने कितने खूबसूरत लम्हे बेंजी के साथ बिताए होंगे उन 10 सालों में. इसी गहरी बात के साथ, इन्हीं प्यार भरी बातों में हम एक पहला गीत सुनेंगे हमारा आज का. मैम, अगर आपकी कोई फरमाइश हो तो आप बताएं.
2: नहीं, कुछ ऐसा नहीं है, आप अपनी फरमाइश बताइए और बाद में अगर आपको टाइम हो बाद में तो मैं कुछ और भी लम्हे शेयर करूंगी आपके साथ.
1: बिल्कुल मैम, समय ही समय है आज तो मेरे पास, बहुत सारी बातें करेंगे आगे. अभी चलिए एक खूबसूरत सा गीत सुनते हैं, आओ मनाएं जश्न-ए-मोहब्बत, फिल्म दूसरा आदमी.

0: खूबसूरत गीत है ये। आगे चलते हैं मैम, आपके हिसाब से, बिकॉज आपने अगेन आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट अगेन कि आपके पास पेट्स एनिमल्स हमेशा रहे, यू ऑलवेज बिन अ पेट ओनर अ पेट पेरेंट, तो आप बिकॉज आपके पास इतना एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर आप हमारे श्रोताओं के साथ साझा करना चाहें कि पेट केयर में सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या होती है।
1: मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा तो पेट्स प्यार मांगते हैं और उसके साथ साथ जस्ट लाइक फैमिली मेंबर्स की तरह और उसके साथ जो सही वक्त पर और सही किस्म का खाना हो उनको घुमाना है, पर उनकी रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज भी बहुत इम्पोर्टेंट है, उनकी मेडिकल केयर, उनके वैक्सीनेशंस के साथ अपडेटेड रहना हो, तो ये सब चीजें बहुत ज्यादा मतलब पेट केयर में शामिल होती हैं। उसके बगैर जैसे अपनी फैमिली के लिए बच्चों के लिए आप केयर करते हैं उसी तरह इनके साथ भी पेश आना चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट मुझे लगता है। और मैं आपको इसके साथ साथ बताती चलूं कि हमारा बेंजी एक एपिलेप्टिक था।
0: हाँ,
1: उसको एक मेडिकल कंडीशन थी जो जब वो हमारे घर पे आ गया उसके दो तीन दिन के बाद हमने नोट किया कि तो फ्राइडे शाम की बात कर रही हूँ और फ्राइडे थी और सडनली मैंने देखा बेंजी को सीजर्स हो रहे हैं। तो मैंने तो कभी ना सोचा था ना कभी सुना था कि डॉग्स को भी
0: एपिलेप्सी होती है,
1: हो सकती है, तो आई टोटली फ्रीक्ड आउट, मेरे को समझ में नहीं आया ये क्या हो रहा है इसको। और फ्राइडे नाइट थी, सब कुछ बंद था, कोई वेटनेरियन नहीं था कोई, और हम लोग इस शहर में भी थोड़े बहुत नए थे तो कुछ ज्यादा जानकारी नहीं थी मुझे कोई पेट हॉस्पिटल है पास कुछ, तो जब तक हमको उन दिनों में टेलीफोन डायरेक्टरीज भी हुआ करती थी ऑनलाइन, तो कुछ नहीं, अब ना मैं आपको 90s की बात कर रही हूँ। तो वो क्या हुआ, जब तक मुझे एक फोन नंबर मिला एक एनिमल हॉस्पिटल का तब तक बेंजी का सीजर खत्म हो गया। ओके और फिर जब मेरी बात हुई जिन्होंने भी फोन उठाया दूसरी तरफ से तो उन्होंने सबसे पहले मुझसे पूछा कि कौन सी ब्रीड है आपकी, हमने कॉकर स्पैनियल है, तो वो बोले कि कॉकर स्पैनियल्स में सबसे ज्यादा ससेप्टेबिलिटी होती है फॉर सीजर्स।
0: ओ माय,
1: जो मुझे बिल्कुल मालूम नहीं थी क्योंकि कभी कॉकर स्पैनियल तो ये फर्स्ट टाइम ही हमारे घर आया था तो उससे बहुत ज्यादा जानकारी बढ़ी हमारी। और फिर उसके बाद एनीवे जब मंडे आया तो हम उसको अपने वेटनेरियन के पास ले गए यहाँ पे, तो देन ही वाज प्लेस्ड ऑन फिनोबार्बिटॉल जो एंटी सीजर मेडिकेशन होती है ना, तो वो बेंजी को दिन में दो बार ही मिला करती थी और तो उसकी सेफ्टी के लिए, और मतलब वो उसको हम एक ब्रेड के उसके अंदर डाल के ऊपर से फेंकते थे तो वो एकदम मुंह से कैच करता था और खा जाता था
0: जी।
1: तो नहीं, इट्स नॉट अ वेरी टेस्टी, तो हाँ। और फिर उसके लिए हमने एक पोर्टेबल डॉग कैरियर भी लेके रखा हुआ था घर पे क्योंकि जब भी हम घर छोड़ के जाते थे अगर उसको सीजर होता है तो ही वॉज इन साइड अ कंटेन्ड स्पेस और उसको इंजरी होने से बचाता था वो। हाँ
0: करेक्ट, कि वो खुद को भी हार्म नहीं करे एंड सराउंडिंग्स को भी हार्म ना कर पाए ऐसी सिचुएशन में। बहुत ही डिफिकल्ट रहा होगा मैम ऐसी सिचुएशन में उसको, आई एम श्योर एक्स्ट्रा केयर एक्स्ट्रा प्यार भी देना पड़ा होगा। और जैसे आपने बहुत सरलता और सुंदरता से बताया कि सबसे पहली चीज तो प्यार है और फिर उसके बाद बाकी सभी चीजें आती हैं, जैसे आपके डॉग को स्पेशल कंडीशन थी तो आई एम श्योर स्पेशल केयर स्पेशल लव सभी चीजें एक्स्ट्रा आपको ध्यान देना पड़ा होगा उन 10 सालों में जब आपके पास बेंजी था। तो बहुत ही जी, क्या इससे आपके घर में आपके जो बच्चे थे, आई एम श्योर आपके बच्चों के ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आई होंगी, उनने भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज शेयर की होंगी, तो क्या आपको लगता है कि पेट्स घर में लाना बच्चों के लिए बेनिफिशियल होता है, किस तरह से वो उन्हें शेप करता है?
1: मेरे ख्याल में तो इसका आंसर मैं यस बोलूंगी एंड आई कैन ओनली स्पीक अपने एक्सपीरियंस के साथ कि हमारे बच्चों ने भी बेंजी की प्रेजेंस से बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी सीखी, काइंडनेस सीखी, एम्पथी सीखी और कैसे एनिमल्स की तरफ प्यार दिखाना। और उनकी रिस्पेक्ट करना जस्ट लाइक अ फैमिली मेंबर, क्योंकि अब वो तो हमारा फैमिली मेंबर ही हो गया था ना. तो बच्चों को भी बहुत मतलब सेंसिटिविटी रही इस कंडीशन से जो
0: बेटी
1: थी.
0: राइट.
1: क्योंकि फिनोबार्बिटॉल के साथ क्या होता है कि एंटी सीजर मेडिसिन होती है तो उसके साथ थोड़ी सिडेशन भी आ जाती है ना. बहुत एक्टिव नहीं तो होता क्या था कि नॉर्मली डॉग्स के साथ बच्चे खेलते हैं, कूदते हैं, खूब करते हैं और बेंजी भी करता था जब अपने मूड में होता था तो. पर बिकॉज उसकी मेडिकल कंडीशन इस तरह की थी तो उसका थोड़ा सा यू नो सेडेशन इफेक्ट भी होता था.
0: राइट राइट राइट. बहुत एक्टिव नहीं रहता था. जी जी जी बिल्कुल. जैसे घर में एक छोटा बच्चा जब बीमार होता है तो हम सब उसकी एक्स्ट्रा केयर करते हैं, एक्स्ट्रा प्यार करते हैं. तो ये तो बेजुबान जानवर है. तो आई कैन इमेजिन एंड दिस इज वेरी सैड टू नो दैट ही हैड दिस कंडीशन. हाउएवर आई एम वेरी प्राउड कि आपने उसे 10 साल अपने साथ रखा और इतनी केयर और इतना प्यार दिया. बहुत ही खूबसूरत बात है मैम ये. इसी के साथ क्या ऐसे भी मोमेंट्स होते थे जब आप लो फील कर रहे हैं, घर का माहौल थोड़ा सा यू नो लो है, तो बेंजी के कुछ रिएक्शंस ऐसे हों जो आपको चीयर अप करने की कोशिश करता हो? क्या ऐसे कभी एक्सपीरियंसेस हुए?
1: ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा एक्सपीरियंसेस हुए. मैंने कहा ना एनिमल्स ये इंस्टिंक्टिवली समझ जाते हैं जब आप उदास हों या आप लो फील कर रहे हों.
0: हाँ जी.
1: और ये तो कभी कभी ह्यूमंस भी नहीं फील करते कभी.
0: नहीं नहीं, देखते हुए भी अनजान बनते हैं हम, साथ रहते हुए भी.
1: हाँ. और ये एनिमल्स में एक खासी जैसे होता है, इट्स अनदर सेंस. तो जब मेरा बेंजी मुझे इस तरह कभी देखता था या फिर बच्चों को भी इस तरह होता था तो बहुत प्यार से जाके पास में बैठ के अपना एक पॉ उसकी गोद में रखता था, मेरी गोद में रखता था के, और जैसे ट्राइंग टू टेल मी कि कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा इस तरह. जस्ट रीअश्योरिंग दैट मैं हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा, जो रीअश्योर कराता था मुझे. इस तरह वो फीलिंग आती थी मुझे. और मैं संगीत में काफी इन्वॉल्व रहती हूँ तो मैं जब भी रियाज करती थी तो ऑफकोर्स मेरे मुंह पे तो खुशी आती ही थी, बट बेंजी को भी लगता था कि ये म्यूजिक कीप्स मी वेरी वेरी हैप्पी. और वो मेरी बेस्ट ऑडियंस भी होता था, वो से आके सुनता था. ठीक कह रही हूँ, कभी कभी धीरे धीरे उसके मुंह से हमको हमिंग भी सुनाई देती थी. आई एम टेलिंग यू इट वॉज सच अ मेमोरेबल.
0: एंड सो यूनिक,
1: बहुत यूनिक था. क्योंकि कभी कभी अगर घर के आसपास से एम्बुलेंस भी जा रही है ना, सायरन बजता था.
0: जी जी.
1: तो ये सायरन की आवाज निकालने की कोशिश भी करता था.
0: ओह सच अ म्यूजिकल पेट. आई थिंक द पेट पेरेंट ग्रू ऑन बेंजी. आपकी जो आपका जो मेलोडी है दैट ग्रू ऑन हिम एंड ही बिकेम एज मेलोडियस एज यू. अब आपने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात हमारे साथ साझा कर दी है कि आप म्यूजिक में बहुत इन्वेस्टेड और इंटरेस्टेड हैं, जो मैं वैसे तो जानती हूँ, बट हमारे श्रोताओं के लिए भी बता दूं कि बिंदु मैम बहुत खूबसूरत गायकी करती हैं. तो एंड में आप हमें एक गीत तो जरूर सुनाएंगे बेंजी के नाम.
1: बेंजी के नाम से, ओ माय गुडनेस, ये तो यू आर कैचिंग मी टोटली अनअवेयर.
0: आप कोई सा भी गीत, एनीथिंग दैट कम्स टू यू नेचुरली, बट वो डेडिकेटेड होगा बेंजी को.
1: जरूर जरूर कोशिश करूंगी, जो मेरे बच्चे भी गाया करते थे उसके लिए कभी कभी.
0: जी
1: तो हाँ, तो आपको बता रही हूँ तो कभी कभी वो जैसे बोला ना, अपना एक पॉ रखता था मेरे ऊपर और जस्ट रीअश्योर कराने के लिए. फिर कभी कभी जाके मेरी म्यूजिक इक्विपमेंट के पास या मेरे माइक के पास बैठ जाता था कि मैं वेट कर रहा हूँ, अभी तुम गाओ. वेरी वेरी बहुत ही अच्छे,
0: वेरी मेमोरेबल. या वेरी मेमोरेबल. चलिए इन्हीं प्यारी बातों, इन्हीं सुरीली बातों के बीच में हम एक और गीत सुनेंगे. आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें, फिल्म कस्मे वादे.

0: वेलकम बैक बिंदु मैम। गीत से पहले हम बहुत सारी गीतों भरी बातें कर रहे थे, कैसे बेंजी भी एक म्यूजिकल डॉग था और आपके म्यूजिक लेसन्स में, आपकी म्यूजिक लर्निंग में आपका साथ देता था, आपकी ऑडियंस बनता था और खुद भी गाने की कोशिश करता था। तो ये तो हुई मैम मजे की बातें। अब बिकॉज हम एक शो कर रहे हैं जिसमें हम चाहते हैं कि पेट्स की तरफ जो अवेयरनेस है, जो नए पेट पेरेंट्स बन रहे हैं, अडॉप्शन के लिए जा रहे हैं, बहुत सारे लोग सेंसिटिव हुए हैं इन द लास्ट वन डेकेड आई थिंक। तो आपकी तरफ से, बिकॉज यू सच एन एक्सपीरियंस्ड पेट ओनर एंड पेट पेरेंट, कोई एडवाइस अगर आप देना चाहें तो वो क्या होगा?
1: तनुषा, ऐसा है कि पेट्स को लेने से पहले बहुत सारी मैं इंडिया की बात भी कर रही हूँ कि लोग रखते हैं जस्ट फॉर लाइक अ स्टेटस सिंबल या फिर अ प्ले थिंग या फिर सुंदर लगता है तो उसको रख लो घर में। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है ना, जो पेट्स के साथ एसोसिएटेड रहती हैं, आप उनको पहले समझिए एंड डोंट गेट पेट्स इफ यू आर अनेबल टू टेक केयर ऑफ देम। अभी इंडिया में बात हमारी अलग थी क्योंकि डोमेस्टिक हेल्प काफी हो जाती थी। घर में हमारी मदर भी थी जो बहुत ही ज्यादा पर्टिकुलर थी कि इसकी ग्रूमिंग सही होनी चाहिए, उसको रोज ब्रश करना चाहिए, उसकी खुराक ठीक हो, सब कुछ, और उसको घुमाने के लिए, एक्सरसाइज के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट रहता है, विच ऑल्सो एक्चुअली हमें भी बहुत हेल्प करता है जब हम फिजिकल एक्सरसाइज कुछ करते हैं तो अपना भी माइंड क्लियर होता है, डिस्ट्रेस करता है हमको, बहुत सारी मसलों के हमको हल मिल जाते हैं जो दिमाग में चल रहे हैं। तो हमारी मम्मी बहुत ही पर्टिकुलर थी कि इनको सही तरीके से इनकी देखभाल की जाए, पेट लेने से पहले समझ लो कि ये सब चीजें आपको करनी पड़ेंगी। और फिर डिसिप्लिनिंग द पेट्स इज ऑल्सो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट,
0: एब्सोल्युटली,
1: क्योंकि कई पेट्स को आप अगर ठीक से नहीं डिसिप्लिन करेंगे या उनकी ट्रेनिंग नहीं करेंगे थोड़ी बहुत, तो कभी कभी बहुत एम्बैरेसिंग मोमेंट्स भी आपको देखने पड़ेंगे। फिर वो किसी को जाके बाइट कर लें, कुछ ऐसा कर लें, तो वो भी अभी जरूर इंडिया में बात अलग है, पर यूएसए में क्या होता है कि इफ यू आर नॉट अ रिस्पॉन्सिबल पेट ओनर तो पीपल कैन फाइल अ लॉ सूट, आपके किसी को काट लिया जाके, आपने अगर लीश पे नहीं रखा है डॉग को, आप अगर घुमाने जा रहे हैं तो देयर इज अ प्रॉपर लीश लॉ,
0: राइट, इट्स अ टॉट एंड लॉ ऑफ टॉट,
1: यस, दैट इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। अभी मुझे मालूम नहीं, बहुत अरसा हो गया है इंडिया को छोड़े मुझे, तो मुझे पता नहीं शायद वहाँ पे भी कुछ तब्दीली होगी, पर यहाँ पे तो ये जबरदस्त है। और इसका भी मैं आपको एक किस्सा सुनाऊंगी टाइम परमिट
0: जी, जी बिल्कुल,
1: वो बहुत बहुत मेमोरेबल है मेरे लिए। मेरे डॉग के साथ नहीं हुआ पर मैंने किसी और डॉग को रिसासिटेट करके जान बचाई थी। तो इस तरह से मैं आपको वो भी बता दूंगी बाद में अगर
0: नहीं, बिल्कुल बिल्कुल मैम, यू कैन शेयर इट राइट अवे, बिल्कुल टाइम है जी।
1: तो वो ऐसा था कि हमारी नेबरहुड में एक डॉग ओनर थे, हमको जानते भी थे, हमारे देसी थे, सिंधी लोग थे, उनका एक छोटा सा डॉग था, शिवावा था। अब शिवावा को आपने देखा है कि वो इतना छोटा होता है कि आपके पॉकेट में भी आ सकता है,
0: यस,
1: इट्स अ वेरी स्मॉल डॉग। तो मैं अपनी नेबरहुड में मम्मी कहीं पे मुझे विजिट कर रही थी और किसी के घर पे थी, उनको लेने जा रही थी, कोई इमरजेंसी हो गई थी
0: जी।
1: तो रेजिडेंशियल एरिया में तो जगह जगह पे वो भी होते हैं ना, आपके स्पीड ब्रेकर्स होते हैं, तो थोड़ी थोड़ी, सो यू कैन नॉट इवन ड्राइव वेरी फास्ट, 10 या 15 मील की स्पीड के ऊपर आप चला रहे हैं। सडनली मैंने देखा, दोपहर का टाइम था, इट वॉज आफ्टरनून, और लोगों के घर भी बड़े बड़े हैं, लॉन्स हैं यहाँ पे, तो किसी का स्प्रिंकलर भी चल रहा था, और ये जो अपने डॉग को घुमा रहे थे ये सड़क के एक तरफ चल रहे थे और जो इनका डॉग था वो सड़क के दूसरी तरफ चल रहा था साइड वॉक पे। अभी सडनली मुझे ऐसा लगा कि मेरी कार में कुछ अटका जैसे, तो हाँ, और मैंने अपनी रियर व्यू से, अपनी कार की रियर व्यू मिरर से देखा तो देखा कि ये जनाब जो इनके ओनर थे वो आके उन्होंने कोई चीज अपने हाथ में उठाई, छोटी सी तो थे वो द डॉग, तो मेरे से रहा नहीं गया। मुझे ऐसे लगा बहुत, हालांकि मेरी अपनी फैमिली में इमरजेंसी थी, मम्मी को लेने जा रही थी, बट आई टर्न माय कार अराउंड और तो लगा कि अरे मुझे तो ऐसे लगता है मैंने किसी का पेट को हिट किया है। तो मैंने अपनी गाड़ी रोकी और मैं जाके उसको शिवावा को अपने हाथ में उठाया एंड आप मानेंगे नहीं, उसकी जीभ बाहर निकली हुई थी, उसकी आंखें एकदम खुली थी और डायलेटेड थे उसके। और बिकॉज मैं हेल्थ केयर प्रोफेशनल टू तो ये चीजों पे गौर भी करती हूँ मैं, तो एकदम नेचुरल आता है मेरे साथ। देखा कि दिस डॉग प्रैक्टिकली डेड,
0: ओह माय,
1: यू नो। हाँ, तो मैंने उसको कुत्ते को हाथ में उठाया एंड द फर्स्ट, और मैं सीपीआर इंस्ट्रक्टर भी हूँ
0: जी जी
1: हेल्थ केयर फैसिलिटी, तो वो एकदम जैसे इंस्टिंक्टिवली मुझे लगा कि ये तो कुत्ता ब्रीद नहीं कर रहा है
0: राइट,
1: और मैं उसको माउथ टू माउथ तो नहीं देना चाह रही थी, पर मैंने अपने थंब के साथ ना, जैसे बेबीज को हम रिससिटेट करते हैं न्यूबॉर्न्स को, तो हमने उसके आई स्टार्टेड गिविंग हिम लाइक थंब के साथ उसको कंप्रेशन हार्ट के, मैंने कहा इधर ही कहीं, अभी मैं कुत्ते का एनाटॉमी नहीं जानती, ये कहा कि छोटा सा है यहीं कहीं इसका दिल भी होगा,
0: दिल है राइट,
1: तो मैंने अपने अपने थंब के साथ एक हाथ के साथ उसको उसको कंप्रेशन देने शुरू करे, अंदर से मैंने आई वॉज प्रेइंग कि ये भगवान इस कुत्ते को बचा लो
0: बिल्कुल
1: जिस तरह से, और क्योंकि वो जो थे उनके ओनर थे वो भी आए ऊंची ऊंची रो रहे हैं, उस कुत्ते का नाम था गोंजो
0: राइट,
1: तो वो मैं भी आज तक भूली हूँ, इस बात को बहुत अरसा हो गया है, बट ही केम ऑन वो गोंजो डोंट गो डोंट गो गोंजो डोंट गो, इस तरह से वो ऊंची ऊंची चीख रहे थे, और विद इन 5 to 7 minutes की जब मैंने कंप्रेशन करी तो सडनली उसने अपनी आंख को झपका,
0: ओह माय,
1: हाँ उसकी आंखें एकदम खुली थी ना, बताया एकदम डायलेटेड वगैरह, तो उसने अपनी आंख को झपका, तो मैंने थोड़ी सी दिल में उम्मीद आ गई कि ये
0: बच सकता है,
1: इज कमिंग बैक टू लाइफ। और जिस घर के बाहर ये सब हो रहा था ये उनका घर भी नहीं था, ये तो उनके घर से काफी दूर था।

0: बट उनका लॉन स्प्रिंकलर चल रहा था वहां पे, तो मैंने उसकी डॉग की तो जो जीभ थी वो तो ऑलरेडी बाहर लटक रही थी, तो हमने थोड़ा सा पानी लेके उसकी जीभ के ऊपर रखा तो उसने उसको पी भी लिया. सो यू नो दिस डॉग एक्चुअली केम बैक टू लाइफ.
1: ओह माय गॉड.
0: और तो फिर अभी मुझे आगे जाना था, अपनी मम्मी को पिकअप करना था कहीं से, तो थोड़ा इमरजेंसी था मेरे लिए. तो मैंने इनको बोला आप ऐसा कीजिए कि आप इसको अपने वेट के पास ले जाइए और इसको चेकअप करा लें, अभी मुझे आगे जाना है. तो बोले कि हमारा तो वेट ही नहीं है.
1: बताएं.
0: तो मुझे अंदर से गुस्सा, हाँ मुझे इतना अंदर से गुस्सा आया. आई टेल यू, तो वही मिला नेबरहुड के बाहर ही एक शॉपिंग स्ट्रिप थी, वहां पे उनका हॉस्पिटल था, तो अपने डॉग को वहाँ ले जाती थी. अभी इतना महंगा कुत्ता आपने रखा है, शिवावा रखा है, और आपके पास इसका
1: वेट नहीं है.
0: हाँ तो इसकी भी प्रॉपर केयर आप कराइए तो सही. तो मैंने उनको बोला लीजिए मेरी चाबी पकड़िए, आप मेरी कार चलाइए और मैं आपके कुत्ते को ऑब्जर्व करती रहूंगी, एंड आई विल गाइड यू, आप हमारे वेट के पास में आपको ले चलती हूँ.
1: राइट. इमेजिन.
0: मैंने ऐसे ही किया. हाँ तो मैं उसको ले गई, वहाँ पे मेरी मम्मी वेट कर रही है कि देर हो गई अभी. एनीवे मुझे जैसे लगा ना किसी जैसे ह्यूमन की लाइफ हम बचा रहे हैं, वेरी इम्पोर्टेंट कि इसको फॉलो अप भी करना है. तो मैं अपने वेट के पास इनको ले गई और उनका नाम डॉक्टर कीड था
1: जी,
0: और अभी भी है उनका पेट हॉस्पिटल वहीं पे
1: जी.
0: तो एनीवे उनको हमने बताया पूरा किस्सा. मैंने कहा आप Now this dog is yours, और मेरे को जाना है आगे, तो आप उसको प्लीज रखिए. अभी वहां से मैं निकली बाहर और मम्मी को मैंने वही नेबरहुड में से लिया और मम्मी को पूरा किस्सा सुनाया. तो अब मम्मी भी तो डॉग लवर है, तो उनको एकदम इतनी कंसर्न हो गई कि ओए वो कुत्ता, वो कुत्ता, वो पंजाबी हम लोग हैं, वो कुत्ता बेचारा.
1: आई कैन इमेजिन मैम. जी जी.
0: तो ये सब हुआ. अच्छा उसके बाद वापसी पे हम मम्मी को जहाँ भी ले जाना था मैं लेके गई. वापसी पे मम्मी ने कहा नहीं वेट के पास चलो, वेट के पास चलो.
1: wow.
0: तो हम गए तो पूछे तो डॉक्टर टोल्ड मी कि मिसेस मल्होत्रा व्हाट एवर यू डिड दिस डॉग एक्चुअली केम बैक टू लाइफ बिकॉज ये मर गया था.
1: राइट राइट.
0: इसके ऊपर एक हल्का सा थोड़ा सॉफ्ट स्पॉट हो गया था.
1: राइट.
0: तो वो बोला कि हमने इसको ओवरनाइट रखेंगे, वी विल ऑब्जर्व है. तो इस तरह से उसको उन्होंने ओवरनाइट रखा और वो कुत्ता उसके बाद काफी साल जिया. पर उसके जो ओनर थे वो मुझे आज तक भी फॉरगिव नहीं कर पाए कि तुमने हमारे कुत्ते को हिट किया.
1: बताएं तो जबकि आप ही ने सेव किया.
0: हाँ. तो उसके दिन रात को पता क्या हुआ, जब हमने रात को उनको फोन किया, उनको मैं जानती थी, हमारे इंडियन लोग ही थे
1: जी.
0: तो आपको पूछा वो तो मेरे ऊपर एकदम गुस्से हो गए कि कॉस्टिंग मनी पता नहीं $120 थे या कुछ ऐसा था. तो बोले कि इट्स कॉस्टिंग अस सो मच एंड यू नीड टू पे फॉर इट.
1: ऑफ कोर्स दे वर थिंकिंग इट इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर देम इंस्टेड ऑफ टेकिंग केयर ऑफ द पेट. यस.
0: यू नो लाइक टेल मी हाउ मेनी पीपल वुड. हम तो अपना निकल ही जाते
1: हैं. नहीं रुकते भी नहीं है मैम. यस यस. पीपल डोंट स्टॉप आल्सो.
0: नहीं सो व्हाट आई डिड एक्चुअली उसी हमारे को हमारे फ्रेंड्स के बेटी और उनका जो हस्बैंड थे वो अटॉर्नीज हैं. मैंने उनको फोन किया, देखिए आप मुझे बताइए ये ऐसा किस्सा हुआ और इज देयर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर है तो मैं उनको पे कर दूंगी जाके. तो गाड़ी से तो मेरी टकरा टकरा बट नॉट बट एनी वे उन्होंने पूरी कहानी सुनी तो उन्होंने बोला आंटी यू डोंट ओ देम एनीथिंग एट ऑल बट इफ एनीथिंग दे ब्रोक द लीश लॉ.
1: राइट.
0: ओके.
1: राइट.
0: कुत्ते लीश पे नहीं था,
1: नहीं
0: और
1: था.
0: आपने तो सुनने की जान बचाई है.
1: यस.
0: यू नो
1: इवन यू ड्रोव इट टू द वेट.
0: यू विल डू व्हाट यू डिड.
1: यस यस.
0: तो एनीवे तो उसने बोला बट हमारे जो लोकल न्यूज़पेपर था ना क्रॉनिकल
1: नाम
0: है तो बोले बट आंटी दिस विल मेक अ ग्रेट स्टोरी फॉर द ह्यूस्टन
1: इंडीड.
0: सो
1: इंडीड
0: आई एम टेलिंग यू सो दिस आल्सो हैपेंड इन माय लाइफ एंड आई ऑलवेज यू नो शेयर एंड टीच सीपीआर.
1: और
0: कुछ करे ना करे पर कंप्रेशन जरूर कीजिए बिकॉज हार्ट को वापस लाना बहुत क्रूशल रहता है. और चाहे वो जानवर हो चाहे वो ह्यूमंस हो तो ये चीज मेरे बड़ा रेयर एक्सपीरियंस होता है किसी को भी इस तरह का.
1: एब्सोल्युटली वेरी रेयर एंड या वेरी लाइक यू नो सिग्निफिकेंट इन योर जर्नी वेयर इन कई लोग सच में मतलब ऐसी चीजों को भी अपॉर्चुनिटी समझ के उसको मिंट करने की कोशिश करते हैं जबकि गलती उन्हीं की होती है और उनके पास वेट भी नहीं है विच इज अमेजिंग फॉर मी. आई मीन एंड यू पेटिंग अ डॉग दैट इज यू नो एज एक्सपेंसिव लाइक यू मेंशन एंड एज यू नो हाई मेंटेनेंस एंड उसके बाद भी आप सामने वाले के ऊपर जबकि सामने वाला इज द पर्सन हु इज एक्चुअली टेकन केयर ऑफ योर पेट एंड ड्रोव यू टू द वेट ऑल्सो. सो हाउएवर It's amazing that, you know, the way you handle the situation. And I'm so happy that the pet survived. You know, sabse badi baat ki the pet survived. Gonzo, right? Yeah, beautiful. So,
0: that's
1: beautiful.
0: Significant in my life too.
1: Yeah.
0: I have to share kar deti.
1: Bilkul, ma'am. Bilkul. Chaliye. इन्हीं खूबसूरत बातों के बीच इन्हीं गहरी बातों के बीच इन्हीं जीवन के एक्सपीरियंसेस के बीच हम एक और गीत का ब्रेक लेंगे जो जीवन से ही जुड़ा हुआ है जीवन का ही फलसफा है. जीवन के दिन छोटे सही हम भी बड़े दिल वाले फिल्म बड़े दिल वाले

0: आगे चलते मैम, अब मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्या आप अपना जीवन पेट्स के बिना इमेजिन कर सकते हैं? क्योंकि आपने इतनी लंबी जीवन जो जर्नी आपकी रही है उसमें पेट्स आपकी जीवन का एक बहुत इंटीग्रल पार्ट रहे हैं, तो क्या आपका जीवन पेट्स के बिना आज वैसा ही है? क्या आपने कभी सोचा था कि आपका जीवन पेट्स के बिना होगा, और किस तरह का वो एक्सपीरियंस है? और इसी के साथ मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि आपने जो लाइफ लेसन अगर कुछ सीखा हो अपने पेट्स से, तो वो क्या होगा?
1: ऐसा है कि पेट्स के साथ एक तो अनकंडीशनल लव, यू नो, और लॉयल्टी एंड टू बी लिविंग इन द प्रेजेंट, यू नो, ये चीजें बहुत अहम रहती हैं। क्योंकि जब हम अपने पेट्स को डिसिप्लिन करते हैं, उन्होंने कुछ गलती कर दी या कुछ उनको मना किया कि कारपेट पे नहीं जाना है, और वो कभी कभी मुझे ट्राई करता था जरूर, यू नो, कि माँ देख तो नहीं रही है तो मैं जा रहा हूँ, बैठूंगा जाके या कुछ करूंगा। और खासकर जब घर में ऐसे होते हैं, कोई आ गया घर में, तो देन दे थिंक जस्ट लाइक चिल्ड्रन की, ओह आई कैन गेट अवे विद दिस,
0: मैं
1: करता हूँ, है ना? तो इस तरह से होता था। पर फिर उनको डिसिप्लिन करने के लिए थोड़ा न्यूज़पेपर को रोल करके, जो मम्मी ने सिखाया था मुझे, कि उन्होंने शायद पढ़ा था या फिर जब पेट केयर का, तो कि आप एक न्यूज़पेपर को जैसे रोल करके ना उसको करें, तो उससे चोट नहीं लगती है एनिमल को, पर उसकी जो आवाज होती है उससे से वो चौंक जाते हैं, उनको पता है कि मैंने कुछ गलत किया, और फिर वो आगे से नहीं करेंगे। तो वो एज पार्ट ऑफ ट्रेनिंग अ डॉग स्पेशली, ये बहुत इम्पोर्टेंट था। ऑफकोर्स लॉयल्टी तो मैंने बोला कि वो भी उन्हीं से सीखी, और लिविंग इन द प्रेजेंट, कि हम अपने पास्ट में नहीं चले गए, फ्यूचर का सोचना बंद कर दिया, तो एंजॉय द मोमेंट, उसी मोमेंट में रहे, तो वो ठीक था। और दूसरा सवाल, वो मैंने कहा कि बहुत सालों से अब मेरे पास कोई पेट नहीं है, क्योंकि मैं उसको पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके लिए मैं फुलफिल नहीं कर पाती हूँ। हमारे हस्बैंड जो है वो एक्सटेंसिव पीरियड्स के लिए ट्रैवल करते हैं, बच्चे भी बड़े हो गए हैं अपने अपने घरों में, और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनकी हैं, और मैं भी मेरी भी जॉब है जो आई कंटिन्यू टू वर्क, तो बहुत ही मुझे लगता है कि क्रूअल होगा कि अगर कुत्ते को हम पालेंगे तो हम वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं फुलफिल कर पाते हैं।
0: ब्यूटिफुल, यस,
1: क्योंकि अभी मेरे पास नहीं है कोई भी पेट।
0: करेक्ट करेक्ट, बट डू यू फील अ डिफरेंस लाइक अ वैक्यूम जब आपके पास पेट था, और जब यू नो अब यू डोंट हैव अ कंपेनियन, एंड अब बच्चे भी बाहर हैं, डू यू फील दैट वैक्यूम, और डू यू एवर थिंक कि नहीं शायद ले आऊं या कुछ कोई एक छोटा सा पेट रख लूं, ऐसा कभी कुछ मन में आता है मैम?
1: मन में आता जरूर है, और रख भी सकूं तो नहीं रख पाऊंगी, क्योंकि बहुत सेवा करनी पड़ती है जैसे बोला। और देख रही थी टीवी पे आजकल एक उफी करके एक डॉग है, हु इज लाइक एन एआई जनरेटेड डॉग, और वो एकदम और वो क्या है कि एकदम रियल डॉग की तरह है, जो आपके आसपास घूमता है, आपकी कमांड्स भी फॉलो करता है, आप उसको वॉक के लिए भी ले जा सकती हैं। तो मेरी बहुत ख्वाहिश है कि मैं जाके एक वूफी ले आऊं अपने लिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल, एआई का जमाना है तो उसका पूरा फायदा उठाया जाए। और बहुत ही खूबसूरत बातचीत रही मैम आपसे, बहुत ही सरल और सटीक तरीके से आपने अपनी बातें साझा की। अब अंत में, जैसे मैंने कहा था, बिकॉज अब गाती हैं और बहुत सुंदर गाती हैं, तो हमारे लिए कुछ गुनगुना दें जो हम बेंजी को डेडिकेट करना चाहते हैं।
1: बेंजी को डेडिकेट करती हूँ एक सॉन्ग, मेरे बच्चे और मैं, बच्चे भी छोटे थे तब, तो हमें गाना

0: very beautiful song. Yeah, it's a very sunny and lovely song. I've heard it before. It's a beautiful song. And I hope ये song आपकी feelings, हमारी feelings, पूरे SN family की feelings, Benji तक heavens में जरूर पहुंची होंगी. आज हमने Benji को याद किया और उसे ये गीत dedicate किया, ये episode dedicate किया. तो I hope Benji is smiling at us from the heavens above. Thank you so much,
1: Tanusha.
0: Sure.
1: Thank you, dear, for the opportunity, Tanusha. God bless you.
0: Thank you so much. आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी अच्छी बातें साझा करने के लिए.
1: Sure, it was a pleasure.
0: जी. बिंदु जी और Benji की कहानी वाकई दिल को छू लेने वाली है. Benji की पहली मुलाकात बिंदु जी के परिवार से ऐसी थी जैसे उसने पहली ही मुलाकात में सबको अपना बना लिया और फिर 10 सालों तक प्यार और वफादारी के साथ उस रिश्ते को निभाया और बहुत खास बनाया. बिंदु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने आज हमारे साथ इतनी प्यारी बातें, इतनी प्यारी यादें साझा की और हम सब ये एपिसोड Benji को डेडिकेट करते हैं. दोस्तों, मैं हूं आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे थे जिंदगी के रंग पेट्स के संग सिर्फ SN रेडियो पर. याद रखिए, पेट्स हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बनते हैं लेकिन अपनी यादों से हमारी जिंदगी भर मुस्कुराने की वजह दे जाते हैं. नमस्कार.
2: तो दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही. उम्मीद है आपको हमारे इन प्यारे साथियों से जुड़ी हुई ये बातें पसंद आई होंगी. अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा तो इसे जरूर शेयर करें और अगली बार फिर मिलेंगे एक और नए और दिलचस्प हमारे साथी के साथ जो हमसे बेहद प्यार करता है. तब तक अपने इन खास साथियों का ख्याल रखें और खुश रहें. नमस्कार.

आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर। हर घर

दोस्तों, एक नए दिन की शुरुआत के लिए जोशो खरोश से भरे हुए मैं और आप ये दिन शुरुआत करने के लिए तैयार हैं। आइए, आपका स्वागत है इस प्रोग्राम में। बहुत सारी कहानियां, बहुत सारे ऐसे लोगों के बारे में भी हम जानेंगे जिन्होंने अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जिया और दूसरों के लिए उन्होंने मिसालें कायम की। इन्हीं लोगों से प्रेरणा लेते हैं और ऐसे बहुत सारे गीत सुनते हैं जो हमें बस खुश कर देंगे, पूरे दिन के लिए तैयार कर देंगे, जोश से भर देंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को जोशो खरोश के साथ।

हेलो दोस्तों, क्या हाल है। जिंदगी जीने के तीन नियम। पहला नियम, ये व्यक्ति कहते हैं, चमकती आंखों से अपने आसपास की पूरी दुनिया को देखो। महान रहस्य ज्यादातर अजीबोगरीब जगहों पर होते हैं। जो चमत्कारों पर भरोसा नहीं रखते, उनके साथ चमत्कार होते भी नहीं। तो भैया, आंखों से जितना हम देख पाते हैं, उससे कहीं ज्यादा पर्दे के पीछे हो रहा होता है। जी हां, फिर चीजें दिखती तभी हैं जब खोजने वाली नजरें हों। तो ध्यान दीजिए अपनी चारों तरफ, ऑब्जर्व कीजिए, महसूस कीजिए। नियम नंबर दो, लक्ष्य होना अच्छा है, पर उससे हमारे अच्छे गुणों का नुकसान नहीं होना चाहिए। देखिए, अब इन्होंने तो कह दिया।

0: मतलब क्या हुआ?
1: जीवन में कुछ बड़े सपने होने चाहिए। देखिए, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए की गई कोशिशें भी हमें तरक्की की मार्ग पर ले जाती हैं। कोशिश तो करें, हमारी मेहनत हमें मांझती है, तैयार करती है। हमारा जुनून हम में बहुत कुछ बदल डालता है। कोशिश तो करें, पर किसी भी कीमत पर इच्छाओं को पूरा करने की जिद्द हमें कहीं नहीं ले जाती। जिद्द मत करिए, पैशनेट रखिए और काम करते तो रहिए। नियम नंबर 3, स्वीकार करें और फिर काम करें। इस पल में जो कुछ भी सामने है उसे मान लें, जैसे उसे आपने ही चुना हो। अपने आज का विरोध ना करें, जबरदस्ती अपोज ना करें उसका। उसे फ्रेंड बनाएं, शत्रु नहीं। इससे आपका जीवन बदल जाएगा। कल कैसा होगा हम कुछ नहीं कह सकते, पर कल को बेहतर बनाने के लिए हम आज मेहनत तो देखिए जरूर कर सकते हैं, पर इसके लिए आज को समझना भी तो जरूरी है। तो समझिए, आज में खुश रहिए, आज को समझिए। फिर मिलते हैं
2: दोस्तों। बने रहिए मेरे साथ आपके ही झाबुआ के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील पर 90.8 FM सुनते रहें।

दस्तकें। दरवाजे पर दी गई दस्तकें हैरत की आवाजें हैं। ये पूछना कि बाहर कौन है, दिल का जोर जोर से धड़कना है। दरवाजे खोलना प्रार्थनाएं हैं। दरवाजे के उस तरफ उसका नहीं होना कविता है। आंखें बंद करना और दरवाजों की दस्तक पर हैरान होना प्रेम है, प्रतीक्षा है। दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ आपके ही झाबुआ के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील पर 90.8 FM सुनते रहें।

0: इंसान और हिमालय में बहुत सारी समानताएं हैं। सबसे बड़ी समानता तो यही है कि दोनों सबसे ऊपर पहुंचना चाहते हैं और बस इसी की जद्दोजहद में इनके जीवन में तमाम तरह की उथल पुथल लगी ही रहती है। फिर भी दोनों रुकते नहीं हैं। दोनों की यही खूबी इन्हें एक दूसरे के करीब भी ले आती है और जोड़ भी देती है। जैसे ही आप हिमालय के नजदीक पहुंचेंगे, वैसे ही इस धरती के सबसे युवा प्राणी बियानी की आप और सबसे युवा पर्वत श्रृंखला हिमालय के बीच एक रोमायणी शुरुआत हो जाएगी। दोनों ही अभी विकसित होने की प्रक्रिया में हैं, इसलिए दोनों ही अब भी बढ़ रहे हैं। अपने चरम को पाने की कोशिश में दोनों की यात्रा जारी है और वो चक्र कभी थमेगा नहीं। हालांकि हिमालय के लिए अपनी चोटी या चरम को छूना आसान नहीं है। अपने विकास के इस प्रयास में वो विशाल पर्वत रोज टूटता है और इससे बड़े बड़े हिमस्खलन होते हैं। हिमनद बनते हैं, टूटते हैं, लेकिन इन तमाम घटनाओं और अवरोधों के बाद इसकी यात्रा में कभी ठहराव नहीं आता। साफ तौर से दिखने वाली ये सारी अफरा तफरी इस पर्वत श्रृंखला के बढ़ने और अपने चरम को छूने की कोशिश का ही एक नतीजा है। यही बात मनुष्य के साथ भी देखने को मिलती है। जब भी कोई आदमी आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो उसके जीवन में मुश्किलें तो देखो दोस्तों आती ही हैं। ये बेहद सांकेतिक है। पर्वत श्रृंखला के बढ़ने से हर रोज भूचाल, भूस्खलन और अन्य प्राकृतिक घटनाएं देखने को मिलती हैं। ठीक ऐसा ही हाल इंसान के जीवन का भी तो है। जब आप आगे बढ़ना चाहेंगे तो आपके जीवन में भूचाल आएंगे, मुश्किलें आएंगी और वो सारी मुश्किलें आपका पीछा करेंगी। तो जो लोग निष्क्रिय होते हैं, बस यूं ही आलस में पड़े रहते हैं और बढ़ना नहीं चाहते, उनके जीवन में ठहराव होता है। वैसे तो देखने को उनका जीवन औरों से बेहतर नजर आता है, लेकिन सच्चाई तो देखिए दोस्तों कुछ और ही है। बेकार बैठे रहने से या कुछ नहीं करने की ललक से जीवन को नीरस बना ही दिया जाता है। जीवन बहुत बोरिंग हो जाता है, बहुत सुस्त हो जाता है, जीवन बेजान सा हो जाता है। जो लोग अपने विकास के लिए निरंतर कोशिश करते हैं, उनके जीवन में तो देखो उथल पुथल होगी ही ना, और ऐसा होना जरूरी भी है, तभी इंसान विकास के लिए आगे बढ़ेगा। हिमालय में सबसे बड़ा हिमस्खलन कोई 5 करोड़ साल पहले हुआ था। तब से अब तक ये 5 मिलीमीटर की रफ्तार से धीरे धीरे हर साल ऊपर उठ रहा है। हालांकि महाद्वीप पर इसका विस्तार चौड़ाई में भले ही 5 सेंटीमीटर हर साल हो रहा हो, लेकिन ऊंचाई के मामले में ये 5 मिलीमीटर की सालाना दर से बढ़ रहा है। जीवन के साथ भी हमेशा यही होता है दोस्तों। आप धरातल पर कितना भी कुछ कर लीजिए, लेकिन इससे ऊंचाई तो थोड़ी सी ही बढ़ती है। ये सिद्धांत सब पर लागू है। फिर चाहे आप भौतिक सुख या कल्याण की खोज में जुटे हों या फिर आध्यात्म की तरफ घूम गए हों।
1: दोस्तों बने रहिए मेरे साथ आपके ही झाबुआ के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील पर 90.8 FM सुनते रहें।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: पापा ने पूछा, बेटी बड़ी होकर तुम क्या करोगी? बेटी ने बहुत हंसते हुए कहा, शादी कर लूंगी। पापा ने कहा, ये गलत बात है बेटे, अभी

किसी के बारे में इतना बुरा नहीं सोचते। दोस्तों बने रहिए मेरे साथ आपके ही झाबुआ के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील पर 90.8 FM सुनते रहें।

एक बार महर्षि व्यास ने अपने बेटे शुकदेव को पढ़ने के लिए राजा जनक के पास भेज दिया। राजा जनक का महल देखकर शुकदेव जी को लगा कि राजा उन्हें क्या उपदेश दे पाएंगे, बेकार में ही पिताजी ने इनके पास मुझे भेज दिया है। वो निराश होकर लौटने ही वाले थे कि राजा जनक ने उन्हें कहा, चलिए हम धर्म चर्चा महल में नहीं सत्संग भवन में करेंगे। सत्संग भवन में वो आत्मा परमात्मा के बारे में बातचीत ही कर रहे थे कि कुछ राज कर्मचारी हांफते हुए आए और कहने लगे कि महल के एक कमरे में आग लग गई है। राजा जनक ने शांति से कहा, देखो मैं इस मुनि के साथ ईश्वर संबंधी चिंतन में लीन हूं, आग बुझाने की कोशिश करो, सांसारिक संपत्ति नष्ट होती है तो हो जाने दो। आग की लपटें सत्संग भवन तक पहुंच गई, फिर भी राजा जनक परेशान नहीं हुए। लेकिन शुकदेव अपनी किताबें उठाकर कमरे से बाहर आ गए। जनक जी ने कहा, दुख का मूल संपत्ति नहीं, संपत्ति से प्यार है। हमें केवल वस्तुओं के उपयोग का अधिकार है। अक्षय संपत्ति के स्वामी और निर्धन दोनों को मृत्यु के समय सब कुछ यहीं छोड़कर जाना पड़ता है, इसलिए नाशवान धन संपत्ति के प्रति अपने प्यार को मत बढ़ाइए। कहने का मतलब यह है दोस्तों, आपके पास धन है, संपत्ति है, सुविधाएं हैं, तो सबका उपभोग कीजिए, लेकिन उनसे इतना प्यार ना कीजिए कि वो आपको परेशान करके रख दें। बस शुकदेव महाराज को समझ में आ गया कि वास्तव में जनक जी विदेह हैं। दोस्तों बने रहिए मेरे साथ आपके ही झाबुआ के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील पर 90.8 FM सुनते रहें।

आइए दोस्तों, आज आपको बताता हूं टाइगर मैन ऑफ इंडिया के बारे में। जी हां, इनका नाम था कैलाश सांखला। अपने यहां कहा भी गया है कि वीर भोग्या वसुंधरा, मतलब वीर ही इस धरती का भोग करेगा। यही बात व्यवहार में जब बहुत मजबूत हो गई तो अपना देश गुलाम हो गया। हमारे ज्यादातर कथित वीर अपने दुश्मनों को धूल चटाने के बजाय बाघ मारने में मस्त हो गए। 1875 से 1925 के बीच कथित वीर राजा राजकुमारों और कथित अंग्रेज बहादुरों ने 80,000 बाघों का कत्ल कर दिया। 1947 में अनुमानतः 40,000 बाघ थे। मैसूर के एक महाराजा और उनके मेहमानों ने 1945 से 1967 के बीच 100 से ज्यादा बाघ मार डाले। वो महाराज अपने अंतिम दिनों में बड़े निराश रहते थे कि 95 बाघ मारने के बाद वो 100 का आंकड़ा पूरा नहीं कर पाए। और तो और, भारत की आजादी के बाद भी इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ साल 1961 में सवाई माधोपुर आई और एक बाघ मारने की अपनी खूनी शौक पूरा कर गई। बाघों और वन्य जीवों ने इस जम्बू द्वीप पर कथित इंसानों के हाथों हैवानियत का वो दारुण दौर देखा है जब जंगल के कथित रक्षक अधिकारी शिकार की मंजूरी दिया करते थे। वन कटवाना, वन्य जीवों को मरवाना बिकवाना, ये कानूनी धंधा था। तब तमाम यारबाज वन रक्षक या कहिए तो भक्षक शिकार करवाने के लिए बहुत मशहूर हुआ करते थे। राजस्थान में एक ऐसे ही अधिकारी थे जो शिकार की मंजूरी बेधड़क दिया करते थे, लेकिन एक दिन संयोग से वो खुद शिकार पर निकल पड़े। आसानी से एक बाघ दिख गया, उससे भी ज्यादा आसानी से रक्षक महोदय ने उस पर बंदूक साध दी और गोली चला दी। बड़े ही शान से वो उस बाघ के पास पहुंचे और गौर किया कि कितने खूबसूरत जीव को उन्होंने मार गिराया। उसके बदन पर बहुत सुंदर चमकीली धारियां थीं, एकदम कोमल। शायद उसकी अंतिम सांसें चल रही थीं। उसका मुंह खुला हुआ था, शायद वो पूछना चाहता था, साहब आप वन रक्षक हो या भक्षक? वन आपको रक्षा करने के लिए दिया गया है या तबाह करने के लिए? वन का मतलब केवल पेड़ नहीं होते, वन्य जीव भी तो होते हैं। वन्य जीवों के बिना पेड़ों का या फिर जंगलों का मतलब ही क्या है? सवालों ने अधिकारी महोदय का पीछा करना शुरू कर दिया। बताओ कि शिकारी हो या संरक्षक? अगर संरक्षक हो तो शिकार क्यों किया, क्यों मारा? अगर जिंदा कर सकते हो तो जिंदा करके दिखाओ। खाल पर जो सुंदर धारियां हैं उनमें से एक भी बनाकर दिखाओ तो जाने। पछतावे ने बहुत बेचैन कर दिया, होने लगी बहुत परेशानी। ये क्या कर डाला मैंने? क्या यही भारतीय वन्य सेवा है? वो सोचने में डूब गए कि मैंने तो एक ही मारा, लेकिन सैकड़ों बाघों को शिकार का लिखित मंजूरी देकर मैंने ही तो मरवाया। मैं अनगिनत बाघों और वन्य जीवों का अपराधी हूं। उन्होंने गौर करना शुरू किया तो देखा भारी सरकारी पैसा पा रहे अनेक रजवाड़े शिकार करके मूछे ऐंठ रहे हैं। उदयपुर के महाराज हों या टोंक के नवाब, जयपुर के कर्नल हों, तो उन्होंने दावा किया कि उन्होंने 1,000 बाघों के शिकार में भाग लिया। जाने कितने ही तेंदुए, जंगली सुअर और अन्य बड़ी बिल्लियां मार दी गईं, कोई हिसाब नहीं। असर कुछ ऐसा हुआ कि कुछ ही दिनों में लोग चर्चा करने लगे कि एक युवा वन अधिकारी हैं कैलाश सांखला जो शिकार की मंजूरी नहीं देते। साल 1956 से ही सांखला ने लोगों से कहना शुरू कर दिया कि कृपया अबोध वन्य प्राणियों को मत मारिए, वरना वो समाप्त हो जाएंगे और जंगलों का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तब हालात बेहद खराब थे। दुनिया भर में भारत में पर्यटन का मतलब होता था जंगलों में जाइए और जानवरों को मारने का मजा लूटिए।
कैलाश सांखला देश में पहले ऐसे वन्य जीव प्रेमी थे जिन्होंने समझ लिया कि पहले देश का कानून बदलना पड़ेगा। सांखला के प्रयासों से धीरे धीरे स्थितियां बदलने लगी। वन्य जीवों और उनके अंगों का व्यापार रुक गया, निर्यात रुका और अंततः प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी को समझ में आ गया कि बाघों को बचाना होगा। और तब देश में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई। कैलाश सांखला उसके पहले निदेशक बनाए गए। तब भारत के जंगलों में 300 से कम बाघ बचे थे। वो कहते थे कि जंगलों में कुछ मत करो और किसी को कुछ करने भी मत दो, प्रकृति अपने आप असली रंग रूप में लौट आएगी और बस कम से कम मानवीय हस्तक्षेप तो ना होने दो। भारत में साल 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ और सन 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शानदार शुरुआत हुई। उस साल बाघ देश के 9 जंगलों में सुरक्षित थे और अब करीब 53 जंगलों में सुरक्षित हैं। 29 जुलाई को जब विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है तब पूरी दुनिया गौर करती है, 75% बाघ केवल अकेले भारत में हैं। यहां वनों में उनकी संख्या 3000 से ज्यादा हो चुकी है। ऐसे में कैलाश सांखला को भला हम कैसे भूल सकते हैं। दोस्तों बने रहिए मेरे साथ, आपके ही झाबुआ के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील पर 90.8 FM सुनते रहें।

आप अत्यंत विनम्र और बेहद अच्छे इंसान हो जाते हैं। जब तक आप अपने अंदर शांति लाने के योग्य नहीं हैं, आप भला विश्व में शांति स्थापित करने के योग्य कैसे हो सकते हैं? मतलब ये हुआ कि अगर आप अंदर से खुद शांत नहीं हैं, तो बाहर आप शांति कैसे फैला सकते हैं? अगर इस छोटे से मन को आप शांत नहीं कर सकते, तो क्या विश्व में शांति पैदा कर पाएंगे? आप संसार में जो भी देख रहे हैं, वो आपके छोटे से मन की एक छवि है। क्या संसार में ऐसी कोई चीज हो रही है जो आपके मन में नहीं हो रही? वही तो हो रही है। योग विज्ञान अपने भीतर देखने का एक तरीका है। किसी खास दृष्टिकोण से नहीं देखना, सिर्फ भीतर देखना। यदि आप किसी चीज से अपनी पहचान बना लें, तो आप भीतर नहीं देख सकते। जैसे ही आप किसी चीज से अपनी पहचान बनाते हैं, आपके लिए सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। गौर कीजिए, इस बात को इस तरह से भी कहा जा सकता है दोस्तों कि मैं एक तरह की गाड़ी चलाता हूं, मैं एक तरह के मकान में रहता हूं, फ्लैट में रहता हूं, एक तरह का मोबाइल लिए फिरता हूं। क्या मेरी पहचान इन चीजों से है या मेरी पहचान से इन चीजों की पहचान है? सोचने की कोशिश कीजिए। आपका सोचना और महसूस करना बस इसी बात पर निर्भर करता है कि इस वक्त आपने अपनी पहचान किससे बनाई है। गाड़ी से, मोबाइल से, घड़ी से, घर से, किससे? अपनी पहचान को मिटाने और सच्ची शांति का अनुभव करने में ध्यान आपकी मदद करता है। जब आप ध्यान करते हैं, तो कम से कम उस वक्त तो आपके लिए कुछ भी और मायने नहीं रह जाता, सिर्फ आपका वजूद बच जाता है। वहां भी कुछ भी शेष नहीं रह जाता। शांति का मतलब है शून्यता या खालीपन। शांति कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप पैदा करते हैं। शांति ऐसी कोई चीज नहीं है जो घटित होती है। शांति ऐसी चीज है जो हमेशा है। शांति ही अस्तित्व की बुनियाद है। सतह पर जो होता है व्यवधान है, उपद्रव है, वो ठीक समुद्र जैसा होता है। समुद्र की सतह पर हलचल होती है ना, लेकिन नीचे गहराइयों में ये पूरा शांत होता है। जब आप इस गुण के साथ अच्छा तालमेल बिठा लेंगे, तो वास्तव में शांति पा जाएंगे। दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ आपके ही झाबुआ के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील पर 90.8 FM सुनते रहें।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: पता नहीं भैया, तुम लोगों का ब्रेकअप कैसे हो जाता है, यहाँ तो मेरी सेटिंग ही नहीं हो पा रही है। दोस्तों बने रहिए मेरे साथ, आपके ही झाबुआ के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील पर 90.8 FM सुनते रहें।

तो दोस्तों, इस जोश को, इस उत्साह को, इस खुशी को बनाए रखिएगा पूरे दिन। कल सुबह हम लोग फिर मुलाकात करेंगे एक नए जोश के साथ, नए उत्साह के साथ जिंदगी को जीने के लिए। मैं आपका दोस्त हूँ समीर, कल मिलते हैं।

हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आरजे समीर और मैं लाया हूं प्रोग्राम आज के कलाकार। आज के प्रोग्राम में कौन कलाकार हैं? बस अभी पता चलता है।

आज के कलाकार प्रोग्राम की अदाकारा हैं सायरा बानो। दोस्तों, सायरा बानो जी का जन्म 23 अगस्त 1944 को मसूरी में हुआ था। आइए, पेश खिदमत है उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

मैं समीर बोल रहा हूं, आपका रेडियो दोस्त। बने रहिए मेरे साथ। आगे जाने से पहले सुनते चलते हैं दोस्तों ये गीत।

दोस्तों, सायरा बानो जब 16 साल की थीं तभी से उन्होंने हिंदी फिल्मों में काम करना शुरू किया। वो कथक और भरतनाट्यम की बहुत प्रवीण नर्तकी थीं। लीजिए सुनते हैं उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

कैसे हैं दोस्तों, आप हैं आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ। मनुष्य के शरीर के बारे में और मस्तिष्क के बारे में एक बड़ी मजेदार बात बताता हूं दोस्तों। मनुष्य का मस्तिष्क, जो कि हमारा कंट्रोलर माना जाता है, जहां पर सारी पढ़ाई लिखाई अनुभव स्टोर होते हैं, आपको पता है वो किसी भी बात को सिर्फ पिक्चर्स में, छवियों में ही समझता है। मस्तिष्क के लिए शब्द कोई मायने नहीं रखते, सिर्फ छवियां, पिक्चर्स, फोटोज मायने रखती है। जब हम कहते हैं पेड़ तो मस्तिष्क एक पेड़ की छवि बनाता है। जब हम कहते हैं चिड़िया, हाथी, जंगल, जानवर, इंसान, तो मस्तिष्क सिर्फ छवियां बनाता है और उन्हीं को समझता है। इसलिए जब हम मोबाइल पर पिक्चर देखते हैं तो मस्तिष्क का काम तो हो गया ना, यानी कि मस्तिष्क चुपचाप बैठ जाता है, उसे छवि बनाने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि छवियां पहले से बनी बनाई हमें दिखाई देती हैं। लेकिन जब हम किसी चीज को सुनते हैं तो मस्तिष्क उन सुनी हुई चीजों पर छवियां बनाता है, यानी कि मस्तिष्क की कोशिकाएं, यानी कि मसल्स काम करती हैं और हमारा दिमाग तेज होता जाता है। तो इसलिए दोस्तों, रेडियो सुनते रहिए, क्योंकि मस्तिष्क उन सुनी हुई ध्वनियों पर, आवाजों पर छवि बनाता है और तंदुरुस्त रहता है। तो बने रहिए आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ। सायरा बानों जी की बहुत सी फिल्मों में विश्वजीत और जॉय मुखर्जी के साथ उन्होंने अभिनय किया और इनकी जोड़ी हमेशा बहुत हिट रही। लीजिए, पेश खिदमत है उनकी फिल्म का ये गीत।

देखे कहीं जाइएगा नहीं, बस मैं अभी हाजिर हुआ, बने रहिए मेरे साथ। मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं, समीर।

मैं हूं आपका दोस्त आरजे समीर। आगे बढ़ने से पहले जरा सा हंस लेते हैं। लीजिए दोस्तों, पेश खिदमत है हंसी का ये फुआरा। जंगल में एक भैंस भागी हुई जा रही थी। चूहे ने रोका, क्या हो गया बहन, इतनी तेजी से भागी जा रही हो? भैंस ने कहा, पुलिस आई है हाथी को पकड़ने। चूहे ने कहा, तो वो हाथी को पकड़ने आई है, तुम तो हाथी नहीं हो। उसने कहा, भैया ये हिंदुस्तान की पुलिस है, अगर पकड़ लिया ना तो 20 साल तो साबित करने में निकल जाएंगे कि मैं भैंस हूं, हाथी नहीं हूं।

मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं समीर। आप मेरे साथ है ना? लीजिए दोस्तों, सुनिए सायरा बानो जी की फिल्म का ये गीत।

मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं, समीर। आप मेरे साथ है ना? लीजिए दोस्तों, सुनिए सायरा बानो जी की फिल्म का ये गीत।

तो दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में इतना ही। मैं आपका दोस्त आरजे समीर बहुत जल्द वापस हाजिर होऊंगा आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम के साथ। सुनना ना भूलिएगा आज के कलाकार।

हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आरजे समीर और मैं लाया हूं प्रोग्राम आज के कलाकार। आज के प्रोग्राम में कौन कलाकार हैं? बस अभी पता चलता है।

आज के कलाकार प्रोग्राम में आज की कलाकारा हैं हेलन। जी हाँ, हेलन जो बहुत प्रसिद्ध डांसर रहीं, एक्ट्रेस रहीं हमारी हिंदी फिल्मों की। हेलन का असली नाम है हेलन एंड रिचर्डसन खान। जी हाँ, हेलन दरअसल एक क्रिश्चियन हैं। आइए उन्हीं के ऊपर फिल्माया हुआ ये गीत सुनते हैं।

0: श्रोताओं, हम स्वागत करते हैं महेंद्र गौतम जी का जयपुर से। गौतम भाई, जरा ये बताइए अदाकारा हेलेन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
1: शी वॉज अ वेरी गुड डांसर एक्चुअली। उनकी केमिस्ट्री जो आयशा भोसले के साथ में है और उनके जो गाने हैं वो आपको वैसे ही थिरकने के लिए मजबूर कर देते हैं, तो वो उनके गाने अपने आप में बहुत मजेदार गाने होते थे। आप थिरकते थे उनसे, आज भी थिरक उठते हो।
0: बेहतरीन बेहतरीन गौतम भाई, थैंक यू सो मच। गौतम, आपका बहुत बहुत आभार।
1: थैंक यू।

कैसे हैं दोस्तों, आप हैं आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ। मनुष्य के शरीर के बारे में और मस्तिष्क के बारे में एक बड़ी मजेदार बात बताता हूं दोस्तों। मनुष्य का मस्तिष्क, जो कि हमारा कंट्रोलर माना जाता है, जहां पर सारी पढ़ाई लिखाई अनुभव स्टोर होते हैं, आपको पता है वो किसी भी बात को सिर्फ पिक्चर्स में, छवियों में ही समझता है। मस्तिष्क के लिए शब्द कोई मायने नहीं रखते, सिर्फ छवियां, पिक्चर्स, फोटोज मायने रखती है। जब हम कहते हैं पेड़ तो मस्तिष्क एक पेड़ की छवि बनाता है। जब हम कहते हैं चिड़िया, हाथी, जंगल, जानवर, इंसान, तो मस्तिष्क सिर्फ छवियां बनाता है और उन्हीं को समझता है। इसलिए जब हम मोबाइल पर पिक्चर देखते हैं तो मस्तिष्क का काम तो हो गया ना, यानी कि मस्तिष्क चुपचाप बैठ जाता है, उसे छवि बनाने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि छवियां पहले से बनी बनाई हमें दिखाई देती हैं। लेकिन जब हम किसी चीज को सुनते हैं तो मस्तिष्क उन सुनी हुई चीजों पर छवियां बनाता है, यानी कि मस्तिष्क की कोशिकाएं यानी कि मसल्स काम करती हैं और हमारा दिमाग तेज होता जाता है। तो इसलिए दोस्तों रेडियो सुनते रहिए, क्योंकि मस्तिष्क उन सुनी हुई ध्वनियों पर, आवाजों पर छवि बनाता है और तंदुरुस्त रहता है। तो बने रहिए आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ।

हेलन का जन्म 21 नवंबर 1938 को बर्मा में हुआ। उनके पिता की मौत वर्ल्ड वॉर सेकेंड में हो गई, तभी उनकी फैमिली भारत में शिफ्ट हो गई। यहीं पर हेलन का करियर बॉलीवुड फिल्मों में शुरू हुआ। आइए दोस्तों सुनते हैं उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

बड़ी ही मजेदार बात है कि एज एक्ट्रेस हेलन और उनके लिए गाना गाने वाली हमारी प्रसिद्ध गीत गायिका आशा भोसले जी की बेहद गहरी दोस्ती थी। आशा भोसले जी ने हेलन के करीब करीब सारे गाने गाए हैं। आइए दोस्तों सुनते हैं उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

हेलन ने सलीम खान जी से शादी की, जिसकी वजह से वो सलमान खान जी की फैमिली से जुड़ी। यूं देखा जाए तो सलमान खान उनके सौतेले बेटे हैं, बट दोनों के बीच बेहद प्यार है। आइए दोस्तों सुनते हैं उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

हेलन को सबसे पहला बढ़िया ब्रेक हावड़ा ब्रिज नाम की मूवी में मिला, जिनका बहुत ही फेमस गाना है, बहुत ही प्रसिद्ध गाना है, मेरा नाम चिंग चिंग चू। आइए दोस्तों सुनते हैं यही गीत।

आपको ये जानकर आश्चर्य होगा दोस्तों कि हेलन को ऐश्वर्या राय और अक्षय कुमार के साथ साथ पद्म श्री अवार्ड्स के लिए भी चुना गया। आइए दोस्तों सुनते हैं उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

कैसे हैं दोस्तों, आप हैं आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ। मनुष्य के शरीर के बारे में और मस्तिष्क के बारे में एक बड़ी मजेदार बात बताता हूं दोस्तों। मनुष्य का मस्तिष्क, जो कि हमारा कंट्रोलर माना जाता है, जहां पर सारी पढ़ाई लिखाई अनुभव स्टोर होते हैं, आपको पता है वो किसी भी बात को सिर्फ पिक्चर्स में, छवियों में ही समझता है। मस्तिष्क के लिए शब्द कोई मायने नहीं रखते, सिर्फ छवियां, पिक्चर्स, फोटोज मायने रखती है। जब हम कहते हैं पेड़ तो मस्तिष्क एक पेड़ की छवि बनाता है। जब हम कहते हैं चिड़िया, हाथी, जंगल, जानवर, इंसान, तो मस्तिष्क सिर्फ छवियां बनाता है और उन्हीं को समझता है। इसलिए जब हम मोबाइल पर पिक्चर देखते हैं तो मस्तिष्क का काम तो हो गया ना, यानी कि मस्तिष्क चुपचाप बैठ जाता है, उसे छवि बनाने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि छवियां पहले से बनी बनाई हमें दिखाई देती हैं। लेकिन जब हम किसी चीज को सुनते हैं तो मस्तिष्क उन सुनी हुई चीजों पर छवियां बनाता है, यानी कि मस्तिष्क की कोशिकाएं यानी कि मसल्स काम करती हैं और हमारा दिमाग तेज होता जाता है। तो इसलिए दोस्तों रेडियो सुनते रहिए, क्योंकि मस्तिष्क उन सुनी हुई ध्वनियों पर, आवाजों पर छवि बनाता है और तंदुरुस्त रहता है। तो बने रहिए आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ।

0: देखे कहीं जाइएगा नहीं, बस मैं अभी हाजिर हुआ, बने रहिए मेरे साथ। मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं, समीर। मैं हूं आपका दोस्त आरजे समीर। आगे बढ़ने से पहले जरा सा हंस लेते हैं। लीजिए दोस्तों, पेश खिदमत है हंसी का ये फुआरा।
1: मैंने जब दरवाजा खोला ना भैया, तो उसकी आंखों में आंसू थे, सांसों में तेजी थी, दिल में बेबसी थी। परली ने पहले बताया ही नहीं कि दरवाजे में उसकी उंगली फंसी थी।

देखे कहीं जाइएगा नहीं, बस मैं अभी हाजिर हुआ, बने रहिए मेरे साथ। मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं, समीर।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हमारा बहुत ही खास प्रोग्राम जहां शब्दों में एहसास है और हर शेर में दिल की बात। आज की इस महफिल में पेश है कुछ खूबसूरत गजलें जो आपके दिल को छू जाएंगी। आपके साथ हैं आपकी ही मेजबान, आपकी ही रेडियो दोस्त आरती जी। तो आइए शुरू करते हैं गजलों और सुरों का ये प्यारा सफर।
1: तुम हमारे नहीं तो क्या गम है, तुम हमारे नहीं तो क्या गम है, हम तुम्हारे तो हैं ये क्या कम है। हुस्न की शोखियां जरा देखो, गाहे शोला है गाहे शबनम है। मुस्कुरा दो जरा खुदा के लिए, शम्मे महफिल में रोशनी कम है। बन गया है ये जिंदगी अब तो, बन गया है ये जिंदगी अब तो, तुझसे बढ़कर हमें तेरा गम है। नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त आरती रॉय 90.8 FM की जरखेज लहरों पर। आप सुन रहे हैं रेडियो SN और रेडियो टांटिया भील पर रुमानियत और जज्बात से लबरेज आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम अल्फाज से एहसास तक। दोस्तों, जब ढलती हुई रात अपने आंचल में तन्हाइयों को समेटती है तो रूह को किसी ऐसे सहारे की जरूरत होती है जो सीधे दिल में उतर जाए। अमूमन हमने अपने अजीम फनकारों के फिल्मी नगमों को सुना है, मगर आज की महफिल कुछ जुदा है, कुछ खास है। आज हम उन अजीम आवाजों के उन पोशीदा शाहकारों को सुरों का जामा पहनाने जा रहे हैं जो मुकम्मल तौर पर गजलियत के रंग में रंगे हैं। आज की इस नशिस्त यानी महफिल में गुजरे दौर के वो शहंशाह मौसीकी के बज़्म सजाएंगे जिन्होंने अपनी गैर फिल्मी गजलों, हिजर हिजर और वसल, दर्द और मोहब्बत के ऐसे नक्श छोड़े हैं जो कभी धुंधले नहीं होते। जब अल्फाज सीधे रूह से निकलते हैं तो वो शायरी नहीं, एक मुकम्मल एहसास बन जाता है। तो फिर देर किस बात की, अपने दिलों के दरीचे खोल दीजिए, खामोशी को जरा और गहरा होने दीजिए और डूब जाइए सुरों के इस सहर में। मुलाकात करते हैं आज की पहली मखमली गजल से। इस पुरसकून शाम का पहला नजराना पेशी खिदमत है उस अजीम फनकार की पैरवी में जिनकी आवाज का सोज सीधे रूह में सरायत कर जाता है। जी हाँ, मरहूम मुकेश साहब। यूं तो बंदिशों और फिल्मी दस्तूर में हमने उनकी गायकी के कई रंग मुलहजा किए हैं, मगर जब वो गैर फिल्मी महफिलों की जान बनते हैं तो उनका मिजाज एक अलहदा ही शक्ल अख्तियार कर लेता है। शायर शिव कुमार सरोज के इस बेहद नफीस और मुकद्दस कलाम को जब किशोर देसाई की मखमली धुनों का साथ मिला और उस पर मुकेश साहब ने अपनी बेसाख्ता सादगी बिखेरी तो हुस्न इश्क की लाजवाब दास्तान मुकम्मल हुई।

सदियां गुजरी, फूल खिले थे जीवन की अंगनाई में। सदियां गुजरी, फूल खिले थे जीवन की अंगनाई में। आ जाती हैं यादें जिनकी, जाने क्यों तन्हाई में। अश्कों के खामोश लबों पर आज भी एक अफसाना है। फिर कहते हैं, रातों का सन्नाटा जैसे समझाता हो राज कोई। यूं लगता है कि आज कि जैसे देता हो आवाज कोई। ना जाने तकदीर में दिल की, ना जाने तकदीर में दिल की कब तक ठोकर खाना है। जिसने दिल को आंसू बख्शे, गम जिसका नजराना है, अब तक इसका दम भरता है, अब तक इसका दम भरता है, दिल भी क्या दीवाना है। इस मुकद्दस सफर को आगे बढ़ाते हुए अब हमारी अगली पेशकश गवाही दे रही है उस पाकीज़ा आवाज को, जिसमें छाई हुई खामोशी भी हजारों अफसाने बयां कर देती है। जी हाँ, रेशमी आवाज वाले मरहूम तलत महमूद साहब। तलत साहब की गायकी में जो एक रेशमी लर्जिश और नफासत है, वो सीधे रूह के तारों को छेड़ देती है। शायर जफर गोरखपुरी के इन पुरअसरार अल्फाज को जब मौसिकार सी के चौहान ने अपनी जहीन धुनों में ढाला, तो गम और तन्हाई का एक ऐसा हसीन साया वजूद में आया, जो दिल को अपनी आगोश में भर लेता है। तसव्वुर कीजिए, जब आधी रात के सन्नाटे में ऐसा महसूस होने लगे, कोई गुमशुदा सी आवाज हमें पुकार रही हो, तब दिल की बेबसी और तकदीर की ठोकरों का ये जिक्र और भी मुअस्सर हो जाता है। ये एक ऐसी दीवानगी है जहां दर्द ही दिल का सबसे अजीज सरमाया बन बैठता है। तो आइए, तन्हाइयों के इस पुरकशिश आलम में डूब जाते हैं और सुनते हैं तलत महमूद साहब की आवाज में ये बेहद सोज और गुदास से भरी नायाब गजल, जिसने दिल को जिसके बोल हैं, जिसने दिल को आंसू बख्शे, गम जिसका नजराना है, अब तक इसका दम भरता है, दिल भी क्या दीवाना है। आपकी नजर।

दोस्तों, अल्फाज से एहसास तक के इस पाकीज़ा सफ़र में अब वक्त हो चला है उस अजीम फनकार के हुनर को सलाम करने का, जिनके सुरों की पुख्तगी और गायकी का मियार मुकद्दस तरीन माना जाता है। जी हाँ, सुरों के सरताज मरहूम मन्ना डे साहब। अमूमन मन्ना डे साहब की आवाज़ में हमने हर मिजाज के गीत सुने हैं, मगर जब वो खुद अपनी ही बनाई बंदिशों में ढलते हैं तो उनकी गायकी का एक अलहदा और नहायत संजीदा रूप सामने आता है। मशहूर नगमाकार मधुकर राजस्थानी के इन पुरासर और हसीन अल्फाज को जब मन्ना दा ने अपनी जहीन मौसीकी से संवारा तो बिछड़ते हुए हुस्न और टूटे हुए ख्वाबों की एक मुकम्मल तस्वीर उभर आई। जरा तसव्वुर कीजिए कि जब सुहाग और मोहब्बत की निशानी वो पाकीज़ा मोती नथली से जुदा होता है तो सिर्फ धागा नहीं टूटता, बल्कि दिल का सारा धीरज और आंख की पूरी कायनात रो पड़ती है। सुरों की ये नफासत और इस अल्फाज की रवानगी आज के इस माहौल को दर्द से सरोबार कर रही है। तो आइए समातों को इस लाजवाब मौसीकी के हवाले करते हैं और सुनते हैं मन्ना डे साहब की इस बेहद नायाब पेशकश को। फरमाते हैं, रूप की अंगिया अंग में लागी, कैसे छुपाए लाज अभागी, लाज अभागी। मनवारे कहे आज, मनवारे कहे आज, भोर कभी ना होती रे। गजरारी अखियां रह गई रोती रे। नथली से टूटा मोती रे।

दोस्तों, अल्फाज और एहसास तक की हमारी पुरसोज महफिल में अब वक्त हो चला है। उस मसीहाए आवाज के हुजूर में अकीदत पेश करने का, जिनके सुरों में कायनात का सारा सोज और सुकून सिमट आता है। जी हाँ, सरजमीने मौसीकी के बेताज बादशाह मरहूम मोहम्मद रफ़ी साहब। रफ़ी साहब ने जब गैर फिल्मी महफिलों का रुख किया तो उन्होंने अल्फाज को सीधे रूप का लिबास पहना दिया। अजीम शायर राजा मेहदी अली खान साहब की इस बेहद पुरअसर और शिकस्ता दिल कलाम को अजीम मौसिकार मदन मोहन साहब की पुरदर्द धुनों का साथ मिला तो तन्हाई और हिजर की एक ऐसी इंतहा वजूद में आई जिसे सुनकर आंखें अश्कबार हो जाती हैं। जरा तसव्वुर कीजिए कि जब महबूब के जुदा होने के बाद जिंदगी का हर लम्हा एक भारी पहाड़ जैसे लगने लग जाए और फिर मौत का इंतजार ही आखिरी आस बन जाए, तब दिल की बेबसी किस कदर गहरी होती है। रफी साहब की आवाज का वो धीमा ठहराव और दर्द की ये पाकीज़गी आज की इस शाम को एक अलहदा ही सोच से सरोबार कर रही है। तो आइए तन्हाई के इस बेहद हसीन और मुकद्दस आलम में डूब जाते हैं और समायत फरमाते हैं मोहम्मद रफ़ी साहब की ये नायाब गैर फिल्मी गज़ल। फूल खिले तो यूं लगे फूल नहीं ये दाग हैं, फूल खिले तो यूं लगे फूल नहीं ये दाग हैं, तारे फलक पे यूं लगे जैसे बुझे चिराग हैं। फिर कहते हैं चांद घटा में छुप गया सारा जहां उदास है, कहती है दिल की धड़कने तू कहीं आस पास है, आके तड़प रहा है जो तेरे बगैर पाऊंगा हर शय में कमी, तेरे बगैर कैसे कटेगी जिंदगी, तेरे बगैर

दोस्तों, अल्फाज से एहसास तक के इस रूहानी सफ़र में अब तक हम तन्हाई और हिजर के रंगों में डूबे हुए थे, मगर अब वक्त हो चला है उस अजीम फनकार की तरफ बढ़ने का जिनकी आवाज़ में ज़िंदगी का हर मिजाज रहता है, रमा रहता है। जी हाँ, हृदय दिल किशोर कुमार जी। यूँ तो ये शाहकार एक फिल्मी दस्तूर का हिस्सा है, मगर इसकी सादगी और इसका मफहूम यानी मतलब किसी मुकम्मल और पाकीज़ा गज़ल से कम नहीं। शायर योगेश साहब की इन पुर उम्मीद अल्फाज पर जब मौसिकार राजेश रोशन ने अपनी बेहद मखमली और पुरसकून धुन से नवाजा, तो छाए हुए अंधेरों के दरमियां एक नई सुबह को नई सुबह की उम्मीद जाग उठी। तसव्वुर कीजिए कि जब दिल मायूसियों की गहराइयों में डूबा है और अचानक एक सोज भरी आवाज ढाड़स बंधाए कि ये तन्हाई और उदासी के दिन हमेशा नहीं रहने वाले, कहीं तो रोशनी की एक किरण मिलेगी, तब रूह को अलैदा ही तसल्ली बख्श सुकून मयसर होता है। किशोरदा के सुरों का ये संजीदा हैरान ठहराव आज की इस महफिल को एक नया उफुक यानी हाइट यानी क्षितिज दे रहा है। तो आइए मायूसियों को कहते हैं अलविदा और इस हसीन उम्मीद के साए में समायत फरमाते हैं किशोर कुमार साहब की आवाज़ में ये बेहद नायाब और रूहानी पेशकश। कभी सुख कभी दुख, यही जिंदगी है, ये पतझड़ का मौसम घड़ी तो घड़ी है। नए फूल कल फिर डगर में खिलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो टलेंगे। फिर कहते हैं भले तेज कितना हवा का वो झोंका, मगर अपने मन में तू रख ये भरोसा, जो पिछड़े हैं सफर में तुझे फिर मिलेंगे।

तुम जो आए तो बहारों पे शबाब आया है, तुम जो आए तो बहारों पे शबाब आया है, इन नज़ारों पे भी हल्का सा नशा छाया है। अपनी आँखों का नशा और भी बढ़ जाने दो। दोस्तों, हमारी अगली पेशकश गवाही दे रही है सरजमीने मौसीकी की उस अजीम फनकार के आखिरी नजराने की, जिन्होंने बरसों तक हिंदुस्तानी संगीत की तकदीर को संवारा। जी हाँ, मौसीकी शहंशाह मरहूम नौशाद साहब। फिल्म ताजमहल का ये शाहकार नौशाद साहब के उस फन का आखिरी चिराग है जिसकी रोशनी कभी मद्धम नहीं हो सकती। अजीम शायर नक्श लायलपुरी साहब के इस बेहद हसीन, नाजुक और रोमानियत से लबरेज कलाम को जब नौशाद साहब के मुकद्दस धुनों का साथ मिला और उस पर हरिहरन साहब ने अपनी सोजो गुदास भरी मखमली आवाज़ का जादू बिखेरा, तो हुस्न और इश्क की एक मुकम्मल और अमर दास्तां वजूद में आ गई। तो सफर की इंतहा तो देखिए, जहां महबूब

दोस्तों, अल्फाज से एहसास तक के इस रूहानी सफ़र के आखिरी पड़ाव पर अब हम आ पहुँचे हैं और आज की इस आखिरी पेशकश के लिए हम याद कर रहे हैं एक ऐसी आवाज़ को जिसने हर धड़कन को जीना सिखाया। जी हाँ, बेहद अजीज मरहूम के साल 2008 के एल्बम हम सफ़र से ली गई ये पेशकश के फन का वो मुनफरिद रंग है जहाँ उनका मिजाज पूरी तरह से गजलियत के सांचे में ढल जाता है। शायर महबूब खान के इन रूहानी अल्फाज को जब के साहब ने खुद अपनी मखमली धुन और अपनी खूबसूरत आवाज़ से नवाजा तो दिल की गहराइयों में उतरने वाली एक लाजवाब इबादत मुकम्मल हुई। ये एक ऐसा सूफियाना एहसास है जो आज की इस महफिल को मुकम्मल सुकून की तरफ ले जा रहा है। तो आइए समायतों को इस आखिरी नजराने के हवाले करते हैं। सुनिए के साहब की आवाज़ में ये रूहानी गज़ल। जिंदगी जख्म सही तू मगर मरहम है, जिंदगी जख्म सही तू मगर मरहम है, दर्द है दिल में अगर तू मगर हमदम है। आपकी नज़र।

तो दोस्तों, सुरों और अल्फाजों का ये पाकीज़ा कारवां जो आज हमारे अजीम फनकारों की गैर फिल्मी गज़लों के साए में शुरू हुआ था, अब अपने अंत तक पहुंच रहा है। वक्त की पाबंदी और घड़ियों की सुइयां अब हमसे विदा लेने का तकाजा कर रही हैं, मगर यकीन मानिए, ये सुर, ये शायरी और इन अजीम आवाज़ों का सोज हमारे दिलों के दरीचों में हमेशा रवा रहेगा। उम्मीद करती हूँ कि आज की इस शाम ने आपके दिलों को सुकून का एक नया एहसास बख्शा होगा। अब वक्त हो चला है आपसे रुख्सत लेने का, कल फिर इन्हीं रूहानी लहरों पर आपसे दोबारा मुलाकात होगी, जज्बातों के कुछ नए अल्फाज के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और सुनते रहिए अपना पसंदीदा रेडियो SN और रेडियो टांटिया भील 90.8 FM की लहरों पर। मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त आरती रॉय। आप इजाज़त दीजिए, शबा खैर, शुभ रात्रि, खुदा हाफिज़, फिर मिलेंगे।

0: दोस्तों, आपके मेजबान आरती जी के साथ आज की हमारी गजलों भरी महफिल बस यहीं खत्म होती है। उम्मीद है ये गजलें, ये अल्फाज आपके दिल को पसंद आए होंगे। इसी तरह जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि आरती जी फिर लौटेंगी नई गजलों और नई भावनाओं के साथ। नमस्कार।
1: आप जिनके करीब होते हैं।
2: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
3: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
4: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
3: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
5: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
6: घर सूर्य घर।
7: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो, आपड़ी बातें।
8: किसान का पुत्र हूँ, खेती करना मेरा कर्म है, अपने साथ दूसरों का पेट भरना मेरा धर्म है। खेती से बदलता भविष्य नवीन, खेती के माध्यम से दिखता सुनहरा भविष्य। खेती से सक्षम होता किसान, नवीन तकनीकें बदलती खेती का रुख। किसान साथियों, एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं आप सभी का खेतीबाड़ी कार्यक्रम में। खेतीबाड़ी कार्यक्रम के माध्यम से रेडियो टांडिया भील 90.8 FM का यही प्रयास रहा है कि हमारा जो किसान है अपनी आय को दुरुस्त करें और अपनी आजीविका को सशक्त बनाने हेतु अपनी कृषि में पर्यावरण के अनुसार बदलाव करें। साथ ही केवीके और कृषि विद्यालयों के माध्यम से भी नवीनतम कृषि तकनीकों का, नवीनतम कृषि पद्धतियों का प्रशिक्षण ले सकता है और अपने खेतों में वह उसका प्रयोग करके अधिक से अधिक उपज ले सकता है। तो किसान साथियों, आपका ज्यादा वक्त ना लेते हुए आज के इस

0: कार्यक्रम को शुरू करते हैं और आज का जो हमारा कार्यक्रम है वह है मोटे अनाज की खेती। जी हाँ किसान साथियों, आज के कार्यक्रम में हम जानेंगे किस तरह के कैसे हम मोटे अनाज की खेती करके अधिक से अधिक मुनाफा ले सकते हैं। कार्यक्रम को शुरू करने से पहले आइए डालते हैं एक नजर इस रिपोर्ट पर।
1: महामारी ने हम सबको अपने शरीर और सेहत का ध्यान रखने की सीख दी। अब हम सभी अपनी इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में लगे हैं। लेकिन इसके लिए हमें अपने खानपान में थोड़ा बदलाव लाना होगा। मोटे अनाजों को भोजन में शामिल करना होगा और मोटे अनाज हमें पर्याप्त मात्रा में मिल सके इसके लिए इसकी खेती पर ध्यान देना होगा। मोटे अनाज के फसल उत्पादन के साथ ही इनके मूल्य संवर्धन और खाद्य प्रसंस्करण पर भी ध्यान दिया जाना जरूरी है। हालांकि इस तरह के अनुसंधान किए जा रहे हैं जिससे मोटे अनाजों का आसानी से मूल्य संवर्धन किया जा सकता है, साथ ही किसानों को इनके प्रसंस्करण की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और भारतीय कदन अनुसंधान संस्थान ने मोटे अनाजों पर कई खाद्य प्रौद्योगिकियां विकसित की हैं और कई स्टार्टअप व उद्यमी इन प्रौद्योगिकियों के जरिए मोटे अनाज के प्रचार प्रसार व अपने अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा रहे हैं। ICMR भारतीय पौष्टिक धान्य अनुसंधान संस्थान हैदराबाद ने मोटे अनाजों से विविध पौष्टिक व्यंजन बनाने की मूल्य वर्धित प्रौद्योगिकियां विकसित की हैं। मोटे अनाजों में बाजरा, ज्वार, रागी, कांगनी, कोदो, कुटकी, चीना, सावा, ब्राउन टॉप मिलेट, टेफ मिलेट और फोनियो मिलेट आते हैं। लोगों के खानपान की आदतों में आए बदलाव और स्वास्थ्य कारणों से मोटे अनाजों से बनाए जा रहे खाद्य पदार्थों की मांग भी तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में मोटे अनाजों का प्रसंस्करण कर कई तरह के उत्पाद बनाकर लाभ कमाया जा सकता है। महिलाएं स्वयं सहायता समूह बनाकर मोटे अनाज से कई तरह के उत्पाद बना सकती हैं। जौ, बाजरा और रागी से बिस्किट, चिप्स और नमकीन आदि बना सकते हैं। मोटे अनाज से छोटे बच्चों के लिए भी भोजन बनाया जा सकता है। मोटे अनाज में मूल्य संवर्धन करके इनसे रोटियां भी बनाई जा सकती हैं और इन रोटियों को करीब 6 महीने तक इस्तेमाल किया जा सकता है। ज्वार से चॉकलेट, मफिन्स, पानी पूरी, बर्फी और समोसा बना सकते हैं तो बाजरे से मुठिया, लड्डू और रागी से बालूशाही और पकौड़ी बनाई जा सकती है। मोटे अनाज से अलग अलग उत्पाद बनाने के लिए आप नई नई तकनीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। शुरू में व्यवसाय की शुरुआत छोटे स्तर पर करके बाद में बाजार मांग के अनुसार व्यवसाय का विस्तार किया जा सकता है। पोषक तत्वों से भरपूर मोटे अनाज न सिर्फ आपकी सेहत को दुरुस्त करते हैं बल्कि किसानों की आमदनी को दोगुना करने में भी मददगार साबित होते हैं। हमारे यहाँ मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में मोटे अनाजों की खेती की जाती है। इनके अलावा ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में भी मोटे अनाज उगाए जाते हैं। सरकार भी अपनी योजना एक जिला एक उत्पाद के जरिए देश के 700 जिलों के बेस्ट उत्पादों को प्रोत्साहित कर रही है।
2: बिल्कुल, तो अभी आपने ये रिपोर्ट देखी है जिसमें अंत में हमने आपको बताया कि एक जिला एक उत्पाद के माध्यम से भी ऐसे मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। एफपीओ से भी इसे जोड़ा जा रहा है। हमारे साथ डॉक्टर राव जी मौजूद हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, आए उनसे हम बात करते हैं। सर, सबसे पहले हम इस मोटे अनाज को हम समझने की कोशिश करते हैं कि आमतौर पर तो हम जानते ही हैं बाजरा वगैरह जो हम पुराने जमाने में हमारे जो पूर्वज थे ये सब चीजें बहुत बड़े पैमाने पर इसका सेवन किया जाता था, लेकिन आज के दौर में धीरे धीरे हमारी खान पीन के जो तरीके हैं वो बदल गए हैं और ये धीरे धीरे जो मोटा अनाज जिसे हम कह रहे हैं आजकल मल्टीग्रेन के तौर पर कई जगह हम देखते हैं कि इसको मार्केट किया जा रहा है, तो ये किस तरीके से आज के समय महत्वपूर्ण है और इसे अगर हम सरल भाषा में किसानों की भाषा में समझने की कोशिश करें तो क्या है?
3: ये प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन खास करके पोषक अनाज के बारे में आपके सामने प्रस्ताव लाने के लिए पिछले 10 साल से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च के द्वारा, सेंटर ऑफ एक्सलेंस के द्वारा हम ये काम लगातार करते

0: में वो तो अपने औरत लोग काम निभाने में घर में रहने के आदत थी, अभी आजकल के जमाने में ये सारे नहीं चलेगा, क्योंकि कन्वीनियंस जो सुविधा बहुत ही इम्पोर्टेंट
1: जी
0: है। जब पति पत्नी सभी अपने काम में लगे रहते हैं, जॉब करते रहते, तो इस सिलसिले में ये इसका खाना बहुत कम होते जा रहा है, और इसका अंत होने वाले स्थिति में हम ये जो जो भी है प्रसंस्करण लाने के लिए हम उपस्थित करके इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च में इसको डाइवर्सिफाइड काफी प्रोसेस प्रसंस्करण टेक्नोलॉजीज बनाते हुए, वैल्यू एडिशन मूल्य संवर्धन करते हुए इसका डिमांड बढ़ाने के कोशिश
1: जी
0: किए हैं।
1: जी
0: उसमें से खास करके अभी हम क्यों काली ये मोटी अनाज जैसे चावल और गेहूं में इतने सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं, पदार्थ मिलते हैं, मगर अभी जब हम मोटे अनाज या पोषक अनाज देखते हैं, खाली केवल हमारे को ये सूजी मिलती है, नहीं तो आटा मिलती है, बस ये दो ही था, दो ही है। तो इससे हटकर हम अगर प्रसंस्करण करते गया तो हाँ उसमें डाइवर्सिफाई करते, जैसे हम बोलने लग गए तो आप इसको सूजी बनाए तो इसमें से इडली बन सकता है, रोटी में जो कमियां हैं जो रोटी में, क्योंकि इसमें हम ये जानना चाहते हैं कि आप लोग जानना चाहते हैं कि इसमें ग्लूटेन बोल के एक प्रोटीन नहीं रहती है जिसमें गेहूं में रहती है, उससे क्या होता है चिकटपन आता है, और
1: जी
0: चिकटपन नहीं रहता इसमें। तो इसलिए तो आपको अभी थोड़ा विवरण देना है, तो इसमें स्टार्च को मैनिपुलेट करते हैं, तो
1: जी
0: इसलिए
1: जी
0: गर्म पानी मिला के, गर्म पानी मिलने से इसका चिकटपन बढ़ती है, जब
1: जी
0: चिकटपन आती है तब रोटी बनाने में मुश्किल आसानी हो जाता है,
1: जी जी
0: तो तभी बनती है। मगर ये इतना काम, इतना टाइम, इतना स्किल मॉडर्न वुमेन के पास, औरतों के पास नहीं है, क्योंकि वो भूल चुके हैं। तो इसलिए तो क्यों कंज्यूमर को, विनियोगदार को, वाई वी शुड उनको क्यों इतना तकलीफ देना है। तो इसको अगर प्रसंस्करण के द्वारा हम इसको डाइवर्सिफाई करें, जैसे आपको सूजी बन गए तो उसमें से क्या सूजी के साथ दलिया भी बन सकता है,
1: जी
0: खिचड़ी बन सकता है, या इडली बन सकता है, या कोई और कई तरह से डोसा बन सकती है, कई चीज बन सकता है। उसके अलावा अगर फ्लेकिंग और एक तकनीक है, तो उससे भी
1: जी
0: फ्लेक पोहा बन गए तो उससे ब्रेकफास्ट सीरियल्स भी बन सकता है, ब्रेकफास्ट फूड्स, बेकिंग जैसे बिस्किट बनती है, केक बनती है,
1: जी
0: तो ऐसे डाइवर्सिफाई करके एक्सट्रूडेड प्रोडक्ट्स है, जैसे
1: बिल्कुल
0: कुरकुरे बोलते हैं उस टाइप के, वर्मिसेली होगा, पास्ता होगा, ये सारे चीज इसका डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी से
1: बिल्कुल डॉक्टर
0: इसलिए
1: साहब, जैसे
0: किया।
1: कि आपने बताया कि जिस पोषक अनाज की हम बात कर रहे हैं, मोटे अनाज के बारे में, तो पूर्वज तो हमारे इस्तेमाल करते थे उस वक्त, तब हमारे यहाँ चावल और गेहूं का इस स्तर का प्रचलन नहीं था, या फिर स्तर पर उसका उत्पाद नहीं हो पाता था और इतने अधिक विकल्प नहीं थे। लेकिन आज के समय में हम ये समझ रहे हैं कि भले ही हम निर्भरता हमारी बढ़ती जा रही है गेहूं और चावल पर, लेकिन अगर हम पोषण की बात करते हैं तो मोटे अनाज का कोई सानी नहीं हो सकता है। इसीलिए इसमें किस तरह से संवर्धन किया जा सकता है, किस तरीके से इसे वैसा बनाया जाए जो कि आम लोग इसे इस्तेमाल कर सके, आसानी हो, और अलग अलग रूप में इसे हम अपने किचन में रख सके और इसका इस्तेमाल कर सके, उपभोक्ता इसके पोषक तत्वों का लाभ ले सके। विनीता जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि जैसा कि एक ये भी चीज बहुत बड़ी है कि ये तो जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि ये हमारे यहाँ तो खान पान का हिस्सा था, लेकिन आज के समय में हम वहां पहुंच गए हैं जब हमें इसको पॉपुलराइज करने के लिए, इसकी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए फिर से सोचना पड़ रहा है, फिर से कदम उठाने पड़ रहे हैं सरकार को। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे?
2: सबसे पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद करना चाहूंगी कि मुझे यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म में इनवाइट किया है। जैसे आपने बताया कि हाँ, हमारे शुरू के पुराने समय की जब हम अपने पूर्व बुजुर्गों की बात करते हैं, तो उस टाइम मिलेट्स हमारे खाने, जो मोटा अनाज था, हमारे खाने पीने का एक बहुत अहम हिस्सा था। और इससे पहले मैं ये भी आपको बताना चाहूंगी कि जो भारतवर्ष है, संसार वर्ल्ड में हम विश्व में नंबर वन है इसका प्रोडक्शन। और अगर मैं इसकी एक्सपोर्ट की बात करती हूं, क्योंकि जब हम मार्केटिंग की बात कर रहे हैं, तो ना केवल इंडिया के अंदर, भारत के अंदर हम इसको पॉपुलराइज कर रहे हैं, बल्कि हम इनको अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी लेके जा रहे हैं, जहां पर इसकी बहुत ही अच्छी डिमांड है। और इसका एक रीजन जो मैं बताना चाहूंगी, जो इसकी गुणवत्ता और जो इसकी क्वालिटीज है, जो इसमें न्यूट्रिशंस है, वो इसको बहुत पॉपुलर बना रहा है, स्पेशली आज के समय में कोविड कोविड के दौरान के समय में जब लोगों में अब ये एक

0: समझ आ गई है कि हमें किस तरह के अनाज का चयन करना है, तो उसी हिसाब से इस तरह से ये मिलेट्स जो है वो बहुत आगे हमारे अंतर्राष्ट्रीय पटल में भी बहुत अच्छी भूमिका निभा रहा है। और जो इसकी जो डिमांड है, अगर मैं कहूँ तो आज के दिन में अगर हम एक्सपोर्ट के आंकड़ों के हिसाब से भी बात करते हैं तो इसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है। लास्ट ईयर के हिसाब से हमने 15% की ग्रोथ भी ली है, और इसका और इस कोविड के दौरान में इस इन प्रोडक्ट्स की तरफ जो न केवल भारत के उपभोक्ता बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार के उपभोक्ताओं ने इसकी डिमांड को, इसकी वैल्यू को समझा है और इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है। तो अभी अगर हम बात करें कि अगर हम किस तरह से हम इसको प्रमोट कर सकते हैं, क्या हम चीजें रहते हैं इसमें जो भारत सरकार ने कदम उठाए हैं, तो मैं उसके बारे में आपको बताना चाहूंगी। क्योंकि जैसे कि डॉक्टर दयाकर राव ने बताया कि जो इसकी प्रोसेसिंग की बात करी कि इजी टू कुक अगर हम बात करते हैं, तो आज के जमाने में हम जब एक्सपोर्ट कर रहे हैं, निर्यात इसका कर रहे हैं, तो ना केवल हम उसको एज ए कमोडिटी कर रहे हैं, एक मतलब इन सीधा अगर हमें बाजरा या ज्वार एक्सपोर्ट करना वो तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन जितने भी हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके R&D के एफर्ट्स से हम आज के दिन में हम लोग रेडी टू ईट प्रोडक्ट्स कर रहे हैं, ब्रेकफास्ट सीरियल एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कर पा रहे हैं, और बिस्किट्स हैं और केक्स हैं, इस तरह की जो प्रोडक्ट्स हैं,
1: केक वगैरह भी बना सकते हैं।
0: हाँ बिल्कुल बना सकते हैं, क्योंकि जब रागी का अगर मैं एग्जांपल आपको दूं, रागी जिसे हम अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, अगर हम उसकी बात करेंगे तो उससे हमारा डोसा भी बन रहा है, इडली भी बन रही है, नमकीन भी बनती है, पापड़ भी बनता है, और केक्स भी बन रहे हैं, बिस्किट्स भी बन रहे हैं। तो इस तरीके से मीन्स जो ये लोगों की जब जैसे जैसे इसके अवेयरनेस बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे इसकी डिमांड भी इंटरनेशनल मार्केट में भी बहुत बढ़ रही है।
1: बिल्कुल, यानी विनीता जी आप ये कह सकते हैं कि आज के समय में जरूरत यह है कि हम अपने स्वाद के अनुसार या फिर जो हमारी जीभ को भाए उसे ही हम खाएं, उसी का सेवन करें, वो समय जा चुका है। अब आपको अपने स्वास्थ्य के बारे में बहुत सोचने की जरूरत है और ऐसी चीजों का आप सेवन करें जो आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर हो, आपकी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएं। और इस बात को न सिर्फ हमारे देश में समझा जा रहा है बल्कि विश्व भर में इसका प्रचार प्रसार हो रहा है। यही वजह है कि हमारे देश में जो मोटे अनाज की पैदावार थी उसे बढ़ाने पर भी फोकस दिया जा रहा है और इनकी मांग भी बीते कुछ समय में बढ़ी है। लेकिन और कौन कौन से एरियाज हैं और कौन कौन से सेगमेंट हैं जहां पर इसकी मांग को और बढ़ाया जा सकता है, जहां पर अभी हमारी पहुंच नहीं हुई है, तो इसे किसानों के लाभ से कैसे जोड़कर देखा जा सकता है, उस पर भी मैं विनीता जी आपसे बात करूंगी। लेकिन अभी बात करते हैं दयाकर जी से। दयाकर जी, जैसे कि आपने बताया कि जो मोटे अनाज की गुणवत्ता क्या है ये तो हम सब समझ रहे हैं और इसके बारे में जागरूकता भी काफी फैल रही है, लेकिन ये भी एक हर एक समस्या आती है कि इसका सेवन कर पाना और इससे बनी चीजें बना पाना बहुत आसान नहीं होता है रसोई घर में, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कठिनाई और चुनौती रहती है। तो किस तरह के प्रसंस्करण किए जा रहे हैं, और मैं चाहूंगी कि अगर आप अलग अलग फसलों के अनुसार बताएं, अलग अलग अनाज के बारे में बताएं कि किस तरह के चरण इसमें अपनाए जा रहे हैं।
2: अभी मैडम जो बताए हैं अलग तरह से, कभी अभी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च के द्वारा हम केवल प्रसंस्करण का डाइवर्सिफिकेशन ही कराए, मगर उसके अलावा रेसिपी बनाने में भी हम बहुत ही प्राप्त हुआ है। अभी लगभग 500 रेसिपीज जैसे राय चावल और गेहूं में जो बनती है वो सारे अभी मिलेट्स में बन सकता है, क्योंकि अभी इसमें जो गुण नहीं है, ग्लूटेन प्रोटीन नहीं है, तो भी उसमें स्टार्च मैनिपुलेशन करके इसका इनोवेटिव तरीके से इसको बनाया। अभी जैसे रोटी बनती है, अभी आजकल रोटी भी मल्टीग्रेन के रूप में आती है, फिर बिस्किट्स बनती है, कुकीज बन सकते हैं, या आपको केक्स बन सकता है, या कई तरह से बेकिंग टेक्नोलॉजीज में भी हम उपलब्ध होके आगे आ रहे हैं। काफी स्टार्टअप कंपनीज इसका कमर्शलाइज करके आगे ले चल रहे हैं ताकि कंज्यूमर को इसको उपलब्ध करने में, तो ना केवल ये अर्बन एरियाज में जैसे कुरकुरे या कई और तरह से पोहा या पफिंग पॉपिंग, ये सारे तकनीकियां आगे अभी उसमें उसका टेक्नोलॉजी से उपलब्ध है, मगर इसके अलावा हम ये सोचते हैं ये अर्बन प्रोडक्ट ना रहे, ये रूरल प्रोडक्ट भी रहे, ताकि अपने किसान भाई लोग, अपने घरेलू संस्थाएं, सारे लोग इसको खाएं और इसका जो भी है हेल्थ मीट्स टेस्ट, ये दोनों को मिलाकर इसका जो भी इंटरवेंशंस कर चुके हैं उसको उससे कि ये लगता है कि इसका कंज्यूमर एक्सेप्टेबिलिटी भी अच्छा बढ़ चुके हैं और इसका न्यूट्रिशन भी हम न्यूट्रिशन के तरफ भी पोषक गुण भी इसमें लॉसेस मिनिमाइज कर चुके हैं ताकि आपको हेल्थ भी प्राप्त होगा और उसके साथ साथ टेस्ट भी बढ़ सकता है।
1: जी,
2: तो जैसे तो अभी जो चावल और गेहूं में जो बनती है सारे चीज, या कोई ब्रेकफास्ट सीरियल हो सकता है, या मेन कोर्स हो सकता है, या बेवरेज हो सकता है, डेजर्ट हो सकता है, या कोई लस्सी बन सकती है, ऐसे आप बोलो वो प्रोडक्ट उपलब्ध है अभी। तो इसका प्रयास हम ये कर रहे हैं सभी दुनिया के कोने कोने में ले चले इसका। अभी भारत देश का जो भी आधुनिक या ट्रेडिशनल फूड है उसको दुनिया को परिचय करने का समय आ चुका है, आ चुकी है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, हमें अपनी ताकत को समझना है, अपनी अहमियत, अपनी खासियत को, और ये जो जिन पोषक अनाजों की बात कर रहे हैं, मोटे अनाजों की, ये हमारी अपने आप में खासियत है, और इस खासियत को और उभारने के लिए अब ये कदम उठाए जा रहे हैं। और आप जान सकते हैं कि किस तरीके से विश्व स्तर पर इसके महत्व को समझते हुए 2023 को मिलेट ईयर के तौर पर मनाया जा रहा है। अब मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी दयाकर जी कि जिस तरीके से हम कह रहे हैं कि इसका मूल्य संवर्धन या साथ ही प्रोसेसिंग, इससे किसानों को किस तरह से लाभ होगा, क्योंकि अभी भी किसान जो हैं वो प्रोसेसिंग यूनिट से जुड़ने में थोड़ा पीछे हैं, या फिर प्रसंस्करण किस तरीके से किया जाए, अभी भी जो मेजॉरिटी ऑफ फार्मर्स है, जो मेजॉरिटी है वो वही है कि अनाज पैदा किया और मंडियों में बेच दिया, लेकिन इसमें भी एक बदलाव किस तरीके से लाने का प्रयास हो सकता है।
2: बहुत अच्छे प्रश्न आपने पूछा है कि क्योंकि हम जो भी करते हैं किसानों का क्या फायदा है, इससे पहले जो किसान जो इसको बोते हैं वो अपने खाने के लिए तो उसका ध्यान नहीं देते थे, मगर अब आजकल के जमाने में अभी किसान भाई ने अभी अर्बन एरियाज के लिए या जस्ट दूसरों के लिए ये ग्रो करना पड़ता है, कमर्शियलाइजेशन के लिए ग्रो करना पड़ता है, क्योंकि न्यूट्रिशन पहुंच के बहुत आगे पढ़ते हुए यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन हो गया, तो इसका कमर्शियलाइजेशन शुरुआत हो गया। तो जब ये शुरुआत हो गया तो फार्मर्स को क्या मिल रहा है इसके साथ, ये बहुत बड़ी प्रश्न है। आप जो अच्छी बात पूछे हैं, अभी फार्मर जो आफ्टर हार्वेस्टिंग जो हार्वेस्ट कर लेता फिर उसमें मार्केट में मंडी में बेच देता था
1: जी,
2: मगर अभी आजकल के जमाने में उसको फार्म गेट वैल्यू एडिशन की जरूरत है। फार्म गेट का मतलब है अपने फार्मर का जो भी जैसे जो हार्वेस्टिंग कर लिया और उसके बाद दो तीन स्टेप आगे ले चलने के लिए अपना प्रोड्यूस का कुछ उसका फायदा भी लेना है, उसका इनकम भी बढ़ना है, तो उसके लिए प्राइमरी प्रोसेसिंग प्राथमिक प्रसंस्करण की बहुत जरूरी है, जैसे क्लीनिंग हो या ग्रेडिंग हो, स्टोन उसमें पत्थर निकालने हो, और खास करके स्मॉल मिलेट्स में डीहलिंग भी जरूरत है, क्योंकि ज्वार बाजरा और मक्के में वो नेकेड ग्रेन है तो उसका कोई ऊपर का छिलका निकालने की जरूरत नहीं है, मगर अभी और भी जो छोटे दाने हैं जैसे स्मॉल मिलेट्स कहते हैं, जैसे सावा कोड़ो कुटकी, इनका तो ऊपर का छिलका निकालने में डीहलिंग की करने जरूरत पड़ती है। जब डीहल करके भेजने से आपको कम से कम 3 गुना आपका प्रोसेसिंग वैल्यू बढ़ जाता है, तो एनी टाइम 2 टाइम्स एटलीस्ट मिनिमम 2 गुना बढ़ गए तो फार्मर का इनकम बढ़ सकते हैं। तो फार्मर का जो वैल्यू एडिशन प्रसंस्करण के साथ फार्म गेट के लेवल पे ये सारे करके ये भी कर सकता है कि मिलिंग भी कर सकता है, जैसे आटा भी बन सकता है, सूजी भी बन सकता है। इसका फार्मर को कुछ करने के लिए कुछ ट्रेनिंग की जरूरत भी पड़ती है, मशीनरी प्रोवाइड करने की भी पड़ती है।
1: ट्रेनिंग के बारे में आपने कहा, ट्रेनिंग के बारे में आपने कहा डॉक्टर राव, तो मैं इसके बारे में आपसे थोड़ा और विस्तार से जानना चाहूंगी आगे कि वो किसान जो कि इसमें मूल्य संवर्धन प्रसंस्करण के माध्यम से और अधिक लाभ कमाना चाहते हैं, इसके लिए बाकायदा ट्रेनिंग वो कहां से ले सकते हैं और ये किस तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, इस पर मैं आपके पास आऊंगी आगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे विनीता जी समझना चाहूंगी, जैसा कि अभी राव साहब ने कहा कि आज के समय में हर कोई चाहता है कि फटाफट चीजें उसे उपलब्ध हो और उसका जल्दी से जल्दी उसे वो कंज्यूम कर सके। तो ऐसे में जब हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात करते हैं और वहां पर तो हम जानते हैं कि विदेशों में प्रोसेसिंग किस स्तर पर है, तो ऐसे में मोटे अनाज को सीधे ऐसे ना बेच करके उसमें वैल्यू एड करके प्रोसेसिंग करके बेचा जाए, तो जाहिर सी बात है बेचा जा भी रहा है, तो और अधिक हमारे किसानों तक लाभ पहुंच सकता है। तो इसके किस तरह के मानक है, क्योंकि हम जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक ये भी बहुत बड़ी चुनौती होती है कि जो अंतर्राष्ट्रीय मानक है उनका ध्यान रखना जरूरी हो जाता है, उन स्टैंडर्ड्स को आप पीछे नहीं रह सकते।
0: नहीं, आपने बिल्कुल सही बात बोली, जो कि हमें जब हम वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स की बात करते हैं और मोटे अनाज में जब वैल्यू एडेड के प्रोडक्ट हैं, तो पहला चैलेंज ये है कि हमें वहां पर प्रमोट करना है, और प्रमोट करना है तो उस एक्सपोर्ट की सप्लाई चेन में जो क्वालिटी है उसका ध्यान रखना जो बहुत जरूरी है, और जो स्टैंडर्ड्स हैं, तो आज के समय में अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं मोटा अनाज और जो मिलेट्स जिनको हम कहते हैं, आज के दिन में कोई एक्सपोर्ट के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन जब हमारे एक्सपोर्टर्स किसी भी कंट्री में किसी भी देश में अगर उसका निर्यात कर रहे हैं तो उनको हम ये समझाते हैं कि हमें पहले उस आयातक कंपनी जो देश है उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, क्या स्टैंडर्ड्स हैं, उसको फॉलो करते हुए उनको वो सारी रिक्वायरमेंट्स पूरा करें जो उनके क्वालिटी पैरामीटर्स हैं उनको पूरा करके तभी वो एक्सपोर्ट करें, क्योंकि तभी वो एक्सेप्ट होगा इंटरनेशनल मार्केट में। तो इस तरह का जो हमें हम इसके लिए उनको डिफरेंट सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम करते हैं, अगर कभी भी हमारे पास कोई रिक्वायरमेंट आती है कि इम्पोर्टिंग कंट्री में पर्टिकुलर किसी एक प्रोडक्ट को भेजने के लिए कोई रिक्वायरमेंट है, सपोज फॉर एग्जांपल हम सऊदी अरेबिया की बात करते हैं, तो वहां पर कोई भी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट कोई भी प्रोसेस फूड प्रोडक्ट अगर हमें एक्सपोर्ट करना है तो हमें सर्टिफिकेट ऑफ कन्फर्मिटी लेनी होती है, जो कि इसके लिए
1: ये कहां से मिलता है, मतलब ये हाँ
0: ये मैं बताना चाहूंगी कि इसके लिए उन्होंने, मैं सऊदी अरेबिया का ही एग्जाम्पल लेके चल रही हूँ आगे, तो उन्होंने ऑलरेडी एक डेजिग्नेटेड एजेंसीज बनाई हैं जिनके थ्रू हमें लेना होता है। तो हमारा रोल एपेडा का ये रहता है कि हम अपने एक्सपोर्टर को सेंसिटाइज करते हैं कि आपको इन इन पैरामीटर्स की ये नई रिक्वायरमेंट इम्पोर्टिंग कंट्री की आई है, आप इसको फॉलो कीजिए और उसके हिसाब से अपनी क्वालिटी प्रोड्यूस को वहां पर एक्सपोर्ट कीजिए। बिल्कुल सर, क्वालिटी इज द मेन चैलेंज इन द इंटरनेशनल
1: जी, बिल्कुल। और क्वालिटी जैसा कि आपने बताया कि बड़ी चुनौती रहती है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, अगर आप जाना चाहते हैं और वहां पर और विकल्प तलाशना चाहते हैं और अवसर चाहते हैं, तो क्वालिटी के साथ यानी गुणवत्ता के साथ आप किसी तरह का समझौता नहीं कर सकते हैं। और साथ ही साथ मोटे अनाज की बात करें तो इसमें इसकी आयु कैसे बढ़ाई जाए, यानी जो इसकी शेल्फ लाइफ है उस पर भी काम लगातार किया जा रहा है, ये भी एक समस्या आती है, तो इस पर भी मैं विस्तार से जानना चाहूंगी डॉक्टर राव से। और साथ ही ट्रेनिंग प्रोग्राम किस तरह के हैं, कैसे इनसे किसान या फिर वो नए युवा जो कि मोटे अनाज के दिशा में अपना भविष्य तलाशना चाहते हैं, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट में अपना आगे करियर बनाना चाहते हैं और मोटे अनाज से भी जुड़ा रहना चाहते हैं, उनके लिए किस तरह के विकल्प है?
3: मोटे अनाज की खेती में संभावनाएं अपार है। जी हाँ किसान साथियों, मोटे अनाज जो कि पौष्टिक अनाज के नाम से भी अभी जाना जाने लगा है, उसमें भरपूर मात्रा में रोग प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, इससे हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। तो किसान साथियों, मोटे अनाज की इस खेती में और क्या क्या संभावनाएं बन सकती है, आने वाले समय में यह मोटा अनाज कैसे फायदेमंद हो सकता है, इनसे जुड़ी हुई और भी महत्वपूर्ण जानकारियों को हम इस खेती बाड़ी कार्यक्रम के माध्यम से जानेंगे। तो किसान साथियों, अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ रेडियो टांडिया भील 90.8 FM के साथ छावा की आवाज पर।
4: आप सुन रहे हैं छावा का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आप रेडियो आपकी बातें।

0: है झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
1: ब्रेक के बाद एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं आप सभी का खेती बाड़ी कार्यक्रम में। आप लगातार मोटे अनाज की खेती को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं किसान साथियों, किस तरीके से मोटा अनाज आने वाले समय में हमें एक अच्छी आमदनी दे सकता है, अच्छी उपज के साथ कैसे हम हमारी आजीविका को सशक्त बना सकते हैं। तो किसान साथियों आइए शुरू करते हैं।
2: पोषण सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, सरकार इसीलिए इस दिशा में लगातार कदम उठा रही है और साथ ही न सिर्फ उपभोक्ताओं को बल्कि किसानों को भी प्रोत्साहित कर रही है कि वो मोटे अनाज की खेती करें और उपभोक्ता ऐसे जो प्रोडक्ट है, जैसे उत्पाद है, उनका सेवन करें। हमारे साथ डॉक्टर राव जी हैं। ब्रेक से पहले सर, जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे कि ट्रेनिंग प्रोग्राम यानी प्रशिक्षण प्रोग्राम किस तरह के मोटे अनाज के प्रसंस्करण को लेकर के भी, और मैं साथ ही ये भी जानना चाहूंगी कि क्या जो युवा है, जो स्टार्टअप आज के समय में नए नए आ रहे हैं।

0: और कृषि स्टार्टअप को काफी प्रोत्साहित किया जा रहा है, क्या इसमें भी किसी तरह की संभावना है?
1: बिल्कुल मैडम, ये तो बहुत अच्छी बात है। जैसे जबकि जो ज्ञान पाते हैं उसको ज्ञान किसानों भाई को पहुंचना और कई और स्टेक होल्डर्स रहते हैं इसमें, उन लोगों को भी पहुंचना बहुत जरूरी है। पिछले लगातार 12 साल से जो काम किया है और ये प्रसंस्करण के ऊपर और ये मूल्यवर्धन करते हुए आगे चलते हुए ये जो स्केलिंग या पायलटिंग करके उसको अपस्केलिंग कर रहे हैं, मगर इसका पूरा ज्ञान के लिए उनको ट्रेनिंग देने के लिए काफी हम लगभग पूरे स्टेट से काफी स्टेक होल्डर्स हमारे पास आते हुए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च में हम इसका प्रोविजन कर चुके हैं ताकि लोगों को तक पहुंच गए तो जो भी ज्ञान है जिसको जरूरत है, जैसे SHG ग्रुप हो या फार्मर्स हो या रूरल एंटरप्रेन्योर्स हो या अर्बन स्टार्टअप्स हो, इन सब स्टेक होल्डर्स को अलग अलग से अलग तरह से ट्रेनिंग प्रोग्राम होती है। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के अंदर लगातार 14 स्टेट्स को इसको अभी तक कम से कम 25,000 लोगों का ट्रेनिंग हो चुकी है। अभी 2023 आने वाले अंतर्राष्ट्रीय का जो मिलेट ईयर साल घोषित किया गया है उसके उन सिलसिले में हम इसको स्केल अप करके कर रहे हैं, ना ही बल्कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च, बट हम ये भी देख रहे हैं कि CFTRI है हमारा, निफ्टम वाले है भाई लोग फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग, और तंजावुर सोनीपत और तंजावुर में दो स्थान में है, और काफी स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में भी उन भी लगातार इसके ऊपर ध्यान देते हुए पूरा ट्रेनिंग का काम चल रहे हैं। खास करके फार्मर्स के लिए फार्म गेट वैल्यू एडिशन के लिए अभी काफी एजेंसीज भी आ रहे हैं, NGOs भी आ रहे हैं, मगर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च पे सेंटर ऑफ एक्सलेंस है, जहाँ कि आप पूरे देख सकते हैं सारे प्रसंस्करण क्या किया है, कैसे इसको डेवलप कर चुका है, कैसे पायलट कर लिया, कैसे स्केल अप कमर्शलाइज कर लिया, इसका ज्ञान बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका मिलेट प्रोसेसिंग जो है वो अलग है, जैसे गेहूं और चावल का नहीं होता है, तो वो क्या है, क्या फर्क है, ये सारे चीज उनको बताना है। और इसके अलावा आप ये भी पूछा है हमें शेल्फ लाइफ, इसका शेल्फ लाइफ कैसे बढ़ाना है, शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए भी अभी उससे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ किस तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम इनके लिए उपलब्ध है। तो महिलाओं के लिए या गांव वालों के लिए या किसान भाई लोगों के लिए हम अलग तरह से, क्योंकि उनका जो भी प्रोडक्ट वैल्यू एडिशन करते हैं मगर उनको ये ज्ञान नहीं है कि जैसे करते टाइम पे इसका न्यूट्रिशन लॉसेस नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका नाम है अनाज, पोषक अनाज है, जैसे करे अभी पर राइस को या चावल को पॉलिश करते हैं वैसे ही ये मोटे अनाज को कर लिए तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है। तो उनको ये ध्यान देना पड़ेगा कैसे क्या करने से इसका वो जो मूल्य वर्धन बढ़ती है या न्यूट्रिशन का न्यूट्रिएंट रिटेन कर सकते हैं और किस तरह से प्रोसेसिंग से उसका न्यूट्रिशन बढ़ सकता है और उसका शेल्फ लाइफ कैसे बढ़ाना है, उसका ब्रांडिंग कैसे करना है, अपना प्रोडक्ट्स को क्या क्या क्या किसका मार्केट अच्छा है गांव या शहर वालों के लिए, सो इसका पैकिंग कैसे कर सकते हैं, ये सारे चीज बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इन सब चीज में एंटायर वैल्यू एडिशन के ऊपर हम ट्रेनिंग देते हैं इन लोगों के लिए, तो ये चीज है। दूसरी चीज है, आप शेल्फ लाइफ के बारे में बोला था, ग्रेन्स का शेल्फ लाइफ है, जैसे बाजरा ज्वार रागी जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन में डिस्ट्रीब्यूट होता है आजकल अभी उसका ज्यादा स्केल अप हो रहा है क्योंकि गवर्नमेंट प्रधानमंत्री के द्वारा उनका कॉल के द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड डिस्ट्रीब्यूशन वाले भी लगातार करते हैं। अभी इससे पहले चावल गेहूं है, अभी ये मिलेट्स को भी इंट्रोड्यूस करने के लिए, तो उसका शेल्फ लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रागी खास करके आपको 9 महीने तक रहता है, ज्वार बाजरा कम से कम 6 महीने तक रहता है ग्रेन, तो ये शेल्फ लाइफ, मगर हम उसको आगे बढ़ाने के लिए कोई हम रिसर्च ज्ञान बढ़ाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं दूसरे इंस्टीट्यूट के साथ, और वो तो ग्रेन के बारे में बोल रहा था मगर अभी फ्लोर है, फ्लोर का मतलब है आटा है,
0: आटा
1: ज्वार का आटा ये 1 महीने में भी नहीं रहता है, उससे कम ही रहता है क्योंकि उसके ज्यादा फैट रहता है, रैंसिड बन जाता है जल्दी, तो उसका शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए हम इंटीग्रेटेड शेल्फ लाइफ मैनेजमेंट के द्वारा पूरा मिला के पूरा तकनीकियां मैनेजमेंट करके इंक्लूडिंग पैकेजिंग का भी, कैसे कौन सी पैकेजिंग में कर दी, तो कम से कम 3 महीने तो आने के लिए कोशिश जारी है
0: जी जी।
1: मगर एक्सपोर्ट मार्केट के लिए वैक्यूम पैकेजिंग करने से एक्सपोर्ट उसका शेल्फ लाइफ बढ़ता है 6 महीने से ज्यादा, 1 साल तक रह सकता है। तो ये सारे चीज मन में रखते हुए हम हमारा प्रोग्राम चालू कर लिया है, क्योंकि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023 के लिए ले जाने के लिए अगर आपका 3 महीने का शेल्फ लाइफ रहे तो ले जाना मुश्किल है, तो आप कैसे ले जाएंगे, तो
0: उसका शेल्फ लाइफ बिल्कुल बिल्कुल मैं
1: और कौन सी प्रोडक्ट्स ज्यादा शेल्फ लाइफ है उसका पूरा हम एपिडा के साथ काम कर रहे हैं। एपिडा ने बड़ा प्रोजेक्ट हमें दिया है ताकि हम डोमेस्टिक मार्केट्स पूरा डेवलप करें।
0: बिल्कुल मैं विनीता जी से बात करती हूँ, जैसा कि राव ने भी बताया
1: ले जाने के लिए तैयारियां चालू।
0: बिल्कुल डॉक्टर राव, जैसा कि आपने बताया कि एपिडा के साथ मिलकर और इसे आगे बढ़ाया जा रहा है, तो मैं विनीता जी आपसे समझना चाहूंगी कि जैसा कि थोड़ा किसान भी इसीलिए इसे संकोच कर जाता है या फिर सोचता है कि उसे नुकसान ना हो जाए अगर इस तरह के मोटे अनाज की वो खेती करता है, क्योंकि बहुत समय तक आप इसे स्टोर नहीं कर सकते, उसकी गुणवत्ता में असर पड़ जाता है, तो किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं जैसा कि अभी सर ने कहा?
2: जैसे जो आपने इसके स्टोरेज की बात की है, तो मैं बताना चाहूंगी कि हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं जो एक्सपोर्ट के लिए अपनी कोशिशों को जारी किए हुए हैं, तो एपिडा की कुछ वित्तीय सहायताएं हैं जो स्कीम्स हैं जिसके तहत हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए हम उनको वित्तीय सहायता देते हैं ताकि वो उस वित्तीय सहायता के सहायता से अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रांग करें, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो एक्सपोर्ट की सप्लाई चेन में सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, और उसके लिए हम जैसे प्रोसेसिंग लाइन की बात कर लें ताकि एक्सपोर्टर का प्रोसेसिंग लाइन और उसकी पैकेजिंग, जैसे कि डॉक्टर दयाकर राव ने बताया कि वैक्यूम पैकेजिंग अगर हम करते हैं तो हमारे प्रोड्यूस की शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, तो इस तरह के लिए हम पेडा हमेशा हमारे एक्सपोर्टर्स को हेल्प दे रहे हैं और उनको सहायता दे रहे हैं, और स्टोरेज के लिए जो फैसिलिटीज, चाहे साइलोज की बात कर लें या और स्टोरेज जो रिक्वायरमेंट है, उसके लिए हम लोगों की स्कीम्स के तहत में एक प्रोविजन है जिसके तहत हम उन लोगों को ज्यादा से ज्यादा हेल्प करने की कोशिश करें ताकि ये इंश्योर कर सके कि हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में क्वालिटी प्रोड्यूस पहुंच सके
0: जी।
2: और दूसरा, जैसे किसानों से हम कैसे बात कर रहे हैं, कैसे किसानों को हम कैसे हम हमारे एक्सपोर्टर्स के जोड़ रहे हैं, अपिडा ने अभी तक डिफरेंट जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं जब उनके साथ इंटरेक्शन किया तो हमें एक ये गैप पता चला कि हमारे जो सोर्सिंग है, हमारे रॉ मटेरियल की सोर्सिंग के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है कि कहां से हमें क्वालिटी प्रोड्यूस मिल सकेगा। तो जितने भी एफपीओज हैं तो हम लोगों ने कोशिश की कि हम उन एफपीओज को अपने एक्सपोर्टर्स के साथ उनका इंटरेक्शन करें, सो दैट उनका जो मेहनत की हुई है, जैसे किसानों को की बात करें कि किसानों को आय कैसे मिलेगी ज्यादा, किसानों को ये नहीं मालूम है कि मैं अगर ये मोटा अनाज उगाता हूं तो मुझे बेचना किसको है, तो उस तरीके से फिर हम लोगों ने जिस उन लोगों को एक प्लेटफॉर्म दिया जैसे वर्चुअल बायसेलर मीट कहते हैं, जिसमें हम लोगों ने एफपीओ को जो हमारे मिलेट्स वो कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, और हमारे एक्सपोर्टर्स जिनको कि उस रॉ मटेरियल की जरूरत है, उनके साथ हमने इंटरेक्शन कराया है जिसका रिजल्ट बहुत अच्छा निकला है, और हमारे एक्सपोर्टर्स को भी एक सोर्सिंग भी पता चल पा रही है कि किस जगह से उनको एक पर्टिकुलर वैरायटी का मिलेट या जो मोटा अनाज है वो मिल सकेगा, इस तरीके की हम लोगों ने पहल की है, और ताकि और साथ में फिर हमारे एक्सपोर्टर्स को हम ये समझाते हैं कि आपको अपने किसानों को ये समझाना पड़ेगा कि किस तरह की क्वालिटी का प्रोड्यूस हमें उनको उनके प्रोडक्ट बनाने के लिए, वैल्यूएटेड प्रोडक्ट बनाने के लिए, इंटरनेशनल मार्केट में भेजने के लिए किस तरह का प्रोड्यूस है, तो ये एक जो टाई अप होता है दोनों किसानों के बीच में और एक्सपोर्टर के बीच में, वो एपिडा उसको करने की कोशिश करता है ताकि दोनों को बेनिफिट मिल सके और अल्टीमेटली जो किसान भाइयों को है उनकी जो उनकी पैदावार है उसका उचित मूल्य मिल सके।
0: जी बिल्कुल दयाकर जी, जैसे कि अभी निंदा जी ने बताया कि एक ये चेन पूरी बनाने की कोशिश की जा रही है और इसमें काफी सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिले हैं कि किसान और एक्सपोर्टर दोनों के बीच में सेतु का काम कर रहे हैं और एक्सपोर्टर को अंतर्राष्ट्रीय बाजार को देखते हुए किस तरह की चीजें चाहिए, किस तरह की गुणवत्ता चाहिए, ये बात एपिडा के माध्यम से किसानों तक पहुंच रही है और किसान उसी के अनुसार खेती कर रहे हैं। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगी कि किस तरीके से जो उपलब्धता को बढ़ाने के साथ साथ जो एक मांग है उसको क्रिएट करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं कि जो मोटे अनाज या पोषक अनाज है इनकी उपलब्धता किस तरह से सुनिश्चित की जा रही है बाजार में और उसी के अनुसार उसकी मांग भी बनी रहे, ये कैसे सुनिश्चित किया जा रहा है?
1: ये बहुत ही अच्छी प्रश्न है मैडम। अभी जो ये जो फार्मर जो होता है किसान भाई, इससे पहले उगाता है कि अपने खाने के लिए, मगर अभी ऐसे अपने खाने के लिए छोटे छोटे लैंड होल्डिंग रहता है, एक एकड़ या हाफ एकड़ में कहीं इसको बोते थे, तो अभी हाफ हाफ एकड़ लोगों को एग्रीगेट करना है, बल्किंग करना है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो बहुत ही महत्वपूर्ण है जब इसको कमर्शलाइज करना है और आगे ले चलते हुए अंतर एक्सपोर्ट मार्केट बढ़ाने के लिए। तो अभी हमारे सामने एक अच्छा है, प्रधानमंत्री जी एक 10,000 FPOs क्रिएट करने का जो प्रयास कर रहा है, उससे काफी फायदा होने वाला है, क्योंकि अभी अलग अलग फार्मर्स उसका बार्गेनिंग कैपेसिटी बहुत कम होती है। जब ये मिलकर आते हैं फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, उनको ज्ञान भी इजी तरह से, जब ट्रेनिंग भी देना है अलग अलग फार्मर के वजह से FPO को दिए, तो वो ट्रेनर्स बन जाएंगे, वो अपने इंडिविजुअल किसान भाई लोगों को वो ज्ञान प्राप्त पास ऑन करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वालिटी मेंटेनेंस राइट जो अभी फार्म लेवल करते हुए गए, तो जैसे एक्सपोर्ट क्वालिटी का प्रोड्यूस का क्या महत्वपूर्ण होगा, उससे उनका आमदनी आय कैसे बढ़ेगा, ये सारे पहलू लेकर आगे चलने में बहुत ही हम इसका कुछ टाइम लगेगा जरूर, बट एक अच्छी दिशा में अभी चल रहा है, क्योंकि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन कई राष्ट्रों में मिलेट फोकस होके जा रहे हैं। गवर्नमेंट ने हमें कुछ FPOs बनाने के उसको मॉडल करने के लिए दिया है, ताकि वैल्यू चेन बिल्डअप करे, ताकि एक्सपोर्ट मार्केट डोमेस्टिक मार्केट्स को इसको कनेक्ट करे, ब्रांडिंग लेबलिंग इसका ट्रेनिंग भी दे। तो अभी ये प्रयास में लगभग 7 राज्यों में हम शुरुआत किया है और इसको स्केल अप करने वाले हैं, ताकि ये अपीडा के साथ भी जोड़ लिए ताकि इसको आगे ले जाता है, क्योंकि हम अगर कमर्शियलाइजेशन करने के बाद एक्सपोर्ट मार्केट कंटिन्यूस रहना है, अब कंटिन्यूस रहना कमर्शियलाइज करना, कभी क्रॉप फेल हुआ एक राज्य में तो हमारे लिए पूरा वो इन्फॉर्मेशन जारी रहना चाहिए, कौन सी राज्य है, दूसरा प्लान बी क्या हो सकता है, कहाँ से वो सोर्स करेंगे, कहाँ से स्टार्टअप कंपनी। इस बीच में स्टार्टअप लोगों को लाके लेके आया हमें मैडम, अभी लगभग 500 स्टार्टअप है विलेज में, तो ये स्टार्टअप्स लोग एग्रीगेटेड प्रोसेस उनको फार्मर कनेक्ट देते हुए ताकि उनको आय बढ़े, तो अच्छा प्राइस करने के लिए एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म्स या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स क्रिएट करते हुए, तो मैडम जो बोल रही है वो दैट इज इवन ए बिगर प्लेटफॉर्म, इस सारे प्लेटफॉर्म्स को कन्वर्ज करते हुए लेके जाना, डोमेस्टिक मार्केट को स्ट्रेंथन करे तो आपको एक्सपोर्ट मार्केट भी बढ़ जाएगा।
0: जी बिल्कुल। तो चलिए, आपने घरेलू बाजार की बात की यहाँ पर डॉक्टर राव, तो मैं विनीता जी आपसे मैं समझना चाहूंगी कि मोटे अनाज और पोषक अनाज के विपणन को लेकर किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं।
2: नहीं, मोटे अनाज के उसको कैसे बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि मैं एक्सपोर्ट के प्रोस्पेक्ट से ही बात करूंगी। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जैसे कि अभी आपको मालूम है कि कोविड के दौरान हमारा कहीं पर भी फिजिकल पार्टिसिपेशन नहीं हो पाता था, तो इस तहत अपेडा ने अपने इंडियन मिशंस जो हमारे अलग अलग देशों में हैं उनके साथ मिलकर हम लोगों ने तकरीबन 37 से 38 वर्चुअल बायोसेलर मीट्स किए, जहां पर कि हम जो ये प्लेटफॉर्म होता है जहां पर कि हमारे एक्सपोर्टर्स और हमारे जो इम्पोर्टर्स हमारे इंडियन मिशन के साथ जो इम्पोर्टर्स हैं वो उनको हम लोगों ने एक दूसरे से इंटरेक्ट कराया, एक दूसरे के साथ मीटिंग की, उन लोगों ने अपनी बात रखी, अपनी रिक्वायरमेंट रखी, और जहां पर मिलेट्स को भी बहुत अच्छी एक सहायता मिली, हेल्प मिली कि मिलेट को भी कैसे इन प्लेटफॉर्म के थ्रू प्रमोट किया जाए। इसी तरीके से हम लोगों ने एक पहला वर्चुअल ट्रेड फेयर, जैसे कि आपने सुना होगा कि जैसे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अलग अलग तरीके के अंतर्राष्ट्रीय मेले होते हैं, तो वही हमारा जो एक थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन रहा कोविड के दौरान कि हम लोग फिजिकल पार्टिसिपेशन के लिए किसी भी अंतर्राष्ट्रीय उसमें मेले में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, तो हम लोगों ने एक वर्चुअल ट्रेड फेयर हमने ऑन कमोडिटीज हम लोगों अपेडा ने किया, जिसमें कि हमारे मिलेट के एक्सपोर्टर्स ने भी काफी बढ़ चढ़ कर भाग लिया और उससे उन लोगों को काफी फायदा भी मिला, काफी ट्रेड लीड्स मिली और उन लोगों ने अपना उन देशों में एक्सपोर्ट स्टार्ट करना शुरू किया। दूसरा, जैसे कि अभी प्रेजेंटली अगर मैं बात करूं कि इंडिया से हम किन कंट्रीज में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसमें नेपाल है, यूएई है, सऊदी अरेबिया है, लीबिया है, लेकिन अगर दूसरी तरफ से हम आंकड़े देखते हैं कि और जो कौन से देश हैं जहां पर हमें अपना फोकस बढ़ाना चाहिए, जहां पर की पोटेंशियल है, जैसे कि मलेशिया है, जापान है, ईयू कंट्रीज है, गल्फ कंट्रीज है, तो यहां पर अब जो हमारी स्ट्रेटेजी ये बनाई जा रही है कि जो इंटरनेशनल मिलेट ईयर हम जिसकी बात कर रहे हैं 2023 वाली, उसके दौरान हम लोगों ने ये प्लान किया है कि हम डिफरेंट जितने भी इम्पोर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय हमारे मेले हैं वहां पर हम मिलेट को प्रमोट करें, उनको वहां पर रोड शोज करें, वहां पर वर्चुअल बायोसेलर मीट करें, इसी के साथ नॉट ओनली वर्चुअल बायोसेलर मीट इन उन कंट्रीज में, बल्कि हम लोग रिवर्स बायोसेलर मीट भी यहां पर करना चाहते हैं, ताकि हम वहां के बाहर के देशों के बायर्स को यहां पर बुला पाए और उनके साथ
0: यानी एक तरह के एक्सचेंज प्रोग्राम्स
2: की हम लोगों ने प्लानिंग की हुई है कि ताकि हम ज्यादा से ज्यादा मिलेट को हम अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रमोट कर सकें।
0: जी बिल्कुल, तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मोटे अनाज या पोषक अनाज को और ज्यादा प्रमोट करने के लिए किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं विनीता जी ने बहुत विस्तार से हमें बताया और हमारे साथ डॉक्टर राव भी लगातार बने हुए हैं, लेकिन यहां हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो डॉक्टर राव से मैं समझने की कोशिश करूंगी कि जिस हम तकनीक की बात कर रहे हैं कि कई तरह की तकनीकों पर काम किया जा रहा है ताकि मूल्य संवर्धन और प्रसंस्करण किया जा सके और जो उसकी पोषक तत्व है मोटे अनाज की वो भी बरकरार रहे, उनकी शेल्फ लाइफ भी बढ़े।
3: मोटे अनाज की खेती हमारा झाबुआ का किसान जो है सदियों से करते आ रहा है। मुख्यतः फसलों में हमारा जो मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, कोदो है, कुरी है, बाउटो है, इन सारी जो हमारे मोटे अनाज है इसकी खेती हमारा झाबुआ किसान है वो करता आ रहा है, लेकिन जो समय के अनुसार हमारा जो किसान ने अपना रुख मोड़ लिया था, अधिकतर मक्का और गेहूं ही मुख्यतः फसलें बनकर रह गई थी, लेकिन अगर अभी हम देखें तो हमारी जो सरकार है वो भी मोटे अनाज को बढ़ावा दे रही है, तो कहीं ना कहीं हमारा जो झाबुआ का किसान है उसके लिए यह बहुत ही एक सुनहरा अवसर है। अभी उस अनाज को हम पुनर्जीवित कर सकते हैं और इस मोटे अनाज में काफी पौष्टिकता है, तो इस अनाज की खेती करके हम अधिक से अधिक लाभ ले सकते हैं। किसान साथियों, यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा विराम और जानकारियों का यह सिलसिला जारी रहेगा, कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ रेडियो टाटा बिल 90.8 FM के साथ झाबुआ की आवाज़ पर।
4: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो, आपड़ी बातें।

0: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आप रेडियो आपकी बातें।
1: ट्रेनिंग ली जा सकती है, लेकिन अगर हम गांव की बात करें, किसानों की बात करें जो बहुत दूर सुदूर रहते हैं, जिनका शहरों से या डिजिटल वर्ल्ड से इतना ज्यादा रापता नहीं रहता है, तो क्या लगता है कि अभी उन तक उतनी पहुंच या उनको इस चीज को समझा पाना इतना आसान है, या फिर ये भी बहुत बड़ी चुनौती है जो कि रास्ते में आ रही है कि मोटे अनाज की खेती को प्रमोट किया जाए?
2: किसान भाई लोगों के लिए वो ये देखता है या कौन सी क्रॉप वो बोना है नहीं बोना है, ये उनका अपना जिससे ज्यादा आय मिलेगा, जैसे इनकम मिलेगा उसके उस तरफ जाने की कोशिश करेगा। इससे पहले मैं बोल रहा था कि पहले वो अपने खाने के लिए या अपने पशु के चारा के लिए उसको बोता था, मगर अभी विषय बढ़ गया है, ये कमर्शलाइज हो रहा है, इसका धीरे धीरे ये न्यूज उनके पास भी बढ़ रहा है। मगर जब तक किसान भाइयों का वो जो भी लाभ ये मिलेट्स के द्वारा या पोषक अनाज के द्वारा जा नहीं बढ़ती है, तब तक इसका एरिया नहीं बढ़ेंगे। मगर अभी हम देख रहे हैं कि काफी लगभग 60 साल इसका ग्रो करते हुए इसका क्या या एरिया घटती गई, मगर अभी थोड़ा स्टेबलाइज हुआ, तो इसका मतलब है थोड़ा नया न्यू एरिया सारे न्यू कल्टीवेशन एरियास और इरिगेटेड एरिया में भी ये पोषक अनाज ग्रो करने लायक हो गया है, ताकि कुछ इंटेंसिव कल्टीवेशन भी चल रहा, तो इसका मतलब है कि वैल्यू एडिशन का जो भी है और इसका डिमांड बढ़ने का बहुत ही बड़ी संभावना है, खास करके गवर्नमेंट पॉलिसी के दिशा जब इसको बढ़त दे रहे हैं, इसका प्रोक्यूरमेंट करने के लिए देख रहे हैं और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में लाने के लिए देख रहे हैं, और इसके अलावा ये पब्लिक फंडेड प्रोग्राम जैसे ICDS मिड डे मील प्रोग्राम इनमें भी पायलटिंग चालू हो गया, ये सारे डिमांड का संभावना बढ़ने का दिखाई देता है। तो फार्मर को ये पूरे फार्मर बहुत ही इंटेलिजेंट आदमी है, तो ये पूरा वो वेट करते देखते जा रहा है, कई जगह जो अर्ली अडॉप्टर्स है वो एरिया बढ़ते जा रहे देख के वो कर रहे हैं, और एक्सपोर्ट मार्केट के भी देख रहे हैं, ताकि उनका जो भी फार्मर जब ग्रो करता है, सबसे मार्जिनल लैंड्स पे मिलेट ग्रो करता था, मगर अभी मैं देख रहा हूँ मेरे अभी जा इधर उधर गए तो देख के तो वो जो भूमि जो लैंड एलोकेट करता है मिलेट्स के लिए वो अच्छी लैंड पे एलोकेट कर रहा, ताकि उससे कुछ आमदनी भी बढ़े, उससे कुछ वो प्रोडक्टिविटी बढ़े ताकि आमदनी भी बढ़े। तो ये सारे चीज मुझे लगता है इसका प्राइस मिनिमम सपोर्ट भी है, और कई स्टेट्स है जैसे आप उड़ीसा हो, कर्नाटका हो
1: जी,
2: और कई राज्य हो, उनको प्राइस मिनिमम सपोर्ट प्राइस का गारंटी भी दे रहा ना, और प्रोक्योरमेंट भी चालू कर दिया
1: जी।
2: तो दूसरी तरफ से गवर्नमेंट ये भी सोच रहा है कि इंसेंटिवाइजेशन हर जो मिलेट ग्रो करता है उसके लिए 10,000 तक कर्नाटका गवर्नमेंट दे रहा, 9,000 तक अभी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ऑल्सो अनाउंस किया है
1: जी, बिल्कुल। यानी एक तरह से
2: पॉलिसी से भी बढ़ जाता है फार्मर का इसका ज्ञान बढ़ता है, और क्रॉप एरिया भी बढ़ता है और इनकम भी बढ़ता है
1: जी। यानी डॉक्टर राव, आपके कहने का मतलब है कि एक तरह से किसानों को प्रोत्साहन राशि भी दी जा रही है राज्य सरकारों की तरफ से, ताकि वो इस तरह की फसलों को ले। विनीता जी, मैं आपसे अब समझना चाहूंगी कि चलिए ये तो बात हुई कि कैसे पैदावार इसकी बढ़े, रकबा कैसे बढ़े, उसके लिए सरकार की तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन बाजार भी बढ़े, बाजार किस तरीके से बढ़े, क्या इसको लेकर के भी किसी तरह की मदद ऐसे किसानों के लिए है जो मुख्य फसल के तौर पर, अब हम कह सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं कि हमारे किसान मुख्य फसल के तौर पर मोटे अनाज उगाएंगे, तो क्या उनको किसी तरह की मदद की कोशिश की जा रही है, और अगर है तो वो क्या है?
3: नहीं, किसानों के लिए जैसे अभी आपने बात करी कि हम किसानों को कैसे हम मदद कर सकते हैं कि ताकि उनका जो प्रोड्यूस है जो क्योंकि उनका रुझान भी अब उस तरफ आ गया है कि हमें इस तरह के उनको समझ आ चुकी है कि इसकी इस प्रोडक्ट की जो डिमांड है, अहमियत जो है वो काफी बढ़ रही है, ना केवल भारतवर्ष में अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी। तो मैं साथ में बड़े ये मेरे को बड़ा हर्ष है ये बताने में कि जैसे जो बात मैंने अभी पहले बोली कि FPO के साथ हम लोगों ने इंटरेक्शन किया, तो एफपीओ का इंटरेक्शन जो सिर्फ है वो एक्सपोर्टर्स तक ही सीमित नहीं रहा है, आज के दिन में हमारे कई एफपीओ खुद एक्सपोर्टर बन गए हैं।
1: जी जी।
3: तो ताकि क्योंकि उन्होंने इसमें पोटेंशियल देखा है और तभी वो एक्सपोर्टर बन के उन्होंने एक्सपोर्ट करना चालू कर दिया है। तो इस तरीके से जो ये प्लेटफॉर्म्स हम मैंने बताया आपको, तो हम इस तरह के प्लेटफॉर्म्स के तहत उन लोगों को आगे लेके जाते हैं और जो भी हमारे को जरूरत होती है, अगर वहां के किसी प्रोडक्शन के ऊपर कोई इंटरवेंशन चाहिए या किसी वैल्यू प्रोसेसिंग के लिए चाहिए, तो हम जैसा कि डॉक्टर दयाकर राव ने बताया कि हम लोगों ने आईएमआर के साथ एक एमओयू भी साइन किया है, सो दैट जो हमारी इसका सप्लाई चेन है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए, उसकी प्रोडक्शन के लिए, प्रोडक्शन का स्ट्रेंथन करने के लिए, और जितने भी हमारे और स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ इंटरेक्ट करके इन इश्यूज को टेकअप करने के लिए, ताकि हमारे जो किसान हैं उनको एक तो ये एश्योरेंस मिल जाए कि वो जो प्रोड्यूस उगा रहे हैं अगर वो क्वालिटी प्रोड्यूस में मेहनत कर रहे हैं तो उनके उनके चीजों का उचित दाम मिल सके, और साथ में किस तरीके से कि सिर्फ एक एज ए प्रिंसिपल कमोडिटी ना बेचकर क्या हम उसमें कर सकते हैं, तो इस तरीके की जो
1: मैं अगर किसानों की भाषा में समझाने की कोशिश करूं तो जो आपने बताया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च, इसके और एपिडा के बीच में एक समझौता हुआ है जिसके माध्यम से किसानों के लिए ये सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी कि वो अपने उपज को सही मंजिल तक पहुंचाने के लिए एक जो पूरा रास्ता है, जो एक जो चेन है वो किस तरीके से और व्यवस्थित की जाए, वो कैसे और सुगम बनाया जाए, इसके लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। क्योंकि किसानों के सामने यही समस्या भी आती है कि उगा तो लेंगे लेकिन बेचेंगे कहां और कहां उन्हें अच्छे दाम मिले, किस जगह ज्यादा वैल्यू है, ज्यादा लाभ उनको प्राप्त हो सकता है, तो इस पर भी काम किया जा रहा है।
4: न केवल मोटे अनाज की खेती पर, परंतु मोटे अनाज की खेती करने हेतु सरकार द्वारा प्रोत्साहन राशि भी दी जा रही है, साथ ही हमारा जो किसान है वो उपज तो कर लेता है लेकिन उसे निर्यात कहाँ करे, उस हेतु भी प्रयास किए जा रहे हैं। तो किसान साथियों, यहाँ पर बहुत ही अच्छा एक सुनहरा अवसर है, जो भी किसान भाई मोटे अनाज की खेती करना चाहता है वह इस मोटे अनाज में अपना मोटे अनाज की खेती की तरफ अपना रुख कर सकता है। किसान साथियों, हम जानते हैं कि मोटे अनाज में काफ़ी पौष्टिकता होती है, यह हमारे जो पूर्वज कहते थे कि जो कोदो है उसमें अगर किसी भी जो बैल है अगर उसका पेट टूट जाए तो उसे 7 दिन के अंदर हम उसको खिलाकर उसे फिर से एकदम तंदुरुस्त बना सकते हैं, तो बहुत ही अच्छा माना गया है कोदो को है जो है, तो बहुत ही अच्छी जानकारियां हमारे किसान भाइयों को है। लेकिन जो अभी निर्यात की समस्या को देखते हुए हमारे किसान भाई जो है वो इसमें अपना रुख नहीं करते हैं, तो अभी यहाँ पर हमारे लिए एक सुनहरा अवसर है, जो भी किसान भाई मोटे अनाज की तरफ अपना रुख करना चाहता है वह अपना रुख कर सकता है। इसी के साथ किसान साथियों, यहाँ पर वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, आपसे पुनः कल मुलाकात होगी इसी समय इसी वक्त, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ रेडियो टाटिया बिल 90.8 FM के साथ छबा की आवाज पर।
5: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
6: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
5: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
7: हर घर सूर्य घर।
0: सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM, आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
4: नमस्कार किसान साथियों, आप सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं खेती बाड़ी कार्यक्रम में। किसान साथियों, रेडियो टांडिया भील 90.8 FM का खेती बाड़ी कार्यक्रम के माध्यम से आप तक खेती बाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को आप तक पहुंचाने का एक प्रयास है। किसान साथियों, आशा करते हैं कि हमारा यह खेती बाड़ी कार्यक्रम कहीं न कहीं इस खेती बाड़ी कार्यक्रम से लाभ ले रहे होंगे। किसान साथियों, हम रेडियो 90.8 FM के माध्यम से आप तक खेती बाड़ी में हो रहे बदलाव एवं खेती बाड़ी में जो नवीनतम कृषि है उसे हम कैसे कर सकते हैं, अर्थात हम इसमें क्या क्या बदलाव ला सकते हैं, आदि सभी जानकारियों को आप तक पहुंचाने के का हमारा यह एक प्रयास है। तो किसान साथियों, हम आशा करते हैं हमारे यह कार्यक्रम आपको कहीं ना कहीं बहुत ही लाभप्रद होंगे। साथ ही जो किसान भाई, हमारे किसान भाई हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है रेडियो स्टेशन चेतना हाई स्कूल परिसर, इंदौर रोड, गढ़वाड़ा, जिला झाबुआ, मध्य प्रदेश। आप हमें कॉल के माध्यम से भी आपके सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारा नंबर है 9425143603 पर। किसान साथियों, आज का हमारा जो खेती बाड़ी कार्यक्रम का मुख्य बिंदु है वह यह है, एपीओ से सशक्त होते किसान। जी हाँ किसान साथियों, आज के खेती बाड़ी कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे एपीओ से सशक्त होते किसान। तो इसका हम कैसे लाभ उठा सकते हैं, इससे जुड़ी हुई बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियों को आज के इस कार्यक्रम में हम जानेंगे। तो किसान साथियों, आपका ज्यादा वक्त ना लेते हुए चलिए शुरू करते हैं।

0: किसान उत्पादक संगठन किसानों का एक ऐसा समूह है जो कंपनी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होता है। ये संगठन खेती किसानी से जुड़े काम को आगे बढ़ाने में मदद करता है। एफपीओ से कई किसान जुड़े होते हैं और इससे उन्हें फसल का वाजिब भाव मिलना आसान हो जाता है। एफपीओ की मदद से किसानों को अपनी उपज का मोल भाव करने का मौका मिल रहा है। किसान उत्पादक संगठन से किसानों को न सिर्फ अपनी फसल बेचने की सुविधा मिल रही है बल्कि कृषि उपकरण के साथ साथ खाद, बीज और उर्वरक जैसे उत्पाद भी अच्छी गुणवत्ता और उचित मूल्य में मिलते हैं। एफपीओ ने छोटे, सीमांत और भूमिहीन किसानों को इकट्ठा कर किसानों की आर्थिक शक्ति और उनके बाजार लिंकेज को बढ़ाने में मदद की है, जिससे उनकी आय में सुधार हो सके। एफपीओ से खासकर छोटे किसानों को काफी फायदा हो रहा है और किसानों की आय बढ़ रही है। लघु कृषक कृषि व्यापार संघ और राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक देश में किसान उत्पादक संगठनों को बनाने और उनको बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे हैं। सरकार 2021-22 में 2500 किसान उत्पादक संगठनों की स्थापना करेगी। इससे करीब 60,000 किसानों को मदद मिलेगी। 2500 एफपीओ बनाने का काम केंद्र की उस योजना का हिस्सा है जिसके तहत सरकार ने 2023-24 तक देश भर में 10,000 नए कृषि उत्पादक संगठन स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। 5 साल के लिए हरेक किसान उत्पादक संगठन को सहायता दी जाएगी। हरेक एफपीओ में 50% छोटे, सीमांत और भूमिहीन किसान शामिल होंगे। देश भर की सहकारी समितियां एफपीओ के गठन में सहयोग करेंगी, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में खेती में निवेश को बढ़ाया जा सके। एफपीओ को लेकर जारी दिशा निर्देशों के अनुसार पहाड़ी क्षेत्रों और पूर्वी राज्यों में बने एफपीओ को छोड़कर हरेक एफपीओ में कम से कम 300 किसान सदस्य होते हैं। इनमें भी महिला किसानों का प्रतिनिधित्व ज्यादा रखा गया है। दूसरी ओर पहाड़ी क्षेत्रों और पूर्वोत्तर राज्यों में बने एफपीओ में न्यूनतम 100 सदस्य हो सकते हैं। एफपीओ गतिविधियों का प्रबंधन इस तरह किया जाता है जिससे सदस्यों को तकनीकी जानकारियां, वित्त व उपज के लिए अच्छा बाजार व बेहतर कीमत मिल सके।
1: तो जाना आपने इस रिपोर्ट में किस तरीके से एक लक्ष्य निर्धारित किया गया किसान उत्पादक संगठन।

0: भारत सरकार ने ये एफपीओ मूवमेंट स्टार्ट किया था। आइडिया ये था कि इसमें इकोनॉमी ऑफ स्केल कि बहुत सारे फार्मर एक साथ में आए, एक साथ में आकर अपने उत्पाद का विक्रय करने का प्रयास करें
1: जी।
0: उनको हम लोग जो गवर्नमेंट की तरफ से टेक्नोलॉजी की सुविधा है या इनपुट की सुविधा है, तो ये एक संगठन के माध्यम से इन छोटे किसानों तक पहुंचा जा सके। तो करीब करीब एक दशक से भारत सरकार की ये जो एफपीओ की मूवमेंट है, ये अब इसमें हम लोगों को काफी सक्सेस स्टोरी देखने को आई है, जिसमें हमारे साथ काफी अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग तरीके के हम लोगों ने कुछ आउटपुट साइड में जहां पे लोगों ने, आज हमारे साथ नरेंद्र पवार जी आपने बताया जैसा जुड़े हैं, कुछ आउटपुट में काम कर रहे हैं, कुछ फार्म मैकेनाइजेशन पे काम कर रहे हैं, फिर जैसा आपने जिक्र किया कि जैविक खेती को लेकर कुछ उस मिशन के साथ में लेके एफपीओ काम कर रहे हैं
1: जी।
0: तो इस तरीके से आज की तारीख में काफी हम लोगों को इसमें सक्सेस देखने को मिली इस मूवमेंट के द्वारा
1: जी।
0: और उसी से उत्साहित होकर भारत सरकार ने एक सेकंड इसका फेज स्टार्ट किया जो 29 फरवरी 2020 में प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस किया कि हम लोग करीब 10,000 एफपीओ और बनाएंगे सेंट्रल सेक्टर स्कीम के द्वारा। तो इस प्रकार से ये एफपीओ का मूवमेंट अभी अपने प्रोग्रेस कर रहा है।
1: बिल्कुल, देखिए सफलता की तरफ लगातार आगे बढ़ रहे हैं जो हमारे किसान उत्पादक संगठन है। शशि भूषण जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, जैसा कि अभी गौरव जी हमें जानकारी दे रहे थे कि देखिए हर एक क्षेत्र में, क्योंकि कृषि में माना जाता है कि असीम संभावनाएं हैं, और उन्हीं संभावनाओं को ना सिर्फ हम मान सकते हैं कि जो हमारे युवा हैं वो भी अब एफपीओ से जुड़ रहे हैं, उनका एक रुझान नजर आता है, तो कहीं ना कहीं एक कौशल विकास के साथ साथ कोशिश यही कि जो कृषि क्षेत्र है उसको और बढ़ावा दिया जाए।
2: अभी बिहार, अभी जो कृषि उत्पादक संगठन का बात जो चल रही है मुख्य रूप से, या जो आपका एफपीओ के माध्यम से ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, खास करके एफपीओ का जो संगठित सामूहिक खेती एक बहुत बड़ा गठन है
1: जी।
2: और खास करके इसका जो आत्मा योजना के तहत पूरे इंडिया में आपका FSG का निर्माण किया गया
1: जी।
2: जो फार्मर्स किसान कृषक हितार्थ समूह और कृषक खाद्य सुरक्षा समूह, ये दो ऐसा समूह का निर्माण है जो पूर्व में चल रहा था, लेकिन अभी जो कृषक उत्पादक संगठन की बात जो चल रही है
1: जी।
2: खास करके यह कृषक उत्पादन संगठन के माध्यम से ही पूरे भारत का यह विकास किया जा सकता है। और कृषक उत्पादन संगठन कंपनी जो आपका जो इसमें जो खेती कर रहे हैं, खास करके किसान, छोटे छोटे किसान है, किसान के पास बहुत कम जमीन है, और मुख्य रूप से यदि सामूहिक रूप से हम खेती करते हैं
1: जी।
2: तो हमारा उत्पाद जो तैयार करते हैं, बहुत से जैसे टमाटर की खेती कर रहे हैं, सब्जी का खेती कर रहे हैं, वो छोटे छोटे स्तर पर कर रहे हैं, बहुत कम जमीन उनके पास है, 10 कट्ठा 15 कट्ठा 1 बीघा की जमीन है, और उस क्षेत्र में यदि तैयार करते हैं एफपीओ, तो वो संगठित होकर वो ट्रक के माध्यम, ट्रक से है जो मंडी में पहुंच सकता है और आसानी पूर्वक वह उत्पाद को मार्केट में बेच सकते हैं। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूँ कि कृषक उत्पादक संगठन तभी सक्सेस होगा जब वह किसान हमारे प्रशिक्षित होंगे, ट्रेंड होंगे, प्रशिक्षण यदि ले लेते हैं, उनको प्रशिक्षण और एक्सपोजर कराने की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि प्रशिक्षण लेकर और जगह जगह पर देखकर किसान को उत्साहित होंगे कि हमारे समूह, वो खास करके कृषक उत्पादक संगठन में जो खेती कर रहे हैं वहां पर भ्रमण करने से अन्य किसानों को भी उससे जुड़ने का मौका मिलेगा, उस संगठन से, संगठन जो संगठित होकर खेती करेंगे, जिससे उनका उत्पाद एवं उत्पादकता मूल्य में वृद्धि होगा, वैल्यू एडिशन बढ़ेगा, जिससे उत्पादन लागत कम होगा और उत्पादन,
1: यानी ये सारे फायदे जो हैं वो मिल सकेंगे हमारे किसानों को एफपीओ से जुड़कर। और जैसा अभी यहाँ शशि भूषण जी बता रहे थे कि देखिए जो एक किसान है वो जब तक खुद खेत पर नहीं जाएंगे, जब तक खुद जो एफपीओ बने हुए हैं उनसे नहीं बात करेंगे, जब तक वो विश्वास नहीं आ पाता, भले ही कितने ही विशेषज्ञ उनको जानकारी दें। और जैसा मैं आपको मुलाकात कराई थी शुरुआत में, हमारे साथ नरेंद्र जी जो है उनसे हम जानना चाहेंगे। नरेंद्र जी, सबसे पहले आपका सफर हम जानना चाहेंगे, कैसे शुरुआत हुई कि एक एफपीओ जो है, किसान उत्पादक संगठन जो है, इसका निर्माण करना है, फिर कैसे ये एफपीओ इतना मजबूत स्थिति में आया कि अब जो बाकी एफपीओ है उनके लिए एक सहारा बना हुआ है।
3: बेसिकली हमारा जो एफपीओ है डायरेक्ट मार्केटिंग में काम करता है, मतलब मार्केट लिंकेजेस में काम करता है, हमने देखा कि हम जो किसान के बच्चे हैं वो एजुकेशन लेने के बाद

0: कोई जॉब वगैरह ढूंढते हैं या फिर कोई बिजनेस ढूंढते हैं, लेकिन हम ऐसा चाहते हैं कि हमारे एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ हम अगर एक्टिविटी करते हैं तो इसमें अच्छा काम भी बन जाएगा और हमारे फार्मर को भी सपोर्ट मिल जाएगा। जैसे कि एफपीओ का काम होता है कि एफपीओ का काम होता है कि ग्रुप तो पहले से ही बने हुए हैं, मतलब फार्मर एक पहले से ही संगठित रूप में काम करने वाला मतलब मनुष्य प्राणी है, तो हर कोई अपने अपने हिसाब से अपने गांव में बैठ के एग्रीकल्चर की जो प्रैक्टिसेस है वो एक साथ ही करते हैं, तो जिसमें सब शेयरिंग करना एक दूसरे को सपोर्ट होने वाली चीज है। लेकिन जब उसका माल हार्वेस्ट होता है तो मार्केट तक जाने के जो प्रोसेस होती है, जो सप्लाई चेन होती है, उसमें किसान का भूमिका नहीं है अभी तक। तो हमने सोचा कि जो फार्मर्स के बच्चे है गाँव से आए हुए हैं वो जो अगर दूसरे यहाँ पे कुछ जाए जॉब वगैरह करें, इससे अच्छा कि जो हमारा फार्मर का प्रोड्यूस है वो बेचने की सप्लाई चेन हम इस्टेब्लिश करें ताकि हमारे फार्मर्स को अच्छा बेनिफिट मिले और हमारे जो रूरल यंगस्टर्स है उनको एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। और उसी हिसाब से हमने जो वर्क है वो डिसाइड किया कि फार्मर्स प्रोडक्शन तक तब तक का काम करेगा और हम जो उनके बच्चे है वो अपने सप्लाई चेन खड़ी करेंगे खुद की, ताकि हम अपने फार्मर्स को अच्छा पैसा दे पाएंगे और कंज्यूमर को अच्छी सर्विस देके जो कुछ अच्छा बेनिफिट मिल रहा है वो हमारे एग्रीकल्चर इंडस्ट्री या फिर हमारे गाँव के लोगों में ही डिस्ट्रीब्यूट करके दे। इसी वजह से हमारे यहाँ के लोगों को अच्छा पैसा भी मिला और हमारा बॉन्डिंग भी अच्छा बन रहा है एफपीओ की वजह से। ये सब काम हमें आसानी से, एफपीओ का मतलब क्या है कि एक तो हम सब काम करते हैं, एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, एफपीओ हमें लीगली बॉन्ड करता है
1: जी
0: कि ये एक्टिविटीज करने के लिए हमें लीगली सपोर्ट करता है, ये सब चीजें करते हैं, हमें जो कुछ एक्सपर्टाइज चाहिए होती है। हर बिजनेस की तरह एग्रीकल्चर एक बिजनेस है जिसमें सारी डिपार्टमेंट है, जैसे स्टैटिस्टिक है, फाइनेंस है, इकोनॉमिक्स है, सेल्स है, मार्केटिंग है, प्लानिंग है, फ्यूचर फोरकास्टिंग है, ये सब चीजें अकेला किसान नहीं कर सकता। तो आप इसके लिए जो रिक्वायर्ड एक्सपर्टाइज है वो आप एफपीओ के थ्रू ले सकते हैं, उनको एक लीगल बॉन्ड में हम जुड़ा सकते हैं ताकि एक दूसरे के बेनिफिट के लिए सब काम करें और सबके साथ जाके सबका बेनिफिट मिले
1: जी। तो देखिए किस तरीके से सबका साथ सबका विकास हो सकता है, नरेंद्र जी अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। और जैसा उन्होंने कहा कि जब तक किसान संगठित नहीं होगा तब तक शायद उतना फायदा कृषि क्षेत्र से हमें नहीं मिल सकेगा। गौरव जी अगर देखा जाए, क्योंकि सरकार का प्रयास भी यही रहा है कि एक लक्ष्य हमने निर्धारित किया है 10,000 नए जो एफपीओ है उनके निर्माण का, इस दिशा में कितना हम आगे बढ़े हैं?
2: मुकुल जी जैसा मैंने बताया कि ये स्कीम के अनाउंस होने से पहले करीब 10,000 एफपीओ बन चुके थे
1: जी,
2: और जो नया स्कीम है जिसमें जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है गवर्नमेंट का, इसमें इन्होंने 10,000 एफपीओ अनाउंस किए हैं जो कि अगले 2-3 साल में, अभी करीब करीब 2,500 एफपीओ जो हैं जिसके लिए अलग अलग इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज हैं, एसएफएसी है, नेफेड है, नाबार्ड है, एनसीडीसी है, तो इन लोगों ने सीबीबीओ के साथ में मिलकर करीब करीब 2,500 एफपीओ जो हैं वो इन द मेकिंग है, अभी अलग अलग चरणों में बन रहे हैं
1: जी,
2: और अगले 2-3 साल में करीब करीब 10,000 एफपीओ और बन जाएंगे। तो 3 साल के बाद अगर हम एक पूरा आंकड़ा देखें तो करीब करीब पूरा कंट्री के अंदर 20,000 के करीब एफपीओ हैं जो फंक्शनल होंगे
1: जी। लेकिन सीबीबीओ की भी अगर हम बात करते हैं तो एक अहम कड़ी के तौर पर ये काम कर रहा है लगातार, लेकिन एक किसान अगर किसी गांव की हम बात करते हैं या जो हमारे दर्शक शायद उनके जहन में भी ये बात आए, कैसे वो किसान उत्पादक संगठन से जुड़ सकते हैं या उसके निर्माण की शुरुआत कर सकते हैं?
2: इसमें बेसिकली सीबीबीओ जो है वो जमीनी स्तर पे काम करने वाली संस्थाएं होती हैं जो वहाँ पे प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं उनके साथ टच में होती हैं, और जो प्रोग्रेसिव फार्मर हैं उनके तरीके उनके माध्यम से करीब करीब वहाँ पे एक इनफॉर्मल ग्रुप की संरचना होती है जिसको एफआईजी बोलते हैं, फार्मर इंटरेस्ट ग्रुप, जो शशि भूषण जी भी बता रहे थे कि सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं, उसी तरीके से कॉमन इंटरेस्ट ग्रुप या फार्मर इंटरेस्ट ग्रुप होते हैं, पहले उनकी संरचना होती है, करीब ऐसा 20-25 ग्रुप ग्राउंड पे क्रिएट किए जाते हैं
1: जी,
2: और फिर इन ग्रुप्स को एक ट्रस्ट बिल्डिंग एक्सरसाइज होती है जहाँ पे मदद की जाती है उनको अच्छे उत्पाद पाने के लिए, एग्रीकल्चर के इनपुट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, उनको मार्केटिंग की सुविधाएं दी जाती हैं
1: जी,
2: और इसके बाद उनको एक फेडरेशन के तहत जिसको हम लोग 20-25 ग्रुप का आज की तारीख में जो एफपीओ है उसके अंदर हम लोग फेडरेट करते हैं, तो करीब करीब 300 से 500 किसानों का एक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का इस प्रकार से हम लोग संरचना करते हैं
1: जी। ये बिल्कुल देखिए किस तरीके से कोशिश यही की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा जो किसान हैं वो संगठित हो सकें। और खासतौर से शशि भूषण जी अगर देखा जाए, जब हम एग्री बिजनेस की हम बात करते हैं, जो किसान है सिर्फ कृषि तक सीमित नहीं बल्कि उसको एक उद्यमी के रूप में या एक व्यापारी के रूप में देखें, तो ये शायद एक जो बड़ा बदलाव है ये एफपीओ की वजह से अब हमें नजर आने लगा है।
3: एफपीओ के माध्यम से इसमें बहुत काफी बदलाव आ रही है, बहुत काफी इसमें बदलाव हुआ है कृषक उत्पादक संगठन से, और किसान का उत्पाद आज भी देखिए जो एफपीओ का ही देन है कि जरदालू आम लंदन गया, जीआई टैग टैग जरदालू आम पर मिला,
1: जीआई
3: टैग आपका लीची पर मिला, तो इस पर एक बाहर मतलब एक्सपोर्ट करने की अपार संभावना है। और इस क्षेत्र में बिहार का धरोहर बहुत काफी चीज है, चिनिया केला हो गया, लीची हो गया, मखाना हो गया, तो इस क्षेत्र में एफपीओ के माध्यम से ही पूरे वर्ल्ड में इसका हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे, जिससे हमारे किसान को खास करके एफपीओ से जुड़े हुए हैं जो फार्मर्स किसान हैं उनको जो रेट जो वैल्यू एडिशन की बात है कि आमदनी कैसे बढ़े, तो यहाँ पर उतना रेट नहीं मिल पाता। मखाना बिहार में हो रही है, शहद हो रही है बिहार में, बहुत काफी मात्रा में इसकी हो रही है, लेकिन एफपीओ के माध्यम से हम संगठित होकर यदि कार्य करते हैं तो हमारा उत्पाद राज्य और देश में तो होगा ही होगा। जो बिहार का जो सोच है कि हर भारतीय के थाली में एक व्यंजन बिहार का हो, तो इसके माध्यम से बिहार के स्तर से हमारे भारत ही नहीं पूरे वर्ल्ड में यह फेमस हो सकता है कि इस उत्पाद को हम आज जो यहाँ पर मधुमक्खी पालन के क्षेत्र में हम लोग स्टेट में 2500 फार्मर्स का सिलेक्शन किया गया और मास्टर ट्रेनर का तैयार किया जा रहा है। और इसमें खास करके यहाँ पर जो इनकम नहीं हो रहा था, लेकिन बी वेनम के माध्यम से बी वेनम निकालने का एक प्रोसेस बिहार में इसका स्टार्ट हो गया, जिसको इंटरनेशनल मार्केट में 1,20,00,000 रुपए केजी तक इसकी मार्केट है। तो बी वेनम, परफोलिस, रॉयल जेली ये सब नहीं निकालते थे, लेकिन 50 वर्ष से पहले 1 से 1.5 लाख रुपया इनकम करते थे, लेकिन आज जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी से आधुनिक तकनीकी से हम खेती करते हैं, मधुमक्खी पालक करते हैं, तो हमारा 8 से 10 लाख रुपये उत्पादन मिलता है, उत्पादन का कॉस्ट जो,
1: यानी आज के समय में जो हम स्मार्ट फार्मिंग की बात करते हैं, स्मार्ट फार्मर उससे जुड़े हुए हैं, और ये जो स्मार्टनेस है हम मान सकते हैं एफपीओ के जरिए देखिए अब आ रही है। नरेंद्र जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आपने बताया कि कैसे शुरुआत की गई, लेकिन जब हम विपणन की बात करते हैं, मार्केटिंग की बात करते हैं, जो काम आपका एफपीओ बखूबी कर रहा है, तो ना सिर्फ घरेलू बाजार बल्कि एफपीओ ने कहीं ना कहीं जो दूसरे किसान हैं उनको भी असीम विकल्प और संभावनाएं दिखाई वैश्विक बाजार की तरफ भी।
0: बिल्कुल बिल्कुल, देखो अगर कोई भी मार्केट अगर हम पकड़ते हैं तो मार्केट में ऐसा कोई नहीं कि एक ही जगह के एरिया के या फिर एक ही फार्मर की चीजों की जरूरत होती है, अलग अलग एरिया के फार्मर आते हैं। सब सिटीज जो है मेट्रो सिटीज बन गए, जैसे अगर मुंबई की बात करते हैं, मुंबई पुणे की, तो यहाँ पे दिल्ली से लोग है, चंडीगढ़ से लोग है, बिहार से लोग है, चेन्नई से लोग है, तो सब लोगों की सब रिक्वायरमेंट रहती है। तो एक साथ अगर ज्यादा एफपीओ जाते हैं तो हम अलग अलग तरीके के वराइटीज के प्रोड्यूस एग्री प्रोड्यूस उनके तरफ यहाँ तक पहुंचा सकते हैं। जैसे हमने नाफेड़ के साथ भी किसान मंडी किया, तो उसमें क्या कर रहे हैं, जैसे चेरी में चेरी नाफेड़ ने जो कश्मीर के एफपीओ है उनका चेरी नाफेड़ के साथ मिलकर हमने मुंबई में लाए। जैसे हमारे महाराष्ट्र के जो एफपीओ है जिसका हमारा खुद का जैसे वेजिटेबल का प्रोडक्शन है, कहाँ पे ऑरेंजेस का प्रोडक्शन है, कहाँ पे मैंगो का प्रोडक्शन है, ये जो चीजें मेट्रो सिटीज में लगती है वो हम उनके साथ टाइप करके उनको भी मार्केट लिंक दे देते हैं। ऐसे भी हमारे लगभग 168 ग्रुप्स और एफपीओ है जिसका हम सालाना 100 करोड़ रुपए के एग्रीकल्चर प्रोड्यूस सीधा बेचते
1: हैं,
0: जिसकी प्राइम मिनिस्टर सर ने भी उनके मन की बात में प्रशंसा की है। लेकिन कोई भी मार्केट डेवलप करना है तो एफपीओ के थ्रू आप वहां तक जा सकते हैं, और एक ग्रुप के तरह मतलब कोई भी चीज, देखो हम सीधी चीज है कि हम जितने बड़े हो जाते हैं, जितने लोग जुड़ते जाते हैं, तो उतना ही काम बड़ा हो जाता है। जितने बड़े हो जाते हैं तो स्केल की जो हमें बेनिफिट है वो अपने आप मिल जाते हैं। तो स्केल करने के लिए देखो मार्केट में हर चीज जा रही है, पहले भी जा रही थी एफपीओ, पहले जैसे जैसे जैसे समाज बनाया 2000 साल से लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं और खा भी रहे हैं। हम अगर एक साथ होते हैं तो इसमें क्या होता है कि हमारे जो काम करने वाले लोग हैं या हमारे जो सेम इंटरेस्ट वाले लोग हैं उनका बेनिफिट सिक्योर करना हमारे एफपीओ का जरूर काम है। तो जितने ज्यादा एफपीओ जुड़ जाते हैं तो उतने ज्यादा आपका मजबूत संगठन हो जाता है और उतना ज्यादा आपका शेयर मार्केट बढ़ जाता है।
1: बिल्कुल नरेंद्र जी, इतने ज्यादा जो एफपीओ आपने बताया जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ उसमें इतने संख्या में जो किसान है वो आपसे जुड़े हुए हैं, और जैसा आपने जिक्र किया कि प्रधानमंत्री ने भी उस बात को सराहा, वो किस तरह का अनुभव रहा आपके लिए?
0: बिल्कुल बढ़िया सर, जब अगर कोई चीज आप बनाते हैं, जब हम फार्मर के बच्चे हैं, हम कोई चीज ऐसा तो नहीं कि 10 साल 20 साल प्रेडिक्ट करके बना सकते हैं। हम आज की जो हमारी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से कुछ चीज बनाते हैं कि अभी हमारा माल आज जो हार्वेस्ट किया है वो बेचने के लिए हम कहाँ पे जाए, कंज्यूमर को क्या चाहिए, इस वजह से हमें पता चलता है। यही चीज अगर गवर्नमेंट के लेवल पे अगर गवर्नमेंट सपोर्ट करती है और ऐसे प्रशंसा करती है तो हमें और भी उसमें अच्छा लगता है, सपोर्ट मिलता है, और हमारे देश जो लोग है बाकी उनको भी लगता है गवर्नमेंट इन छोटी छोटी चीजों को अगर प्रशंसा कर रही है तो गवर्नमेंट इन चीजों में ध्यान दे रही है, तो उसके जैसे और हजारों लड़के तैयार हो जाते हैं और हजारों एफपीओ बन जाते हैं कि जो चाहते हैं कि हम अपना मार्केट तैयार करें और हमारे किसानों को भी बेनिफिट देते हैं।
1: बिल्कुल नरेंद्र जी, लेकिन ये आपका बड़प्पन है, आप अभी भी इसको छोटी बात कर रहे हैं, जबकि खुद प्रधानमंत्री ने इस बात को सराहा भी है और लगातार इसी वजह से भी हम मान सकते हैं कि कोशिश की जा रही है और ज्यादा मजबूती जो है वो किसान उत्पादक संगठन क्षेत्र में आ सके। और खासतौर से गौरव जी, अगर देखा जाए एक जिला एक उत्पाद जैसी भी योजनाएं हैं सरकार की, तो क्या इनका भी समावेश हम मान सकते हैं?
2: बेसिकली जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ODOP स्कीम है, इसका मेन लक्ष्य यही है इकोनॉमी ऑफ स्केल लाने के लिए। हर एक एरिया की अपनी एक विशेषता है कि जैसे स्ट्रॉबेरी है आपकी वो महाबलेश्वर से आती है, या आपका दशहरी है वो मलिहाबाद से है, उसी तरीके से आपका जो बासमती है वो उसके लिए तरावड़ी है या अमृतसर है। तो उस तरीके से उस एरिया की जो विशेषता है वहाँ पे मेजोरिटी फार्मर्स जो हैं आप हम पाते हैं कि वो उस क्रॉप के उत्पाद में संलिप्त होते हैं
1: जी।
2: तो ये जो स्कीम है इसका कन्वर्जेंस FPO के साथ में इसीलिए किया जा रहा है कि उस एरिया की जो उस एरिया की एक विशेषता है उसका कमर्शियल स्केल पे फार्मर को रियलाइजेशन बढ़ा के दिया जा सके इस FPO के संगठन के माध्यम से
1: जी।
2: तो उसी तरीके से ODOP स्कीम का गवर्नमेंट ने कन्वर्जेंस किया ये FPO स्कीम के अंदर। तो ज्यादातर जो कोशिश है उस एरिया के अंदर प्राइमरी लेवल पे उस क्रॉप को जरूर उसमें इन्वॉल्व किया जाए जिस जो उस एरिया की विशेषता है,
1: यानी FPO जो है इससे भी जुड़ सकें।
2: यस,
1: तो देखिए किस तरीके से जब भौगोलिक पहचान की हम बात करते हैं, एक जिला उत्पाद जैसी जो योजनाएं हैं उनके जरिए भी कोशिश यही कि अगर वहां पे ज्यादा फायदा हो रहा है तो किसान अगर संगठित होंगे, अगर उनके वहां कोई किसान उत्पादक संगठन है तो वो इस योजना से जुड़कर और भी ज्यादा लाभ ले सकता है। और इसके लिए अलग अलग राज्यों से भी हमने देखा किस तरह का जो रुझान है वो होता नजर आया। शशि भूषण जी, आप बता रहे थे कि किस तरीके से करीब अगर हम बात करते हैं बिहार राज्य की भी, तो यहां भी करीब 200-300 के करीब जो FPO उनका निर्माण अभी हो चुका है, लेकिन इन FPO में सबसे ज्यादा अगर हम बात करते हैं किसी उत्पाद को लेकर आपको रुझान नजर आता है या जो कृषि के संबंधित सेवाएं हैं उनको लेकर रुझान नजर आता है?
3: तभी जिस कृषक उत्पादक संगठन का मुख्य रूप से यहाँ पर ऑर्गेनिक का है जो बढ़ावा ज्यादा दिया जा रहा है, जैविक खेती का
1: जी,
3: जैविक खेती पर, क्योंकि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का वैल्यू एडिशन काफी मिल जाता है और इस चीज को यदि हम लोग FPO के माध्यम से ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक शॉप ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक का यदि हम प्रोडक्शन करते हैं, इसका नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट में इसकी डिमांड है। ऑर्गेनिक का फोकस करने की आवश्यकता है, खास करके यहाँ पर जो प्रोडक्ट जो उत्पादन हम लोग कर रहे हैं, उत्पादन तो कर ही रहे हैं, उत्पादन में कोई कमी नहीं है, लेकिन यदि हम ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग की सिस्टम की ओर यदि जाते हैं तो हमारा उत्पादन लागत कमेगा और उत्पादन लागत कमने के साथ साथ हमारा वैल्यू एडिशन बढ़ जाता है और खास करके पर्यावरण को देखते हुए, प्रदूषण को देखते हुए भी, और ह्यूमन में जो आज जो कोविड जो चल रही है इसमें भी बहुत काफी उपयोग में लाया जा सकता है, खास करके इम्यूनिटी पावर बढ़ाना है तो ऑर्गेनिक खाना है, जैविक खेती करना है, जैविक खेती करके हम उत्पाद को अच्छे ढंग से इसके उपयोग में ला सकते हैं और हमारे किसान हैं खुशहाल होंगे इस क्षेत्र में, क्योंकि उत्पादन को लागत को कम करने में जैविक ही ऐसा है। इस पर किसानों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है, प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बहुत काफी महंगा नहीं है, जैविक को वह घर में ही तैयार कर सकते हैं, खास करके जैविक खेती करना करने के लिए जो प्राकृतिक जो हमारा नेचुरल बर्मी कंपोस्ट जो है जो हमारा प्राकृतिक प्रवाह है वह दिन रात हमारे केचुआ खेत जोत रहा है और मिट्टी की संरचना को सुधार कर रहे
1: हैं और हमारे FPO जो है लगातार इससे जुड़कर और भी अच्छी आमदनी जो है वो ले रहे हैं और उसी वजह से लगातार कोशिश की जा रही है कि और भी जो किसान हैं वो इस संगठन से जुड़ सके, यानी जो किसान उत्पादक संगठन है इससे जुड़ सके। और अभी तक जाना आपने कि किस तरीके से कोई अलग से हम कह सकते हैं ऐसा नहीं है, एक कंपनी हम मान सकते हैं किसान की जिसमें वो खुद अलग अलग पदों पर होते हैं और उसके बाद हिस्सेदारी जो है वो पूरी तरीके से निर्धारित की जाती है, तो पारदर्शिता इस प्रणाली में हमें नजर आती है, मुनाफा किसान को इसमें होता है, उसके साथ साथ आधुनिक कृषि में हमारे आधुनिक किसान की जो हिस्सेदारी है वो लगातार बढ़ रही है। लेकिन आने वाले समय में इनको कैसे हम मान सकते हैं कि जो इनकी कड़ी है वो अब जुड़ पाएगी स्टार्टअप से, और उसके बाद जब आत्मनिर्भर कृषि की हम बात करते हैं वो भी FPO के जरिए साकार हो सकेगा।
4: किसान उत्पादक संगठन, जी हाँ किसान साथियों, जो FPO है इसके माध्यम से बहुत सारे किसान जो हैं इसका फायदा उठा रहे हैं। यहाँ पर जो हमारा किसान है वो अपना एक संगठन के माध्यम से अपनी जो आमदनी है उसे बढ़ा सकता है। चर्चा का ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, FPO से जुड़ी हुई और भी महत्वपूर्ण चर्चा बातों को हम जानेंगे और भी महत्वपूर्ण इससे जुड़ी और भी महत्वपूर्ण बातों को लेकर हम चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पर वक्त हो चला है एक छोटे से विराम का, कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ रेडियो टाइमटेबल 90.8 एफएम के साथ झाबुआ की आवाज पर।
5: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टाइमटेबल 90.8 एफएम। आप रेडियो, आपकी बातें।

0: है झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
1: किसान साथियों, एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका खेती बाड़ी कार्यक्रम में। आप लगातार किसान उत्पादन संगठन के बारे को लेकर चर्चा कर रहे हैं, तो आइए जानते हैं इससे जुड़ी हुई कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों को।
2: जो मूवमेंट है जिसके तहत ये छोटे किसानों को साथ में लाकर ये FPO की संरचना की जा रही है। दूसरा जो मूवमेंट है वहाँ पे स्टार्टअप को बढ़ावा दे रहे हैं। जो स्टार्टअप मूवमेंट है जैसे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, DST है, वो लोग स्टार्टअप को प्रमोट करने के लिए या बढ़ावा देने के लिए बहुत सारा इंक्यूबेशन एजेंसी को सपोर्ट करते हैं
3: जी।
2: तो ये जो स्टार्टअप्स हैं, ये लोग जो एग्रीकल्चर के पेन पॉइंट्स हैं, ये ऐसे सब इलीट इंस्टीट्यूट से आते हैं, IIM, IIT से, जो कोशिश कर रहे हैं, जो स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजीज हैं, बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसके तहत किस तरीके से जो हमारे यहाँ पे एग्रीकल्चर के पेन पॉइंट्स हैं, चाहे वो प्री हार्वेस्ट के हैं, पोस्ट हार्वेस्ट के हैं, उसको किस तरीके से एड्रेस किया जा सकता है
3: जी।
2: जैसे प्री हार्वेस्ट के अंदर कुछ स्टार्टअप्स हैं, IIT कानपुर ने अभी एक ऐसा सॉइल टेस्टिंग का मशीन का इजाद किया जिसमें कि रिकरिंग एक्सपेंसेस जो है, जो उसको चलाने की कॉस्ट है, ऑलमोस्ट ना की जैसे है, और उसके अंदर विद इन मिनट्स वो सॉइल टेस्ट कर पाते हैं
3: जी।
2: तो इस तरीके की प्री हार्वेस्ट के टेक्नोलॉजी है जो उन्होंने एग्रोनेक्स्ट एक स्टार्टअप के साथ टाई अप किया उसको ग्राउंड पे ले जाने के लिए। ऐसे कृषि तंत्र एक FPO है, सॉरी स्टार्टअप है, जिसने एक ऐसा ही ऑटोमेट किया सॉइल टेस्टिंग का प्रोसेस को। ऐसे एक इंटेलो लैब करके एक स्टार्टअप है जो पोस्ट हार्वेस्ट के बाद में ज्यादातर जो प्रॉब्लम्स आती हैं ट्रांजेक्शन्स में व्यापारी के साथ में फार्मर्स को, वो क्वालिटी फ्रंट पे आती है। तो उन्होंने
3: गौरव जी एक दूसरे के पूरक होते हमें ये नजर आ रहे हैं अगर हम FPO और स्टार्टअप्स की बात करते हैं, क्योंकि स्टार्टअप्स के लिए अगर आपको जरूरत पड़ रही है इनपुट्स की या कच्चे माल की अगर हम बात करते हैं, तो वो शायद हमारा FPO जो है वहां पर वो भली भांति वो कार्य कर रहा है।
2: हाँ जी, FPO एक साइड में है और जो टेक्नोलॉजी का समावेश है यहाँ पे वो स्टार्टअप मूवमेंट के द्वारा देखने में आ रहा है
3: जी।
2: तो ये दोनों एक दूसरे के एक तरीके से पूरक के जैसा कार्य कर रहे हैं
3: जी, बिल्कुल। और यहाँ शशिभूषण जी आपसे भी हम जानना चाहेंगे, जब क्योंकि अब जैसे ही जो FPO का निर्माण होता है उसके बाद समस्या उनके सामने रहती है, कुछ चुनौतियां भी सामने रहती हैं, और शायद काफी हद तक जो उनकी चुनौतियां हैं उनका समाधान अगर वो स्टार्टअप से जुड़ रहे हैं या सरकार की तरफ से उन्हें मदद मिल रही है तो काफी हद तक वो समाधान हो जाता है। बिहार की अगर बात करें तो क्या वहां भी एक मजबूत कड़ी के तौर पर नजर आ रहे हैं हमारे जो FPO हैं और जो एग्री स्टार्टअप्स हैं?
4: बिहार स्टेट में भी स्टार्टअप्स जो कर रहे हैं उनको हम लोग है जो प्रशिक्षण के माध्यम से खास करके ट्रेंड होना अति आवश्यक है। यदि जब तक प्रशिक्षित नहीं होंगे तो कोई भी बिजनेस को स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे मुर्गी पालन करना है, बकरी पालन करना है, मधुमक्खी पालन करना है, तो स्टार्टअप करने के पहले उनको है जो प्रशिक्षित किया जाता है और खास करके उनको यह वहाँ लोकल स्तर पर कृषि विज्ञान केंद्र है, आत्मा कार्यालय है, जिला कृषि कार्यालय है, तो वहां से संपर्क स्थापित करके हमारे प्रखंड स्तर पर भी प्रखंड तकनीकी प्रबंधक, सहायक तकनीकी प्रबंधक वहां पर सहयोग करते हैं, वहां पर टेक्नोलॉजी उनको एडॉप्ट कराते हैं और बामिती स्तर से उनको स्पेशल ट्रेनिंग दिया जाता है, खास करके ATM, BTM और जो एक्सटेंशन फंक्शनरीज में हमारे जुड़े हुए हैं, कृषि समन्वयक भी है जो ब्लॉक स्तर पर है, और उनको हम लोग प्रशिक्षित करके और प्रशिक्षण लेकर उनको किसान का जो जिस क्षेत्र में करना चाहते हैं, स्टार्टअप करना चाहते हैं, कोई मुर्गी पालन करना चाहते हैं, कोई बकरी पालन करना चाहते हैं, तो उनको विशेष तौर पे प्रशिक्षित करके और उनका जो भी प्रॉब्लम होता है, जो चैलेंज है, उसको चैलेंज को दूर किया जाता है। खास करके यदि जब तक हम लोग उन किसानों को प्रशिक्षित नहीं करेंगे तब उनका जो लॉस होने की संभावना बनी हुई रहती है। और हर हमेशा खास करके कृषक उत्पादक संगठन हमारा FIG FAG का निर्माण किया हुआ है, उसके माध्यम से जो FPO से जुड़े हुए हैं उनको भी प्रशिक्षण देने के लिए भी व्यवस्था किया जाए, ताकि प्रशिक्षित होकर वह आसानी पूर्वक जैसे जिस क्षेत्र में लोग डिस्ट्रिक्ट इसमें क्षेत्र क्षेत्र पर ही बढ़ावा दिया जाना चाहिए, जिस क्रॉप को फसल ले रहे हैं उस क्षेत्र को और अधिक बढ़ावा दिया जाए,
3: यानी बेहतर कुशलता और दक्षता के साथ कोशिश यही की जाती है। अगर प्रशिक्षण आप लेते हैं तो और बेहतर आप उसमें हो सकेंगे और ज्यादा निपुण आप उसमें हो सकेंगे, जिसका फायदा आपको आने वाले समय में मिल सकेगा। नरेंद्र जी, यहाँ आपसे हम जानना चाहेंगे, क्योंकि पहले आपके सामने भी जाहिर तौर पर चुनौतियां रही होंगी जब एफपीओ का निर्माण आपने किया था, किस तरीके से बाजार तक पहुंचना है, लेकिन अब किस तरीके से हम मान सकते हैं कि जो बाजार है या व्यापारी हैं बड़े, वो शायद खुद आप तक पहुंचते होंगे आप?
5: बिल्कुल बिल्कुल सर, ये बेसिक लेवल ही देखे तो एक इकोसिस्टम होती है जहाँ पे सारे मतलब प्रोडक्शन से लेके मार्केटिंग की चीज है, जब तक एक गट्ठे में ऑर्गेनाइज नहीं होती तब तक इसमें से कोई भी आदमी ठीक से काम नहीं कर पाता है। हमारा क्या काम होता है कि ये सब ऑर्गेनाइज करना, मतलब अच्छा प्रोड्यूस कंज्यूमर को चाहिए, लेकिन उसके लिए आपको शुरुआत करनी पड़ती है प्रोडक्शन से। प्रोडक्शन के लिए पहले कैपेसिटी बिल्डिंग करना, फार्मर्स की रिसोर्सेस अवेलेबल करके देना, अच्छे इनपुट्स अवेलेबल करके देना, ये सब चीजें करनी पड़ती है। जो पोस्ट हार्वेस्ट के बाद जो ट्रीटमेंट होती है या सप्लाई चेन होती है, इसमें बहुत सारे लोग काम करते होते हैं, तो वो लोगों को आपको एक साथ जोड़ना पड़ता है और एक इकोसिस्टम बनानी पड़ती है जो आपकी स्ट्रांगली अप्रोच हो, सीड से लेके प्लेट तक, मतलब अपने फार्म से लेके कंज्यूमर के घर तक जाने तक की जो सप्लाई वो खड़ी करने के लिए जो आपको लोग जरूरत होते हैं वो आपको एक इसमें जोड़ने पड़ते हैं
3: जी।
5: और जैसे जैसे आपका काम बढ़ता है, लोग बढ़ते हैं, वैसे लोग आपको मिल भी जाते हैं और लोग आपके पास आ भी जाते हैं, लेकिन आपको इसमें स्ट्रांग ऐसा मैसेज देना होता है लोगों तक कि एक अच्छे मॉडल है जहाँ पे आप ज्वाइन भी कर सकते हैं, लेकिन रूल्स के हिसाब से फार्मर्स का, बाकी स्टेक होल्डर का, सबका इंटरेस्ट कैसे बरकरार रहे, ट्रांसपेरेंसी और ट्रेसेबिलिटी के साथ कैसा अपना वर्क करे ताकि सबको बेनिफिट हो, लॉसेस कम हो, कॉस्ट इफेक्टिव सप्लाई चेन बने जिसमें कंज्यूमर भी बेनिफिट मिले
3: जी,
5: फार्मर को भी बेनिफिट।
3: नरेंद्र जी, लेकिन जैसा आपने कहा कि क्योंकि इतने सारे एफपीओ जो है वो आपसे जुड़ते हैं और एक कारोबार जो है बड़े स्तर पर पहुंचता है, और उसमें जब बात आती है हिस्सेदारी की या खासतौर से मुनाफे की अगर बात की जाए, किस तरीके से जो हर एक एफपीओ है वहां ये सुनिश्चित किया जाता है कि कितना मुनाफा आपको मिल सकता है? क्योंकि किसान के जहन में ये विश्वास दिलाना कि यहां आपको इतना मुनाफा मिल सकता है, ये कहीं ना कहीं मुश्किल रहता है, चुनौतीपूर्ण रहता है, तो आपको लगता है कि अब कहीं ना कहीं जो किसान है उसका विश्वास नजर आता है एफपीओ को लेकर?
5: बिल्कुल बिल्कुल सर, इसमें बहुत इम्पोर्टेंट चीज आपने बात कही कि हमेशा ही होता है कि जब कुछ मिलता नहीं हो तब तक सब लोग साथ होते हैं एफपीओ के, जब कुछ मिलना चालू हो गया तो फिर उसमें दिक्कत आ जाती है, बहुत सारे चीजें हो जाती है उसमें
3: जी।
5: हम जिस तरह से काम करते हैं तो हम बेसिकली बहुत बेसिस पे काम करते हैं, हम जब काम चालू करते हैं तब भी डिसाइड करते हैं कि किसका क्या वर्क है और उसको वर्क के हिसाब से कॉम्पेंसेशन दिया जाता है। जैसे हमारे इसमें अगर देखते हैं तो हमारे दो टीम बनते हैं, एक एफपीओ की कोई भी, एक जो होती है कल्टीवेशन वाली प्रोडक्शन वाली और दूसरी टीम जो होती है सेल्स वाली। एक फार्मर है सबको एक कम्युनिटी पर प्रोडक्शन कर रहा है तो हम ये डिसाइड कर देते हैं कि 40% अगर 20% सप्लाई चेन की कॉस्ट है और 20% सेल कटिंग को, तो 40% सेल्स में जाएगा, 60% प्रोडक्शन में जाएगा। जो प्रोडक्शन करने वाला फार्मर उसने अगर 200 किलो भी कम्युनिटी प्रोडक्ट की है तो उसका सेल्स प्राइस देख के 60% उस फार्मर को सीधा जाता है, 40% वो सेल करने वाले को जाता है। इस हिसाब से अगर आप सब चीजें प्री डिफाइंड है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनाते समय ही, तभी आपके काम बहुत लॉन्ग टर्म चला जाता है कि आपके सब चीजें डिफरेंट डिफाइन है, आपका जो जो जैसे काम कर रहा है वो बेसिस पे अगर सबको मिल रहा है, क्योंकि जब ग्रुप बड़े लेवल पे एक साथ आ जाता है तो हमेशा उसको एक चीजें लगती है, जैसे ह्यूमन रिसोर्स हमारे यहाँ भी कुछ पता नहीं, मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, तो उनको ट्रेनिंग देना भी होता है, जैसे कॉर्पोरेट कंपनी में काम करते हैं लोग तो उनको पता होता है कि मेरा एक पोर्टफोलियो है और मुझे इसके लिए उतना पैसा मिलने वाला है। वैसे ही एपीसी भी हर किसी का एक पोर्टफोलियो होता है, हर आदमी कोई एक तो सुपरस्टार नहीं होता कि हर चीजें एक ही आदमी करेगा, तो जो आदमी जो कर रहा है उसको वो अच्छी तरह से निभाए और उसको उसके लिए पैसा मिले,
3: यानी सबकी जिम्मेदारी जो है वो सुनिश्चित कर दी जाती है और उसी के अनुसार जो हिस्सेदारी आती है यानी जो मुनाफा है वो देखिए किस तरीके से हम मान सकते हैं कि एक सही अनुपात में, निश्चित अनुपात में हर एक एफपीओ तक पहुंचता है। और खासतौर से गौरव जी देखा जाए तो शायद आपको भी काफी तसल्ली मिलती होगी, काफी खुशी होती होगी जब एक किसान जो है कृषि में जो अर्थशास्त्र छिपा हुआ है जब उसको जानते हैं समझते हैं। तो
2: इसका मेन ऑब्जेक्टिव मुकुल जी यही है कि हम लोग जो किसान है उसको इसका जो इकोनॉमिक्स है वो समझ में आना चाहिए। जैसा शुरू में नरेंद्र पवार जी ने कहा था कि एग्रीकल्चर जो है इसमें बहुत सारा साइंस का समावेश है
3: जी।
2: यहाँ पे एक फार्मर को बॉटनिस्ट होना जरूरी है, उसको प्लांट पैथोलॉजिस्ट होना जरूरी है, उसको एग्रो इकोनॉमिस्ट होना जरूरी है। तो जिसका इन्होंने यहाँ पे अभी मेंशन भी किया किस प्रकार से ये लोग पोर्टफोलियो बनाते हैं, तो उस तरीके का अलग अलग अपना पोर्टफोलियो का निर्वहन करते हुए एफपीओ जिस तरीके से अपना टारगेट अचीव करती है, तो ये काफी एक सक्सेसफुल मॉडल के जैसे ही वो हो रहे हैं यहाँ पे।
3: कितनी संख्या तक किसान जो है वो एक एफपीओ में जुड़ सकते हैं, और अगर सबसे कम संख्या आपसे भी हम जानना चाहेंगे कि कितनी एक न्यूनतम सीमा जो है वो कितनी है और अधिकतम कितनी है
2: इसमें जो नया स्कीम है उसमें? जैसे हिली एरियाज है जहाँ पे स्कैटर्ड पॉपुलेशन होती है, कि कश्मीर की बेल्ट है या हिमाचल है या नॉर्थ ईस्ट एरियाज है, वहां पे 100 तक फार्मर्स को साथ में लेके एक संगठन का निर्माण होता है और ये संख्या जो है 200 तक भी जाती है, और इसके अलावा अगर कहीं पे थोड़ा डेंसली पॉपुलेटेड है तो उसमें थोड़ा ज्यादा बढ़ जाती है। जो नॉर्मल प्लेन एरियाज है वहां पे अभी 300 किसानों को लेके, मिनिमम 300 किसानों को लेके ऐसा एक एफपीओ बनाया जाता है जिसकी संख्या 500 और 500 से ऊपर 1000 तक भी चली जाती है
3: जी।
2: और कुछ बड़े एफपीओज हैं जैसे अलग अलग कमोडिटीज में है, मिल्क के जो एफपीओज हैं वहां पे ये थाउजेंड्स में है, कि जैसे एनडीडीबी सर्विसेज हैं उनके एफपीओज बने हैं तो वहां पे 20,000-25,000 इस तरीके से फार्मर्स की, क्योंकि जो इसका की है वो इकोनॉमी ऑफ स्केल है, जितना ज्यादा किसान साथ में आएंगे उतना ही उनकी बार्गेनिंग पावर बढ़ती है, उतना ही उनको इकट्ठा ऑप्टिमाइजेशन होती है ऑपरेशंस में, वो अपना खर्चा कम कर पाते हैं साथ में काम करके।
3: बिल्कुल, और कुछ ऐसी स्थिति हमने इस बार के बजट में भी देखी जो कहीं ना कहीं नाबार्ड को भी जिम्मेदारी दी गई है, ना सिर्फ स्टार्टअप्स की हम बात करते हैं या एफपीओ की बात करते हैं, तो हम मान सकते हैं कि जो योजना का उद्देश्य है वो यही है कि एक किसान को कैसे हम फायदा पहुंचा सकते हैं।
2: बिल्कुल, जो इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि जो छोटा किसान, जिसकी छोटी जोत होती है, जिसकी अपनी नेगोशिएशन और बार्गेनिंग पावर नहीं होती है, ऐसे बहुत सारे किसान साथ में मिलके आए, इस तरीके का जैसा नरेंद्र पवार जी का संगठन है, इस तरीके के संगठन का निर्माण हो और फिर उसके बाद में वो एक कॉरपोरेट के जैसा इसको इंस्टीट्यूशन को रन करें और जिसमें हर फार्मर की सहभागिता हो वैल्यू चेन सिस्टम के अंदर, और उनको उनके जो प्रोडक्ट का बेटर प्राइस रियलाइजेशन हो, उनकी आमदनी बढ़े।
3: बिल्कुल गौरव जी, लेकिन एक सवाल अक्सर जो किसान है उनके जहन में भी आता है, कई बार उन्होंने हमसे भी इस बात की जानकारी लेने की कोशिश की है, जब हम बात करते हैं सहकारिता की, कॉपरेटिव की, उनसे कैसे हम जो एफपीओ है उसको अलग मान सकते हैं?
2: कॉपरेटिव और एफपीसी का जो अभी मेन डिफरेंस जो है, कॉपरेटिव जो है उसके अंदर भी ऐसे ही फार्मर संगठित होकर करते हैं, लेकिन उसमें जो नॉर्म्स हैं, बायलॉज जो होते हैं जो गवर्न करने के लिए, उसमें थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी कम है, और जो एफपीसी है जो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है, जो अभी नई जितनी भी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बन रही है वो कंपनीज एक्ट के अंदर बन रही है, तो इसमें उस लेवल पे फ्लेक्सिबिलिटी है कि उनको एफपीओ रन करने के लिए, गवर्न करने के लिए किस तरीके के बायलॉज का वो लोग निर्माण करते हैं, तो ये अभी रियलाइज किया जा रहा है कि ये एक बेटर मॉडल है,
3: एक बड़ा अंतर इसको मान सकते हैं है, जिस वजह से किसान खुद को थोड़ा सा स्वतंत्र भी मानते हैं कि इस तरह की देखिए जो बाधाएं हैं या बंदिशें हैं वो उन पर नहीं है। और खासतौर से शशि भूषण जी, अगर देखा जाए जो अब लगातार अगर हम बात करते हैं ना सिर्फ बिहार की बल्कि पूरे देश की भी अगर बात की जाए, तो अब एक हम रुझान मान सकते हैं, खासतौर से एक समय था जब जो युवा पीढ़ी थी माना जाता था कि उनकी रुचि अब शायद कृषि में नहीं है, लेकिन अब वही युवा पीढ़ी है जो कि ना सिर्फ एफपीओ का निर्माण कर रही है, स्टार्टअप से जुड़ रही है, और कोशिश ये कि आत्मनिर्भर कृषि के साथ साथ देश को आत्मनिर्भर बनाया जा सके।
4: युवा पीढ़ी जो है खास करके इस क्षेत्र में एफपीओ के माध्यम से यदि आते हैं और उनका युवा को प्रशिक्षण लेकर और जिस सेक्टर में इंटरेस्टेड है, जिस क्षेत्र में वो इंटरेस्ट है, विकास मिशन के तहत भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है कई कोर्सों पर, बर्मी कंपोस्ट हो गया, सीड प्रोडक्शन हो गया, मशरूम उत्पादन हो गया, गार्डेनर हो गया, जिस क्षेत्र में इंटरेस्टेड युवा वर्ग है वो यदि संगठित होकर इस क्षेत्र में एफपीओ के माध्यम से यदि आते हैं तो इसमें निश्चित तौर पे उन युवा वर्गों को रोजगार मिलेंगे, और खास करके उन लोग युवा इसमें यदि आते हैं एफपीओ के माध्यम में जुड़ते हैं तो उनका जो आज जो बेरोजगार का जो बेरोजगारी की जो समस्याएं हैं, जो पलायन हो रहे हैं, दूसरे जगह जा रहे हैं और इस क्षेत्र में अपने ही क्षेत्र में लोकल में वोकल लोकल क्षेत्र में अपने गांव के को यदि युवा वर्ग इसमें आते हैं कृषक उत्पादक संगठन करके और इसमें आत्मा योजना के तहत प्रशिक्षण लेते हैं और कौशल विकास मिशन के तहत प्रशिक्षित हो जाते हैं तो वो अपना रोजगार स्टार्ट कर सकते हैं और अन्य किसानों को भी जो इसमें जुड़े हुए हैं उनको सदस्य बनाकर आगे बढ़ सकते हैं और उनका उत्पाद देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बाजारों में भी जाएगा और उनका आमदनी सुदृढ़ होगा यदि संगठित होकर यदि खेती करते हैं खास करके एफपीओ के माध्यम से, तो निश्चित तौर पर हमारे बिहार ही नहीं पूरे राष्ट्रीय स्तर पर एक एक बहुत बड़ा इस पर साधन है। और किसी से बड़ा कोई उद्योग नहीं है इस क्षेत्र का, यदि उद्योग के रूप में यदि हम चयन कर लेते हैं तो निश्चित तौर पे इसमें अधिक से अधिक बहुत काफी सभी लोगों को रोजगार मिल सकता है जिनके पास भूमि है।
3: एक जो बड़ी समस्या रहती है, चुनौती हम मान सकते हैं रोजगार की, वो भी एफपीओ के जरिए देखिए एक समाधान जो है, क्योंकि ना सिर्फ आपको खुद को रोजगार बल्कि जो बाकी और हैं उनको भी आप रोजगार मुहैया करा सकेंगे। साथ ही यहां नरेंद्र जी जानना चाहेंगे, एफपीओ की जब हम बात करते हैं, किसान उत्पादक संगठन की जब हम बात करते हैं, इसमें महिलाओं की भागीदारी की अगर बात की जाए, क्या कुछ ऐसे भी संगठन है जो आपसे जुड़े हुए हैं, जो पूर्णतः जो महिलाएं हैं वो संचालित कर रही हैं, या जो और एफपीओ में कितनी किस जो भागीदारी है महिलाओं की वो नजर आती है आपको?
5: बिल्कुल सर, अगर इसमें पूरे सेक्टर में भी अगर देखते हैं, जैसे आपने बोला कि अभी युवा क्यों आ रहे हैं यहाँ पे ज्यादा, तो जैसे रूरल एरिया में मतलब गांव में जैसे एजुकेशन बढ़ रहा है, ये सब लोग अभी के है जिनकी उम्र 30 साल 35 साल है, हमारे उम्र के लोग है लड़के भी, तो जैसे एजुकेशन बढ़ रहा है गाँव में तो वैसे गाँव के युवा इस बिजनेस में आ रहे हैं। वैसे ही जब हमारे औरतों को, हमारे जो महिलाएं हैं उनको शिक्षा मिलेगी, अच्छा अवसर मिलेगी, रिसोर्सेस मिल जाएंगे तो अपने आप आ जाएगा। अभी महाराष्ट्र में अगर देखते हैं तो बहुत सारे महिलाएं संगठन हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं। अभी अपने गौरव जी भी बोलेंगे, नाफेड़ के साथ भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है जो पुत्र शक्ति करके हमारे एक्टिव हुए, जो खुद ओनियन का बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, लगभग 45,000 मेट्रिक टन का उन्होंने इस साल ओनियन का काम किया। अभी वो उनका कल मेरे पास आए थे, वो तो उनका एक प्राइवेट मार्केट बना रहे ओनियन का, बस जो ओनियन वुमन महिलाएं ही चलाएंगे, महिलाएं उसके लाइसेंस वगैरह होके महिलाएं परचेस करके महिला सेल करेंगे और महिलाएं मार्केट चलाएंगे। अवसर और उपलब्धि अगर होती है तो महिला पुरुष ऐसा कोई फर्क नहीं है, गांव के लोग शहर के लोग ऐसा कोई नहीं, लेकिन सब जगह पर रिसोर्सेज अवेलेबल होने चाहिए, जैसे शिक्षा हो, बाकी सारे रिसोर्सेस हो, अपॉर्चुनिटीज हो, तो बाकी कोई कम नहीं इसमें।
3: बिल्कुल, यानी मान सकते हैं कोई भी जो भेदभाव है देखिए वो नहीं है, फिर चाहे हम जो हमारे पुरुष

0: किसानों की बात करें, महिला किसानों की बात की जाए, जैसा नरेंद्र जी ने कहा कि संसाधन अगर हमें मिल जाते हैं तो फिर हर कोई यही चाहता है कि उसका आर्थिक विकास हो सके, वो तरक्की कर सके, और उसकी तरक्की के साथ साथ जुड़ी है इस देश की तरक्की भी।
1: आने वाले समय में भी अनेकों संभावनाएं हमें नजर आ रही है, तो इसमें और क्या क्या बदलाव होने हो सकते हैं आदि जानकारियों को हम जानेंगे इस ब्रेक के बाद। सो बने रहिए हमारे साथ रेडियो 90.8 FM के साथ।
2: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आप रेडियो आपकी बातें।
0: और खासतौर से महिलाओं की भी अगर बात की जाए तो ब्रेक पे जाने से पहले नरेंद्र जी ने इस बात का भी जिक्र किया था कि पूर्णतः जो महिलाएं हैं, कई ऐसे एफपीओ हैं जो वो संचालित कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं महिला सशक्तिकरण जो है वो भी इनके जरिए हो रहा है, रोजगार सृजन भी हो रहा है। और जब एक नए भारत की बात हम करते हैं, बदलते भारत की हम बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं गौरव जी जो इस बदलते भारत की बदलती कृषि है वो काफी हद तक हम कह सकते हैं कि एफपीओ से अब जुड़ती हुई नजर आ रही है।
3: अभी ट्रांसफॉर्मेशन जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो हमारी समस्या थी सीमांत किसानों की, उसको अब हम एफपीओ के माध्यम से उसको काफी तक प्रॉब्लम को हम लोग रिजोल्व कर पाए हैं। और आगे अगर हम लोग वृत्त चित्र के ऊपर देखें कि जैसा आपने भी थोड़ा जिक्र किया था कि और बामेती से शशिभूषण जी ने भी बोला था कि वहां से उनका एक्सपोर्ट हुआ पटेटो बिहार से, तो उस तरीके की संभावनाएं इसमें जुड़ती जा रही हैं, जहां पे जो एफपीओज हैं वो वैल्यू चेन के अंदर उनकी हिस्सेदारी एक तरीके से बढ़ती नजर आ रही है। वहां पे आज की तारीख में बहुत सारे एफपीओज के ऐसे एग्जांपल हैं जो नरेंद्र पवार जी के जैसे आगे वैल्यू चेन में रिटेल एंड के ऊपर काम कर रहे हैं, जिस तरीके से कॉरपोरेट काम कर रहे हैं, फार्म ग्रोसर के नाम से ऐसी एफपीओज हैं जो सीधा कंज्यूमर तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं, उनका रियलाइजेशन बढ़ रहा है। और इसका जो अगला बड़ा हम लोग एक बदलाव देखेंगे कि ये एफपीओ उस लेवल तक पहुंचेंगी जहां पे ये डील स्ट्राइक करेंगे एक्सपोर्ट के लिए। बहुत सारे एफपीओज अभी इस तरीके की संभावनाएं तलाश रहे हैं, त्रिपुरा से पाइनएप्पल है वो यूके जा रहा है, या इधर से पोटैटो इनका बाहर एक्सपोर्ट हो रहा है, उस तरीके से मिडिल ईस्ट के बहुत सारे कंट्रीज
0: हैं जो बड़ी नामी गिरामी कंपनियां हैं, बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, उनके साथ कहीं ना कहीं प्रतिस्पर्धा जो है वो करते नजर आ सकते हैं एफपीओ हमारे।
3: बिल्कुल, इस सिचुएशन में एफपीओ कुछ पहुंच चुके हैं जहां पे उनकी जो एक्सपोर्ट वॉल्यूम्स हैं जो कन्वेंशनल प्लेयर्स हैं उनसे भी उन्होंने पास्ट में ज्यादा उन्होंने एक्सपोर्ट किए हैं। ग्रेप्स के केस में ऐसा हो रहा है, और मैंने वही बताया कि जैसे अब आगे भी संभावनाएं हैं जहां पे बहुत सारी ऐसी संभावनाएं तलाशी जा रही हैं जो बाहर कंट्री में जो इस तरीके के इंस्टीट्यूशंस हैं जो प्लान कर रहे हैं डायरेक्ट सोर्सिंग का फार्मर या एफपीओ के द्वारा।
0: जी बिल्कुल, जैसा यहां देखिए गौरव जी ने कहा कि काफी महत्वपूर्ण है कि किस तरीके से हम उनको जानकारी मुहैया करा रहे हैं। नरेंद्र जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, क्योंकि इतनी संख्या में जो किसान हैं आपसे जुड़े भी हैं, क्या आपको लगता है कि किस तरीके से जो प्रशिक्षण है उसको और ज्यादा बढ़ावा देना चाहिए, और उसमें जब हम तकनीकी ज्ञान की बात करते हैं या प्रयोगात्मक शिक्षा की जब खासतौर से बात की जाती है, वो कितना जरूरी आपको लगता है कि किसान को तकनीकी जानकारी भी मुहैया कराई जाए?
4: बिल्कुल सर, इसमें जैसे एफपीओ एक साथ आ जाते हैं तो एफपीओ के थ्रू ये लोगों को ये सब सुविधाएं मिल सकती है, लेकिन इसका एक हमें फंडामेंटल सोचना पड़ेगा कि हर कोई चीज में जैसे जैसे इंफॉर्मेशन नई अपडेट हो जाती है, जैसे टेक्नोलॉजी के बारे में हो, वेदर के बारे में हो, फार्मिंग प्रैक्टिसेस के बारे में हो, कोई डे टू डे मिलने वाली चीज है, तो ऐसा भी नहीं कर सकते हम कि कोई एक एफपीओ के साथ जुड़े हैं तो हमारा पूरा काम हो जाएगा। हमें बड़े लेवल पे हमेशा इंफॉर्मेशन फ्लो फार्मर तक पहुंचाना पड़ेगा कि वो अपने प्रोडक्शन में कैसे सुधार कर सकता है, कौन से नए सीड आए हैं, कौन सी नई टेक्नोलॉजी आए हैं, कौन से नए इनपुट्स आए हैं, सेल्स की क्या इंफॉर्मेशन है, मार्केट इंफॉर्मेशन, मार्केट रिसर्च हम लोगों को कैसे दे सकते हैं, और डे टू डे होने ऑपरेशन डे टू डे होने वाली चीज है जो अपने गवर्नमेंट के थ्रू भी कैपेसिटी बिल्डिंग के प्रोग्राम लेके फार्म विजिट करके फार्म फील्ड स्कूल के थ्रू भी दे सकते हैं, लेकिन और भी बहुत सारी चीजें लेनी पड़ेगी जिसमें हम टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं, ऑनलाइन के थ्रू जैसे यूट्यूब है, सोशल मीडिया है, इसके थ्रू भी बहुत सारे प्रयास करने पड़ेंगे कि फार्मर को डे टू डे बेस पे इंफॉर्मेशन मिलती रहे। जैसे हम कोई भी आदमी है अगर यहाँ पे रहता है तो हमेशा रोज न्यूज देखता है कि मार्केट में क्या हो रहा है, आजू बाजू में क्या हो रहा है, वैसे ही जैसे एग्रीकल्चरिस्ट है वो उन्हें हमेशा ये जानकारी मिलनी चाहिए कि आजू बाजू में क्या हो रहा है, फार्मिंग में क्या बदलाव आ रहा है, टेक्नोलॉजी क्या बदल रही है, मार्केट कैसे बदल रहा है, और रोज का रोज मिलना चाहिए। इसके लिए हमें टेक्नोलॉजी का सहायता लेके बहुत बड़े लेवल पे काम करने की जरूरत है, जिसमें बहुत सारे स्टार्टअप भी इन्वॉल्व होंगे, एफपीओ तो होंगे लेकिन स्टार्टअप और जो गवर्नमेंट का सपोर्ट है वो इसमें बहुत ज्यादा रोल प्ले करेगा। जैसे गौरव जी की फर्म है जो इसमें बहुत अच्छा काम करती है, बस इंफॉर्मेशन ना देके आपको इंक्यूबेशन तक उनको लेना पड़ेगा ताकि एक अच्छा एंटरप्रेन्योर खड़ा हो, नहीं तो फिर क्या होता है ना, ये एक्टिविटी एक दो साल तक चलती है उसके बाद स्लो हो जाती है। हमारे पास ऐसे बहुत सारे एफपीओज है जो शुरुआत में तो अच्छे काम किए लेकिन उनको दिशा नहीं मिली, कुछ सपोर्ट नहीं मिला, उनकी कैपेसिटी जिस तरह से चाहिए ये एक दिन में डेवलप होने वाली चीज नहीं है, तो उसको कंटिन्यूस एफर्ट लेने पड़ते हैं, अगर वो नहीं लेते हैं तो फिर ऑपरेशन बंद हो जाते हैं। तो एक कंटिन्यूस एफर्ट वाला एक प्लान और एक सोची समझी हमें शेड्यूल बनानी पड़ेगी, रणनीति बनानी पड़ेगी सबको बढ़ावा देने के लिए।
0: बिल्कुल, तो एक सही रणनीति के साथ ना सिर्फ सही दिशा बल्कि जो एफपीओ उनकी दशा भी बेहतर रही इसके लिए लगातार हमें सक्रिय रहना पड़ेगा। और यहाँ शशि भूषण जी आपसे भी मैं जानना चाहूंगा, कितना सहमत आप नरेंद्र जी की बातों से?
5: जो बताए बहुत बहुत काफी इस पर जोड़ने देने की जरूरत है, और खास करके जो नया नया मतलब टेक्नोलॉजी जो अडॉप्ट जो हो रही है और क्लाइमेट चेंज हो रही है, जलवायु परिवर्तन हो रही है, इसकी नए नए जो इन्फॉर्मेशन जो है, बहुत से वैरायटी नए वैरायटी आ गए जो अच्छे प्रोडक्शन हाई मतलब प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो इंक्रीज करने के लिए इस चीज को होनी आवश्यकता है। और खास करके जो हमारे जो यूनिवर्सिटी जो रिसर्च कर रही है, अनुसंधान केंद्र शोध जो कृषि क्षेत्र में कर रही है, एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर में भी बहुत काफी शोध हो रही है, इस पर निश्चित तौर पे यदि हम एफपीओ के माध्यम से जिस क्षेत्र में जो काम कर रहा है, चाहे कृषि के क्षेत्र में हो, चाहे पशुपालन हो, मत्स्य हो, इस क्षेत्र में बहुत काफी नई नई तकनीकी आ चुकी है और इसकी सूचना इंफॉर्मेशन वो वैज्ञानिक और एफपीओ के जो कार्य कर रहे हैं इनको है जो इसके माध्यम से तकनीकी के माध्यम से इन वेबिनार के माध्यम से हो, तो हर हमेशा इंफॉर्मेशन यदि मिलते हैं सही समय पर यदि इंफॉर्मेशन मिल जाता है तो निश्चित तौर पे एफपीओ बहुत काफी आगे बढ़ेगी, यह तकनीकी जानकारी मुहैया कराना अति आवश्यक है। और सूचना जो वैज्ञानिक के जो सूचना जो है मौसम वैज्ञानिक जो है मौसम के आधारित, क्योंकि कृषि एक मौसम आधारित है और मौसम यदि मौसम की जानकारी हो जाती है तो बहुत काफी खर्च को लागत को कम कर सकते हैं, और जो मौसम के कारण हमारे फसल की बहुत काफी नुकसान होता है, और इसमें मौसम आधारित को जानकारी निश्चित तौर पे किसानों को एफपीओ से जुड़े हुए हैं यदि वहां पर इंफॉर्मेशन मिल जाता है तो निश्चित तौर पे उस सही समय पर सही निर्णय लेकर वह उत्पादन को मार्केट में बेच सकते हैं, भंडारण कर सकते हैं, यदि इसकी उपयोगिता करते हुए हमारे एफपीओ जो उपयोग करते हैं तो अन्य किसानों को जो सभी किसान उसमें जो मेन जो एफपीओ के जो जो है उनको यदि सूचना मिल जाता है और उनके माध्यम से वो प्रशिक्षित एक प्रशिक्षित हो जाते हैं तो उनके जो सदस्य हैं जो 200-300 जो किसान फार्मर्स है उनको है भी सूचना इनके माध्यम से जाए ताकि सभी किसान जो एफपीओ से जुड़े हुए हैं उनको भी लाभान्वित किया जा सकता है।
0: जी बिल्कुल शशि भूषण जी, लेकिन इसके साथ साथ अगर देखा जाए इस बार के बजट में भी हमने देखा कि किस तरीके से कृषि शिक्षा पर भी जोर दिया गया और उसमें बदलाव की बात कही गई है पाठ्यक्रम में, तो जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं या कृषि विश्वविद्यालय हैं अलग अलग राज्यों में तो वहां फिर इसकी बांगी हमें देखने को मिलेगी, तमाम ये जो जानकारी है किसानों के बीच और बेहतर तरीके से पहुंच सकेगी।
5: कृषि विश्वविद्यालय और कृषि विज्ञान केंद्र जो कृषि किसानों के साथ जो जुड़ने का जो है वो कृषि विज्ञान केंद्र में वहां पर प्रक्षेत्र में जो फार्म साइंस सेंटर होते हैं वहां पर उस क्लाइमेटी के अनुसार किसानों को यदि वहां पर दिखाते हैं कि कौन सी वैरायटी और फसल कैफेटेरिया वहां पर फसल कैफेटेरिया की लगाई जाती है, धान लगाए गेहूं लगाए तो कैफेटेरिया को उसको प्रदर्शित करने की आवश्यकता है, और वहां पर यदि किसान देखते हैं कि हमारे कौन सी वैरायटी इस क्षेत्र में अच्छा एराइज करेगा प्रोडक्शन इंक्रीज दे सकता है तो उस क्षेत्र को विजिट कराने की आवश्यकता है, और एक्सपोजर यदि कराते हैं या एफपीओ बहुत ही बढ़िया कोई काम कर रहे हैं जो एफपीओ के जो क्षेत्र में संबंधित जो क्षेत्र में अच्छा एफपीओ जो कार्य कर रहे हैं उस क्षेत्र में भी अन्य एफपीओ के किसानों को वहां पर विजिट कराने की आवश्यकता है ताकि उस एफपीओ के माध्यम से किस तरह खेती किया जा रहा है तो परिभ्रमण और प्रशिक्षण एक मस्ट है, और एफपीओ के माध्यम से एफपीओ को भी प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है।
1: किसान उत्पाद संगठन। जी हाँ किसान साथियों, इस संगठन के माध्यम से हमारा जो किसान है उसको एक नई आशा की किरण नजर आती है, क्योंकि इस संगठन के माध्यम से जो किसान है वो अपना जो उत्पाद है उसे देश और प्रदेश में कहीं पर भी से निर्यात कर सकता है। साथ ही आप और हम किसान भाइयों हम अच्छे से जानते हैं कि जो हमारा जो संगठन है इसके माध्यम से हम कहीं ना कहीं हमारी जो पहुंच है वह हम बढ़ा सकते हैं और हमारा जो निर्यात है हम देश विदेश तक पहुंचा सकते हैं और अच्छी से अच्छी आमदनी ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर किसान साथियों हमें आवश्यकता है हमारा जो संगठन है इसे मजबूत बनाने की, साथ ही जो प्रशिक्षण है वो प्रशिक्षण लेने की आवश्यकता है। हम केवीकी के माध्यम से हम प्रशिक्षण ले सकते हैं, साथ ही हम विद्यालयों के माध्यम से भी हम इन अलग अलग जो खेती है उसके प्रशिक्षण हम लिए जा सकते हैं। साथ ही कोशिश करने की आवश्यकता है, हमारे जितने भी किसान संगठन है वह हमारी जो अपनी जो कृषि है उसमें नवीनता लाए और जो अपनी पहुंच है उसे बरकरार रखें, बढ़ा कर रखें। कि इस कार्यक्रम में आपने बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियों को जाना है, आशा करते हैं आज की यह जानकारी आपके लिए लाभप्रद होगी। इसी के साथ किसान साथियों यहाँ पर वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, आपसे पुनः कल मुलाकात होगी इसी समय इसी वक्त, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ रेडियो टांडिया 90.8 FM के साथ छबा की आवाज पर।

0: गीत संगीत की इस महकती हुई शाम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका दोस्त समीर, और चलिए मिलते हैं एक और उभरते हुए कलाकार से, एक नए टैलेंट से। कौन है ये, क्या है ये, इनके बारे में जानते हैं और इनके गीतों का मजा लेते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हमारे आपके ही आज के कलाकार प्रोग्राम को। आज का प्रोग्राम बहुत स्पेशल है दोस्तों, एक नया टैलेंट, एक नई गायिका आज हमारे साथ हैं। ये हैं डॉक्टर रोहिणी काले। बाकी डॉक्टर साहब अपने बारे में खुद बताएंगी, वो कौन है, क्या है, कहाँ है। डॉक्टर रोहिणी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। वेलकम टू अवर प्रोग्राम।
1: यस, गुड इवनिंग, थैंक यू सो मच सर। हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर रोहिणी काले फ्रॉम पुणे। बाय प्रोफेशन आई एम अ डॉक्टर एंड जनरल प्रैक्टिशनर, बट जनरल प्रैक्टिस में मैं बहुत, मेरा मन नहीं लगा, तो मैं मेरा इंटरेस्ट ज्यादा गायनेक और इनफर्टिलिटी में था। मैंने सोचा ऐसा मैं कुछ करूँ कि लोगों को मैं जिंदगी भर याद रहूं। तो आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग इन गायनेक इनफर्टिलिटी। सो मैंने 2000 से ज्यादा डिलीवरीज की है और मोर देन 5000 कपल्स कंसीव्ड विथ माई ट्रीटमेंट। सो आई एम हैप्पी इन माई प्रोफेशन। और मैं पुणे में रहती हूँ कैंप में, तो वहाँ पे बहुत अच्छी जगह है, वो बहुत प्लीजेंट प्लेस है। सो शॉपिंग और अलग अलग होटल्स यहाँ पे है, और यंगस्टर्स के लिए भी घूमने के लिए बहुत अच्छी जगह है। सो पुणे इज अ हिस्टोरिकल प्लेस, तो यहाँ पे मैं सिंस 20 इयर्स आई एम हियर इन पुणे। थैंक यू सर।
0: अमेजिंग, बहुत खूबसूरत। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर रोहिणी। तो दोस्तों, आपने सुना डॉक्टर रोहिणी क्या करती हैं और कहाँ रहती हैं, तो चलिए शुरू करते हैं इस प्यारे से प्रोग्राम को रोहिणी जी के ही गाए हुए इस प्यारे से गीत से।

0: बहुत खूब, बहुत ही प्यारा गीत। रोहिणी मैम मुझे ये बताएं, आपको गाने का शौक कब से हुआ, कब से गा रही हैं आप?
1: समीर सर जी, गाने का शौक तो मुझे बचपन से ही है। मेरी मम्मी जो थी उसको सिंगिंग में बहुत इंटरेस्ट था, हालांकि वो प्रोफेशनल सिंगर नहीं है। किचन में एक हमारे रेडियो रहता था और वहाँ पे सुबह से लेके शाम तक गाने चलते रहते थे, न्यूज़ चलते रहते थे। तो मेरी सुबह वो गाने से ही, प्रार्थना या कोई देशभक्ति पर गाने, इससे होते होते फिल्मी गाने हम सुनते थे। तो ऐसे ही मेरा बचपन था। और मेरी मम्मी कुछ गाना चल रहा है तो वहाँ पे जो आशा जी या कोई भी सिंगर है, लता जी, कोई मुरकी लेते थे, अच्छी तान लेते थे, तो वाह वाह कितना अच्छा गाया। तो ये सब बहुत उसको अच्छा लगता था। ये सब देखते देखते मैं भी बड़ी हो गई और मुझे भी गाने में एक रुचि पैदा हो गई। इस तरह से गाने का शौक बचपन से ही है मुझे सर।
0: बहुत बढ़िया, बहुत प्यारी बात है आपने बताया, और बहुत टेक्निकल टर्म्स यूज किए कि किस तरीके से जब आपके यहाँ पर गुनगुनाया जाता था तो उसकी तान, उसका सुर।
1: मैं बताना चाहूंगी सर, जब मैं लाइक स्कूल गर्ल थी या टीनेज में ही मेरी मुलाकात

0: गाना सुनने के बाद उनका एक स्पीच था, उसी स्पीच के पहले ही उन्होंने बोला कि जो बच्ची अभी गा रही थी प्लीज उसको ऊपर बुलाइए। और
1: माय
0: उसके
1: गॉड,
0: बाद उन्होंने मुझे इतना अप्रिशिएट किया और उन्होंने कहा कि बच्चा तुम्हारी आवाज बहुत अच्छी है, सिर्फ उसको एक रियाज की जरूरत है और आप रियाज करोगे अच्छा तो बहुत अच्छा हो जाएगा। और मेरी मम्मी से भी मांगा उन्होंने कि इसे इसे मुझे दे दो, मैं इसे कैसे क्या बना बना दूंगा। लेकिन मैं डॉक्टर बनना चाह रही थी, मेरे घर वाले, तो मम्मी ने बोला कि नहीं ये तो पहले डॉक्टर बनेगी बाद में सिंगर बनेगी। तो इस
1: ओके।
0: तरह से
1: नहीं कोई बात नहीं मैम, आप एक अच्छे डॉक्टर भी हो और एक अच्छे सिंगर भी हो, उसमें बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, लियोनार्डो दो विंची के बारे में आपने सुना होगा, वो कितनी सारी कलाओं के जानकार थे। ही वॉज एन आर्किटेक्ट, वो सिंगर थे, म्यूजिशियन, मतलब वो इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करते थे, ही वॉज अ मैथमेटिशियन, इसके बाद वो पोएम्स लिखते थे, वो स्कल्पचर्स बनाते थे, पेंटिंग्स करते थे। बहुत सारी चीजें वो करते हैं। तो एक इंसान के अंदर बहुत प्रतिभाएं हो सकती हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत बढ़िया। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं एक
0: थैंक यू
1: और
0: सर।
1: प्यारा सा गीत रोहिणी जी का ही गाया हुआ।

0: बहुत खूब। तो डॉक्टर होने के साथ साथ क्योंकि आप एक गायिका भी हैं, तो मुझे ये बताइए कि ऐसा कौन सा गीत है जो आपकी पर्सनालिटी को पूरी तरह से डिस्क्राइब करता है, सूट करता है, आपकी शख्सियत को बयान करता है, कौन सा गीत है वो?
1: हर एक इंसान की पर्सनालिटी अलग अलग रहती है, दो पर्सनालिटी रहती है, एक तो सेंसिटिव और एक प्रैक्टिकल। तो मैं जब सेंसिटिव हो जाती हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि ये मुझे ये गाना सूट ज्यादा हो जाएगा, जे ये जिंदगी गले लगा ले, ए जिंदगी गले लगा ले, ये गाना मेरे पर्सनालिटी को सूट होता है।
0: ओके।
1: उसी के साथ जो गाना है, दिल है छोटा सा छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की

0: ये गाना मेरी पर्सनैलिटी को ज्यादा सूट होता है।
1: बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। आप कुछ कह रही थी?
0: बाय नेचर मैं एम्बिशियस भी हूँ और एट द सेम टाइम मैं बहुत सेंसिटिव हूँ, और मैं जब दूसरों को बहुत हेल्प करने में विश्वास रखती हूँ, मैं एक अच्छे ह्यूमन बीइंग होने की कोशिश करती हूँ, तो ऐसे कुछ गाने सेंसिटिव रहेंगे तो मुझे लगता है ये मेरे पर्सनैलिटी को सूट करता है। जैसे कि ये भी है गाना, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर धुवे में उड़ाता चला गया, तो ये गाना भी मेरे लिए सूट होता है सर।
1: बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत अच्छा कहा आपने मैम।
0: थैंक यू सो मच सर।
1: तो चलिए दोस्तों, एक गीत सुनते हैं रोहिणी जी की ही आवाज में।

0: बहुत खूब। रोहिणी जी आगे बढ़ते हैं, आप
1: यस सर बिल्कुल।
0: कुछ कलेक्ट करती हैं क्या, जैसे कुछ भी घड़ियां या कुछ और चीजें? जैसे मुझे जूते इकट्ठे करने का बड़ा शौक है, तो आज ऐसा कुछ कलेक्शन है आपके पास?
1: हाँ सर जी, मुझे डायरिया जो रहती है वो कलेक्ट करने का बहुत शौक है।
0: वेरी नाइस।
1: इससे पहले बहुत ज्यादा था डायरी लिखना और अलग अलग डायरी खरीदना, उसमें कुछ ना कुछ शेरो शायरी लाइफ के बारे में लिखना। और मैं ऐसे ये करती हूँ कि डायरी एक ऐसा जरिया है जो हम खुद को एक्सप्रेस करते हैं उसमें। सो कभी डेली रूटीन लिखना उसमें, या मेडिकल रिलेटेड कुछ है तो वो लिखना, सॉन्ग्स लिखना, ऐसे मेरे पास बहुत सी अलग अलग तरीके की डायरिया है। तो ये मुझे बहुत शौक है। फिर ड्रेस, अलग अलग जैकेट्स, जैसे कोई अच्छा फंक्शन है तो उसी तरीके का ड्रेस पहनना, या कभी फॉर एग्जांपल 15 अगस्त है तो उसको मैच होने वाला उस तरीके का ड्रेस, तो अलग अलग ड्रेस की कलेक्शन मेरे पास है, तो वो मुझे बहुत शौक है।
0: वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी नाइस,
1: थैंक यू सर।
0: बहुत खूबसूरत। तो दोस्तों आपने सुना कि रोहिणी जी को डायरिया इकट्ठी करने का शौक है, जो कि बहुत ही क्यूट एक कलेक्शन हैबिट है, बहुत प्यारा।
1: यस सर।
0: तो चलिए एक प्यारा सा गीत भी सुनते हैं रोहिणी जी की ही आवाज में।

0: रोहिणी जी, आगे बढ़ते हुए आपसे पूछना चाहूंगा कि आपके सबसे अच्छे दोस्त के बारे में हमें बताइए, कौन है वो और वो आपके सबसे अच्छे दोस्त क्यों हैं?
1: बीइंग अ मेडिकल प्रोफेशन और स्कूल से भी मुझे बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत सारे सिंगर्स ग्रुप के अलग, मेडिकल प्रोफेशन, स्कूल, कॉलेज, और उसमें सबका नाम तो नहीं ले सकती, लेकिन मेरी बहुत से नज़दीकी दोस्त है, मैथिली, मोनिका, और ये सब सुन रहे हैं अभी प्रोग्राम,
0: जी
1: सुचेता, आरती, डॉक्टर मीना जो यहाँ गा चुके हैं, वो भी मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, संदीप, अनिरुद्ध, और इसके साथ डॉक्टर अभिनंदन और उसकी वाइफ जो डॉक्टर सुजाता है, वो भी बहुत अच्छे दोस्त है, प्रतिभा, सीमा, स्नेहिल, ये भी अच्छे दोस्त है। ये अच्छे दोस्त मुझे लगता है इसलिए है क्योंकि ये सपोर्टिव है। आजकल के बिजी वर्ल्ड में वो सामने आके कुछ हेल्प नहीं करेंगे, लेकिन एटलीस्ट कभी हम फोन करेंगे, कुछ एडवाइस उनको पूछेंगे तो बहुत अच्छी एडवाइस भी देंगे, बहुत सपोर्टिव है। कभी हम एक दूसरे के घर जाएंगे तो इतना कुछ वो अपने लिए करते हैं, इतने लवेबल है, और एक दूसरे फ्रेंड्स को एक दूसरे के साथ जोड़ने की वो हर बार कोशिश करते हैं, तो वो बहुत अच्छा है कि आजकल आजकल के बिजी लाइफ में हम एक दूसरे को फोन पे भी बात नहीं कर सकते, एक दूसरे के साथ वक्त नहीं बिता सकते, लेकिन कब वक्त आएगा तो ये सब लोग ऐसे हैं कि सबको बोलेंगे कि हम चलो गेट टुगेदर करते हैं, एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे से बातें शेयर करते हैं, अब तक हमने क्या, इन 4 सालों में क्या किया, 5 सालों में क्या किया, तो इस तरह से वो बहुत अच्छे क्वालिटीज है, और वो मुझे जज नहीं करते किसी तरह से, तो वो सबसे अच्छी क्वालिटीज इन सभी में है।
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप
1: थैंक यू
0: खुश, आप खुशकिस्मत हैं, आप लकी हैं कि आपके इतने सारे दोस्त हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं, आपके साथ हैं। और ये दोस्त वो दोस्त नहीं हैं जो फोन भी नहीं उठाते या फोन पे बात करके खत्म कर देते हैं, ये वो दोस्त हैं जो आपसे मिलते हैं।
1: यस
0: ऑफ कोर्स,
1: यस मिलते हैं, मिलने की कोशिश करते हैं, ऐसे दोस्त हैं मेरे, बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे।
0: अमेजिंग, बहुत खूब।
1: यस
0: तो चलिए अगला गीत आपके इन सभी दोस्तों को डेडिकेट करते हैं और सुनते हैं।

0: बहुत खूब, बहुत प्यारी बात। तो रोहिणी जी, आपका सबसे पसंदीदा गायक या गायिका कौन है और क्यों?
1: सर, मेरी पसंदीदा गायिका डेफिनेटली आशा जी है। आई लव द वे हाउ शी सिंग्स, और उनकी जो हर गाने में जो हरकतें रहती है, मुर्कियां, हर सॉन्ग में एक एक वो अलग अलग तरीके से, अलग अलग अंदाज से गाती है। उनका हर एक स्टाइल में मैं बहुत पसंद करती हूँ। और हालांकि मैं लता जी को भी पसंद करती हूँ, बट आशा जी मेरी फेवरेट है। और शी इज अ वर्सेटाइल सिंगर, वो क्लासिकल सॉन्ग्स भी उतने ही अच्छे से गाती है, फिर सैड सॉन्ग्स, गजल्स, कैबरे सॉन्ग्स, डिस्को सॉन्ग्स, सेंशुअल सॉन्ग्स, वो बहुत अच्छे तरीके से गाती है। और अनेक बहुत से लैंग्वेज में उन्होंने गाने गाए हैं। और मुझे लगता है सर कि इनकी लाइफ बहुत ट्रेजेडी पूर्ण, मतलब कि बहुत उनके लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आए हैं, लेकिन वो ट्रेजेडी किधर भी उनके गाने में असर नहीं करती है, इफेक्ट नहीं करती है। और हर गाना उनका एक यूनिक रहता है। तो आई लव आशा जी सो मच, और करती हूँ और करती रहूंगी उनके गाने मुझे दिल से।
0: बहुत खूब। तो चलिए दोस्तों, सुने एक और प्यारा सा गीत रोहिणी जी की ही आवाज में।

0: बहुत बढ़िया रोहिणी जी, ए फन क्वेश्चन, बस यूं ही मजे मजे में, आपकी जिंदगी में सबसे पहली बार कुछ खाने की चीज आपने क्या बनाई थी और वो कैसी बनी थी?
1: खाने की चीज मैंने जिंदगी में पहली बार, मैं जब हम हॉस्टल लाइफ हमारी थी तब हम एक्चुअली हॉस्टल में पहले रह चुके थे, उसके बाद में हम सेपरेट, हम कई फ्रेंड्स सेपरेट एक रूम लिया था 1 BHK फ्लैट, वहां रह रहे थे, तो हर एक का टर्न आता था, जैसे चाय बनानी है तो मेरा भी टर्न आता था, तो चाय बनाना मेरे लिए इतना मुझे मुश्किल लगता था, तो मैंने पहली बार जो चाय बनाई थी किचन ओटे पे बैठ के, कट्टे पे बैठ के, और तभी मैंने वो हर एक चीज, कितनी शक्कर डालनी है, कितनी चाय पत्ती डालनी है, ऐसे मेरे फ्रेंड्स को पूछ पूछ के मैंने वो बनाया था, और मेरी सब फ्रेंड्स लोगों ने मेरा बहुत मजाक उड़ाया था कि एक चाय बनाई लेकिन जैसे तुम्हारे लिए ये रॉकेट साइंस है, सो इस तरह से मैंने चाय बनाई थी और पूरी आधे से ज्यादा वो जल गई थी चाय, तो इस तरह से मैंने मैंने पहला मेरा ये बनाया था, चाय बनाई थी, उसके बाद मैंने दाल भी बनाई थी, तो वो भी दाल का तड़का जो है मैं दूर से ऐसे तड़का लगाती थी और भाग जाती थी और पूरी दाल तब तक जल जाती थी, इस तरह से मैंने ये दो चीजें पहली बार जिंदगी में बनाई थी, दाल और ये चाय,
0: वेरी नाइस nice.
1: जो मेरे फ्रेंड्स अब तक याद रखती है कि चाय कैसे बनाने की रोहिणी, अब अभी भी तू ओटे पे या कट्टे के, किचन कट्टे पे बैठ के सब बनाती है क्या, वो अभी भी मुझे पूछते हैं फोन करके इस तरह से।
0: आपकी बात सुन के मुझे वो जोक याद आ रहा है जो कुछ शायद साल डेढ़ साल पहले सोशल मीडिया पे चल रहा था कि एक बार एक बंदा था, उसकी वाइफ चली गई मायके, तो उसने अपने फ्रेंड को फोन किया कि अरे यार मेरे को चाय बनानी है तो कुकर में कितनी सीटियां दे दूं। तो वो उसके दोस्त ने कहा पागल हो गया क्या, कुकर में बनती है क्या चाय, गधे के बच्चे, कढ़ाई चढ़ाओ।
1: कढ़ाई चढ़ाओ, ओके वाओ, तो उससे भी ज्यादा ग्रेट।
0: हाँ तो तो आप भी पता नहीं कौन सा बर्तन इस्तेमाल किया था मैम आपने।
1: मैंने बर्तन तो सही लिया था लेकिन हर एक स्टेप में इतनी पूछी जा रही थी
0: कि मैं जल गई बेचारी,
1: मैं तो बाबा उतर ही जातू, तू अभी चाय मत बना, अभी वो जल ही जाने वाली है, तो इतनी चीजें, इतना ऐसा नहीं रहता है, इतने तू छोटी छोटी बातें पूछ रही है,
0: बहुत खूब।
1: तो इस तरह से मैंने चाय, जब कभी भी मेरा टर्न आता था मैं किचन ओटे पे बैठ के अगेन एंड अगेन आई यूज टू आस्क देम कि कैसे बनाना है, आगे कैसे करना है। अब तक उनको याद है।
0: सो द ऑपरेशन वॉज सक्सेसफुल बट द पेशेंट डाइड। ओके
1: कुछ
0: तो चलिए दोस्तों सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत रोहिणी जी की ही आवाज में।

0: बहुत खूब। आपको और बेहतर समझने के लिए रोहिणी जी, मैं पूछना चाहूंगा कि आपकी हॉबीज क्या है, थोड़ा सा उनके बारे में बताइए।
1: जाहिर है गाने गाना यही मेरी ज्यादा हॉबी है, गाने सुनना। बट इसके साथ एक अलग हॉबी मुझे ज्यादा थी, अभी थोड़ा कम हो गई, लेकिन नए नए रास्ते ढूंढना, गलियों से ये गली से रास्ता, उस गली से जाएगा वो रास्ता कौन सा रहेगा, फिर कौन सी गली आएगी, तो नए नए स्पॉट ढूंढना, नई जगह ढूंढना, ये मेरी और मेरी फ्रेंड्स लोगों की भी हॉबी थी। तो स्कूल डेज में भी हम साइकिल चलाएंगे, इस गली से कहाँ पे रास्ता जाएगा, तो एवरी डे हम रास्ता ढूंढते थे कि कहाँ जाएगा। ये एक मेरी हॉबी थी, एक अलग हॉबी है ये। और फिर न्यू टेक्नोलॉजी जो अभी अभी है पुणे में, कि नए तरीके के घर देखना, जाके खुद जाके फ्लैट देखना, किस तरह से ये घर बनाते हैं, कैसा आर्किटेक्चर है, कैसे डिजाइन किया है, इंटीरियर डिजाइन किस तरह से किया है, तो इसमें मुझे बहुत रुचि है। जैसे आपके एक इंटरव्यू में मैंने सुना कि आप आर्किटेक्ट बनना चाहते थे,
0: जी जी जी
1: तो इस तरह का मुझे भी एक शौक था कि किस तरह से ये होता है, तो ये एक मुझे हॉबी है सर,
0: वेरी
1: आज भी
0: नाइस।
1: मैं वो फॉलो करती हूँ। कभी मुझे वक्त मिलता है संडे सैटरडे, तो मैं वहां जाती हूँ, अलग अलग तरीके के घर देखती हूँ, और पुराने घर भी देखना पसंद करती हूँ, पुराने वाड़े यहाँ पे है पुणे में, किस तरह से लोग रहते थे, कैसे उनका लाइफ रहता होगा, तो ये देखना भी मैं पसंद करती हूँ।
0: बहुत खूब
1: और एक हॉबी है
0: जी।
1: अच्छे लोगों से मिलना और उनको सुनना,
0: ओके,
1: ये बहुत अच्छा लगता है मुझे, बहुत अच्छा लगता है।
0: कमाल है, ये सचमुच अच्छी हॉबीज हैं। सिंगिंग तो देखिए, वो तो आपकी जिंदगी हो गई, वो तो है ही है, उसको तो आप अपने आप से डिटैच कर ही नहीं सकते। हॉबीज वो होती है जिसमें हम एक अलग तरीके से उसको एंजॉय करते हैं, अपने वक्त में गायब हो जाते हैं, भूल जाते हैं अपने आप को, एक अलग तरीके की हॉबी। अब विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट टू एवरी लिसनर, अब कई बार लोग कहते हैं कि वॉचिंग क्रिकेट इज माई हॉबी, तो वो बात मुझे समझ नहीं आती, क्योंकि वॉचिंग क्रिकेट मतलब अगर आप हॉबी की डेफिनेशन देखें डिक्शनरी में जाके, तो वो ये नहीं है। खैर एनीवेज, हम जाने देते हैं उस बात को। तो चलिए दोस्तों, सुने एक प्यारा सा गीत रोहिणी जी की ही आवाज में।

0: वेरी नाइस, बहुत सुंदर गायकी। डॉक्टर रोहिणी, अब हम हमारे प्रोग्राम की उस जगह आ गए हैं जहां पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा हमारे सुनने वालों के लिए, नए सिंगर्स के लिए कुछ मैसेज दीजिए, कुछ कहिए उनसे।
1: नए सिंगर्स के लिए या सुनने वाले सबको एक बात मैं कहना चाहूंगी कि हर एक पर्सन को भगवान ने एक आर्ट दिया है, एक स्किल दिया है। वैसे तो सॉरी सर, वैसे तो जिंदगी बीतते हैं ब्रेड एंड बटर के लिए सब प्रोफेशन में है, लेकिन अपना पैशन फॉलो करना बहुत जरूरी है। हमको जो भगवान ने स्किल दिया है या आर्ट दिया है वो ढूंढ निकाले, हर एक को स्किल दिया है तो वो ढूंढ निकालना अपना काम है, क्योंकि सभी को थोड़े वक्त के लिए यहाँ जिंदगी मिली है। जब हम इसके बाद भगवान के पास जाते हैं और वो पूछेगा कि आपको मैंने जो स्किल दिया आपका, आपने उसका क्या किया, तो हम कहेंगे, मैं कहूंगी मैं डॉक्टर बन गई, मैंने ये किया। वो ठीक है, वो अपने ब्रेड एंड बटर के लिए किया या लोगों की सेवा की तो अच्छा किया, लेकिन मैंने तुम्हें जो आर्ट दिया था उसका तुमने क्या किया। तो मैं कहूंगी, सपोज मैं कहूंगी अरे नहीं मैंने कुछ नहीं कर पाई, तो वो कहेगा चलो वापिस आपको एक अगला जन्म लेना पड़ेगा और वो स्किल या आर्ट आपको यूज करना पड़ेगा। तो इसी जिंदगी में क्यों ना हम ये सब ढूंढ के निकालें। 64 कला है दुनिया में, तो उसमें की एक कला भी हम निपुण उसमें हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। वो फॉलो करो, अपना पैशन फॉलो करो, अच्छे से जियो और जीने दो, हंसते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो, दोस्तों से मिलते रहो और अपनी जो मन की बात जो है लोगों को, मतलब कि अपने दोस्तों से शेयर करते रहो। यही जिंदगी है, क्योंकि आगे भी जाने न तू, पीछे भी जाने न तू, जो भी है बस यही एक पल है, और ये पल जो है वो हम सेलिब्रेट करते जाएं तो जिंदगी बहुत हसीन है। सबको हेल्प करते रहो और एंजॉय करो जिंदगी में, यही मेरा सबके लिए एडवाइस है सर।
0: बहुत सुंदर संदेश, बहुत प्यारा संदेश दोस्तों, आपने सुना। डॉक्टर रोहिणी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच कि आप हमारे प्रोग्राम में आए, आपके गीत सुने, आपसे बातें की।
1: थैंक यू सर,
0: बहुत
1: थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर, आपका शुक्रिया, आपके पूरे टीम का, राज सर, आप समीर सर और पूरे सुनने वाले ऑडियंस का, सबका शुक्रिया करती हूँ। गुड नाइट, थैंक यू सर,
0: थैंक यू। बेहद शानदार गायकी, बेहद शानदार टैलेंट, एक और हसीन संगीत और गीत से भरी हुई शाम के लिए कल फिर हाजिर हो जाऊंगा एक नए टैलेंट के साथ। सुनना ना भूलिएगा।

नमस्कार दोस्तों, कला सिर्फ रंगों, सुरों या शब्दों का नाम नहीं है, बल्कि ये उन भावनाओं की भाषा है जो सीधे दिल तक पहुंचती है। और जब एक कलाकार अपनी कला के माध्यम से दुनिया से संवाद करता है, तो वो सिर्फ मनोरंजन नहीं करता, बल्कि प्रेरणा भी देता है। इसी प्रेरणा और रचनात्मकता के सफर में आपका स्वागत है आज के एक कलाकार के इस प्रोग्राम में। आइए ना, मिलते हैं उन प्रतिभाओं से जो अपने हुनर, मेहनत और सपनों से आज की दुनिया को और खूबसूरत बना रहे हैं। मैं हूं आपका दोस्त समीर, और आप सुन रहे हैं आज के कलाकार।

0: आज के कलाकार का एक और बहुत ही प्यारा सा एपिसोड लेकर दोस्तों मैं हाजिर हूं। आज जो टैलेंट हमारे साथ हैं वो हैं आकांक्षा जी। बाकी आकांक्षा जी का आभार प्रकट करते हुए, थैंक यू कहते हुए, वेलकम करते हुए मैं उन्हीं से रिक्वेस्ट करूंगा कि आइए आकांक्षा जी, जरा हमारे आज के कलाकार फैमिली मेंबर से कुछ बात कीजिए, गुफ्तगू कीजिए, बताइए उन्हें कहाँ हैं आप, क्या करती हैं आप।
1: हेलो एवरीवन, मैं खंडेलवाल। नमस्ते समीर जी, आप कैसे हैं?
0: आई एम गुड, थैंक यू।
1: सो इट्स बीन अ वंडरफुल जर्नी टिल नाउ, लाइक म्यूजिक इज कीपिंग अस गोइंग इन लाइफ, कीपिंग अस हैप्पी। सो बस म्यूजिक है जो चला रहा है, इट्स वेरी वेरी नाइस डूइंग दैट।
0: ब्यूटीफुल। तो आप कहाँ पर हो अभी, क्या करते हो मैम?
1: मैं जयपुर में रहती हूँ और वैसे मैं एक एजुकेटर हूँ, बच्चों को पढ़ाती हूँ, उनकी वर्कशॉप्स लेती हूँ, बट ऑफ एंड ऑन करती हूँ, ऐसा नहीं कि रेगुलर करती हूँ अपनी क्लासेस। अभी इन दिनों में म्यूजिक में थोड़ा सा ज्यादा रुझान है, क्योंकि म्यूजिक तो शुरू से सीखते आ रहे हैं स्कूल टाइम से, बट अभी ये है कि अपना वीडियोज बना लिया, अपना म्यूजिक गाना गा लिया, ये इन चीजों में म्यूजिक में ज्यादा वो करते हैं।
0: बहुत खूब, अमेजिंग।
1: अदरवाइज मेरे दो बच्चे हैं तो

0: चलिए तो ये आकांक्षा जी से मुलाकात हुई। अब आगे बढ़ते हुए हम आकांक्षा जी से उनके म्यूजिक के बारे में तो बात करेंगे ही करेंगे, हम उनकी शख्सियत को समझने की भी कोशिश करेंगे, ठीक है ना आकांक्षा
1: जी? बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल।
0: ऑलराइट, तो सबसे पहले मुझे ये बताओ आकांक्षा जी कि आपको आप ही के अंदर सबसे अच्छी बात क्या लगती है?
1: मुझको मेरे अंदर सबसे अच्छी बात ये लगती है दैट आई एम ट्रू टू व्हाट आई एम, आई डोंट हैव अ फिल्टर।
0: ऑलराइट,
1: सो आई एम वेरी ट्रू पर्सन, सो जो मुझे अच्छा लगता है वो अच्छा लगता है, जो नहीं लगता है वो मेरी फिर मेरी शक्ति पे आ जाता है कि ये मुझे अच्छा नहीं लगा।
0: कई बार ऐसा होता है ना कि बड़ी सारी किताबें भी लिखी गई हैं इसके ऊपर कि when you want to say no, don't say yes, लेकिन कई बार दूसरों का दिल ना दुखे उस चक्कर में हम बर्दाश्त कर जाते हैं कुछ ऐसी चीजें जो हमें अच्छी नहीं लगती, तो क्या आपके साथ ऐसा होता है?
1: बिल्कुल ऐसा होता है, लाइक वेन वी वर लिटिल यंग तो हम थोड़ा एडजस्ट करते थे, नाउ वेन वी ग्रोइंग तो अब थोड़ा सा जहाँ ना बोलना होता है वहां ना बोल देते हैं, बिकॉज वी शुड लर्न टू से नो वेन वी डोंट वॉन्ट टू डू समथिंग, बट समटाइम्स दैट अदर पर्सन हुज आस्किंग अस टू डू समथिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, अ वेरी पर्सनल लव्ड वन, तो उसके लिए आपको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है, झुकना पड़ता है और कर लेना पड़ता है।
0: ऑलराइट, तो ठीक है, तो मतलब दोस्तों मुद्दे की बात यह है, आकांक्षा ये बता रहे हैं दैट वी नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल इन टेलिंग अवर एक्सप्रेशंस और द फीलिंग्स टू अदर पर्सन, कि भाई उसको हर्ट भी महसूस ना हो जाए और हम अपना भी ख्याल रख लें, ऐसा ना हो कि हम उस चक्कर में हर्ट ही होते चले जाएं।
1: एग्जैक्टली,
0: ठीक है, हमें थोड़ा सा बैलेंस आउट करने की जरूरत होती है, कई बार मुंह से कुछ फिसल भी जाता है, उसमें कभी कभी बुरा भी लग जाता है दूसरों को, लेकिन अभी क्या करें, सबको खुश भी तो नहीं रखा जा सकता, मतलब हम अपने आप को खुश रख लें या सबको खुश रख लें ये भी थोड़ा मुश्किल है। चलिए
1: थोड़ा बैलेंस करना ही पड़ता है, पड़ता है।
0: मोर ओवर आकांक्षा सीरियसली मुझे तो यही लगता है यू नीड टू कीप यू नो मेकिंग योरसेल्फ हैप्पी, जब आप अपने से मोहब्बत करोगे, इतनी मोहब्बत करोगे कि जो वो छलके तो दूसरों को मिले।
1: Exactly.
0: दूसरों को मोहब्बत करते करते पता चला आप तो बिल्कुल ही डिलैपिडेटेड और डेप्रिशिएटेड रह गए, दूसरे बड़े खुश हो गए, से क्या फायदा?
1: Like if your own cup is empty, you can't pour anything for someone else.
0: Absolutely beautiful.
1: So you have to keep yourself so happy and love yourself so much कि आप दूसरे को प्यार कर पाए।
0: क्या बात है, बहुत खूब, ब्यूटिफुल मैसेज है ना दोस्तों। चलिए तो चलिए अब बहुत प्यारे से गीतों का आनंद उठाएं आकांक्षा जी के ही गाए हुए, उसके बाद विल कम बैक टू टॉक टू हर मोर।